एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज सोमवार है, शक संवत 1948 के ज्येष्ठ माह की 25वीं तिथि, तदनुसार 15 जून सन 2026। अभी प्रातः के 5:57 हुए हैं। हमारी आज की प्रातःकालीन सभा अब प्रारंभ होती है।

एफएम बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है। सुबह के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही देर में हिंदी व अंग्रेजी में बारी बारी से समाचार होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मनोज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेले ग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। 1993 में स्लोवाकिया की स्वतंत्रता के बाद किसी

0: भागीदार। किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ये पहली स्लोवाकिया यात्रा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पिछले वर्ष अप्रैल में स्लोवाकिया गई थी और वहां के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी इस वर्ष फरवरी में एआई इंपैक्ट शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए भारत आए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केनिया, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हराया। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। शुरुआत इस देशवंदना से करेंगे।

समूह स्वर में आपने सुनी देश वंदना। आइए सुनते हैं शिव भजन अनूप जलोटा और साथियों के स्वरों में।

कार्यक्रम आराधना के आखिर में हम सुनवा रहे हैं आपको जगजीत सिंह की सुमधुर आवाज में राम भजन।

0: जगजीत सिंह और साथियों के गाए इस राम भजन के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना यहीं संपन्न हुआ। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। प्रातः के 6:30 हुए हैं। आइए सुनते हैं खेती की बात। आज का विषय है धान में ट्राइकोडर्मा के लाभ और प्रयोग। वाचन स्वर अभिनव गौरहा का है।
1: किसान भाई हो,

0: राम राम, जय जोहार। खरीफ के सीजन लखटी आ गए है और हमर क्षेत्र के मुख्य फसल है धान। ताज जानबो के ट्राइकोडर्मा के लाभ हमन कोन ढंग से धान के फसल में ले सकथन और एखर प्रयोग विधि का है। सबले पहले ट्राइकोडर्मा का होते एला जानबो। ट्राइकोडर्मा एक लाभकारी फफूंद होते जेखर उपयोग धान के फसल में बीज जनित और मृदा जनित रोग के रोकथाम बर करे जाते। ये जैविक खेती के महत्वपूर्ण घटक है और रासायनिक फफूंद नाशक में जिन निर्भरता है हमन के किसान मन के ओला कम करते। मुख्य रूप से ट्राइकोडर्मा के लाभ के बात करी तो रोग नियंत्रण में धान में जड़ गलन, तना गलन, सीथ ब्लाइट और अन्य मृदा जनित रोग ला नियंत्रित करे में सहायक है। जड़ी के बेहतर विकास करते, पौधा के जड़ के वृद्धि बढ़ाते जेखर से पौधा ज़्यादा पोषक तत्व और पानी ला ले पाते। पौधा के रोग प्रतिरोधक क्षमता ला बढ़ाते, पौधा के प्राकृतिक प्रतिरोधक क्षमता ला मजबूत करते, पोषक तत्व के उपलब्धता ला बढ़ाते। स्वस्थ पौधा कारण फसल के वृद्धि और उत्पादन बेहतर होते। प्रयोग के उपयोग की विधि के बात करें 10 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर ला प्रति किलोग्राम धान बीज के दर से उपचारित करना है। बीज ला छाया में सुखा के तुरंत बुआई करना है। नर्सरी में उपचार के बात करी 1 से 2 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा ला 50 से 100 किलो सरे हुए गोबर खाद में मिला के प्रति एकड़ नर्सरी में डालना है। मुख्य खेत में प्रयोग के बात करी 2.5 से 5 किलोग्राम ट्राइकोडर्मा ला 100 से 200 किलोग्राम गोबर या वर्मी कंपोस्ट में मिला के एक हफ्ता छाया में रखना है। ओखर बाद प्रति एकड़ खेत में आखिरी जुताई के समय समान रूप से बिखेर देना है। सावधानी की बात करबो, ट्राइकोडर्मा ला रासायनिक फफूंद नाशक के संग सीधा हमन ला नहीं मिलाना है, काबर यह जैविक जीनिस है। अगर फफूंदी नाशक के प्रयोग करे हन तो ट्राइकोडर्मा के उपयोग 7 से 10 दिन के बाद ही करना है। एला हमेशा ठंडा और छायादार जगह में ही संग्रहित करना है। एखर उपयोग करत हन जब पैकेट हम खरीदत हन बाहर ले तो एक्सपायरी डेट ला निश्चित रूप से जाँच लेना है। ट्राइकोडर्मा के नियमित उपयोग से धान के फसल ला स्वस्थ रखे, रोग ला कम करे और उत्पादन बढ़ाए में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते। ये किसान मन पर कम लागत और पर्यावरण अनुकूल जैविक विकल्प है। तो हम यही कहबो कि भाई आप मन ट्राइकोडर्मा पाउडर चाहे आप मन ट्राइकोडर्मा के लिक्विड के उपयोग कर सका था। जब कोनो को ककरो खेत का होते आनी बानी के रोग राई कोनो भी फसल लगाते लगते तो हम पंप में भर के 2-3 ढक्कन एक पंप में डाल के ला भूमि ला खेत ला उपचार कर सकत हन। जैसे आप मन ला बताएं कि भाई आप मन खेत ला उपचारित करा था तो धान लगाए से पहले आखिरी जोताई के समय में मुख्य फसल में खेत में गोबर के संग मिला के कुछ दिन रखे के बाद एला बढ़िया ढंग से छिड़काव कर सका था। जेखर से आनी बानी के जन हमार धान में फफूंद जनिक रोग लगते ओहा नहीं होई। हमार यही मकसद है खेती किसानी करथन तो किसान मन के जन लागत है तो उन्हें कम हुए और इमन छोट छोट व्यवस्था करके लाभ ला अपन बढ़ा सके। अगर हम बीज ला ही उपचारित कर दी, भूया ला उपचारित कर दी तो जिन आने वाला रोग है तेखर संचरण रोक जाते और ला देख ताक के हम कम से कम दवाई के उपयोग करबो। तो अगर शुरू में ही हम ऐसा जैविक जीनिस मन से उपचारित कर लेबो अपन खेत ला अपन धान के या अन्य फसल के बीज ला तो हमन ला निश्चित रूप से लाभ होही। तो संगवारी हो, किसान भाई हो, आज आप मन ला बताए हन ट्राइकोडर्मा का होते एखर लाभ हमन अपन धान के फसल में कौन ढंग से ले सकत हन। आगो आप मन ला ऐसा है सुघर सुघर औ जानकारी देते रहो। तब तक राम राम, जय जोहार।
1: धान में ट्राइकोडर्मा के लाभ और प्रयोग विषय पर आप सुन रहे थे खेती की बात। वाचन स्वर अभिनव गौरहा का था। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:35 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है रामचरित मानस गान। मुख्य गायक हैं सुरेश वाडेकर, संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

अयोध्या से आई बारात के जनवासे में सुविधापूर्वक स्थापित हो जाने का समाचार पाकर मुनि विश्वामित्र राम लक्ष्मण को लेकर राजा दशरथ के पास पहुंचे। अवध नरेश ने मुनि की चरण धूलि सिर से लगाकर दंडवत प्रणाम किया। दीर्घ अवधि के बाद राम लक्ष्मण को अपने चरणों में दंडवत प्रणाम निवेदित करते देख दशरथ जी का हृदय आनंद से भर आया। उन्होंने पुत्रों को उठाकर गले से लगाया। भरत ने छोटे भाई शत्रुघ्न समेत श्री राम को प्रणाम किया और दोनों भाई लक्ष्मण जी से गले मिले। श्री राम को देखकर बारात में आए अयोध्यावासियों का जी जुड़ा गया। राजा दशरथ के चारों पुत्र पिता के पास ऐसे शोभायमान हैं मानो अर्थ धर्म काम तथा मोक्ष ने साक्षात शरीर धारण कर लिए हों। अगवानी में आए पुरोहित शतानंद, अन्य ब्राह्मण, मंत्रीगण, मागध, विद्वान तथा भाटों ने राजा दशरथ और बारातियों की अभ्यर्थना की। बारात लग्न के दिन से पहले आ गई है, ये जनकपुरवासियों के लिए विशेष आनंद का बानक बन गया है।

आज हम बात करेंगे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण तत्व पानी की और उससे जुड़ी भारत सरकार की एक महत्वपूर्ण पहल जल जीवन मिशन की। कहा जाता है जल है तो कल है, ये केवल एक कहावत नहीं बल्कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। पृथ्वी पर मौजूद हर जीव जंतु, पेड़ पौधे और इंसान पानी पर ही निर्भर हैं। हम भोजन के बिना कुछ दिन रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। लेकिन बढ़ती आबादी, जल स्रोतों में अंधाधुंध दोहन, प्रदूषण और बदलते मौसम के कारण देश के कई क्षेत्रों में पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है। खासकर ग्रामीण इलाकों में लोगों को पीने का साफ पानी प्राप्त करने के लिए कई किलोमीटर दूर तक जाना पड़ता था। महिलाओं और बच्चों का काफी समय सिर्फ पानी लाने में ही निकल जाता था। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने वर्ष 2019 में जल जीवन मिशन की शुरुआत की। इस मिशन का मुख्य उद्देश्य देश के प्रत्येक ग्रामीण परिवार तक नल के माध्यम से स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना है। इस योजना को हर घर जल अभियान के नाम से भी जाना जाता है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत घर घर नल कनेक्शन उपलब्ध कराने के साथ साथ पानी की गुणवत्ता, जल स्रोतों के संरक्षण और उनके बेहतर प्रबंधन पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। श्रोताओं, हमारे देश के कई गांवों में वर्षों तक लोगों को पीने के पानी के लिए कुएं, हैंडपंप, तालाब या दूर जल स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता था। कई बार पानी साफ नहीं होता था, जिससे हैजा, टाइफाइड, डायरिया जैसी बीमारियां फैलती थी। इसके अलावा भूजल स्तर लगातार नीचे जा रहा था और कई क्षेत्रों में पानी की उपलब्धता कम होती जा रही थी। इसलिए एक ऐसी योजना की जरूरत महसूस हुई जो हर परिवार तक सुरक्षित पेयजल पहुंचाने के साथ साथ जल संरक्षण को भी बढ़ावा दे। जल जीवन मिशन इसी सोच का परिणाम है। इस योजना के माध्यम से लाखों ग्रामीण परिवारों के जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है। सबसे बड़ा लाभ ये हुआ कि लोगों को घर पर ही नल से पानी मिलने लगा है। महिलाओं और बच्चों को पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ती। इससे उनका समय बचता है, जिससे वो शिक्षा, रोजगार और बाकी उपयोगी कार्यों में अपना समय लगा सकते हैं। स्वच्छ पानी मिलने से जल जनित बीमारियों में कमी आई है, स्वास्थ्य बेहतर हुआ है और लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा हुआ है। श्रोताओं, पानी की उपलब्धता सीमित है। पृथ्वी पर भले ही पानी बहुत अधिक दिखाई देता हो, लेकिन पीने योग्य पानी की मात्रा बहुत कम है। अगर हम आज पानी का संरक्षण नहीं करेंगे तो भविष्य में गंभीर जल संकट का सामना करना पड़ सकता है। कई शहरों और गांवों में गर्मियों के दौरान पानी की कमी इसका संकेत भी दे रही है। इसलिए सिर्फ पानी का उपयोग करना ही पर्याप्त नहीं है, उसका संरक्षण करना भी हमारी जिम्मेदारी है। पानी बचाने के लिए हमें कुछ सरल आदतें अपनानी होंगी। जब आवश्यकता ना हो तो नल खुला ना छोड़ें। दांत साफ करते समय या बर्तन धोते समय पानी का अनावश्यक बहाव रोकें। घरों की टंकियों और पाइपों में होने वाले रिसाव को तुरंत ठीक कराएं। छोटी सी बूंद भी समय के साथ हजारों लीटर पानी बर्बाद कर सकती है। वर्षा जल संचयन यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं। बारिश के पानी को संग्रहित करके भूजल स्तर बढ़ाया जा सकता है। किसानों को टपक सिंचाई और स्प्रिंकलर जैसी आधुनिक तकनीकों का उपयोग करना चाहिए, जिससे कम पानी में अधिक सिंचाई हो सके। तालाबों, कुओं और अन्य जल स्रोतों की साफ सफाई और संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। जल स्रोतों में कचरा या गंदगी डालने से बचना चाहिए। नवविहान में आज चर्चा का विषय था जल जीवन मिशन। हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:50 हुए हैं। आज के शेष और मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी हम देंगे कार्यक्रम विवरण के माध्यम से।

अभी हम प्रसारित कर रहे थे रामचरित मानस गान। मुख्य गायक थे सुरेश वाडेकर। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। नव विहान में आज हम चर्चा करेंगे जल जीवन मिशन पर। श्रोताओं,

शाम 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला का विषय होगा विदेश नीति और ये कार्यक्रम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित होगा। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम आज सुबह हम प्रसारित करेंगे 7:05 पर। यादों के झरोखे से कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 7:30 पर। कार्यक्रम अमराई हम लेकर आएंगे 8:30 पर। कलाकार होंगे महावीर साहू, तुलसी वर्मा और साथी, ओम परमानंद वैष्णव, सुनीता वस्त्रकार और साथी। 10:00 हमारे केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत। प्रस्तुति होगी मदन।

महावीर साहू, तुलसी वर्मा और साथी, ओम परमानंद वैष्णव, सुनीता वस्त्रकार और साथी। सुबह 10 बजे हमारे केंद्र से सुनिएगा कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत। प्रस्तुति होगी मदन पांडे की। सुबह 10:30 पर हम पेश करेंगे कार्यक्रम आपकी पसंद। प्रतिदिन की तरह सुबह 11 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

हर दिन की तरह संध्या 5 बजे सुनिएगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। संध्या 5:05 पर हम बढ़ेंगे ग्राम सभा की ओर। बेरा के गोठ में चर्चा का विषय होगा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर्यावरण संरक्षण मा सहायक, और आज की भेंटवार्ता का विषय होगा धान उत्पादन की प्रमुख विधियां एवं छिटका पद्धति से लाभ। वार्ताकार होंगी श्रीमती शिखा पांडे, ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोखंडी विकास खंड तखतपुर। भेंट करता होंगे राजू भैया। संध्या 5:35 पर समय होगा युवाओं के प्रिय कार्यक्रम युवा जगत का। आज की बात में चर्चा का विषय होगा रक्तदान जीवन दान। क्रम होगा फोन करें गीत सुने का। शाम 6:20 पर और शाम 7 बजे आनंद लीजिएगा कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का। शाम 7:45 पर हम पेश करेंगे चित्रपट संगीत। अदनान सामी के तरानों को सुनिएगा रात्रि 8 बजे सुगम संगीत में। रात्रि 8:15 पर हम बिखेरेंगे महक कार्यक्रम रजनीगंधा की। इसी के साथ कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं। संस्कृत में और हिंदी में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित करेंगे।

0: दस चैनल है, 6:55 होने को हैं। अब समाचार प्रसारित किए जाएंगे, पहले संस्कृत, फिर हिंदी और अंग्रेजी में।
1: इयम् आकाशवाणी, सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्, प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। अथ वार्ताः। फ्रांस देशस्य एवियन नगरम् अद्य आरभ्यमाणस्य 25वें G7 शिखर सम्मेलनस्य आयोजनाय सज्जः अस्ति। आल्पस पर्वत श्रेण्याः लेमनाख्य सरोवरस्य च मध्ये स्थितं सुरम्यं लेक्सेंड नगरं वैश्विक कूटनीतेः केन्द्ररूपेण परिवर्तितमस्ति, यत्र नेतारः प्रतिनिधयश्च त्रिदिवसीयेस्मिन् कार्यक्रमे आगच्छन्ति। फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रों अद्य अपराह्णे अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, जर्मनी, इटली, जापान इत्यादीनां G7 राष्ट्राणां नेतृणां यूरोपीय परिषदः यूरोपीय आयोगस्य च अध्यक्षैः सह औपचारिकरूपेण स्वागतं करिष्यति। अयं शिखरसम्मेलनं तस्मिन् समये भवति यदा विश्वं भूराजनैतिकसङ्कटैः आर्थिक अनिश्चिततया नूतनप्रौद्योगिकीनां द्रुतविकासेन च ग्रसितमस्ति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी श्वः आउटरीच इत्येतेषु सत्रेषु भागं ग्रहीष्यति। शिखर सम्मेलने भारतस्य सहभागित्वेन प्रमुख वैश्विक विषयेषु चर्चासु योगदानं कुर्वन् वैश्विक

0: दक्षिणस्य प्राथमिकताः चिन्ताः च प्रकाशयितुम् अवसराः प्राप्यन्ते। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रों इत्यनेन सह विस्तृतचर्चां विधाय भारत फ्रांस विशेष वैश्विक सामरिक सहभागित्वं सुदृढं कर्तुं चर्चासु भागम् अगृह्णन् फ्रांसदेशस्य नीसनगरस्य स्वयात्रा समापिता। विदेशमन्त्रालयेन प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः फ्रांसदेशस्य यात्रायाः परिणामे विशेषसूचनाः प्रदत्ताः। सूचनायां विदेशसचिवः विक्रममिश्री फ्रांस भारत नवान्वेषणस्य मार्गचित्रं 30-2000 इति अस्याः यात्रायाः प्रमुखं परिणामम् इति वर्णितवान्, यस्योद्देश्यं महत्वपूर्ण उदयोन्मुख प्रौद्योगिकीषु कृत्रिमबुद्धिमत्ता संशोधनेषु शैक्षणिक विनिमयेषु च सहयोगं सुदृढं कर्तुमस्ति। उत्तरप्रदेशस्य गौतमबुद्धनगरस्य जेवरनगरे स्थितात् नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानकात् वाणिज्य विमानसेवाः अद्य आरभ्यन्ते। इण्डिगो एयरलाइन्स् संस्थया प्रथमं विमानं लखनऊतः प्रातः 5:07 प्रचालयिष्यते। नोएडा अन्ताराष्ट्रिय विमानस्थानके प्रातः 5:08 तद्विमानम् आगमिष्यति। तदनन्तरं नोएडा नगरात् बेंगलुरुनगरं प्रति प्रथमं नियमितं वाणिज्यिक विमानम् अपि प्रचलिष्यति। एकं विमानं लखनऊनगरं प्रति प्रस्थास्यति। जेवरस्य एमएलए धीरेन्द्र सिंहेन सह प्रथमे विमाने 20 महिलाभिः सह 270 यावत् कृषकाः भविष्यन्ति। एते कृषकाः ते सन्ति येषां भूमिः विमानस्थानकस्य कृते अधिगृहीता आसीत्। लखनऊनगरं प्राप्य एते कृषकाः मुख्यमन्त्रिणा योगी आदित्यनाथेन सह मिलित्वा कार्तज्ञतां प्रकटयिष्यन्ति। अद्य विश्ववायुदिवसः आचर्यते। पवनशक्तेः जलवायुपरिवर्तनं प्रतिरोधे तस्यां भूमिकां च प्रोत्साहनाय प्रतिवर्षं जूनमासस्य 15 अयं दिवसः आचर्यते। भारतम् अद्य गोवाराज्ये 26-2000 वैश्विकवायुदिवससम्मेलनस्य आयोजनं करिष्यति। सम्मेलने सर्वकारेण नियामकैः विकासकैः निर्मातृभिः विशेषज्ञैः च सह पूर्णोपवेशनं करिष्यति। महिलानाम् आईसीसी 20-20 विश्वचषकक्रीडायां वर्मिंघम नगरस्य एज्वेस्टन नगरे ग्रूपे क्रीडायां भारतेन पाकिस्तानदलं 64 पराजितम् इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं विशाल शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात स्लोवाकिया यात्रा पर ब्रातिस्लावा पहुंचे। उन्होंने कहा कि इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। दोनों देशों ने नवाचार रूपरेखा 2030 को अपनाने का फैसला किया है। इसका उद्देश्य महत्वपूर्ण और उभरती तकनीकों, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप, अनुसंधान और शिक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन किया। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तकों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर

0: उपलब्ध हो रहे हैं।
1: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियोन शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही वैश्विक तेल आपूर्ति के 1/5 हिस्से का परिवहन करने वाला हॉर्मुज जल डबरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौते की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए NEET UG पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले परीक्षा शुल्क की वापसी के लिए अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित करने का परामर्श दिया है। प्रवेश पत्र और सूचना बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ने की भी सलाह दी गई है। बर्मिंगम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने 34 रन का योगदान दिया। जवाब में पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। भारत अब 17 जून को नीदरलैंड से खेलेगा। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया है। कुराकाओ की टीम विश्व कप में पहली बार खेल रही है। डलास स्टेडियम में ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स और जापान का मैच 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचारों को हम आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 7:05 हुए हैं। आइए बढ़ते हैं कार्यक्रम आज सुबह की ओर।

0: आज सुबह।
1: कार्यक्रम सुन रहे सभी श्रोताओं का हृदय से अभिनंदन। कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का स्नेहिल नमस्कार।

श्रोताओं, सुबह आँख खुलते ही सबसे पहले खिड़की की तरफ नजर जाती है और मन में एक उम्मीद होती है कि शायद आज मौसम कुछ मेहरबान

मेहरबान होगा। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुलता है, गर्म हवा का झोंका मानो कहता है, अभी कुछ दिन और मेरा सामना करना होगा। सूरज भी इन दिनों सुबह सुबह ही अपनी पूरी ताकत के साथ आकाश में डेरा जमा लेता है। पंखे, कूलर और एसी भी रात भर अपनी ड्यूटी निभाने के बाद थके थके नजर आते हैं। पानी की बोतलें बार बार भरनी पड़ती हैं और दोपहर होते तक सड़कें ऐसी दिखाई देती हैं मानो किसी ने उस पर आग की चादर बिछा दी हो। पेड़ पौधे चुपचाप खड़े रहते हैं, पंछी छांव की तलाश में हैं और धरती की सूखी दरारें आसमान की ओर देखकर जैसे बारिश की गुहार लगा रही हो। लेकिन प्रकृति का यही नियम है श्रोताओं, तपिश जितनी ज्यादा होती है, बारिश का इंतजार भी उतना ही सुहाना लगता है। आजकल आसमान में कहीं कहीं बादलों की हल्की आवाजाही, अचानक चलने वाली ठंडी हवाएं और शाम के समय बदलता मौसम, यही संकेत दे रहा है कि मानसून अब दूर नहीं है। हमारे आसपास के कई इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और तेज बारिश भी होने लगी है और मानसून के आगमन से ठीक पहले का मौसम अक्सर अस्थिर और चुनौतीपूर्ण रहता है। तो हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि भीषण गर्मी और उमस के बीच मानसून की आहट अब महसूस होने लगी है। जल्द ही वर्षा की फुहारें धरती को शीतलता प्रदान करेंगी और हरियाली का एक नया अध्याय शुरू होगा।

0: श्रोताओं, आइए सुनते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार, यातायात संबंधी आकाशवाणी बिलासपुर की दैनिक प्रस्तुति ट्रैफिक अपडेट साफ बिलासपुर में आज की यातायात संबंधी सूचनाओं के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले की सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, सभी राजकीय राजमार्ग, सभी मुख्य जिला मार्ग सहित सभी मार्गों में सभी प्रकार के वाहनों का सुगम आवागमन बना हुआ है। इन वाहनों से माल एवं यात्री परिवहन आसानी से हो रहा है। बिलासपुर का सभी स्थानों से यातायात संपर्क भी बना हुआ है, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, हम सभी ये लगातार देख रहे हैं कि सड़कों में छोटे से लेकर बड़े से बड़े वाहन बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ते वाहनों के अनुपात में सड़कें संकीर्ण होती प्रतीत हो रही हैं। सड़कों में इस प्रकार की कशमकश की स्थिति में सुरक्षित यात्रा कर पाना अब आसान नहीं है। प्रतिदिन साधारण से लेकर गंभीर प्रकृति की सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं। किंतु हमें सड़कों में तो चलना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सड़कों में बहुत छोटी छोटी किंतु अति महत्वपूर्ण सावधानियां यदि हम बरतते चलते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम सुरक्षित आवागमन कर सकते हैं। जैसे प्रायः सभी सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण वाहनों का तेज रफ्तार में होना पाया गया है, इसलिए सुरक्षित यातायात का मूल मंत्र है हमेशा सीमित और संयमित गति में वाहन चलाएं। इसी प्रकार गलत दिशा में वाहन भूलकर न चलाएं। लोग जल्दी के चक्कर में शॉर्टकट अपनाते हुए गलत दिशा में वाहन चलाते हैं, जो दुर्घटना का बड़ा कारण बनता है। वैसे ही ओवरलोड माल हो या सवारी घातक है। ऐसा करने से वाहन में वाहन चालक का पर्याप्त नियंत्रण नहीं रहता तथा वाहन की आत्मशक्ति चरमरा जाती है, जो सड़क दुर्घटना का कारण बनती है। साथियों, मोबाइल फोन जितना हमारा हितैषी है उसका गलत उपयोग उतना ही घातक भी है, अर्थात वाहन चलाते हुए कभी भी मोबाइल से बातें ना करें। ऐसा करने से चालक का पूरा ध्यान वहां होता है जहां वह बातें कर रहा होता है, और वाहन चालक का यदि सड़क से ध्यान हटा तो परिणाम घातक होना तय है। नशा व्यक्ति को विवेक शून्य बना देता है, और यही विवेक शून्य व्यक्ति

0: अर्थात नशा किया व्यक्ति कोई वाहन लेकर निकलता है तो यह सड़क में चलता फिरता आत्मघाती बम होता है जो स्वयं और दूसरों के लिए भी घातक है। अतः नशा से हमेशा दूर रहें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: श्रोताओं, एक दौर था जब गर्मियों की छुट्टी में हम दादी या नानी के पास गांव जाते थे और हर रात खटिए पर लेटे लेटे वो हमें कहानी या लोरियां सुनाते हुए नींद की आगोश में भेज देती थी। गांव में बिजली के अभाव में भी उनके हाथ में पंखा रहता था, जिससे वो हमें सुकून की नींद दिया करती थी। उनके हाथों का बना स्वादिष्ट भोजन ऐसा लगता था मानो अमृत चख लिया हो। उस स्वाद की बराबरी आज के पिज्जा और बर्गर कहाँ कर पाएंगे, जिन्होंने भी अपना बचपना और अब जवानी अपने बुजुर्गों के साथ जिया है और जी रहे हैं और अभी भी उनके प्रेम भरी छाँव में रह रहे हैं, वो वाकई बड़े किस्मत वाले हैं। श्रोताओं, दादी नानी के किस्सों में सिर्फ राजा रानी या परियों की कहानी नहीं होती थी, उसमें संघर्ष होता था, धैर्य होता था, मेहनत थी, रिश्तों की अहमियत थी और जीवन की सच्चाई थी। उनके अनुभव हमें बताते हैं कि कठिन परिस्थितियों में कैसे डटे रहना है, परिवार को कैसे जोड़े रखना है और खुशियों की छोटी छोटी बातों में कैसे ढूंढना है। उनकी दी हुई सीख हमें किसी भी कहानी या किताबों में नहीं मिलेगी, वो अपनापन नहीं मिलेगा। श्रोताओं, किसी भी परिवार, समाज और राष्ट्र की पहचान सिर्फ उसकी आधुनिकता से नहीं बल्कि इस बात से भी होती है कि वो अपने रिश्तों, बुजुर्गों का कितना सम्मान करते हैं। हमारे देश में सदियों से बुजुर्गों को ज्ञान, अनुभव और संस्कारों का भंडार माना गया है। मातृ पितृ देवो भवः की भावना हमारी संस्कृति की पहचान रही है। यही कारण है कि भारतीय समाज में बुजुर्गों को सदैव आदर और सम्मान का स्थान दिया गया है। श्रोताओं, अगर हम अपने जीवन पर एक नज़र डालें तो यही बात समझ में आएगी कि हमारे माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और सभी बुजुर्गों ने अपने जीवन का बड़ा हिस्सा परिवार की खुशियों में और भविष्य संवारने में लगाया है। उन्होंने सपनों से पहले हमारे सपने को महत्व दिया, अपनी इच्छाओं से पहले हमारी ज़रूरतों को पूरा किया। ऐसे में जब वो उम्र के उस पड़ाव पर पहुंचते हैं जहां उन्हें सहारे, अपनत्व और देखभाल की ज़रूरत होती है, तब उनका साथ देना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। लेकिन बदलती जीवन शैली, व्यस्त दिनचर्या और बढ़ते एकल परिवारों के दौर में एक चिंताजनक स्थिति सामने आ रही है। आज कई बुजुर्ग अपने ही घरों में उपेक्षा और अकेलेपन का सामना कर रहे हैं। कुछ बच्चे तो उन्हें वृद्धाश्रमों में छोड़कर जिम्मेदारियों से मुक्त हो रहे हैं। ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं है बल्कि हमारी संवेदनाओं और पारिवारिक मूल्यों के लिए भी एक गंभीर चुनौती है। ये सच है कि कुछ परिस्थितियों में वृद्धाश्रम बुजुर्गों की देखभाल का एक विकल्प बन सकते हैं, लेकिन माता पिता को सिर्फ सुविधा या जिम्मेदारी से बचने के लिए दूर कर देना एक चिंतन का विषय है। जिन हाथों ने

हमें चलना सिखाया है। जिन लोगों ने हमारी हर जरूरत पूरी की है, क्या उनके बुढ़ापे में उन्हें अकेला छोड़ देना उचित है? वृद्धजनों के प्रति होने वाले दुर्व्यवहार, उपेक्षा, शोषण और भेदभाव के प्रति समाज को जागरूक करने और उनके सम्मान, सुरक्षा और अधिकारों की रक्षा को सुनिश्चित करने के लिए हम हर साल 15 जून को विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस मनाते हैं। श्रोताओं, हमारे बुजुर्ग परिवार और समाज की नींव होते हैं। उनके अनुभव, ज्ञान और जीवन मूल्य नई पीढ़ी के लिए मार्गदर्शन का काम करते हैं। आज बदलती जीवन शैली, एकल परिवार की बढ़ती संख्या और व्यस्त दिनचर्या के कारण कई बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का सामना कर रहे हैं। डिजिटल युग में साइबर ठगी और आर्थिक धोखाधड़ी के मामलों में भी वृद्धजन अक्सर निशाना बनते हैं। ऐसे में जागरूक होना बहुत जरूरी है ताकि बुजुर्ग अपने अधिकारों को जान सकें, परिवार और समाज उनकी आवश्यकताओं को समझ सके। इनकी जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं बल्कि परिवार वालों और समाज की भी है। हमें इनकी भावनाओं का और विचारों का सम्मान करना चाहिए। उनके साथ समय बिताकर, उनकी बातें सुनकर भी हम उन्हें खुश रख सकते हैं। बुजुर्गों के स्वास्थ्य और सुरक्षा का ध्यान रखकर, पारिवारिक चर्चाओं में उन्हें शामिल करके हम उन्हें छोटी छोटी खुशियां दे सकते हैं। श्रोताओं, हमारे बुजुर्गों की अपेक्षाएं बहुत बड़ी नहीं होती। उन्हें हमसे महंगे उपहार नहीं, बस थोड़ा समय, सम्मान और अपनापन चाहिए। वो बस इतना ही चाहते हैं कि कोई उनके पास बैठकर उनकी बातें सुने, उनके अनुभवों को महत्व दे और उन्हें परिवार का अहम हिस्सा समझे। आज हम युवा हैं, कल हमें भी इसी उम्र और परिस्थितियों से गुजरना होगा। अगर आज हम अपने बुजुर्गों का सम्मान करेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी भी वही सम्मान हमें दे पाएगी। इसलिए हर दिन अपने बुजुर्गों के साथ वक्त बिताएं और उन्हें खूब स्नेह और सम्मान दें।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही हम ले रहे हैं आपसे अनुमति, तो कीजिए स्वीकार अपनी रेडियो साथी अपेक्षा शर्मा का स्नेहिल नमस्कार।

आज सुबह आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। सुबह के 7:30 हुए हैं। लीजिए पेश है यादों के झरोखे से कार्यक्रम। श्रोताओं, आज जन्मदिन है भारतीय सिनेमा के उस चमकते सितारे का, जिसने ना सिर्फ अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल जीता, बल्कि अपनी मधुर आवाज से संगीत प्रेमियों को भी मंत्रमुग्ध कर दिया। हम बात कर रहे हैं हिंदी सिनेमा की पहली सुपरस्टार गायिका और अभिनेत्री सुरैया की। तो आइए सुनते हैं उनकी गायकी और उनके फिल्मी गीतों को।

आपने सुना अनमोल घड़ी फिल्म का ये गीत सुरैया की आवाज़ में। तनवीर नकवी के बोल थे और नौशाद का संगीत था। श्रोताओं, एक समय था जब फिल्मों में कलाकार स्वयं अपने गीत गाते थे और सुरैया उन चुनिंदा सितारों में शामिल थी जिन्होंने अभिनय और गायन दोनों क्षेत्रों में अद्भुत सफलता हासिल की। लीजिए, पेश है सुरैया और श्याम कुमार के युगल स्वर में शकील बदायूनी की रचना। नौशाद की धुन है और फिल्म का नाम है दिल लगी।

श्रोताओं, सुरैया की आवाज़ में एक ऐसी मासूमियत, एक ऐसी मिठास थी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। और आज उनके जन्मदिन के इस खास अवसर पर हम ले रहे हैं उनके सदाबहार गीतों का आनंद, और सुनेंगे ऐसे गीत जब संगीत में सादगी थी, शब्दों में गहराई थी और आवाज़ों में आत्मा बसती थी। तो आइए सुनते हैं बड़ी बहन फिल्म का गीत हुस्नलाल भगतराम की धुन पर कमर जलालाबादी के बोलों को स्वर दिया है सुरैया ने।

गहरी थी। कलाकारों को अपने अभिनय से भी दर्शकों का दिल जीतना होता था और अपनी आवाज से भी। ऐसे समय में सुरैया एक ऐसी शख्सियत बनकर उभरी जिन्होंने पर्दे पर अपनी अदाकारी से और माइक्रोफोन के सामने अपनी गायकी से लाखों दिलों को अपना दीवाना बना लिया। कहा जाता है कि किसी कलाकार की असली पहचान उसकी आवाज होती है। 1940 और 1950 के दशक में जब रेडियो पर सुरैया के गीत बजते थे तो श्रोता सब कुछ छोड़कर उन्हें सुनने बैठ जाया करते थे। उनकी लोकप्रियता का अंदाज इसी बात से लगाया जा सकता है कि उस दौर में उनके प्रशंसकों की संख्या किसी भी बड़े सितारे से कम नहीं थी।

श्रोताओं, सोचिए वो दौर जब फिल्मों में तकनीक कम थी, तड़क भड़क कम थी, लेकिन भावनाएं

आपने सुना शमा फिल्म का तराना सुरैया की आवाज़ में, कैफी आज़मी के शब्द थे और गुलाम मोहम्मद की तर्ज थी।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: श्रोताओं, सुरैया अदाकारी की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वे अभिनय करती हुई दिखाई नहीं देती थी, बल्कि अपने किरदार को जीती हुई महसूस होती थी। उनकी आंखें संवादों से पहले बोलती थी और मुस्कान शब्दों से ज्यादा असर छोड़ जाती थी। आज जब हम फिल्मों में शानदार सेट, आधुनिक तकनीक और बड़े बड़े प्रभाव देखते हैं, तब सुरैया का दौर हमें ये याद दिलाता है कि दर्शकों के दिल तक पहुंचने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है सच्ची भावनाएं। और यही वजह है कि दशकों बाद भी सुरैया के गीत और उनके निभाए किरदार लोगों की स्मृतियों में जीवित हैं। और जब बात हो रही है सुरैया की, तो उनके फिल्मी गीतों का जिक्र अपने आप होने लगता है। फिल्म मिर्जा गालिब में उनकी अदाकारी और गायकी ने दर्शकों के दिलों पर अमिट छाप छोड़ी है। तो आइए सुनते हैं इसी फिल्म का तराना सुरैया की दिलकश आवाज में। मिर्जा गालिब के बोलों को सुरों से सजाया है गुलाम मोहम्मद ने।

में कई सितारे आए चमके और इतिहास का हिस्सा बन गए, लेकिन कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ इतिहास में दर्ज नहीं बल्कि यादों में बस गए हैं, और ऐसा ही नाम है सुरैया का। आइए सुनते हैं शकील बदायूनी की रचना को उमा देवी की आवाज में। नौशाद का संगीत है और फिल्म का नाम है दर्द।

परे जाकर अमर हो जाते हैं और सुरैया वही कलाकार है। आइए सुनते हैं रुस्तम सोहराब फिल्म का गीत सुरैया की आवाज में। गीतकार कमर जलालाबादी हैं और संगीतकार सज्जाद हुसैन हैं।

श्रोताओं, सुरैया के जन्मदिन पर हम बस यही कहेंगे कि उनके सुरों, उनकी अदाकारी के जादू को हम कभी भी नहीं भूल सकते, क्योंकि कुछ आवाज़ें कभी पुरानी नहीं होती, कुछ चेहरे कभी भुलाए नहीं जाते, और कुछ कलाकार समय की सीमाओं से

0: यादों के झरोखे से कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे सुरैया की आवाज में रुस्तम सोहराब फिल्म का ये गीत। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात और मॉर्निंग न्यूज हम आकाशवाणी दिल्ली से कुछ ही देर में अनुप्रसारित करेंगे।
1: पहले हिंदी में, फिर अंग्रेजी और उर्दू में। तो आइए सुनते हैं देश दुनिया के समाचार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के
3: अब 0 रुपए कैसे दो।
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानें आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। और बर्मिंघम के एजबेस्टन में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हराया। अब समाचार विस्तार से। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही हॉर्मुज जलडमरू मध्य खुल जाएगा और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। हॉर्मुज जलडमरू मध्य समझौते पर हस्ताक्षर के बाद शुक्रवार से खुल जाएगा।

0: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के दाम नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेश ने इस समझौते का स्वागत किया है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से मुलाकात करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे तथा सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ रचनात्मक वार्ता के लिए उत्सुक हैं। एक रिपोर्ट।
0: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसेंबल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में शुरू हो रहा है। 3 दिन के इस सम्मेलन में G7 के सदस्य देश फ्रांस, अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी, इटली और जापान भाग लेंगे। यूरोपीय संघ और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष भी सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। इसके अलावा फ्रांस ने भारत, ब्राजील, मिस्र, केन्या, दक्षिण कोरिया, कतर, सऊदी अरब, सीरिया, यूक्रेन और संयुक्त अरब अमीरात को संपर्क साझेदार देशों के रूप में आमंत्रित किया है। भारत 13वीं बार इस सम्मेलन में साझेदार देश के रूप में शामिल होगा। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: शिखर सम्मेलन में आज से शुरू हो रहे सत्रों के दौरान इस सम्मेलन में हिस्सा लेने वाले नेता भू राजनीतिक चुनौतियों, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा, संतुलित आर्थिक विकास और प्रमुख वैश्विक संकटों पर गहन विचार विमर्श करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल आयोजित होने वाले आउटरीच सत्रों में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन में भारत की भागीदारी प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर चर्चा में योगदान देने के साथ साथ ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और उनकी चिंताओं को प्रमुखता से रेखांकित करने का एक बड़ा अवसर प्रदान करेगी। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, AVR फ्रांस।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं।
3: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और AI से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर में जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ान सेवा आज से शुरू हो रही है। पहली उड़ान से जेवर के विधायक धीरेंद्र सिंह के साथ 20 महिलाओं सहित 172 किसान लखनऊ जा रहे हैं। ये वो किसान हैं जिनकी जमीनें हवाई अड्डे के लिए अधिग्रहित की गई थी। ये सभी किसान लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करेंगे।
4: यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत जेवर में बने इस हवाई अड्डे का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी साल 28 मार्च को किया था। हवाई अड्डे के लिए करीब 1334 हेक्टेयर यानी लगभग 3300 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया है। पहले चरण में 1,20,00,000 यात्रियों की क्षमता वाला ये एयरपोर्ट भविष्य में 22,50,00,000 यात्रियों की क्षमता तक विकसित हो सकता है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली NCR और पड़ोसी राज्यों के लिए एक नई एयर कनेक्टिविटी देगा। एयरलाइन ऑपरेटर इंडिगो 16 से ज्यादा शहरों के लिए उड़ान सेवाएं शुरू करेगी।

0: दूसरी एयरलाइंस की सेवाएं भी जल्द ही शुरू होने की उम्मीद है। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। प्रवेश पत्र एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किए जा सकते हैं। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 तक होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण के लिए आज बात सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2 लाख करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
4: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक है। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे पूरे देश में ट्रेन चले।
2: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: और अब बात खेलों की। बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 64 रन से हरा दिया है। भारतीय टीम ने 6 विकेट पर 170 रन बनाए। पाकिस्तान की टीम 106 रन पर ही सिमट गई। दीप्ति शर्मा ने 5 विकेट लिए, उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। दीप्ति महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाली गेंदबाज बन गई हैं। फीफा विश्व कप में जर्मनी ने कल कुराकाओ को 7-1 से हरा दिया। कुराकाओ पहली बार विश्व कप खेल रहा है। वहीं ग्रुप एफ का पहला मैच जापान और नीदरलैंड्स के बीच 2-2 से ड्रॉ रहा। ग्रुप ई में आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मनोज।
5: धन्यवाद विशाल। फ्रांस के नीस में भारत इनोवेट्स 2026 के उद्घाटन अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हिंदुस्तान सहित कई अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर है। भारत नवाचार और तकनीक में समाधान देने वाला देश।

0: बंधु ने लिखा है, इनोवेशन भारत के डीएनए में शामिल। वीर अर्जुन ने पीएम के शब्दों को दिया है, भारत की सुधार एक्सप्रेस रुकेगी नहीं। कहा, देश अब वैश्विक समाधानों का सिर्फ उपभोक्ता नहीं बल्कि प्रदाता भी है। प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के बीच व्यापक वार्ता में 13 मुद्दों पर सहमति को भी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक ट्रिब्यून ने लिखा है, 5 साल में व्यापार दोगुना करेंगे भारत और फ्रांस। पंजाब केसरी के अनुसार अब भारत में ही बनेंगे राफेल। अमर उजाला ने संपादकीय में लिखा है, आज जब दुनिया गहरे बदलावों से गुजरते हुए नए शक्ति संतुलन की ओर बढ़ रही है, तब फ्रांस, स्लोवाकिया और G7 को समेटे प्रधानमंत्री की ये यात्रा एक बहुध्रुवीय और संवाद आधारित विश्व व्यवस्था के निर्माण की दृष्टि से महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। तृणमूल कांग्रेस में औपचारिक विभाजन भी अखबारों की सुर्खी बना है। जनसत्ता की सुर्खी है, आखिर दो फाड़ हुई तृणमूल कांग्रेस। राजस्थान पत्रिका के अनुसार पार्टी के 20 बागी सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजंस पार्टी ऑफ इंडिया में विलय का किया फैसला। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मांगी मान्यता। ममता गुट ने कहा, विभाजन असंवैधानिक। निजी स्कूल में पढ़ाने वाली महिला शिक्षकों को भी है चाइल्ड केयर लीव का अधिकार। दैनिक जागरण में है, एक शिक्षिका की याचिका पर एकल पीठ का निर्णय पलटते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने कामकाजी महिलाओं के हक में सुनाया ऐतिहासिक फैसला। जेवर से उड़ान का सपना आज होगा सच, हिंदुस्तान लिखता है। नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से अगले महीने से 16 शहरों के लिए शुरू होंगी उड़ाने। संघ दुनिया का सबसे गलत समझा गया संगठन, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत का यह बयान दैनिक भास्कर में है। केरल के त्रिशूर में एक कार्यक्रम में लोगों से कहा, वे खुद संगठन को परखें।
1: धन्यवाद मनोज। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अमेरिका और ईरान ने युद्ध समाप्त करने, हॉर्मुज जलडमरू मध्य खोलने और ईरानी बंदरगाहों से अमेरिकी नौसेना की नाकेबंदी हटाने का समझौता किया। विश्व नेताओं ने समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्रातिस्लावा में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फित्सो से बातचीत करेंगे। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियों शहर में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल संपर्क सत्र में भाग लेंगे। जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ाने आज से। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 21 जून की नीट यूजी पुनः परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी किए। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I'm Shagun Chopra. The headlines. US and Iran reach agreement to end military operations, open Strait of Hormuz and lift US naval blockade of Iranian ports. Prime Minister Narendra Modi to hold talks with his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava today. 52nd G7 summit to begin today at Evian in France. Prime Minister Modi to participate in outreach sessions tomorrow. Noida International Airport in Jewar begins commercial flight operations. National Testing Agency releases admit cards for NEET UG 2026 re-exam to be held on 21st of this month. And in cricket, India beat Pakistan by 64 runs in their ICC Women's T20 World Cup opener at Edgbaston in Birmingham. And now the news in detail. The United States and Iran finalized a deal to end their 107-day war and open the Strait of Hormuz, the narrow waterway used to ferry one-fifth of the global oil supplies. U.S. President Donald Trump made the announcement on Truth Social last night, saying America will end its naval blockade on Iranian ports. We have a report.
3: The peace agreement will be signed on June 19 in Switzerland. Trump said the Strait of Hormuz will open on Friday after the official signing of the agreement. He said this great deal will bring peace and security to the whole region. The agreement calls for the United States of America and Iran to negotiate over Iran's nuclear enrichment and the disposal of its highly enriched uranium during a 60-day window. Iran's Supreme National Security Council said that the war and military operations on all fronts, including Lebanon will end permanently starting tonight. Oil prices fell on the news. Brent crude futures fell 4% in early trading today, while U.S. West Texas Intermediate slid more than 4.6%.

0: अभी आपने सुना महावीर साहू की आवाज़ में छत्तीसगढ़ी लोकगीत। आइए सुनते हैं ददरिया गीत, ओम परमानंद वैष्णव, सुनीता वस्त्रकार और साथियों की आवाज़ों में।
1: काते मोहनी खावाए बही मोला बनाए रे मन मोहना
2: ऐसे कहा।

लीजिए पेश है ददरिया गीत ओम परमानंद वैष्णव सुनीता वस्त्रकार और साथियों की आवाजों में।

कार्यक्रम अमराई में अब हम सुनवा रहे हैं आपको कर्मा गीत, महावीर साहू, तुलसी वर्मा और साथी के स्वरों में।

0: तन, स्वस्थ मन जीवन का है अनमोल धन। कैसे रहें बीमारियों से सुरक्षित, कैसे करवाएं किसी स्वास्थ्यगत समस्या का उपचार, क्या है स्वस्थ रहने का आधार, जानिए बेहतर स्वास्थ्य के लिए विशेषज्ञों की सलाह। सुनिए आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से हर शनिवार सुबह 8:30 बजे डॉक्टर की सलाह।
1: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
2: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
1: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
2: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
1: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
2: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार।
4: ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। सुबह के 9 बजने वाले हैं। अब हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। चित्रलोक कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक ब्रेक का।

0: अभी आप सुन रहे थे महावीर साहू तुलसी वर्मा और साथियों की आवाज़ों में कर्मा गीत।
1: स्वस्थ

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए सुनिए एक विलेन, इस फिल्म का गाना अंकित तिवारी की आवाज में, मनोज मुंतशिर के बोल, संगीत है अंकित तिवारी का।

0: जिनके बांसुरी की मधुर तान से मन का हर कोना झंकृत हो उठता है, जिनकी उंगलियों के स्पर्श से बांसुरी गुनगुनाने लगती है, जिनकी साधना ने बांसुरी को विश्व मंच पर एक नई पहचान दी।
1: दरबारी के गंधार के आंदोलन में ऐसा लगता है कि बादल उमड़ घुमड़ रहे हैं मगर बरस नहीं रहे हैं। वो जो घुटन है, उस घुटन को दरबारी के गंधार में जब तक न लाया जाए, वो आप कह सकते हैं कि मैंने उस पे मेहनत किया।
0: जिनकी हर प्रस्तुति श्रोताओं को सुरों के अलौकिक संसार में ले जाती है, पद्मश्री पंडित रोनू मजूमदार, संगीत सरिता नई श्रृंखला, शास्त्रीय संगीत, फिल्म संगीत और लोक संगीत में बांसुरी की भूमिका 1 जुलाई से सुबह और शाम 6:45 सिर्फ विविध भारती पर।
2: सुनिए
3: कहिए
0: सुनिए।

0: एक खुशखबरी,
1: कहिए ना।
0: आ गया है मौका सखियों को अपनी बात कहने का। सखियां फोन पर हमसे बताएं अपने दिल की बात और फरमाइश करें अपने पसंदीदा गानों की। सखियों के लिए सखियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आप सबका पसंदीदा कार्यक्रम हेलो सहेली। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग होगी प्रत्येक मंगलवार को दिन में 11 बजे से 12 बजे के बीच। हेलो सहेली कार्यक्रम का प्रसारण होगा प्रत्येक शुक्रवार को दिन में 3 बजे से सिर्फ विविध भारती पर।
2: शुक्रिया, शुक्रिया।
0: रिकॉर्डिंग के लिए नोट कर लीजिए हमारा टेलीफोन नंबर 02240024662। तो उठाइए अपना टेलीफोन और कहिए हेलो सहेली और बताइए अपने दिल की बात, सुनिए अपने पसंद के गाने।
3: एक सुरीली यात्रा है यह जीवन, संग जो है विविध भारती मन भावन। अभिजात संगीत की थाह लेता विविध भारती का कार्यक्रम संगीत।

संजो रहा है सांस्कृतिक धरोहर का श्रोताओं से नाता, सांगीतिक परंपरा की खोज और फिल्म संगीत में शास्त्रीयता।

ब्रेक के बाद अब आपके लिए लेकर आए हैं स्त्री फिल्म का गाना, आस्था गिल, सचिन संघवी, जिगर सरैया और दिव्य कुमार की आवाज से वायु को लिखा हुआ गाना, सचिन जिगर का संगीत है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर। कुछ रेशमी ख्वाब, कुछ मखमली अंदाज़,

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

देश की सुरीली धड़कन विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। अगला गीत आपको सुनवाते हैं लव यात्री फिल्म का। ये गाना है देव नेगी यो यो हनी सिंह, इनकी आवाजें हैं। शब्बीर अहमद यो यो हनी सिंह और होमी दिल्लीवाला, इनका लिखा हुआ गाना, तनिष्क बागची का संगीत है।

कार्यक्रम का अगला और अंतिम गाना बागी फिल्म का गाना मोलाली ठाकुर और मीत ब्रदर्स की आवाजों में कुमार का लिखा हुआ गाना मीत ब्रदर्स का संगीत।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ

0: नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार, जिनकी अदाओं में नजाकत, जिनकी गायकी में नफासत है, जिन्होंने अपने हुस्न और हुनर के जरिए फिल्मी पर्दे पर एक नई इबारत लिखी है, वो हैं आज की फनकार।
1: वो पास रहे या दूर रहे नजरों

0: पास रहें या दूर रहें, उनकी आवाज जब हो पास तो बस मन सुकून और चैन से भर जाता है।
1: दिल नादान तुझे हुआ क्या है?
0: गम की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी। आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकारा सुरैया की।

सुरैया बचपन में बड़े नाज नखरे के साथ पली बढ़ी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मी थी। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में वे सुरैया के नाम से मशहूर हुई।

सुरैया के फिल्मी करियर के शुरू होने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है। इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज़ सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया।

एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक डोर बंध गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे, मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी

कहा जाता है देवानंद ने सुरैया को टूट कर प्रेम किया था। रोमांसिक विद लाइफ संस्मरण में देवानंद ने लिखा था, सुरैया की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ, मैंने उन्हें प्यार किया था, इसे मैं अपने जीवन का मासूम प्यार कहना चाहूँगा।

फिल्म जीत के सेट पर देवानंद ने सुरैया से अपनी मोहब्बत का इजहार हीरे की अंगूठी देकर किया था। सुरैया के लिए भी ये फिल्म याद

सुरैया की आवाज में जहाँ एक तरफ दर्द है वहीं दूसरी तरफ खुशी की तरंग भी सुनाई पड़ती है। फिल्म अफसर के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये गीत उन्होंने किस अदा के साथ गाया है सुनिए।

जब देवानंद की फिल्म अफसर बन रही थी तो सचिन देव बर्मन ने सुरैया के लिए एक गीत तैयार किया, जबकि एस डी बर्मन साहब खुद बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदल कर ये गीत बर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन बर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले, ये गीत खास तौर पर सुरैया के लिए ही बनाया गया है, सो ये गाना सुरैया ही गाएंगी। और फिर ये गीत सुरैया ने गाया और हम सब के लिए वो गाना मन का मोर बन गया।

सुरैया विदेशी एक्टर ग्रेगरी पैक की दीवानी थी, ये बात उनके चाहने वालों को बखूबी मालूम है, लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थीं, सुनिए।

1952 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कापरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पेक की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, आप उनसे ये जरूर कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पेक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी, उठो उठो देखो बाहर कौन आया है, ग्रेगरी पेक तुमसे मिलने आए हैं। पहले मैं ख्वाब समझी मगर जब नींद टूटी तो ये हकीकत थी।

0: गाते रहे हैं।
1: सुरैया गायिका और अभिनेत्रियों की आखिरी पीढ़ी थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नूरजहां और खुर्शीद सरहद के उस पार चली गईं, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रहीं। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने मोहम्मद रफी, तलत महमूद जैसे दिग्गज गायकों के साथ गाने गाए।

50 के दशक में एक दौर ऐसा आया जब सुरैया की फिल्में चल नहीं रही थीं। इसी दौर में सोहराब मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात ये है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनके गायन के सफर के लिए खूबसूरत तोहफा था। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल पाने वाली ये पहली

संगीत का नौशाद ने जब अपनी शास्त्रीय शैली को छोड़कर बनाया बिल्कुल मॉडर्न गाना, तो उसे गाया मोहम्मद रफी और सुरैया ने।

0: दोस्तों, क्या आपको मोती महल फिल्म का ये गाना याद है, मोटर बिगड़ने का?
1: कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, खड़े रहो बस बेबस होकर रस्ते में, कभी न बिगड़े।
2: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
3: 9:55 हुए हैं, लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
4: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी सरकार, बस्तर के हर जनजातीय परिवार को दो दो गाय या भैंस दी जाएगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त, आज से खंडपीठों और एकलपीठों में फिर से शुरू होगी नियमित सुनवाई। और राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, अंतिम दिन जीते 4 पदक। अब समाचार विस्तार से। रायपुर में कल एक पुस्तक के विमोचन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि नक्सलवाद के कारण बस्तर के लोग कई दशकों तक विकास से दूर रहे। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र में तेजी से विकास कार्य किए जाएंगे, इसके लिए रोड मैप तैयार किया गया है। मुख्यमंत्री ने बताया कि गांव-गांव में राशन दुकानें खोली जा रही हैं और सुरक्षा शिविरों को सेवा डेरा के रूप में विकसित किया जा रहा है। कृषि पशुपालन को बढ़ावा देने के साथ वनोपज के मूल्य संवर्धन पर भी जोर दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बस्तर में हर परिवार को दो दो गाय या भैंस दी जाएगी। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि लंबे समय तक उपेक्षा के कारण नक्सलियों ने बस्तर को अपनी प्रयोगशाला के रूप में इस्तेमाल किया। वहीं उपमुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सरकार ने नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से दिया है और अब बोली का जवाब बोली से, यानी गलत नैरेटिव का जवाब सही जानकारी से दिया जाएगा। श्री शर्मा ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों के पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिन युवाओं की नक्सलियों ने नसबंदी कर दी थी, उनकी नसबंदी खोलने का प्रयास किया जा रहा है और जिन मामलों में यह संभव नहीं होगा, उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में काम किया जाएगा। समारोह को पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर और छत्तीसगढ़ साहित्य अकादमी के अध्यक्ष शशांक शर्मा ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर तेरा राज नहीं आएगा रे पुस्तक के लेखक राजीव रंजन प्रसाद और रचना नायडू भी उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू होगी। आज से अधिवक्ता अदालत कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखेंगे। हालांकि पहले की तरह कई मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध रहेगी। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश 18 मई से शुरू हुआ था। इस दौरान केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए प्रत्येक सप्ताह विशेष अवकाशकालीन पीठों का गठन किया गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। इस बीच NTA ने विद्यार्थियों को पैसा वापस पाने के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित कर लेने की सलाह दी है। रायपुर में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। नया रायपुर स्थित सेंडलेक में हुई इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम

0: छत्तीसगढ़ ने एक स्वर्ण, दो रजत और एक कांस्य पदक सहित चार पदक जीते। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल तीन स्वर्ण, दो रजत और चार कांस्य पदक हासिल किए। ओवरऑल खिताब मध्य प्रदेश ने 257 अंकों के साथ जीता, जबकि केरल दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से लगभग 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। श्री साव ने समापन समारोह में खिलाड़ियों और विभिन्न राज्यों से आए कायकिंग केनोइंग संघ के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कायकिंग केनोइंग को और आगे बढ़ाने सरकार हर संभव सहयोग देगी। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने कहा कि बस्तर में कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देगी सरकार। बस्तर के हर जनजाति परिवार को दो दो गाय या भैंस दी जाएगी। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त, आज से खंडपीठों और एकलपीठों में फिर से शुरू होगी नियमित सुनवाई। और राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष, महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने किया शानदार प्रदर्शन, अंतिम दिन जीते 4 पदक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे है। आइए सुनते हैं कार्यक्रम तुहर गोठ हमर गीत। प्रस्तुति है मदन पांडे की।

0: तिपत है घाम जरत है भोमरा, चिरई चिरगुन तको लुकागे अपन खोंधरा। जी हा फाय फाय करत है, लू हा साय साय चलत है, जतन करके रही हो संगी अब बड़ हीट वेव चलत है। अब ऐसन बेरा मा हम लेके आए हवन मयारू कार्यक्रम तुहर गोट हमर गीतला। कार्यक्रम ल शुरू करत हवन यही फोन कॉल ले। हेलो
1: हेलो, तुहर गोट हमर गीत।
0: हाँ, तुहर गोट हमर गीत कार्यक्रम आए संगी, आप मन के गाड़ा गाड़ा स्वागत है भाई। कहाँ ले बोला था आप मन, कौन बोला था?
1: धन्यवाद भैया, मैं नानघाट कातल बोले बोला था, भागसी राजपूत।
0: भागसी भैया, कार्यक्रम में आपके बहुत बहुत स्वागत करत हैं जी, का हाल चाल?
1: धन्यवाद भैया।
0: चलो भाई, और आप मन के फोन है बहुत मेहनत के बाद में लगी से, बड़ा खुशी होते आप मन स्वागत करके। का हाल चाल है? घाम प्यास के दिन चलत है, का हाल चाल है आप मन के?
1: भाई के खेती बाड़ी के कार्य चालू करे हैं भैया, ये देखा तो तू भी सही काम चलत है।
0: अच्छा अच्छा, खेती किसानी
1: चलत है, बिल्कुल।
0: संगी भाग भाई, भागश्री भाई, हमार व्यक्तिगत अनुभव है, एक हम गाड़ा के खातू ला बिछे गए रहे, हम घुरवा के खातू ला गाड़ा में डाल के, तो ओमे ना खेत में डाले रहे, तो जे दिन वाला बिछे गए तो देखे तो ओमे अब बड़ा कन बिछी मिली समाला छोट छोट बिछी के पिला।
1: हाँ हाँ, रहते भैया का है, पानी अभी नहीं गिरे, नहीं
0: पानी अभी नहीं गिरे और भगते ना बिछी
1: पर पानी गिरे एक बात होते भैया वो हाँ। तो ओकरे से भी नहीं, पानी गिरे पहली फैला दिया जाए के ओकर।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यही बात हम आपसे सुनना चाहते रहे, वाकई है ध्यान देने वाली बात है। कवर की भाई बिछी के मारे सांप के चावे बड़ा दुखदाई होते भाई, एकर पीड़ा है।
1: भाई
0: भाग्यश्री भाई, आप बताओ का खेती किसानी के अलावा आप मन के समय कैसे गुजरते? रेडियो के कार्यक्रम सुनते
1: भाई, ये रेडियो सुने टाइम पास, सब खेती चलते भैया एक साथ दोनों।
0: बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलो इसी तरह से लगे रहा, माया प्रेम ला जोड़े रहा भाई। और एक ठाव सुनैया संगवारी के फोन आते, ओकरो से बातचीत कर ले थन, तेकर पीछू आप ला एक सही गीत आप उनके गांव तक पहुंचा बुझी।
1: हाँ भैया,
0: राम राम, जय जोहार।
1: जय जोहार, राम राम भैया।
0: कार्यक्रम के ए अंक में सुनैया संगवारी के स्वागत करा था भाई, कौन बोला था आप मन, कहाँ ले बोला था?
2: हाँ भैया, राम राम गा।
0: राम, अब बताओ संगी।
2: खिलेश कुमार साहू बोला था, रानी गांव नगरी जिला धमतरी में।
0: खिलेश कुमार साहू भैया, कार्यक्रम में आपन के स्वागत है, अब बताओ का हाल चाल?

0: है का कबूता काम चला के?
1: हाल चाल बढ़िया है। अभी हमारे कुछ पानी तानी झलक गिर गए, खेत फार धान सब तैयारी चलत है। अभी धान बोए के थरा डालबू। अब
0: बिल्कुल अकरस जुताई और कांटा खूटी के बिनाई है, खेत ला साफ सफाई करना, इस समय यही काम में सब के सबे हमारे भाई मन भदरे हुए हैं अपने बूता काम में।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, ये सब चीज चलत है अभी।
0: अभी के मौसम है फिर ऐसे धा पानी गिरत है, धा घाम उजात हवा और खराए
1: हाँ
0: गर्मी के
1: हाँ
0: समय है खिलेश भाई, तो हम चाहतन
1: हाँ
0: थोड़े स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना जरूरी है इस समय में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, ये का है समय है अभी का है, एकदम हार्ड गर्मी गुजरे है ना, ओकर
0: बिल्कुल
1: बाद अचानक जब पानी वानी गिरा थे फिर काम करा थे में, तो शरीर की ऊंच नीचे तबियत गलत तो ध्यान दे लागी।
0: लगी, ठीक कहा था अपन। और साथ में रेडियो के कार्यक्रम मतलब सुना सुना था अपन बूता काम लग करिया था, थकासी घला उतका नहीं ला।
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आकाशवाणी बिलासपुर के हम कार्यक्रम सुनत रहन,
0: हाँ
1: बहुत ही अच्छा अच्छा कार्यक्रम चलत है। अब तो आप मन ये जो जो प्रमुख प्रमुख कार्यक्रम हो वाला यूट्यूब में भी डाला था, तो ओकरो आनंद लेथन, ये
0: बिल्कुल
1: कार्यक्रम हमारे से छूट गई या कोई कार्यक्रम अच्छा लगी से तब
0: हाँ
1: बोला फिर सुनबो के हम यूट्यूब में गलत आ गई आप मन के कार्यक्रम, तो ओकरो आनंद लेथन।
0: बिल्कुल बिल्कुल, यही है हमार जो है अभी के सूचना प्रौद्योगिकी जोन है तेह अतका आगे बढ़ चुके हैं कि अब ये सब चीजें सहज हो गए हैं।
1: हाँ बिल्कुल
0: चला
1: बिल्कुल
0: बढ़िया लगी साहब बातचीत करके खिलेश भाई, एठा नीक सही गीत आपके गांव तक पहुंचाबो, ओकर पहली एठा सुनैया संगवारी सो बात कर लेथन।
1: हाँ, धन्यवाद भैया,
0: राम राम जय जोहार संगीत।
1: राम राम।
0: हेलो,
2: हेलो,
0: तुहर गोट हो हमर गीत कार्यक्रम के अंक में स्वागत है संगी, आप मन कौन बोला था, कहाँ ले बोला था?
2: मैं चिरमिरी कुरासिया कलरी से इंद्रभान सिंह बोला था।
0: इंद्रभान सिंह जी, कार्यक्रम में आप मन के स्वागत करत हन संगी, और बतावा का का हाल चाल, का का बुता काम अभी चलत मन के?
2: दादा यहाँ तो मौसम को बेहाल है दादा, अभी
0: हाँ।
2: तो दूटे दो दिन से धूप एकदम जबरदस्त तेज करी से,
0: बिल्कुल,
2: और शाम टाइम बादल कर थे, उसके बाद खूब पानी गिर थे, उसके
0: हाँ।
2: बाद हवा चल थे, यही सब चलत है दादा, उलट पुलट मौसम हुआ थे दादा,
0: बिल्कुल
2: तो
0: बिल्कुल
2: ये बरसात वरसात जल्दी आई तब ठीक हो ही, और
0: बिल्कुल
2: धूप करत है तो उमस गर्मी बढ़ाते, नौ तपा से भी ज्यादा तपा बढ़ गई छे दादा।
0: ऐसा समय में अपन स्वास्थ्य के प्रति बहुत ज्यादा सजग रह के आदमी ला चलना चाहिए,
2: हाँ दादा,
0: और
2: स्वास्थ्य के प्रति, सफाई के प्रति,
0: सफाई के
2: और
0: प्रति,
2: जानवर उनका उनका भी ख्याल रखना,
0: बिल्कुल
2: पशु पक्षी उनका भी ख्याल रखना,
0: ख्याल
2: सबका
0: रखना
2: ख्याल रखना बहुत जरूरी है,
0: बहुत
2: पानी को भी
0: जरूरी है,
2: बचत करना,
0: बिल्कुल
2: सबको पानी पिलाना,
0: बिल्कुल
2: और मतलब की उनको भी दाना पानी देना बहुत जरूरी है।
0: बिल्कुल सही कहा था आपने इंद्रबान भैया, और आप मन के प्रेरक बात है जब का सुनैया संगवारी मतलब भी प्रेरित करे थे भाई कि सब सब जो है पशु पक्षी के ध्यान रखें, अपन आसपास के पूरा पर्यावरण के ध्यान रखें। बढ़िया हिसाब से बातचीत करके इंद्रभान भैया, एक बहुत सुंदर निक सही गीत आपके वहां तक पहुंचा वो कुरासी कॉलोनी तक। एक गीत लो सुनावत है परस राम यदु और एलिस जॉनमन,
2: राम
0: राम राम जय जोहार।

0: हेलो
1: तुहर कोर्ट हो हमर गीत कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है संगी। कहाँ ले बोला था आप मन? कौन बोला था?
0: भैया राम राम।
1: राम राम।
0: आदर्श ग्राम लोटना पार उतरदल बोला था। मेघनाथ पटेल।
1: मेघनाथ पटेल भैया कार्यक्रम में आप मन के हृदय ले स्वागत है भैया। बताओ का हाल चाल है?
0: बस भैया चला थे खेती किसानी।
1: अच्छा खेती किसानी की तैयारी?
0: अभी तो नहीं जोतवा था खेत मल्ला, थोड़ा बन वन जामे दिन कहा था।
1: हाँ तहले
0: लहदर मल्ला।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: ओकर बाद जाम दीना तो फिर जोतबो कहा था।
1: सही है सही है बिल्कुल।
0: तो बन वन मर जाये कहा था भैया।
1: अभी पानी कतका हल्का फुल्का छिचार अंकरस जोताई के लाई गिरे है?
0: अंकरस जोताई से चला था। कौन बोला था भैया?
1: मैं कार्यक्रम में आप मन के मदन भाई बोला था।
0: अच्छा राम राम मदन भैया।
1: राम राम जय जोहार संगी। और मेघनाथ भैया खेती किसानी के तैयारी है? किसानी के जो यंत्र है तेमन ला भी समय है कि सुधार लिया जाए और जतका हो सके जतन कर लिया जाए, कवर की यही सब बड़ा एन वक्त में काम आते।
0: हाँ तो साफ है पहले कर तेकर बाद बोबो कर धान वाला।
1: बिल्कुल ले भाई। अब घाम प्यास के?
0: हाँ घाम कल पानी गिरी शाम के।
1: हाँ
0: मैं तो जुन्ना श्रोता हूँ, बहुत पुराना श्रोता, कम से कम मुला 40 साल हो गए है।
1: नहीं बिल्कुल मेघनाथ भैया आपसे हमारे बातचीत होते रहे थे।
0: ईमेल सुविधा हो गई आजकल, फोन के माध्यम सब कर लेते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा था। चलो बढ़िया लगी मेघनाथ भैया आपसे बातचीत करके। एक और सुनिए संगवारी लाइन में है ओकरो से गुड बात कर लेथन तेकर पिछु आप ले
0: हाँ कन्नी
1: सही गीत।
0: राम राम
1: राम राम जय जोहार। तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम में सत मन के
2: जी। जय राम जय जोहार भैया।
1: जय जोहार। कहाँ ले बोला था? कौन बोला था संगी?
2: मैं अशोक कुमार भैया, कर्मा चौक लोहारी डीहा जिला कमरधा छत्तीसगढ़।
1: अशोक साहू भाई कार्यक्रम में आप मन के हम गाड़ा गाड़ा स्वागत करत हन।
2: बहुत बहुत धन्यवाद भैया।
1: हाँ मौसम कैसे है आप मन डहर? कतका धाम और कतका पानी के अभी शुरुआत हुए तो बौछार पड़े है?
2: मौसम तो भैया धूप खिले है और पानी हमारे यहाँ नहीं गिरा थेगा अभी तक, एको बरसात अभी नहीं हो है।
1: लेकिन अब करीब है कदम।
2: बस तैयारी हम मन ओखरे देखा था कि कब हमारे बरखा रानी हमारे ऊपर दया करे और हमन अपन खेती किसानी काम हमन अपन निकलन हमारे रापा कुदारी नांगर बैल धरती लेके।
1: बिल्कुल सब जगह सब डहर के यही कहानी है और सबे के सब इंतजार कर रहे थे भाई मानसून सचरे के और बहुत ही जल्दी स्थिति भी आई। और बताओ अशोक भैया एक अलावा खेती किसानी के अलावा आप मन का बुता करता?
2: मैं खेती किसानी के अलावा तो भैया मैं राजमिस्त्री काम करता हूँ भैया, अपन समय में अपन घर के घरों काम रखता हूँ। मोर घर में मोर पत्नी है लेडीज टेलर के काम करते, हाथ बटाता हूँ मैं समय समय में।

0: बहुत बढ़िया, चला यह बहुत बढ़िया बात है भाई अशोक भैया, इसी तरह से लग रहा। और रेडियो के कार्यक्रम मतलब कब सुनता आप मन?
1: मैं हाँ भैया नियमित सुनता हूँ, मैं तो अब 2007 से जुड़े हैं ना, तेन मैं एक उठा नहीं है जिन कार्यक्रम आप मन की बिलासपुर केंद्र है, रायपुर केंद्र है, रायगढ़ है।
0: चला बढ़िया है भाई।
1: और जगदलपुर हवाई जम्मो कार्यक्रम समय समय में सुनता भैया, मैं बिलासपुर में अभी अभी मोर नाम है शामिल नहीं होते ही से भैया ईमेल करेगी सुने में तेना अब होते घलो और भेजता हूँ, मैं नियमित रूप से भेजा रहता हूँ।
0: अच्छा, इसी तरह से अपन जुड़ाव बनाए रखा अशोक भैया। और
1: भैया क्या है भैया जम्मो कार्यक्रम ने आप मन के अच्छा लगते भैया, आप मन के गीत है, आप मन के माटी के गीत है, अवेदे इसने तुम्हार को ठमर गीत है, फिर आपकी पसंद है मतलब हिंदी वाले ये जम्मो कार्यक्रम में भाग घलो रहता हूँ भैया, वो
0: बहुत बढ़िया है अशोक भाई। इसी तरह से माया प्रेमला बनाए रखा हम आप तकनीक निक गुड बात और गीत संगीत पहुंचात रही बो भाई और इठाउ सुनैया संगवारी लाइन में है ओकर से गुड बात कर ले थन। राम राम जय जोहार। तुहर गोट हो हमर गीत कार्यक्रम में सुनैया संगवारी के स्वागत है, कहाँ ले बोला था संगी, कौन बोला था
2: भैया? राम राम जय जोहार।
0: राम राम जय जोहार संगी।
2: भैया आशा करा था ना आकाशवाणी परिवार मन कुशल मंगल हो ही, गर्मी तो थोड़ा कब कुछ काम भी हुआ थे, आगमन हुआ थे बारिश के, तो थोड़ा आनंद लेवा था भैया।
0: बिल्कुल हर मौसम के आनंद है और बारिश के तो आनंद है दुगुना है कहना चाहिए, आपका घाम के बाद में पानी गिरते तो बड़ा आनंदित होते मन है। आप मन के शुभ नाम गांव के नाम लो बताओ ना संगीत।
2: हाँ पांडे भैया मैं बोला था ग्राम पोर्ट ले राधेलाल बोला था भैया।
0: राधे लाल भैया कार्यक्रम में आप मन के गड़ा गड़ा स्वागत है, अब बतावा काका बूता काम चलत है, नहा धो के बासी पसिया हो गए?
2: हाँ हाँ अब स्नान के अभी तैयारी करे हम भैया, और वो बासी वासी खावो हो आमा अचार और टमाटर पताल के चटनी,
0: पताल के सील में पीसे चटनी ज्यादा मीठा थे।
2: हाँ हाँ हाँ हाँ भैया हाँ।
0: चलो बढ़िया है भैया आनंद ले
2: ना भैया, कहा है ना अभी गर्मी के महीना ना तो थोड़ा खट्टा खट्टा आमा आमा सुहात है भैया, और छाछ पीठान अब ज्यादा धूप करते तो क्या करबो, मता पीठान भैया बैठा बिठा के मही
0: वह पेट ला ठंडा रखते दही मही के।
2: हाँ भैया हाँ हाँ हम सब जान ऐसे कहा था के आमा के जूस और इसमें मही दही के खाया के बहुत थोड़ा वाला ना सेवन ज्यादा कुछ करे, कहा है बहुत ज्यादा गर्मी पड़े भैया, अभी पानी गिर तो बहुत ज्यादा भपका मार ही, अभी
0: भपका मार ही और इसमें में सेहत के ध्यान रखना बहुत जरूरी है,
2: सेहत का थोड़ा ख्याल रखेला पड़ी भैया, पहली जैसे जेट बैसाख के गर्मी है फ्रेश वाला गर्मी जैसे भैया, और अभी आषाढ़ वाला जो गर्मी है ना गुमगुमा गर्मी रहते।
0: बिल्कुल ठीक कहा था, उमे उमस रहते और इस समय तबियत बिगड़े के ज्यादा संभावना रहते, ज्यादा ध्यान रखना पड़ी अपन।
2: हाँ भैया
0: चला ठीक है, आवाज के जरिए इसी तरह से आपसे माया प्रेम बने रही राधे लाल भैया, और
2: हाँ।
0: फिर गुड बात हुई आपसे, एठाओ निक सही गीत आपके गांव तक पहुंचा था पहुंच गांव, ये गीत मा स्वर है चतुर राम साहू और गीता भट्ट और कांति भट्ट के, सुन लेवा अपन सब संगवारी मन से।
2: हाँ भैया
0: राम राम जय जोहार
2: जय।

0: तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम में स्वागत करत हन आप मन के। कौन बोलत है आप मन, कहाँ ले बोलत है?
1: आप मन मदन पांडे भैया बोलत हो। मैं बनिया पारा धमतरी ले बोलत हूँ भैया, रामचंद माखिया काफिर भाई।
0: हाँ, रामचंद भाई, कार्यक्रम में आप मन के बहुत मीठा मीठा स्वागत है। अब बताओ क्या हाल चाल है?
1: हाल चाल तो बने बने भैया, बारिश के बूंदा बांदी के आसार नजर आ गए है।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: तो कभी बादल है तो कभी धूप है, लेकिन अभी थोड़ा मौसम में परिवर्तन आ गए है।
0: हाँ हाँ, गर्मी के तेज जलन है भले शांत होइसे, लेकिन मौसम में जो अभी जो बदलाव होते हैं ते है थोड़े शरीर और स्वास्थ्य के प्रति ज्यादा सजगता के मांग करते रामचंद्र भैया।
1: हाँ भाई, मौसम में बदलाव कोई भी परिवर्तन और मौसम के तो कुछ न कुछ प्रभाव छोड़ते, अपन असर छोड़ते।
0: बिल्कुल, बिल्कुल।
1: कभी खांसी हो जाते, कभी बुखार हो जाते, तो अपन सेहत के स्वास्थ्य ला ध्यान ज्यादा देना है।
0: और अलावा का है बुता काम खेती किसानी के घर शुरू होते कदे?
1: हाँ
0: है ना भाई, तो बढ़िया है भाई। अभी के समय अब अगोरा रही से मानसून के जी, अब धीरे धीरे धीरे सचर ही भाई सब जगह हुआ।
1: हाँ भैया,
0: चलो बढ़िया लगे से आपसे बातचीत करके रामचंद भैया। सुनैया संगवारी लाइन में है।
1: हाँ भैया, मदन पांडे भाई, वंदे मातरम।
0: वंदे मातरम, जय जोहार। तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है, कहाँ ले बोले था संगी?
2: राम राम जय जोहार भैया।
0: राम राम जय जोहार, बताओ भाई।
2: राम राम निहार ले, माखन वर्मा बोला था भैया।
0: माखन वर्मा भाई, कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है माखन भैया।
2: अब... भैया ये खेती बाड़ी के तैयारी में भैया, क्या है कि अब पानी की इंतजार है बुआरा अगर करे के।
0: चलो बढ़िया है भाई। अब एक अलावा खातु वातु पला गए खेत मन में?
2: सब पूरा पला गए भैया, खातु तू पला गए बढ़िया, कान कुदारी काटा खुटी सब
0: बिना
2: हो गए भैया।
0: बढ़िया है भाई, इसी तरह की जागरूकता रहे। तो आप
2: मन... है कि साथ साथ में भैया पेड़ पौधा लगाए पर गड्ढा वड्ढा
0: हाँ खोद के
2: तैयारी करें भैया।
0: बहुत सही है भाई, और पौधा लगाना है जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके, ताकि इस बार के बरसात में जो भी हरियाली पन पे ते में हमरो योगदान रहे भाई।
2: भैया
0: बिल्कुल सही कहा था आप मन। आप... लेवा भाई एठाउ सुनैया संगवारी लाइन में सो गुड बात कर ले थन, तेकर पिछू आप लाइक निक सही गीत सुनवाबो माखन भैया, बताओ।
2: राम राम जय जोहार भैया।
0: जय जोहार। हेलो
2: हेलो,
0: तुहर गोठ हमर गीत कार्यक्रम में सुनैया संगवारी के स्वागत है भाई, कहाँ ले बोला था संगी?
3: सुखनंदन साहू बोला था भैया, मोपका भाटा पारा ले। जय श्री राम।
0: जय श्री राम। और बतावा का हाल चाल है, का बुता काम आप मन के भद्राए है बतावा? अभी
3: कपड़ा सिलाई की काम करथन भैया, खेती बाड़ी हला करथन।
0: चला बढ़िया है भाई, और साथ साथ रेडियो चलत रहते संगे संग का देवा?
3: हाँ रेडियो चलत रहते, काम हम बढ़िया करत
0: रहते। चला बढ़िया है। और पानी के गिरे के अगोरा है, अभी तो मौसम अभी घला काफी खराय घाम है, और बहुत ध्यान से रहे के लायक समय है अभी के समय है भैया।
3: हाँ भैया, अभी पानी तो गिरवे नहीं करते हमारे एरिया में, अभी मानसून भी नहीं होते।
0: हाँ हाँ, लेकिन आही
3: बहुत ज्यादा गर्मी है।
0: लेकिन आही का देवा अब वही ला हमन
3: आही,
0: और हमारे संगवारी श्रोता मन कहत रहिन है कि पेड़ पौधा लगाना है और

0: धरती का हरियाली लाना है ज्यादा से ज्यादा संख्या में, तभी तो आने वाला जो मौसम है तेमें हमारे जो छोटे छोटे लोग लैका मन हवाए तेमन आने वाला समय में सुख पाए।
1: हाँ भैया पौधा तो लगाना है, काहे भैया बरसात चालू होगी ना उसके बाद पौधा उधा लगाबो, तैयार करके रखे हैं पौधा तैयार हो गए है, पानी गिरत नहीं है थोड़ा परेशानी ज्यादा है, धूप नाम से मुरझा जाएगी।
0: हाँ हाँ नहीं अभी तुरंत नहीं बल्कि हाँ गड्ढा वड्ढा खोद के ओकर तैयारी करके
1: पूरा खंड खुना के सब रखे खाद वातु डालू लाके, मौसम मस्त आही पानी गिरही ना तो फिर लगाबो।
0: बहुत बढ़िया भैया। और एकर अलावा खेती किसानी के अलावा आप मन के जो बूता है तेमे तो जतका सीजन आते थे मन में व्यस्त रहत हो आप मन नहीं?
1: हाँ भैया पूरा व्यस्त रहथन, हमेशा काम रहते
0: बढ़िया लगे,
1: मजदूर से खेती बाड़ी भी करथन, सुबह सुबह मैं अपन देख लेता।
0: और इसी तरह से रेडियो के प्रति अपन माया प्रेम ला जुड़ाए रखा भाई, और हम अपने तक निक निक गीत और गुड बात पहुँचाबू, और अभी सुन लेवा अपन सब सुनोया संगवारी मन संग में एक गीत ला। गीत लगावा थे बैतल राम और आशा साहू मन।
1: जय श्री राम।
0: आप फोन कर रहे थे कल, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।
1: धन्यवाद।

इन्हीं सही कार्यक्रम ल आप मन तक पहुँचाए में हमन ल कुशल तकनीकी सहयोग दिन है पवन थवाइतमन। अब एकरे संग हमर जाए के बेरा हो गए संगी हो। कार्यक्रम के अगला अंक में आबो त आप मन सो गाड़ा गाड़ा गुड बात करबो। तब तक माया दयाल अचरा में गठिया के रखिया। राम राम, जय जोहार।

0: कुछ यादें अतीत की।
1: आकाशवाणी गोरखपुर के बड़े मशहूर फनकार और आर्टिस्ट राहत अली खान साहब, जो कि रायपुर खूब आते रहे हैं रेडियो के भी प्रोग्राम्स में, मेरा नसीब था कि मुझे उनकी छाया मिली और उनसे दादरे, गजलें, सूफियाना चीजें खूब सीखी।
0: कुछ बातें वर्तमान की।
2: आज बस जिंदगी का आनंद ले रहा हूँ, गाने का आनंद ले रहा हूँ। रोज अपना 2-4 घंटे का रियाज सुबह मेरा होता है।
0: कुछ सपने भविष्य के।
3: अभी फिर जल्दी ही कुछ अच्छे बैनरों की अच्छी फिल्में और अच्छे गीत आपको सुनने मिलेंगे।
0: कुछ किस्से अनकहे।
4: जो भी एक्शन हो रही है फिल्मों में, जो हम देख सकते हैं लेकिन वो देख नहीं सकते, वो हमें हमारी आवाज के माध्यम से बोलना पड़ता है।
0: विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े विशिष्ट जनों से मुलाकात, सुनिए इनसे मिलिए हर शुक्रवार सुबह 8:30 बजे आकाशवाणी रायपुर के प्राइमरी चैनल और छत्तीसगढ़ के अन्य आकाशवाणी केंद्रों से।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
0: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
7: FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10:30 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आपकी पसंद। कार्यक्रम का पहला गीत हम लेकर आए हैं डर फिल्म से, लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाजों में। आनंद बख्शी के बोल है, शिव हरि का संगीत है और पसंद आप सभी की। बनियापारा धमतरी से रामचंद माखीजा, काफिर, सविता, स्वाति, पूजा, माही, छुटकी, शरद एवं समस्त माखीजा परिवार। रुआ बांधा शनिचरी बाजार भिलाई से सुशील जैन, कल्पना, सिया, सौरभ, शौर्य और शुभम जैन। ग्राम दरचूरा से हमारे साथी हैं ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलौरिन, रेखा, मोतीलाल साहू, कामेश्वरी कुमारी, प्रीतम कुमार साहू। बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिंपल देवांगन। बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, तारा सेन, कौशल, खुशबू सेन। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, तन्मय, अनिष्का, राधिका गजभिये। यवतमाल विदर्भ से संतोष खट्ट से विनोद खट्ट से। नैला बोरसरा से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन कुमार, मीनाक्षी, उमाबाई, अंजुलता, ठगिया देवी, विष्णु प्रसाद तिवारी, मोंगरा देवी मिश्रा, प्यारेलाल मिश्रा। रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा। कुल्हारी कोट पांडुका से हमें फरमाइश भेजी है नरोत्तम कश्यप, नीतू, मोहनीश और अनुराग कश्यप ने। तत्रिंगी भाटापारा से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा। महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन, मिथिलेश, तारनी, सूरज, सुजला, ज्योति, रियांश ठाकुर। बमलेश्वरी सांकरा सोमनी से नारायण लाल साहू, कुलवंतिन देवी, दिवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश प्रताप साहू। पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल, प्रिंस, यशस्वी वर्मा। पारा अहिरवारा से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति, छाया बंछोर। मुंगेली गोल बाजार खपरी कला से संतोष कुमार सोनी, सुनीता, खिलेश, नेहुल, दानिश, पीहू, दीक्षा, छोटी, संजय, पूजा, रामा, पूर्वी, पुलकिता, खुशी, लल्लू पांडे, भूषण सोनी। गणेश धाम परसुली से जितेंद्र दास मानिकपुरी, जयदास, देवेश दास, धनवंतिन बाई, मोतिम बाई मानिकपुरी, मिलोदास मानिकपुरी। भरीटोला बालोद से नमित कुमार गौतम, पीहू, प्रियंका, नीतू, मुरली गौतम। इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ, नईम राजा। और छत्रपति संभाजी नगर से राजेश ताबले पाटिल, राजदीप राजेश, राशि राजेश, शीतल राजेश। तो आइए सुनते हैं आप सभी की फरमाइश पर कार्यक्रम का पहला गीत।

0: कार्यक्रम का पहला फरमाइशी गीत आपने सुना डर फिल्म से लता मंगेशकर और उदित नारायण की आवाज़ों में। लीजिए अब पेश है आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार, यात्रा संबंधी आकाशवाणी बिलासपुर की दैनिक प्रस्तुति ट्रैफिक अपडेट्स ऑफ बिलासपुर में आज की यात्रा संबंधी सूचनाओं के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर जिले की सभी राष्ट्रीय राजमार्ग, सभी राजकीय राजमार्ग, सभी मुख्य जिला मार्ग सहित सभी मार्गों में सभी प्रकार के वाहनों का सुगम आवागमन बना हुआ है। इन वाहनों से माल एवं यात्री परिवहन आसानी से हो रहा है। बिलासपुर का सभी स्थानों से यातायात संपर्क भी बना हुआ है, अर्थात संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। मित्रों, हम सभी ये लगातार देख रहे हैं कि सड़कों में छोटे से लेकर बड़े से बड़े वाहन बढ़ते ही जा रहे हैं। बढ़ते वाहनों के अनुपात में सड़कें संकीर्ण होती प्रतीत हो रही हैं। सड़कों में इस प्रकार की कशमकश की स्थिति में सुरक्षित यात्रा कर पाना अब आसान नहीं है। प्रतिदिन साधारण से लेकर गंभीर प्रकृति की सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, किंतु हमें सड़कों में तो चलना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में सड़कों में बहुत छोटी छोटी किंतु अति महत्वपूर्ण सावधानियां यदि हम बरतते चलते हैं तो इसमें कोई संदेह नहीं कि हम सुरक्षित आवागमन कर सकते हैं। जैसे प्रायः सभी सड़क दुर्घटनाओं का मुख्य कारण वाहनों का तेज रफ्तार में होना पाया गया है, इसलिए सुरक्षित यातायात का मूल मंत्र है हमेशा सीमित और संयमित गति में वाहन चलाएं। इसी प्रकार गलत दिशा में वाहन भूलकर न चलाएं। लोग जल्दी के चक्कर में शॉर्टकट अपनाते हुए गलत दिशा में वाहन चलाते हैं, जो दुर्घटना का बड़ा कारण बनता है। वैसे ही ओवरलोड माल हो या सवारी घातक है। ऐसा करने से वाहन में वाहन चालक का पर्याप्त नियंत्रण नहीं रहता तथा वाहन की आत्मशक्ति चरमरा जाती है, जो सड़क दुर्घटना का कारण बनती है। साथियों, मोबाइल फोन जितना हमारा हितैषी है उसका गलत उपयोग उतना ही घातक भी है, अर्थात वाहन चलाते हुए कभी भी मोबाइल से बातें ना करें। ऐसा करने से चालक का पूरा ध्यान वहां होता है जहां वह बातें कर रहा होता है, और वाहन चालक का यदि सड़क से ध्यान हटा तो परिणाम घातक होना तय है। नशा व्यक्ति को विवेक शून्य बना देता है, और यही विवेक शून्य व्यक्ति अर्थात नशा किया व्यक्ति कोई वाहन लेकर निकलता है तो यह सड़क में चलता फिरता आत्मघाती बम होता है, जो स्वयं और दूसरों के लिए भी घातक है। अतः नशा से हमेशा दूर रहें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें ताकि आपकी यात्रा शुभ हो।
2: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिल बन गया।
3: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
4: RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: अगला गीत हम लेकर आए हैं नदीम श्रवण की तर्ज पर दीवाना फिल्म से। समीर की रचना को आवाज दी है कुमार सानू और अलका याग्निक ने। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है लुत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज ने। नेहरू वार्ड भाटापारा से हमारे साथी हैं प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू। मोहनपारा अकलतरा से अभिनव साहू, अभिषेक, उमा देवी साहू। परसा टोला अंबागढ़ चौकी से ओम प्रकाश मसिया, सिलोचनी मसिया, खुमेंद्र, तुषारनी मसिया।

अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान। देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, केआर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश मयाराम रजक, पुनेश्वर फानेश्वर, मुकेश कुमार, हाव्या टानिया रजक। ग्राम रसेड़ा अकलतरा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या, डिकेश कुमार, वासु, डॉली, पूर्वेश साहू। भाटापारा से हमारे साथी हैं दान सिंह रावत दानू, पद्मनी, शुभम, सौरभ रावत। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निमी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। भाटापारा से हमें फरमाइश आई है बच कामल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चुवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, सिया राम, अश्विनी पांडे और जितेंद्र की। लुधियाना पंजाब से अमरजीत, सोनम कौर, परमजीत, आदिबा कौर। बिहारी कॉलोनी महासमुंद से वली उल्ला फकीर, डब्लू उल्ला, परवीन आसमा फकीर। बुलंदशहर से बद्रू अली अंसारी, फर्जू अली, फर्जी वली अंसारी। शांतिनगर भाटापारा से रमजान खान सिकंदर, असरफ खान, नासिर खान, अयाज अल्फैज खान, हजरुन्निशा, सादिया खान। बिल्हा से शेख नासिर, महजमीन बानो। सुभाष वार्ड भाटापारा से एमएल यादव, अजय कुमार, अमित, अमीन, गिरीश, करण, युवान, ढावेश यादव। हथबंद नेवधा से सेवक राम यादव, टुपेंद्र कुमार, तुलेंद्र कुमार, देव कुमार यादव। बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल।

दीवाना फिल्म का गीत अभी आप सुन रही थी। कार्यक्रम के आखिर में हम पेश कर रहे हैं हीना फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर की आवाज़ों में। गीतकार और संगीतकार रविंद्र जैन है। इस गीत को सुनने की फरमाइश हमें भेजी है ओवरेटीबारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा, नेहा मोनिशा साहू ने, पोटिया कला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा साहू, बेमितरा से सुरेश कुमार सारथी, कमलकांत, वीरेंद्र वृजकांत सारथी, नवागढ़ कटी से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत, सीमा शारदा दामिनी वर्मा, ग्रामबोड़ गहन से राम दुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश

चंद्रकला शशिकांता प्रजापति, दत्रिंगी भाटापारा से नोखेलाल वर्मा, हीरामणि पारसमणि पुष्पेंद्रमणि वर्मा, शिवाजी चौक राजिम से अनिल कुमार अंजुलता, आदित्य कुमार कृष्णवास्तव, अमरपुर पेंड्रा से दीपक कुमार रोशन कुमार बंशीलाल, रेखा देवी श्वेता देवी सुरुचि देवी, दिशा देवू और लवी श्रीवास्तव, महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी आरती कैवर्त, ततरिंगी से प्रतिमा यदु, प्रमीला रीना लक्ष्मीना विश्राम पार्वती यदु, हरदेव लाल पारा वार्ड सिमगा से रमेश कुमार यादव, माया रिंकू सन्नी कोमल यादव, बेलर गांव से मिथिलेश देवांगन मधु, हिमांशु अंकित देवांगन, धरसीवा से छेदोलाल यादव, सीता अर्चना अरुणा अनुराधा अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर से छन्नूलाल यादव अनुराग, अभिषेक

बेलरगांव से मिथिलेश देवांगन, मधु, हिमांशु अंकित देवांगन, धरसीवा से छेदोलाल यादव, सीता अर्चना, अरुणा अनुराधा, अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर से छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, अनामिका, बलदाव यादव, रानू खुशी, प्रवीण साहू, सी एल यादव, हथनीपारा भाटापारा से दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू, मुकेश वर्मा, हरीश, किरण, दुलारी वर्मा। चांदनी चौक गंडई पंडरिया से हमें फरमाइश भेजी है पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की, विक्की, नानू, रविंद्र, खुशी, रौनक सेन ने। बिरगांव तखतपुर से दिलीप कोल, जयमोन रामायणी, भुवनेश्वर कोल। साकरा सोमनी से नारायण लाल साहू, कुलवंतीन देवी, देवेंद्र प्रताप, नेहा देवी, मिलिंद कुमार, प्रणय कुमार, रुद्रांश साहू। कोरबी बेलतरा से मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुनीता, सुमित, सोमू, मंजीत, मानस राज। ग्राम बसीबार से शिव नारायण नामदेव, सविता देवी, राम प्रसाद, आंचल, चंचल, चांदनी, विनय कुमार, वर्षा, मनोज कुमार, कंवर। शांतिनगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, संतोषी कोरम, आरती, पूर्वा, प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और समस्त कोरम परिवार। तो आइए सुनते हैं कार्यक्रम का ये आखिरी गीत आप सभी की फरमाइश पर।

कार्यक्रम आपकी पसंद में अभी आप सुन रहे थे हीना फिल्म का गीत लता मंगेशकर और सुरेश वाडेकर के युगल स्वर में। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11 बजे हैं, आइए सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम एनसीईआरटी।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं को विमलेश का नमस्कार
0: और अजीत का भी नमस्कार। स्वागत है आप सबका हमारे ज्ञान और मनोरंजन से भरपूर कार्यक्रम उमंग में। आइए सुनते हैं आज का सुविचार जो हमें भेजा है यवतमाल महाराष्ट्र से संदीप कोल्हे, अश्विनी कोल्हे और क्षितिज कोल्हे जी ने। लिखते हैं,
2: जीवन में सकारात्मकता भरते हैं, हर परिस्थिति में ये हमें सही राह दिखाते हैं।
0: आप सबका धन्यवाद इतने सुंदर विचार के लिए। अब आइए सुनते हैं श्रोताओं के नाम जिन्होंने हमें भेजा है संदेश। तो पहला संदेश हमें मिला है छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल वर्मा, प्रिंस वर्मा और यशस्वी वर्मा।
2: यवतमाल महाराष्ट्र से क्षितिज संदीप कोहले जी ने लिखा है, नमस्कार, मैं छठवीं वर्ग में पढ़ता हूँ, मुझे आपका उमंग कार्यक्रम बहुत पसंद है।
0: आपका संदेश भी हमें बहुत अच्छा लगा, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से उमंग कार्यक्रम से जुड़े रहिए। अगला संदेश हमें मिला है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जयदास, देवेश दास, धनवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने लिखा है, जय हिंद जय जोहार, बंदगी विमलेश मैडम जी और साहेब अजीत जी। 28 मई 2026 को उमंग कार्यक्रम सुनाया, इस दिन बाल गीत टिम टिम तारा, आ गया है बच्चों का जादुई पिटारा आपने सुनाया, हमें बहुत पसंद आया।
2: इसके साथ वीर गाथा में हमने सुना ब्रिगेडियर 19 वर्षीय योगेंद्र सिंह यादव जी के बारे में। योगेंद्र सिंह यादव जी को नमन करते हैं और जय हिंद करते हैं। उमंग कार्यक्रम की पूरी टीम को जय हिंद। आपके कार्यक्रम ने सभी सुनने वालों के मन में देश प्रेम और देशभक्ति का भाव जगाया। आपका कार्यक्रम हम सबको सही राह सही मंजिल की ओर ले जाता है। बहुत बहुत बधाई।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। अगला संदेश सुनते हैं पोटिया कला दुर्ग से संजय कुमार साहू और सुजाता साहू जी का।
2: बड़ा बम चौक खंडवा से ममता मारकंडे और संजय मारकंडे जी के साथ बेबी किट्टू जी ने लिखा है,
0: आदरणीय अजीत जी व विमलेश जी को सादर नमस्कार। उमंग कार्यक्रम के हम नियमित श्रोता हैं। आप कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम में प्रतिक्रिया और समीक्षा भेजिए।
2: जी,
0: हमने इस कार्यक्रम में कुछ प्रतिक्रिया और समीक्षा व सुविचार भेजे लेकिन एक भी शामिल नहीं हुआ।
2: ममता जी और संजय जी, जहाँ तक हमें याद है आपके नाम हम हर प्रसारण में शामिल करने की कोशिश करते हैं। रही बात प्रतिक्रियाओं की, तो आगे हम जरूर इसका ध्यान रखेंगे।
0: अगला संदेश हमें मिला है तहसील ठियोग जिला शिमला हिमाचल प्रदेश से सूरज चौहान का।
2: धन्यवाद आप सबका संदेश भेजने के लिए। इसी तरह से जुड़े रहिए हमारी आपकी प्यारी श्रृंखला उमंग से। अब बारी है पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर जानने की।
0: तो हमारा पहला प्रश्न था, भारत में किस जनजाति की संख्या सबसे अधिक है?
2: श्रोताओं, इसका उत्तर है भारत में भील जनजाति की संख्या सबसे अधिक है।
0: और अब सुनिए हमारा दूसरा प्रश्न। हमारा दूसरा प्रश्न था, चाय समारोह को जापानी भाषा में क्या कहते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। जापान की चाय परंपरा या समारोह को चा नो यू कहते हैं।
0: जी, और अब सुनिए हमारा पूछा गया अगला प्रश्न। हमारा प्रश्न था, इथियोपियन कॉफी समारोह में कॉफी कितनी बार परोसी जाती है?
2: तो इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। इथियोपिया के कॉफी समारोह में कॉफी 3 बार परोसी जाती है। पहला प्याला खामोशी से पिया जाता है, दूसरा प्याला परोसा जाता है, तो इसका अर्थ होता है अब अतिथि आपस में बातचीत या संवाद कर सकते हैं। तीसरे प्याले का अर्थ शुभकामनाएं और आशीर्वाद होता है।
0: हमारा अगला प्रश्न था, कोको या ककोआ की पैदावार किस देश में सबसे अधिक होती है?
2: इसका उत्तर है साथियों, ब्राजील और आइवरी कोस्ट में कोको या ककोआ की पैदावार सबसे अधिक होती है।
0: और अब सुनिए हमारा पूछा गया अंतिम प्रश्न। हमारा प्रश्न था, सोयाबीन की उत्पत्ति मुख्य रूप से किस देश की मानी जाती है?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं, चीन की येलो रिवर की घाटी सोयाबीन की उत्पत्ति का स्थान मानी जाती है।
0: तो ये

0: श्रोताओं, हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर अब सुनिए आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है,
1: एक लोहे की सुई पानी में डूब जाती है लेकिन लोहे का बना हुआ जहाज पानी में नहीं डूबता, ऐसा क्यों?
0: श्रोताओं, हमारा IVRS नंबर है 8800440559। आप इस नंबर पर या हमारे ईमेल के पते पर प्रश्नों के उत्तर और संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और हाँ,
1: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को फॉलो कर सकते हैं।
0: तो अब चलिए, बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की, तो सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। कार्यक्रम का नाम है कंचा।
1: बचपन की यादों को ताजा करता हुआ ये कार्यक्रम बच्चों के प्रिय कंचे के खेल की जानकारी देता है और बच्चों को प्रोत्साहित करता है कि वे पढ़ाई के अलावा खेलों और व्यायाम पर भी ध्यान दें ताकि उनका स्वास्थ्य अच्छा रहे।

0: घनी छांव में होता हुआ सियार की कहानी का मजा लेता आ रहा था। हिलते डुलते उसका बस्ता दोनों तरफ झूमता खनकता था। स्लेट कभी छोटी शीशी से टकराती तो कभी पेंसिल से। यूं वे सब उस बस्ते के अंदर टकरा रहे थे, मगर वो न कुछ सुन रहा था न कुछ देख रहा था। उसका पूरा ध्यान कहानी पर केंद्रित था। कैसी मजेदार कहानी, कौवे और सियार की।
1: सियार कौवे से बोला, प्यारे कौवे एक गाना सुनाओ ना, तुम्हारा गाना सुनने के लिए तरस रहा हूँ। कौवे ने गाने के लिए मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा, सियार उसे उठाकर 9 to 11 हो गया।
0: वो जोर से हंसा,
2: बुद्धू कौवा।

0: वो चलते चलते दुकान के सामने पहुंचा। वहां अलमारी में कांच के बड़े बड़े जार कतार में रखे थे। उनमें चॉकलेट, पेपरमिंट और बिस्कुट थे। उसकी नजर उनमें से किसी पर नहीं पड़ी। क्यों देखे? उसके पिताजी उसे ये चीजें बराबर ला देते हैं। फिर भी एक नए जार ने उसका ध्यान आकृष्ट किया। वो कंधे से लटकते बस्ते का फीता एक तरफ हटाकर उस जार के सामने खड़ा टुकुर टुकुर ताकता रहा।
1: कितना सुंदर।
0: नया नया लाकर रखा गया है। उससे पहले उसने वो चीज यहां नहीं देखी है। पूरे जार में कंचे हैं, हरी लकीर वाले बढ़िया सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: कितने खूबसूरत हैं। अब तक ये कहां थे? शायद दुकान के अंदर। अब दुकानदार ने दिखाने के लिए बाहर रखा होगा।
0: उसके देखते देखते जार बड़ा होने लगा। वो आसमान सा बड़ा हो गया तो वो भी उसके भीतर आ गया। वहां और कोई लड़का तो नहीं था, फिर भी उसे वही पसंद था। छोटी बहन के हमेशा के लिए चले जाने के बाद

0: कंचे चारों तरफ बिखेरता मजे से खेलता रहा। तभी एक आवाज आई,
1: लड़के तू उस जार को नीचे गिरा देगा।
0: वो चौंक उठा। जार अब छोटा बनता जा रहा था। छोटे जार में हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, छोटे आंवले जैसे। सिर्फ दो जने वहां हैं, वो और बूढ़ा दुकानदार। दुकानदार के चेहरे पर कुछ चिड़चिड़ाहट थी।
1: मैंने कहा ना, जो चाहते हो वो निकाल कर दूं।
0: वो उदास हो अलग खड़ा रहा।
1: क्या कंचा चाहिए?
2: नहीं।
0: दुकानदार ने जार का ढक्कन खोलना शुरू किया। उसने निषेध में सिर हिलाया।
2: नहीं।
1: तो फिर?
0: सवाल खूब रहा, क्या उसे कंचा चाहिए? क्या चाहिए उसे खुद मालूम नहीं है। जो भी हो, उसने कंचे को छू कर देखा।
2: आह, कितने सुंदर कंचे। ओ,
0: जार को छूने पर कंचे का स्पर्श करने का एहसास हुआ। अगर वो चाहता कंचा ले सकता था, लिया होता तो।
2: अरे अरे, लगता है देर हो गई।
0: स्कूल की घंटी सुनकर वो बस्ता थामे हुए दौड़ पड़ा।
3: सात का पहला सुन।
4: सात एकम सात,
5: सात एकम सात,
4: सात दूनी चार।
0: देर से पहुंचने वाले लड़कों को पीछे बैठना पड़ता है। उस दिन वो ही सबके बाद पहुंचा था, इसलिए वो चुपचाप पीछे की बेंच पर बैठ गया। सब अपनी अपनी जगह पर हैं। रामन अगली बेंच पर है, वो रोज समय पर आता है। तीसरी बेंच के आखिर में मल्लिका के बाद अम्मू बैठी है।
2: आ गया। जॉर्ज दिखाई नहीं पड़ता।
0: लड़कों के बीच जॉर्ज ही सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी है। कितना भी बड़ा लड़का उसके साथ खेले, जॉर्ज से मात खाएगा। हारने पर यूं ही विदा नहीं हो सकता। हारे हुए को अपनी बंद मुट्ठी जमीन पर रखनी होगी, तब जॉर्ज कंचा चलाकर बंद मुट्ठी के जोड़ों की हड्डी तोड़ेगा।
2: जॉर्ज क्यों नहीं आया? अरे हाँ, जॉर्ज को बुखार है ना।
0: उसे रामन ने ये सूचना दी थी। उसने मल्लिका को सब बताया था। जॉर्ज का घर रामन के घर के रास्ते में पड़ता है।
6: अप्पू, कक्षा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा है।
2: मास्टर जी।
0: उसने हड़बड़ी में पुस्तक खोलकर सामने रख ली। रेलगाड़ी का सबक था।
2: रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, पृष्ठ 37, रेलगाड़ी।
0: वे रेलगाड़ी के हर एक हिस्से के बारे में समझा रहे थे।
6: पानी रखने के लिए खास जगह है, इसे अंग्रेजी में बॉयलर कहते हैं। ये लोहे का बड़ा पीपा है।
2: लोहे का एक बड़ा कांच का

0: चार, उसमें हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे। जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब।
1: जॉर्ज जब अच्छा होकर आ जाएगा तब उससे कहेगा। उस समय जॉर्ज कितना खुश होगा। सिर्फ वे दोनों खेलेंगे और किसी को साथ नहीं खेलने देंगे।
2: अप्पू,
1: उसकी चेहरे पर चौक का टुकड़ा आ गिरा। अनुभव के कारण वो उठकर खड़ा हो गया। मास्टर जी गुस्से में हैं।
2: अरे तू उधर क्या कर रहा है?
1: उसका दम घुट रहा था।
2: बोल।
1: वो खामोश खड़ा रहा।
2: क्या नहीं बोलेगा?
1: वे अप्पू के पास पहुंचे। सारी कक्षा सांस रोके उसी तरफ देख रही है। उसकी घबराहट बढ़ गई।
0: मास्टर जी,
2: मैं अभी किसके बारे में बता रहा था?
0: वो
1: कर्मठ मास्टर जी उस लड़के का चेहरा देखकर समझ गए कि उसके मन में और कुछ है। शायद उसने पाठ पर ध्यान दिया भी हो। अगर दिया है तो उसका जवाब उसके मन से बाहर ले आना है। इसी में उनकी सफलता है।
2: हाँ हाँ बता, डरना मत।
0: वो
1: मास्टर जी ने देखा अप्पू की जबान पर जवाब था।
2: हाँ हाँ
1: वो कांपते हुए बोला।
0: वो कंचा।
2: कंचा?
1: वे सक पका गए। कक्षा में भूचाल आ गया।
2: स्टैंड अप।
1: मास्टर साहब की आंखों में चिंगारियां सुलग रही थी। अप्पू रोता हुआ बेंच पर चढ़ा। पड़ोसी कक्षा की टीचर ने दरवाजे से झांक कर देखा। फिर सम्मिलित हंसी। रोकने की पूरी कोशिश करने पर भी वो अपना दुख रोक नहीं सका। सुपकता रहा। रोते रोते उसका दुख बढ़ता ही गया। सब उसकी तरफ देख देख कर उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। रामन, मल्लिका, सब। बेंच पर खड़े खड़े उसने सोचा,
0: दिखा दूंगा सबको। जॉर्ज को आने दो। जॉर्ज जब आएगा। हाँ,
1: जॉर्ज के आने पर वो कंचे खरीदेगा। इनमें से किसी को वो खेलने नहीं बुलाएगा। कंचे को देख ये ललचाएंगे। इतना खूबसूरत कंचा है।
0: हरी लकीर वाले सफेद गोल कंचे, बड़े आंवले जैसे।
1: तब शक हुआ।
0: कंचा मिले कैसे? क्या मांगने पर दुकानदार देगा? जॉर्ज को साथ लेकर पूछे तो नहीं दे तो?
2: किसी को शक हो तो पूछ लो।
1: मास्टर जी ने उस घंटे का सबक समाप्त किया।
2: क्या किसी को कोई शक नहीं?
0: नहीं मास्टर जी।
1: अप्पू की शंका अभी दूर नहीं हुई थी। वो सोच रहा था,
0: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचा नहीं देगा? अगर खरीदना ही पड़े तो कितने पैसे लगेंगे?
2: अप्पू

0: क्या सोच रहे हो?
1: वो मैं
0: पूछ लो ना, शंका क्या है?
1: क्या जॉर्ज को साथ ले चलने पर दुकानदार कंचे देगा? नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? क्या 5 पैसे में मिलेगा, 10 पैसे में?
0: क्या सोच रहे हो?
1: वो पैसे।
0: क्या, कितने पैसे चाहिए? किसके लिए? क्या रेलगाड़ी के लिए?
1: हाँ।
0: बेवकूफ, रेलगाड़ी को पैसे से खरीद नहीं सकते। अगर मिले तो उसे लेकर क्या करेगा?
2: वो खेलेगा, जॉर्ज के साथ खेलेगा।
1: रेलगाड़ी नहीं, कंचा।
2: चपरासी एक नोटिस लाया।
3: मास्टर जी, नोटिस है।
0: लाओ।
2: मास्टर जी ने कहा,
0: जो बच्चे फीस लाए हैं वे ऑफिस जाकर जमा कर दें।
2: बहुत से छात्र गए। राजन ने जाते जाते अप्पू के पैर में चिकोटी काट ली।
1: ओए,
2: उसने पैर खींच लिया। उसे याद आया उसे भी फीस जमा करनी है। पिताजी ने उसे 1.5 रुपया इसके लिए दिया है। उसने अपनी जेब टटोल कर देखा।
1: हाँ, 1 रुपए का नोट और 50 पैसे का सिक्का।
2: वो बेंच से उतरा।
0: किधर?
2: मास्टर जी ने पूछा। उसके कंठ से खुशी के बुलबुले उठे।
1: फीस देनी है।
0: फीस मत देना,
2: मास्टर ने कहा। वो छिछकता रहा।
0: ऑन द बेंच।
2: वो बेंच पर चढ़कर रोने लगा।
0: क्या भविष्य में कक्षा में ध्यान से पढ़ेगा?
1: ध्यान दूंगा।
2: वो दफ्तर गया। दफ्तर में बड़ी भीड़ थी।
4: बच्चों, एक एक करके आओ।
2: क्लर्क बाबू बता रहे हैं।
5: पहले मैं आया हूँ। मेरे बाकी पैसे।
2: इस शोरगुल से अप्पू दूर खड़ा रहा। रामन ने फीस जमा की, मल्लिका ने जमा की। अब थोड़े लड़के ही बचे हैं। वो सोच रहा था,
1: जॉर्ज को साथ लेकर चलूं तो देगा ना? शायद दे, नहीं तो कितने पैसे लगेंगे? 5 पैसे, 10 पैसे। हरी लकीरों वाले गोल सफेद कंचे।
2: घंटी बजने पर फीस जमा किए हुए सभी बच्चे उधर से चले। वो भी चला मानो नींद से जाग कर चल रहा हो।
0: क्या सब फीस जमा कर चुके?
6: जी मास्टर जी।
2: कक्षा छोड़ने के पहले मास्टर जी ने पूछा। वो नहीं उठा।

श्याम को थोड़ी देर इधर-उधर टहलता रहा। लड़के गीली मिट्टी में छोटे गड्ढे खोदकर कंचे खेल रहे थे। वो उनके पास नहीं गया। फाटक के सींकचे थामे उसने सड़क की तरफ देखा। वहां उस मोड़ पर दुकान है। दुकान में

0: अलमारी बाहर खड़े खड़े छू सकेगा। अलमारी में शीशे के जार हैं, उनमें एक जार में पूरा पस्ता कंधे पर लटकाए वो चलने लगा। उसकी चाल की तेजी बढ़ी। वो अलमारी के सामने खड़ा हो गया। दुकानदार हंसा। उसे मालूम हुआ कि दुकानदार उसके इंतजार में है। वो भी हंसा।
1: कंचा चाहिए है ना?
0: उसने सिर हिलाया। दुकानदार जार का ढक्कन जब खोलने लगा तब अप्पू ने पूछा,
2: अच्छे कंचे हैं ना?
1: बढ़िया, फर्स्ट क्लास कंचे। तुम्हें कितने कंचे चाहिए?
2: कितने कंचे चाहिए? कितने चाहिए? कितने?
0: दुकानदार समझ गया। वो भी किसी जमाने में बच्चा रहा था। उसके साथी मिलकर खरीद रहे होंगे। यही उनके लिए खरीदने आया होगा।
2: मैं बस जॉर्ज को ही बताऊंगा।
0: वो कंचे खरीदने की बात जॉर्ज के सिवा और किसी को बताना नहीं चाहता था। दुकानदार ने पूछा,
1: क्या तुम्हें कंचा खेलना आता है?
0: वो नहीं जानता था।
1: तो फिर?
0: कैसे कैसे सवाल पूछ रहा है। उसका धीरज जवाब दे रहा था। उसने हाथ फैलाया,
2: दे दो।
1: ये लो।
0: कागज की पोटली छाती से चिपटाए वो नीम के पेड़ों की छांव में चलने लगा। बस्ता कंधे पर लटकाए स्लेट किताब शीशी पेंसिल सब छाती से चिपकाए वो घर आया। उसकी माँ शाम की चाय तैयार कर उसकी राह देख रही थी। बरामदे की बेंच पर स्लेट व किताबें फेंक कर वो दौड़कर माँ के गले लग गया।
2: माँ,
3: अरे आ गया।
0: उसके लौटने में देर होते देख माँ घबराई हुई थी। उसने बस्ता जोर से हिलाकर दिखाया।
2: क्या देखो माँ?
3: अरे ये क्या है?
2: मैं नहीं बताऊंगा।
3: मुझसे नहीं कहेगा?
2: कहूंगा। माँ आंखें बंद कर लो। वन टू थ्री।
0: वो कुछ और हैरान हुई।
3: इतने सारे कंचे कहाँ से लाया?
2: खरीदे हैं।
3: पैसे?
0: पिताजी की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा,
2: दोपहर को दिए थे ना?
0: माँ ने दांतों तले उंगली दबाई।
3: फीस के पैसे? इतने सारे कंचे काहे को लिए? आखिर खेलोगे किसके साथ?
0: उस घर में सिर्फ वही है। उसके बाद एक मुन्नी हुई थी, उसकी छोटी बहन। मगर माँ की पलकें भीग गई। उसकी माँ रो रही है। अप्पू नहीं जान सका कि माँ क्यों रो रही है। क्या कंचा खरीदने से

0: ऐसा तो नहीं हो सकता। तो फिर उसकी आंखों के सामने बूढ़ा दुकानदार और कार का ड्राइवर खड़े खड़े हंस रहे थे। वे सब पसंद करते हैं, सिर्फ माँ को कंचे क्यों पसंद नहीं आए? शायद कंचे अच्छे नहीं हैं। पस्ते से आंवले जैसे कंचे निकालते हुए उसने कहा,
1: बुरे कंचे हैं, है ना?
0: नहीं, बहुत अच्छे हैं।
1: देखने में बहुत अच्छे लगते हैं ना?
0: बहुत अच्छे लगते हैं। वो हंस पड़ा। उसकी माँ भी हंस पड़ी, आंसू से गीले माँ के गाल पर अपना गाल सटा दिया। अब उसके दिल से खुशी छलक रही थी।
2: तो श्रोताओं, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:31 हुए हैं। आइए पुनः जुड़ते हैं विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों से।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, गांवों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास भूले बिसरे गीत।
3: तुम्हारी याद सताती है
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: रंग तरंग कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं काबुल एक्सप्रेस, इस फिल्म का गीत। इस गीत को गाया है राघव सचर ने और संगीतबद्ध किया है राघव सचर ने। इस गीत को लिखा है आदित्य धर ने।

फाल्गुनी पाठक की आवाज में सुनिए नक्श लायल पुरी का लिखा ये गीत, ललित सेन ने सुरों में ढाला है और एल्बम का नाम मेरी चुनार उड़ उड़ जाए।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का।

समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

लकी अली का गाया गीत आपने सुना, उन्हीं के संगीत निर्देशन में सईद असलम के बोल थे और सिफर था एल्बम का नाम। और आइए अब आपको सुनवाते हैं तू ही मेरे रब की तरह है। इस एल्बम से गीत सईद कादरी के बोल हैं और गोल्डी का संगीत।

0: अभी हम रिले कर रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार।

0: सुबह के 11:55 होने वाले हैं। प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।
1: मीडियम वेव पर आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। 11:55 हुए हैं। लीजिए सुनिए प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। और मानसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब समाचार विस्तार से। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। इस दौरान आयोजित किए जाने वाले शाला प्रवेशोत्सव के लिए स्कूल प्रबंधन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। शाला प्रवेशोत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नवप्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्यपुस्तकें, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। इस बीच स्कूल शिक्षा विभाग ने प्रदेश के स्कूलों में नए शिक्षा सत्र से राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्यगीत सहित विभिन्न गतिविधियां अनिवार्य रूप से कराए जाने के निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। आज से अधिवक्ता अदालत कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख रहे हैं। हालांकि पहले की तरह कई मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश 18 मई से शुरू हुआ था। इस दौरान केवल अत्यावश्यक मामलों की सुनवाई के लिए प्रत्येक सप्ताह विशेष अवकाशकालीन पीठों का गठन किया गया था। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। यह परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। इस बीच एनटीए ने विद्यार्थियों को पैसा वापस पाने के लिए प्रवेश पत्र डाउनलोड करने से पहले अपने बैंक खाते का विवरण सत्यापित कर लेने की सलाह दी है। रायपुर में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। नया रायपुर स्थित सेंटलेक में हुई इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम दिन छत्तीसगढ़ ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 4 पदक जीते हैं। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। ओवरऑल खिताब मध्यप्रदेश ने 257 अंकों के साथ जीता, जबकि केरल दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से लगभग 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। समापन समारोह में उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने विजेता खिलाड़ियों और टीमों को पुरस्कार प्रदान किए। श्री साव ने समापन समारोह में खिलाड़ियों और विभिन्न राज्यों से आए कायकिंग केनोइंग संघों के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि राज्य में कायकिंग केनोइंग को और आगे बढ़ाने सरकार हर संभव सहयोग देगी। मानसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये सभी संरक्षित वन क्षेत्र अब 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। वन विभाग के अनुसार जंगलों के दरवाजे पर्यटकों के लिए 2 अक्टूबर से दोबारा खोले जाएंगे। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 3 से 4 दिनों में दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने और तेज हवा चलने की चेतावनी दी है। विभाग के अनुसार आगामी 4 दिनों तक प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ तेज हवा चलने की संभावना है। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर 241 बस्तर बटालियन के सेरवा स्थित वाहिनी मुख्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बटालियन के 24 अधिकारियों और जवानों ने स्वैच्छिक रक्तदान कर मानव सेवा का संदेश दिया। डिमरापाल स्थित स्वर्गीय बलिराम कश्यप मेमोरियल शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय की टीम ने शिविर में सहयोग किया। इस दौरान जवानों ने नियमित रक्तदान और समाज में जागरूकता बढ़ाने का संकल्प भी लिया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकलपीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। और मानसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला

0: प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो से बातचीत करेंगे। वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से भी मुलाकात करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी फ्रांस के बाद अपनी यात्रा के दूसरे चरण में कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचे। इस यात्रा से दोनों देशों के संबंध और मजबूत होंगे और सहयोग के नए क्षेत्रों पर विचार विमर्श होगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि वे स्लोवाकिया के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के साथ वार्ता के लिए उत्सुक हैं। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साहपूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एनसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। प्रधानमंत्री मोदी का आज औपचारिक स्वागत किया जाएगा। स्मृति एम पल्लूरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
1: अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमेरिकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
3: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के पांचवें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। समाचार कक्ष से मैं निवेदी।
1: संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अल नीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि इस वर्ष दक्षिण पश्चिम मॉनसून की बारिश सामान्य से कम रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं। सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि आयकर सुधारों के माध्यम से कर राहत और जीएसटी के माध्यम से कर प्रणाली में पारदर्शिता आई है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि जेवर हवाई अड्डा देश में संपर्क बढ़ाने और विश्व स्तरीय उड़ान अवसंरचना विकसित करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लक्ष्य का प्रतिफल है। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। फीफा विश्व कप में स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनीशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी है। आज के अन्य मैचों में स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में कार्बो वर्डे के खिलाफ खेलेगा।

0: ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। और इधर दिल्ली में बादल छाए रहने और कुछ स्थानों पर बारिश होने से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है। पूर्वोत्तर क्षेत्र और पश्चिम बंगाल में भी आज तेज बारिश की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। प्रस्तुत है कार्यक्रम यादों की महफिल। कार्यक्रम का आगाज कर रही हूँ मैं नेहा आगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। लीजिए पहला गीत आपको सुनवाते हैं मुकेश की आवाज में, आनंद बख्शी के मुकेश की आवाज में ही गीत है, फिल्म का नाम है आनंद, गुलजार के बोल हैं और सलील चौधरी का संगीत। आइए आपको बता दें कि जैसे कि आज जो हम थीम ले रहे हैं उसके बारे में थोड़ी चर्चा कहते हैं। कहते हैं कि सपने ही वो रंग हैं जो हमारी आंखों में बसकर जीवन को नई दिशा देते हैं। कुछ सपने मुस्कान बनकर आते हैं तो कुछ उम्मीदों का दीप जलाते हैं और कुछ हमें अपने प्रियजनों की यादों से जोड़ देते हैं। आज के इस यादों की महफिल कार्यक्रम में हम सुनेंगे ऐसे ही मधुर गीत जिनमें सपनों की दुनिया बसी है। आइए चलते हैं ख्वाबों और सुरों के इस खूबसूरत सफर पर। तो लीजिए, जैसा कि आपको बताया, मुकेश का गाया गीत आनंद फिल्म से आपको सुनवा रहे हैं।
2: मैंने

सपनों की खास बात क्या है जानते हैं साथियों? खास बात यह है कि शायद जिन लोगों को अब हम असल जिंदगी में नहीं देख सकते, या फिर ऐसी कुछ हमारी महत्वाकांक्षाएं जो हमारी असल जिंदगी में पूरी नहीं हो पाती हैं, वो कहीं ना कहीं हम सपनों के जरिए उन खुशियों को पा लेते हैं, उन लोगों से मुलाकातें कर लेते हैं जो अब इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए, और सपने में हमें पता भी नहीं चलता कि जो हम महसूस कर रहे हैं वो सपना है या सच, हमें तो वो सच ही लगता है। इसलिए सपने हमेशा ही अच्छे लगते हैं, तब तक जब तक वो खुशनुमा सपने हैं। आइए इसी के साथ सुनते हैं झुक गया आसमां, इस फिल्म का ये गीत मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल हैं, शंकर जयकिशन का संगीत।

यादों की महफिल कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से, और आज का यादों की महफिल कार्यक्रम केंद्रित है सपने इस थीम पर। तो आइए अब अगला गीत आपको सुनवाते हैं आराधना फिल्म से, किशोर कुमार की आवाज, आनंद बख्शी के बोल, संगीत सचिन देव बर्मन का।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: और आइए अब आपको सुनवाते हैं राजेश रोशन और अमित खन्ना का लिखा ये गीत। धुन बनाई है राजेश रोशन ने, आवाज है किशोर कुमार और मन्ना डे की, फिल्म का नाम मक्कार।

दिल है कि मानता नहीं। इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना अनुराधा पौडवाल और साथियों की आवाज में। समीर की रचना थी और धुन बनाई थी नदीम श्रवण ने। और आइए अब आपको सुनवाते हैं सत्य फिल्म का ये गीत। आशा भोसले और सुरेश वाडकर की आवाजें हैं, रचना है गुलजार की और तर्ज बनाई है विशाल ने।

कुमार सानू और कविता कृष्णमूर्ति का गाया ये गीत सुनिए, जिसे रचा है संजय छैल ने, जतिन ललित का संगीत है, और इस ये गीत है फिल्म खूबसूरत से।

सुनहरे दौर के सदाबहार गानों की महफिल। सोमवार से शनिवार दिन में 2:30 बजे सिर्फ विविध भारती पर। सदाबहार नगमे।

लक बाय चांस इस फिल्म का गीत अभी आपने सुना शंकर महादेवन की आवाज में, बोल थे जावेद अख्तर के और संगीत शंकर एहसान लॉय का। और आइए अब आपको सुनवाते हैं ब्रदर्स फिल्म का गीत सोनू निगम और नीति मोहन की आवाजों में, अमिताभ भट्टाचार्य के बोल अजय अतुल का संगीत।

तो साथियों, सपनों से सजे इन गीतों का ये सफर यहीं पर विराम लेता है। उम्मीद है इन मधुर धुनों ने आपके मन में भी कुछ खूबसूरत ख्वाब जगा दिए होंगे। फिर मिलेंगे नई थीम और नए गीतों के साथ। अब दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को। नमस्कार।

सुरीला सफर ये कार्यक्रम लेकर मैं हूँ आज आपके साथ नेहा अगरकर देसाई। स्वीकार कीजिए नमस्कार। साथियों, आज के सुरीला सफर इस कार्यक्रम की पोस्ट फेसबुक पर काफी पहले आ चुकी है और आप सभी के कमेंट्स भी आना शुरू हो ही गए हैं। बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं। आज की इबारत को आपने पसंद किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए साथियों, एक बार आज की जो इबारत है उसे फिर पढ़ देते हैं। हो सकता है कि आज हमारे कुछ साथी हैं जो फेसबुक पर नहीं जुड़ पाए हों, तो उनके लिए हम एक बार इबारत पढ़ देते हैं। आज की इबारत है, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है, पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारे रोजमर्रा के बीच ही छुपी होती है। बस थोड़ा रुककर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो साथियों, आज की ये इबारत थी, आप सभी ने जिन्होंने इस इबारत को पढ़ा है पसंद किया है, और कई श्रोताओं ने हमें उनके गाने भी लिख भेजे हैं। तो चलिए देखते हैं, सफर शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपकी पसंद के और आपने पहचाने हुए कितने गाने आज की इस लिस्ट में बजने वाले हैं। तो आइए आगाज कर रहे हैं शैलेंद्र सिंह और लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ, जिसे लिखा है अमित खन्ना ने, बप्पी लाहिड़ी का संगीत, फिल्म का नाम चलते चलते।

तो साथियों, इस गीत में जो शब्द था वो था कभी कभी, आपने पहचान ही लिया होगा। और हमारे एक साथी लिखते हैं, आज की इबारत मेरी जिंदगी के बहुत करीब है। इसे इस तरह से कह सकते हैं कि कुछ फिल्मों के संवाद मेरे दिल में घर कर गए हैं और मेरी जिंदगी की दिशा और दशा निर्देशित करते हैं। पहला संवाद फिल्म आनंद का, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। दूसरा फिल्म बावर्ची का, अक्सर हम बड़ी बड़ी खुशियों की खोज में छोटी छोटी खुशियों के पल जो बहुत ज्यादा होते हैं उन्हें गवा देते हैं। मैं लोगों से प्यार से मिलता हूं और जहां तक हो सके उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की कोशिश करता हूं। फिल्म बावर्ची का एक और संवाद, अपना काम तो सभी करते हैं, कभी दूसरों का काम करके देखिए कितनी खुशी मिलती है। साथ ही एक साथी ने लिखा है, सच कहें आज की इबारत हमें बिल्कुल अपनी सी लगी, क्योंकि छोटी खुशियों को लेकर आई है। छोटी छोटी खुशियों के मायने बहुत बड़े होते हैं, बस हम इन्हें देख नहीं पाते। हम बड़ी बड़ी खुशियों के पीछे भागते हैं, बस शायद दिखावा करना चाहते हैं, पर हम तो छोटी छोटी सादगी भरी बातों से ही खुश रहते हैं, बस उसमें अपनापन हो। अब देखो ना, कल थोड़ी बारिश हुई, हमने उसे बड़े ध्यान से देखा। जब पानी की बूंदें पौधों पर पड़ी तो पौधों की धूल साफ हो गई, ये देखकर हम खुश हो गए। फिर हम ये भूल गए कि बारिश से बाकी पूरा सब जगह खराब भी तो हो गया। इस बात तो सही है, बारिश जब आती है तो खुशियों की फुहार लेकर आती है। चलिए इसी के साथ सुनते हैं भूपिंदर सिंह और अनुराधा का गाया ये गीत।

हमारी इबारत से लिया गया इस गीत में जो शब्द था वो था जिंदगी। एक साथी ने लिखा है, जब कभी सुबह की सैर के वक्त किसी वृक्ष के नीचे बैठकर अपनी सांसों को आता जाता महसूस करना, पक्षियों की चहचहाट को सुनना असीम खुशी और शांति दे जाता है। प्रकृति कितना कुछ सिखा जाती है कि खुशी किसी के पीछे भागने में नहीं बल्कि ठहराव में है, हर पल को महसूस करने में है। एक साथी ने लिखा है, कभी कभी मेरे मन में ख्याल आता है कि कमेंट करूं या ना करूं। ऐसा क्यों भाई, अब इसका जवाब भी आप दे ही दीजिए अगले कमेंट में। खैर आगे बढ़ते हैं। एक साथी ने, उन्हें 12 बजे का कार्यक्रम पसंद आया उसके बारे में लिखा है। एक साथी ने लिखा है, हमारे भोपाल में 2-3 दिन से बादल और सूरज की लुका छिपी चल रही है। हल्का फुल्का पानी भी आ जाता है लेकिन सूरज की तपिश से कुछ तो राहत मिल गई है। अब देखिए किस तरह समय बदलता है और जज्बात भी उसके साथ बदल जाते हैं। आज जब सूरज की गर्मी के बीच हल्का फुल्का पानी आता है तो वो ठंडक अच्छी लगती है। यही हल्का फुल्का पानी जब भारी भरकम भरकम बारिश में बदल जाता है और जब कई दिनों तक गहरे बादल छाए रहते हैं, घने बादल छाए रहते हैं, तब जब हल्की सी वो धूप की एक किरण आती है ना, वो भी खुशी दे जाती है और तब हमें लगता है कि अरे सूरज दादा दर्शन तो दे दो। बिल्कुल सही कहा ना, ऐसा ही लगता है ना। तो चलिए इसी के साथ अगला गीत आपको सुनवाते हैं, देखते हैं कितने हमारे आज के श्रोताओं ने इसे सही पहचाना है। ये गीत है फिल्म शबनम से मोहम्मद रफी की आवाज, जावेद अख्तर के, जावेद अनवर के बोल और उषा खन्ना का संगीत।

0: शिखम।
1: तो सादगी शब्द था इस गीत में जो हमारी इबारत में भी शामिल था और कई साथियों ने सही भी पहचाना। एक साथी लिखते हैं, जीवन का फलसफा बताती क्या खूबसूरत इबारत है आज की। मराठी में कहते हैं, तुझे आहे तुझ पाशी परी तू जागा चुकलासी। हमें मालूम ही नहीं होता कि जीवन के बहुत सारे सुनहरे पल छोटी छोटी बातों में हमारे पास ही छिपे रहते हैं और हम कस्तूरी मृग की तरह कस्तूर की तलाश में दूर दूर भागते रहते हैं। असली खुशी तो आत्मिक समाधान में है जो चेहरे पर स्वाभाविक मुस्कुराहट ले आती है। इसी के साथ इन्होंने कुछ गीतों की लिस्ट भी लिखी है, बताइएगा यदि इसमें से कोई गीत आता है तो। एक साथी ने लिखा है, अक्सर हम बड़ी खुशियों की प्रतीक्षा में छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं, जबकि सच्चाई ये है कि जीवन का अधिकांश हिस्सा इन्हीं छोटे सुखद पलों से बना होता है। सुबह की ताजी हवा, किसी अपने की मुस्कान, दोस्तों से बातचीत, बारिश की फुहार, चाय की प्याली या किसी की सच्ची प्रशंसा, ये छोटे छोटे पल मन को सुकून और आनंद से भर देते हैं। और जो व्यक्ति छोटी छोटी बातों में खुशी ढूंढ लेता है वो जीवन का वास्तविक आनंद उठा पाता है। एक साथी ने लिखा है, मेरी हर सुबह ईश्वर की प्रार्थना के बाद विविध भारती न्यूज़पेपर और अदरक इलायची दालचीनी वाली चाय के साथ होती है। दिल में खुशी, होठों पर मुस्कान और मीठी जुबान, सभी के लिए प्यार हमेशा मेरे साथ रहता है। और हाँ, जानवरों और पक्षियों को दाना पानी रखना नहीं भूलता। अच्छी बात है, ये हमेशा ही होना चाहिए। अभी तो गर्मी इतनी है कि पक्षियों के लिए पानी दाना रखना एक अच्छी आदत है, ये हम कहेंगे। आइए इसी के साथ, इस जीवन की सफर वाली इबारत के साथ आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कभी धूप कभी छांव, इस फिल्म का गीत प्रदीप की आवाज में। इस गीत की रचना की है प्रदीप ने, चित्रगुप्त का संगीत।

0: कभी था।
1: तो धूप शब्द था जो हमारी इबारत में भी शामिल था और इस गीत में भी था। साथियों, मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, क्या कभी आपने ऐसा अनुभव किया है कि किसी बात को लेकर आप बड़े दुखी हो रहे थे और फिर अचानक आपको पता चलता है कि ये बात उतनी दुखी होने वाली थी ही नहीं, या फिर हम शायद उस बात को ज्यादा तवज्जो दे रहे थे लेकिन जिंदगी में उससे भी बढ़कर कई सारी अच्छी चीजें हैं जो हमें मिलनी बाकी हैं और मिलती भी हैं। तो अगर ऐसा कभी कोई किस्सा आपके साथ हुआ हो तो आप हमारे साथ फेसबुक पर साझा कर सकते हैं। फिलहाल सुनते हैं मुकेश की आवाज में साहिर लुधियानवी का लिखा ये गीत, खयाम का संगीत, फिल्म का नाम कभी कभी।

0: जी हाँ, तो पल वो शब्द था जो इस गीत में चुना गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है, ऊपर वाला पांसा फेंके नीचे चलते दांव, पंक्ति भाग्य और कर्म के बीच गहरे संबंध को दर्शाती है। भगवान या नियति जीवन की परिस्थितियां तय करती हैं। पांसा फेंकना, इंसान धरती पर जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि और कर्मों से फैसले लेता है। एक साथी ने लिखा है, कभी धूप कभी छांव, आज बादलों की ओट में सूरज भी अठखेलियां सी कर रहा है। कभी धूप खिलखिला रही है तो कभी छांव अपना आंचल लहरा रही है। जी हाँ, यही तो बारिश की धीमी धीमी शुरुआत हो रही है। जब कभी लगता है कि बस अब तो बरसात आने ही वाली है कि जल्दी से सूरज दादा आकर अपने दर्शन दे देते हैं, और जब चिलमिलाती धूप पड़ने लगती है तो कहीं बीच में से ही हल्की सी फुहार आ जाती है। बहरहाल, कार्यक्रम का आधा समय हो गया है, और चलिए एक बार हम अपनी जो इबारत है उसे फिर से पढ़ देते हैं। यदि कोई साथी है जो फेसबुक पर नहीं है, एक बार फिर अगर सुनना चाहते हैं तो हमारी जो इबारत थी, कभी कभी जिंदगी बहुत साधारण सी लगती है, पर उस सादगी में सबसे गहरी खूबसूरती छिपी होती है। सुबह की हल्की धूप, चाय का पहला घूंट और बिना वजह की मुस्कान, ये छोटी चीजें ही दिन को खास बना देती हैं। हम अक्सर बड़े पलों की तलाश में छोटे पलों को अनदेखा कर देते हैं, लेकिन सच तो यही है कि खुशी कहीं दूर नहीं, हमारी रोजमर्रा के बीच ही छिपी होती है। बस थोड़ा रुक कर उसे महसूस करने की जरूरत होती है। हर दिन एक नया मौका है थोड़ा मुस्कुराने का, थोड़ा जीने का। तो आइए इसी के साथ अब आपको सुनवाते हैं किशोर कुमार और शैलेंद्र सिंह की आवाजों में ये गीत फिल्म एहसास से। इंदिवर की रचना है, बप्पी लाहिड़ी का संगीत।
1: जो

तो ये जो गीत था इसमें छोटे शब्द लिया गया था इबारत से। एक साथी ने लिखा है कि नेहा जी आप सवाल इस तरह से पूछें कि हम बिजी रहें, फिल्म का नाम पूछ सकती हैं, गीतकार पूछ सकती हैं, किस सन में ये फिल्म आई ये पूछ सकती हैं, हम बिजी रहेंगे। आपको लगता है इतने आसान सवाल हम पूछेंगे आपसे? क्योंकि ये सवाल तो कोई भी गूगल बाबा से देखकर, सोशल मीडिया की किसी भी साइट से देखकर जवाब दे सकता है। हमें वो बातें जानने में अच्छा लगता है जो हमें आपसे जानने को मिलती हैं, जो बातें यूनिक होती है आपके बारे में। जैसे कि देखिए, हमारे एक साथी ने कमेंट लिखा है कि हमारी जो मेड है वो भी आपका प्रोग्राम सुन रही है, उसे जो समझ आया आपका सवाल तो उसका जवाब सुनो। अभी कुछ दिन पहले घर से आते समय उसका मंगलसूत्र कहीं गिर गया, वो बहुत उदास हो गई, पर उसने सबका काम किया और वो वापस गई तो उसका वो मंगलसूत्र मिल गया। उसे जाते समय हमने कहा, एक तो आज तेरा फास्ट है और दूसरा तू हम सबका काम करके जा रही है और तीसरा तुमने किसी का कुछ गलत नहीं किया, तो पक्का तुम्हारी चीज तुम्हें मिल जाएगी। क्या बात है, हमें हमें हमेशा ये लगता है कि देखिए जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होगा, और देखिए आपके साथ हुआ भी। मंगलसूत्र जैसी चीज गिरना ना सिर्फ मतलब हमें एक मानसिक पीड़ा देता है, ये हमारे एक संपदा का भी नुकसान होता है, लेकिन देखिए आपको मिल भी गया। तो कभी-कभी होता है कि हम बहुत ज्यादा चिंतित होते हैं, सोचते हैं, मगर जब जीवन में आगे बढ़ते हैं तो पता चलता है कि जितना समय हमने चिंता में व्यस्त किया, चिंता में मतलब गवाया, उतना अगर हम उसके उसका जवाब ढूंढने में या हल ढूंढने में

0: निकालते तो शायद परिणाम बेहतर होते। एक साथी ने लिखा है, सुबह की सैर पर जाते हुए और लौटते हुए सब्जी और फलों से भरे ठेले, कहीं फूलों की दुकान, किसी जानवर की अजब गजब हरकतें, फुदकते तरह तरह की चिड़ियाओं को देखकर भी मन बहुत हल्का महसूस करता है। कुछ समय प्रकृति के साथ गुजारना चाहिए, बहुत से दुख दर्द भूल जाते हैं। किसी से हल्की फुल्की बातें करके भी मन हल्का सा हो जाता है। वहीं पर एक साथी लिखते हैं, मराठी लेखक हैं पु ल देशपांडे, कहते हैं हमारी उम्र तब तक है जब तक हम लोगों को याद रहते हैं। बस यही बात है, हम पल दो पल के मेहमान हैं, फिर भी दिल में जीते रहेंगे। और चलिए इसी के साथ सुनिए बातों बातों में इस फिल्म का गीत, अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में। अमित खन्ना ने इसे लिखा है, राजेश रोशन का संगीत।
1: उठ सबके कदम देखो रम पम पम,

एक साथी लिखते हैं, साधारण जीवन शैली का मतलब पीछे रह जाना नहीं होता, इसका मतलब है शोर कम करके असली आवाज को ही सुनना। जब प्लान कम होंगे तो पल ज्यादा मिलेंगे। छोटी छोटी खुशियां वही हैं जिन्हें जिनकी कोई डिमांड नहीं होती। चाय की पहली चुस्की से लेकर पहली बारिश में मिट्टी की वो सौंध ही खुशबू वाली खुशियां हम इसलिए मिस कर देते हैं क्योंकि हमारे अंदर की इच्छा तो बड़ी बड़ी खुशियों के इंतजाम में लगी रहती है, पर जिंदगी की बड़ी खुशियों की किश्तों में नहीं आती। जिंदगी की बड़ी खुशियां किश्तों में नहीं आती, वो हर रोज छोटी छोटी खुशियों में ही निहित होती है। और एक साथी ने पहले जो गीत हमने बजाया उसे लेकर लिखा है, जो छोटे हैं ना बड़े, बड़ी मुश्किल में है वो। यही सही है, जिस घर में बीच का भाई या बहन हो उसकी यही मुसीबत होती है। अब आप इसे थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं क्योंकि आपके इस कमेंट से बिल्कुल समझ में आ रहा है कि आप भी घर में बीच वाले भाई हैं या बहन हैं। तो चलिए बताइए, क्या मुसीबत ऐसी होती है जब आप बीच वाले भाई या बहन होते हैं? तब तक सुनते हैं अगला गीत। मुकेश की आवाज है, आनंद फिल्म का ये गीत है, योगेश ने इसे लिखा है और सलील चौधरी का संगीत। पिछले गीत का शब्द था खुशी और इस गीत का कहीं दूर।

जैसे कि हमने पूछा था अपने एक साथी से कि बीच के भाई बहनों की क्या समस्या होती है, तो उसके जवाब में एक साथी ने लिखा है, छोटे छोटे कामों के लिए हम बड़े हो जाते हैं और बड़े बड़े कामों के लिए हम छोटे होते हैं। जैसा जी चाहे घर वाले हमारा उपयोग कर लेते हैं। आपकी ये बात पढ़कर बड़ी हंसी आई मुझे, और सही कहा आपने कि होता है ऐसा। इवन एक उम्र ऐसी आती भी है जब हम अगर कुछ बच्चों जैसी हरकत करें तो डांट पड़ जाती है कि अब इतने छोटे हो क्या, और अगर कोई बड़ों के बीच में कोई बात कर ले तो तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि बड़ों में बात करो, ये भी हो जाता है। तो ये तो सब बातें होनी ही है। एक साथी ने लिखा है, हमने कई बार ऐसे कई काम देखे हैं जो नामुमकिन को मुमकिन बना देते हैं। एक बार हम गुरुजी के प्रोग्राम में नागपुर जा रहे थे और इतनी तेज बारिश की गाड़ी से जाना मुश्किल था स्टेशन तक। उधर ट्रेन राइट टाइम, जो हमारी दोस्त स्टेशन पहुंच गई थी उसने कहा ट्रेन चलने वाली है, हम अपने गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया कि अब आप ही हमें पहुंचाएंगे। वो हम कैसे पहुंचे नहीं पता, हम अंदर गए, हमारे सामने ही ट्रेन का डिब्बा और हम ऊपर चढ़े और ट्रेन चल दी। अब इसे क्या कहेंगे नहीं पता। जी हाँ, कभी कभी होता है कि हमें लगता है अब तो ये काम संभव ही नहीं है, लेकिन किसी तरह कोई चमत्कार हो जाता है और असंभव काम संभव हो जाता है। एक साथी ने लिखा है, किसी भी काम और परेशानी में चिंतन करना करना ही समझदारी है। चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि चिंता चिता के समान होती है। बिल्कुल सही आपने कहा। और लीजिए अब इस कार्यक्रम का अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम है खट्टा मीठा, आवाजें लता मंगेशकर, किशोर कुमार और साथियों की, गुलजार के बोल हैं, राजेश रोशन का संगीत।

एक साथी ने लिखा है, बीच वाले भाई या बहन को बड़ा भाई या बहन दोनों की सुननी पड़ती है। सब कहते हैं वो बड़ा है और वो तुमसे छोटा है, बेचारा चक्की में पिस जाता है। एक साथी ने लिखा, बचपन में एक कहानी या वाकया सुना था कि एक व्यक्ति बहुत टाइट जूते पहनकर बाहर जाया करते थे। घर आकर जब जूते उतारते थे तो उनको बहुत आराम महसूस तब वो बहुत आराम महसूस करते थे। लोगों ने सलाह दी कि थोड़े ढीले जूते पहने, तो उसके जवाब में उन्होंने बताया कि जीवन में कोई सुख नहीं है, जब मैं जूते उतारता हूँ तो बहुत सुख महसूस करता हूँ। देखिए, किसी के लिए कोई बात कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है। शायद हमारे लिए वो बहुत छोटी सी बात है, लेकिन वो किसी के लिए कितना सुकून देने वाली बात हो सकती है। आज का जो सुरीला सफर का कार्यक्रम है, हमें संपन्न करना होगा क्योंकि समय हमें इजाजत नहीं दे रहा। बस इतना ही कहेंगे कि आज की इस संगीत यात्रा में हमने उन छोटे छोटे एहसासों को छूने की कोशिश की जो अक्सर भागती दौड़ती जिंदगी में नजरअंदाज हो जाते हैं। उम्मीद है कि इन गीतों ने आपके मन में कुछ मीठी यादें और कुछ सुकून भरे पल जरूर जगाए होंगे। चलते चलते बस इतना याद रखिए, जिंदगी की असली रौनक बड़ी उपलब्धियों में नहीं बल्कि उन लम्हों में होती है जिन्हें हम दिल से जीते हैं। दीजिए इजाजत नेहा अगरकर देसाई को, नमस्कार।

दोस्तों, मनुष्य के जीवन में पैसे का बड़ा महत्व है जो बढ़ता ही जा रहा है, और पैसे की बढ़ती अहमियत ने हर इंसान को कमाई के लिए दौड़ने पर मजबूर कर दिया है।

अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम धन अर्जित करते हैं। जरूरतें पूरी होने पर लोग जुट जाते हैं अपना सामाजिक स्तर बढ़ाने में, जिसके लिए और अधिक धन की आवश्यकता होती है, और इसी चक्कर में वे अपने करीबी लोगों से दूर होते जाते हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, मगर पैसे का गुरूर कतई अच्छा नहीं है।

जरूरतें पूरी करते करते हम अपनी इच्छाओं को पैसों से पूरा करने में लग जाते हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता। ऊंची अट्टालिका में रहने वाला नर्म बिस्तर पर भी रात भर सो नहीं पाता, और दिन भर मेहनत करके एक इंसान पत्थर की सेज पर गहरी नींद सोता है। एक संतोषपूर्ण जीवन ही समृद्ध जीवन है। मन में संतोष का होना बहुत जरूरी है। शांत मन किसी भी परिस्थिति में गुनगुनाता रहता है और आनंद से भरा होता है।

0: ये है विविध भारती।
1: विविध भारती देश का रेडियो।
2: ओ मेरे पिया दे रंगू, पिया है वहां से टेली।
3: चाहे हो पुराने मधुर गाने या नए संगीत की ताजगी।
4: मैं निकला ओ गड्डी लेके ओ रास्ते पर।
1: चाहे हो मन लुभावनी बातें।
5: एक्टर बनने का शौक मुझे हुआ, मैंने शहीद फिल्म देखी थी दिलीप कुमार साहब की, और कुछ ही महीनों में फिल्म फेयर में टैलेंट कॉन्टेस्ट के लिए अर्जी छपकर आ गई। अर्जी मैंने भरी, धर्मेंद्र सिंह देओल, तस्वीरें भेज दी, मुझे बुला लिया गया और मेरी फोटो सिलेक्ट करने वाले थे दत्त साहब एंड नरगिस जी।
3: विविध भारती पर हर पल है खास।
1: आज के मेहमान और कार्यक्रम है अपने आप में अनोखे।
6: आज के फनकार।
3: विविध भारती हर रोज लाती है ढेर सारी खुशियाँ और ढेर सारा मनोरंजन।
6: विविध भारती के विविध रंगी कार्यक्रमों की विविधा।
1: विविध भारती, संगीत, मनोरंजन और संस्कृति का संगम।
7: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा। दोपहर के 2:15 होने को है। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
8: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट। सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया। और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। अब समाचार

0: समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में वहां के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो से बातचीत कर रहे हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी को श्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो की उपस्थिति में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। श्री मोदी ने कहा कि ये यात्रा भारत स्लोवाकिया संबंधों को मजबूत करने और दोनों देशों के बीच सहयोग के नए रास्ते तलाशने का महत्वपूर्ण अवसर है। ब्रातिस्लावा पहुंचने पर श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया गया। और ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
1: कल रात ब्रातिस्लावा पहुंचने पर स्लोवाकिया के विदेश मंत्री यूराय ब्लानार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी स्लोवाक गणराज्य की यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। ब्रातिस्लावा में मौजूद भारतीय समुदाय के लोगों ने उत्साह पूर्वक श्री मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री के आगमन पर लूचनिका एंसाम्बल के स्लोवाक संगीतकारों ने वंदे मातरम की प्रस्तुति दी। स्मृति एम पल्लुरथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
0: 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज से फ्रांस के एवियन शहर में शुरू हो रहा है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों आज G7 देशों के नेताओं के साथ यूरोपीय परिषद और यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष का भी औपचारिक रूप से स्वागत करेंगे। भारत, ब्राजील, दक्षिण कोरिया, केन्या और मिस्र, यूक्रेन, कतर तथा संयुक्त अरब अमीरात को भी शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया गया है। एक रिपोर्ट।
2: फ्रांस की अध्यक्षता में हो रहे 52वें G7 शिखर सम्मेलन के लिए कुछ प्राथमिकताएं तय कर दी गई हैं। इनमें आर्थिक असंतुलन को कम करना, साझा विकास को बढ़ावा देना और अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों को नया स्वरूप देना शामिल है। इसके अलावा महत्वपूर्ण और खनिज आपूर्ति श्रृंखलाओं को अधिक मजबूत बनाने, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर नाबालिगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा प्रमुख भू राजनीतिक संकटों के समाधान पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। उल्लेखनीय है कि G7 शिखर सम्मेलन में यह भारत की 13 भागीदारी होगी, जबकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 7वीं बार इसमें हिस्सा लेंगे। अंकित कुमार, आकाशवाणी समाचार, एवियन फ्रांस।
0: भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि इस समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता की बहाली होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शेष मुद्दों पर विचार विमर्श के माध्यम से एक स्थायी और अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए तत्पर है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने इस समझौते का स्वागत किया है। महासचिव के प्रवक्ता स्टीफन डुजारिक ने कहा कि यह समझौता संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। अमेरिका और ईरान के बीच 107 दिन से जारी युद्ध समाप्त करने पर समझौता हो गया है। इसके साथ ही होर्मुज जलडमरू मध्य शुक्रवार से खुल जाएगा और ईरान के बंदरगाहों से अमरीकी नाकेबंदी समाप्त हो जाएगी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल रात ट्रुथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर समझौता हो जाने की घोषणा की। शांति समझौते पर 19 जून को स्विट्जरलैंड में हस्ताक्षर होंगे। एक रिपोर्ट।
3: होर्मुज जल डमरू मध्य से विश्व की कुल तेल आपूर्ति के 5वें हिस्से का परिवहन होता है। इस ऐतिहासिक समझौते से पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बहाल होगी। समझौते के अनुसार अमेरिका और ईरान को ईरान के परमाणु संवर्धन और संवर्धित यूरेनियम के 60 दिन के अंदर निस्तारण पर बातचीत करनी है। ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ने कहा कि युद्ध और लेबनान सहित सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई आज से स्थायी रूप से बंद हो जाएगी। इस बड़ी खबर के बाद तेल के नीचे गिर गए। ब्रेंट क्रूड ऑयल में आज शुरुआती कारोबार में 4% और अमरीकी वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट ऑयल में 4.6% से अधिक की गिरावट आई। एशिया के शेयर बाजारों में उछाल देखा गया। समाचार कक्ष से मैं आशा निवेदी।
0: शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में तेज वृद्धि दर्ज की गई है। एक रिपोर्ट।
4: अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते की घोषणा के बाद आज दोपहर के सत्र में घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांकों में जोरदार उछाल देखा गया। सेंसेक्स 932 अंक बढ़कर 76,460 पर, जबकि निफ्टी 290 अंक बढ़कर 23,912 पर पहुंच गया। वैश्विक कच्चे तेल बाजार में ब्रेंट क्रूड 4.7% गिरकर 83 अमरीकी डॉलर और 24 सेंट प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था। इस बीच सराफा बाजार में सोना 1.5% बढ़कर 1,53,240 रुपए प्रति 10 ग्राम पर, जबकि चांदी 2.4% बढ़कर 2,53,550 रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रही थी। इंतखाब की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट

0: www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि देश में अनाज का पर्याप्त भंडार है और अलनीनो के दुष्प्रभाव के बावजूद अनाज की कमी नहीं होगी। आज नई दिल्ली में आयोजित माइंड माइंड सम्मेलन में वित्त मंत्री ने कहा कि खरीफ फसल के लिए पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं।
1: जैसा कि हम जानते हैं, इस वर्ष मॉनसून बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है। हालांकि हमारे पास पर्याप्त भंडार मौजूद है, क्योंकि पिछले वर्ष हमने इसे बनाए रखा था, इसलिए खाद्यान्न की कोई कमी नहीं है। लेकिन किसानों पर इसका असर पड़ सकता है, उनकी आय पर भी दबाव रह सकता है।
0: सुश्री सीतारामन ने बताया कि आगामी रबी फसल के लिए उर्वरकों की आपूर्ति इस वर्ष नवम्बर से शुरू होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहरों तथा सार्वजनिक सेवाओं पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नितिन नवीन ने आज कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में देश के मध्यम वर्ग को आर्थिक सुरक्षा, बेहतर सुविधाएं और नए अवसर प्रदान करने के लिए व्यापक बदलाव किए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री नवीन ने सरकार की कई नीतियों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना से लोगों को घर खरीदने का सपना साकार हुआ है और आयुष्मान भारत योजना ने जनता को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से वाणिज्यिक उड़ानों का परिचालन आज से शुरू हो गया है। नागर विमानन मंत्री किंजराप्पू राममोहन नायडू ने आज उद्घाटन समारोह में कहा कि पहले चरण में इसकी क्षमता प्रतिवर्ष 1,20,00,000 यात्रियों की होगी। इस हवाई अड्डे से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों तरह की उड़ानें संचालित होंगी। श्री नायडू ने कहा कि यह हवाई अड्डा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के देश भर में हवाई संपर्क को मजबूत करने के दृष्टिकोण का परिणाम है। सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की गई है, जिसमें अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में दान और चढ़ावे के दुरुपयोग के आरोपों की जांच के निर्देश देने का आग्रह किया गया है। याचिका में कहा गया है कि यह मुद्दा लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास से जुड़ा हुआ है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
2: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे विशेषज्ञों से विषय से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। ओडिशा में आज पारंपरिक राजा महोत्सव राजा संक्रांति का दूसरा दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि सभी आयु वर्ग के लोग हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ इस उत्सव में भाग ले रहे हैं।
3: उड़ीसा में 3 दिन तक चलने वाले राजा त्योहार के दूसरे दिन राजा संक्रांति के शुभ अवसर पर जश्न का माहौल है। पूरे राज्य में त्योहार का उत्साह है। घर, गांव और पब्लिक पार्क खुशी और उत्सव से भरे हुए हैं। हर उम्र के लोग नए कपड़े पहनकर पारंपरिक पकवाने का आनंद लेकर और अलग अलग सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेकर पूरे जोश के साथ शामिल हो रहे हैं। पारंपरिक झूले मुख्य आकर्षण बने हुए हैं, जो ग्रामीण और शहरी दोनों इलाकों में बड़ी संख्या में लोगों को अपनी ओर खींच रहे हैं। हैं। रजत का खास पकवान जैसे पोड़ो पिठा, अरिसा पिठा, मंडा और काकेरा और साथ ही पारंपरिक रजपान इस

0: का अहम हिस्सा बने हुए हैं। सांस्कृतिक और सामाजिक संगठन भी इस मौके पर खास कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रकृति के सम्मान में खेतीबाड़ी का काम रोक दिया जाता है, जो उड़ीसा की पुरानी सांस्कृतिक विरासत और खेती के साथ उसके गहरे जुड़ाव को दिखाता है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ये आकाशवाणी है। ब्रिटेन में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री कीर स्टार्मर ने इस कदम को एक बड़ा क्षण बताया। ब्रिटेन की सरकार ने कहा है कि वो सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध से कहीं आगे बढ़कर 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए लाइव स्ट्रीमिंग और अजनबियों से बातचीत जैसी हानिकारक गतिविधियों को भी रोकेगी। आधिकारिक बयानों के अनुसार ये प्रतिबंध गेमिंग साइटों सहित बहुत सी ऑनलाइन सेवाओं पर लागू होंगे। फीफा विश्व कप में आज स्पेन अमेरिका के अटलांटा स्टेडियम में ग्रुप एच के मैच में काबो वर्डे के खिलाफ खेलेगा। ये मैच भारतीय समय के अनुसार रात 9:30 बजे से खेला जाएगा। स्वीडन ने आज मेक्सिको के मॉन्टेरी स्टेडियम में खेले गए ग्रुप एफ के मैच में ट्यूनिशिया को 5-1 से करारी शिकस्त दी। स्वीडन ने दूसरे हाफ में शानदार प्रदर्शन करते हुए निर्णायक जीत हासिल की। मैटियस स्वानबर्ग ने 88वें मिनट में 5वां गोल दागा। इस जीत के साथ स्वीडन ने विश्व कप अभियान की शानदार शुरुआत की, जबकि ट्यूनिशिया को हाफ टाइम से पहले गोल करने के बावजूद करारी हार का सामना करना पड़ा। आंध्र प्रदेश के राज्यपाल एस अब्दुल नजीर ने तुर्की के अंताल्या में आयोजित 2026 तीरंदाजी विश्व कप में अपना पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने पर तीरंदाज धीरज बोम्मा देवरा को बधाई दी है। राज्यपाल ने रिकर्व मिक्स्ड टीम इवेंट में दूसरा स्वर्ण पदक जीतने के लिए धीरज और उनकी टीम के साथियों की भी सराहना की और इस उपलब्धि को आंध्र प्रदेश और देश दोनों के लिए गर्व का क्षण बताया। मौसम विभाग ने कल तक उत्तर पूर्वी भारत के कुछ हिस्सों और पश्चिम बंगाल के हिमालय के तराई वाले क्षेत्र में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। राजस्थान, पूर्वी उत्तर प्रदेश, ओडिशा और पश्चिमी मध्य प्रदेश में आज गरज के साथ आंधी आने की संभावना है। दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में दिन भर बिजली चमकने और तेज हवाओं तथा गरज के साथ बारिश का अनुमान है। छत्तीसगढ़, झारखंड, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु और पुदुचेरी में भी कल तक इसी तरह के मौसम की संभावना है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रातिस्लावा के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फ्रिट्ज़ो के बीच बातचीत जारी। 52वां G7 शिखर सम्मेलन आज शाम फ्रांस के एवियन शहर में शुरू होगा। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में भाग लेंगे। भारत ने अमेरिका और ईरान के बीच शांति समझौते का स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी। अमेरिका ईरान शांति समझौते के बीच वैश्विक कच्चे तेल की कीमतों में 4% से अधिक की गिरावट, सेंसेक्स में 1100 अंक से अधिक की बढ़त। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने अल नीनो की स्थिति के बावजूद देश में अनाज के पर्याप्त भंडार का आश्वासन दिया। ब्रिटेन ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया और फीफा विश्व कप में आज शाम स्पेन का मुकाबला काबो वर्डे से होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये है विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुने सदाबहार नगमे। कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं सुरैया के गाए इस गीत के साथ। फिल्म का नाम दिल लगी, शकील बदायूनी की रचना है, नौशाद अली का संगीत।

अल्फाज कमर जलालाबादी के ये गीत जो है इसकी तर्ज बनाई है हुस्न लाल भगत राम ने। सुरैया और मोहम्मद रफी की आवाजें हैं। फिल्म का नाम सनम।

नौशाद अली के संगीत निर्देशन में सुनिए शकील बदायूनी की लिखी ये रचना। सुरैया की आवाज़, फिल्म का नाम दर्द।

0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
1: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: विद्यार्थी फिल्म का गीत अब सुनिए मोहम्मद रफी और उषा तिमोथी की आवाज में। मधुकर बिहारी ने इसे लिखा है और बाबू सिंह का संगीत।

0: सहेलियों को, श्रोताओं को और नेहा आपको सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार।
1: सोनाली जी, आपको भी और मेरे सभी श्रोताओं को, सुनने वालों को नेहा अगरकर देसाई का नमस्कार।
0: और
1: कैसी हैं सोनाली जी आप?
0: मैं तो मजे में हूं। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि कोई सहेली हमें बहुत दिनों बाद बाजार में या कहीं अन्य जगह पर दिखाई देती है, और उसके कुछ दिन बाद तुरंत दिखाई देती है, तो हम कहते हैं देखिए ऐसे तो हम मिलते नहीं है, और कभी कभी बार बार मिलने लगते
1: मिले तो
0: हैं।
1: अचानक फिर मिलने लगे। मैं जान रही हूं कि आप मेरी ही बात कर रही हैं। अभी पिछली बार ही हमारी कुछ दिन पहले मुलाकात हुई और लो आज फिर हो
0: तो
1: गई।
0: ऐसी मुलाकातें बार बार होती रहे तो
1: अच्छा लगता है।
0: क्या। तो चलिए विषय बता दें आज के।
1: बिल्कुल, आज के विषयों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस।
0: जो बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है ना।
1: जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण विषय भी है इसके बारे में। मतलब ये एक गंभीर विषय है। हो
0: जी
1: सकता है हमें यूं बात करते वक्त लगेगा, हम कहते हैं कि ठीक है, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन सिर्फ बातें नहीं है, उन बातों को व्यवहार में भी लाना है।
0: और कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम अगर झल्लाहट के कारण या फिर किसी अन्य कारणों से हमारे घर के बुजुर्ग हैं उनसे हम दुर्व्यवहार यानी बस कुछ ऊंची आवाज में बात कर ले, उससे आगे तो क्षमा ही नहीं है अगर ऐसा कुछ है तो उनसे तुरंत माफी मांग लेना भी बहुत जरूरी है। और इस विषय में हमारे बहुत सारे साथियों ने, हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने, सखियों ने बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स भी लिखकर भेजे हैं।
1: जी हाँ, उनको भी हम जरूर पढ़ेंगे। अगला विषय किस बारे में है बताएंगी?
0: जी आज कथा सुधा, जिसका सभी श्रोताओं को इंतजार है, आभूषण भाग 3, जो हम सब मिलकर सुनेंगे। साथ ही
1: बिल्कुल
0: बहुत जल्दी यानी कुछ ही दिनों में बारिश आने वाली है, तो उसके पहले क्या क्या तैयारियां होनी चाहिए।
1: बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है, बारिश आने वाली है। सोनाली जी बस सुन ही रहे हैं कि बारिश आने वाली है। कब
0: बस
1: आने वाली है?
0: बस आएगी ना तो हम उसका बहुत खूबसूरती के साथ उसका स्वागत करेंगे, और हम कुछ ऐसा करेंगे बारिश के मौसम में यानी खूब सारे पेड़ लगाएंगे। जब भी हम जामुन खा रहे हैं, आम खा रहे हैं, उन उन गुठलियों को हमें सहेज कर रखना है, और जैसे ही बारिश आएगी तो हमें खूब सारे पेड़ लगाना है ताकि हमें इतना इंतजार ना करना पड़े, है
1: वही तो
0: ना।
1: बस सुन रहे हैं, लेकिन बारिश आने के पहले हमें कुछ तैयारियां भी करनी है ना?
0: तो वो कौन सी तैयारियां हैं वो हमारे साथियों से हम गुजारिश करेंगे कि वो लिखिए आप कि आप कौन सी तैयारियां करते हैं। कुछ लोग अनाज को सुखाते हैं, कुछ घर की मरम्मत करवाते हैं, तो कुछ जो पेड़ हैं जिनकी टहनियां जो बहुत बढ़ चुकी है, जो गिरने का डर है, वो कटवाते हैं। क्या करते हैं आप, किस तरह से तैयारियां आपकी शुरू हो गई है, उस बारे में हमें लिख कर बताइए। और साथ ही व्यंजनों का जब जिक्र चलता है तो आज हम उत्तर प्रदेश के व्यंजन, उसमें है मक्खन मलाइयों और बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी।
1: क्या बात है, मेरे लिए तो इनमें से दो चीजें बिल्कुल नई हैं, तो आज नई जानकारी जानने को मिलने वाली है।
0: और आप क्या करना है,
1: एक गीत सुन लेते हैं।
0: तो सुनते हैं गीत।

0: बड़ा ही सुंदर गाना था ये।
1: बहुत सुरीला गाना, और हमारे बहुत सारे सखियों ने और हमारे बहुत सारे श्रोताओं ने भी लिखा कि गाना बहुत पसंद आया। तो अब सभी को इंतजार है कथा सुधा का, तो
0: मुझे
1: सुनते
0: भी
1: है ना, मुझे भी। तो सुनते
0: जी
1: हैं आभूषण भाग 3।
2: कथा सुधा, भाव भरी कहानियों का सागर, जिसकी लहरें कभी मुस्कुराहट सजाएंगी तो कभी आंखें नम कर जाएंगी। सामाजिक सरोकार से लेकर परिवार तक की होंगी बातें, कुछ मनोरंजन होगा तो कुछ सीख भी मिल जाएगी। हर बार नई अनसुनी कहानी की अलग अंदाज में होगी बयानी। कहानी की मौलिकता बनाए रखते हुए श्रोताओं के लिए कार्यक्रम रोचक और सुगम हो, इसलिए कहानी में थोड़े बहुत बदलाव किए गए हैं। आशा है आपको कथा सुधा में डूबना अच्छा लगेगा।
3: कथा सुधा में हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण। पिछली कड़ी में आपने सुना
4: मंगला सुंदरी न सही, पर पति पर जान देती थी। जो अपने को चाहे उससे हम विमुख नहीं हो सकते, प्रेम की शक्ति अपार है। पर शीतला की मूर्ति सुरेश के हृदय द्वार पर बैठी हुई मंगला को अंदर न जाने देती थी। जिस दिन शीतला इस घर में मंगला का मुख देखने आई थी, उसी दिन सुरेश की आंखों ने उसकी मनोहर छवि की एक झलक देख ली थी। सुरेश एकांत में बैठे हुए शीतला के चित्र को मंगला से मिलाते ये निश्चय करने के लिए कि उनमें

0: क्या अंतर है? एक क्यों मन को खींचती है, दूसरी क्यों उसे हटाती है? पर उसके मन का ये खिंचाव केवल एक चित्रकार या कवि का रसास्वादन मात्र था। वो पवित्र और वासनाओं से रहित था। पर जब मंगला ने अंत को बात-बात में उनकी तीव्र आलोचना करना शुरू कर दिया, वो उनसे उच्छृंखलता का व्यवहार करने लगी, तो उसके प्रति उनका वो उतना सौहार्द भी विलुप्त हो गया। घर में आना जाना छोड़ दिया। प्रातःकालीन ठंडी हवा चल रही थी। सुरेश खुमारी में पड़े हुए स्वप्न देख रहे थे कि मंगला सामने से चली जा रही है। चौंक पड़े, देखा द्वार पर सचमुच मंगला खड़ी है। सुरेश समझ गए, पर उन्होंने उठकर कुछ पूछने की, मनाने की या समझाने की चेष्टा नहीं की। वो यूं ही जड़वत पड़े रहे और मंगला चली गई। इस गांव से निकलकर मंगला उस गांव में पहुंची जहां शीतला रहती थी। शीतला सुनते ही द्वार पर आकर खड़ी हो गई और मंगला से बोली,
1: कुंवर जी से कुछ कहा सुनी हुई क्या?
2: जहां प्रेम नहीं, पूछ नहीं, मान नहीं, वहां अब नहीं रह सकती मैं। बहन, स्त्री के लिए इससे अधिक दुर्भाग्य की बात नहीं कि वो रूपहीन हो। रूप से प्रेम मिलता है और प्रेम से दुर्लभ कोई वस्तु नहीं है।
0: ये कहकर मंगला उठ खड़ी हुई। शीतला ने उसे रोका नहीं। मंगला के जाने के बाद शीतला बहुत देर तक बैठी सोचती रही। अपनी लालसा को, तृष्णा को वो कितनी ही बार धिक्कार चुकी थी। मंगला की दशा देखकर आज उसे आभूषणों से घृणा हो गई।
3: कथा सुधा में आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग।
0: विमल सिंह को घर छोड़े 2 साल हो गए थे। शीतला को अब उनके बारे में भांति भांति की शंकाएं होने लगी थीं। आठों पहर उसके चित्त में ग्लानि और क्षोभ की आग सुलगा करती थी। देहात के छोटे मोटे जमींदारों का काम डांट डपट छीन झपट ही से चला करता है। विमल की खेती बेगार में होती थी। उसके जाने के बाद सारे खेत परती रह गए। कोई जोतने वाला न मिला। इस ख्याल से साझे पर भी किसी ने न जोता कि बीच में कहीं विमल सिंह आ गए तो साझेदार को अंगूठा दिखा देंगे। असामियों ने लगान न दिया। शीतला ने महाजन से रुपए उधार लेकर काम चलाया। दूसरे वर्ष भी यही कैफियत रही। अब की महाजन ने रुपए नहीं दिए। शीतला के गहनों के सिर गई। दूसरा साल समाप्त होते होते घर की सब लेई पूंजी निकल गई। फाके होने लगे। बूढ़ी सास, छोटा देवर, ननद और आप, चार प्राणियों का खर्च था। नाथित भी आते ही रहते थे। उस पर ये और मुसीबत हुई, मायके में एक फौजदारी हो गई। पिता और बड़े भाई उसमें फंस गए। दो छोटे भाई, एक बहन और माता, चार प्राणी और सर पर आ डटे। गाड़ी पहले ही मुश्किल से चलती थी, अब जमीन में धस गई। प्रातःकाल से कलह आरंभ हो जाता। समदिन समदिन से साले बहनोई से गुथ जाते। कभी तो अन्न के अभाव से भोजन ही न बनता, कभी भोजन बनने पर भी गाली गलौज के कारण खाने की नौबत न आती। लड़के दूसरों के खेतों में जाकर गन्ने और मटर खाते, बुढ़िया दूसरों के घर जाकर अपना दुखड़ा रोती और ठकुर सुहाती करती। पुरुष की अनुपस्थिति में स्त्री के मैके वालों का प्राधान्य हो जाता है। इस संग्राम में प्रायः विजय पताका मैके वालों ही के हाथ में रहती है। किसी भांति घर अनाज आ जाता तो उसे पीसे कौन? शीतला की मां कहती, 4 दिन के लिए आई हूं तो क्या चक्की चलाऊं? सास कहती, खाने की बेर तो बिल्ली की तरह लपकेंगी और पीसते क्यों जान निकलती है? विवश होकर शीतला को अकेले पीसना पड़ता। भोजन के समय वो महाभारत मचता कि पड़ोस वाले तंग आ जाते। शीतला कभी मां के पैरों पड़ती, कभी सास के चरण पकड़ती, लेकिन दोनों ही उसे झिड़क देती। मां कहती, तूने यहां बुलाकर हमारा पानी उतार दिया। सास कहती, मेरी छाती पर सौत लाकर बैठा दी, अब बातें बनाती है। इस घोर विवाद में शीतला अपना विरह शोक भूल गई। सारे

0: अमंगल शंकाएं इस विरोधाग्नि में शांत हो गईं। बस अब यही चिंता थी कि इस दशा से छुटकारा कैसे हो। मां और सास दोनों ही का यमराज के सिवा और कोई ठिकाना न था, पर यमराज उनका स्वागत करने के लिए बहुत उत्सुक नहीं जान पड़ते थे। सैकड़ों उपाय सोचती, पर उस पथिक की भांति जो दिन भर चलकर भी अपने ही द्वार पर खड़ा हो, उसकी सोचने की शक्ति निश्चल हो गई थी। चारों तरफ निगाहें दौड़ाती कि कहीं कोई शरण का स्थान है, पर कहीं निगाह न जमती। एक दिन वो इसी नैराश्य की अवस्था में द्वार पर खड़ी थी, मुसीबत में चित्त की उद्विग्नता में, इंतजार में द्वार से हमें प्रेम हो जाता है। सहसा उसने बाबू सुरेश सिंह को सामने से घोड़े पर जाते देखा। उनकी आंखें उसकी ओर फिरी, आंखें मिल गईं, वो झिझक कर पीछे हट गई, किवाड़ बंद कर लिया। कुंवर साहब आगे बढ़ गए। शीतला को खेद हुआ कि उन्होंने मुझे देख लिया। मेरे सिर पर साड़ी फटी हुई थी, चारों तरफ उसमें पैबंद लगे हुए थे। वो अपने मन में न जाने क्या कहते होंगे। कुंवर साहब को गांव वालों से विमल सिंह के परिवारों के कष्ट की खबर मिली थी। वो गुप्त रूप से उनकी कुछ सहायता करना चाहते थे, पर शीतला को देखते ही संकोच ने उन्हें ऐसा दबाया कि द्वार पर एक क्षण भी न रुक सके। मंगला के गृह त्याग के 3 महीने पीछे आज वो पहली बार घर से निकले थे, मारे शर्म के बाहर बैठना छोड़ दिया था। इसमें संदेह नहीं कि कुंवर साहब मन में शीतला के रूप रस का आस्वादन करते थे। मंगला के जाने के बाद उनके हृदय में एक विचित्र दुष्कामना जाग उठी।
1: ओ शीतला, शीतला, क्या किसी उपाय से ये सुंदरी मेरी नहीं हो सकती? विमल का मुद्दत से पता नहीं, बहुत संभव है कि वो अब संसार में ही ना हो।
0: किंतु वो इस दुष्कल्पना को विचार से दबाते रहते थे। शीतला की विपत्ति की कथा सुनकर भी वो उसकी सहायता करते हुए डरते थे। कौन जाने वासना यही वेश धरकर मेरे विचार और विवेक पर कुठाराघात करना चाहती हूं। अंत को लालसा की कपटलीला उन्हें भुलावा दे ही गई। वो शीतला के घर उसका हालचाल पूछने गए, मन में तर्क किया,
1: ये कितना घोर अन्याय है कि एक अबला ऐसे संकट में हो और मैं उसकी बात भी ना पूछूं। ओ शीतला, आ ये मनोहर छवि, ये अनुपम सौंदर्य, शीतला ये प्राण और ये शरीर तेरी भेंट करता हूं। संसार हंसेगा, हंसे, महापाप है, हो कोई चिंता नहीं। इस स्वर्गीय आनंद से मैं अपने को वंचित नहीं कर सकता, वो मुझसे भाग नहीं सकती। इस हृदय को छाती से निकालकर उसके पैरों पर रख दूंगा। विमल सिंह मर गया, नहीं मरा तो अब मरेगा। पाप क्या है पता नहीं। शीतला, ओ शीतला।
0: अकस्मात वो ठिठक गए, जैसे कोई भूली हुई बात याद आ जाए। मनुष्य में बुद्धि के अंतर्गत एक अज्ञात बुद्धि होती है, जैसे रणक्षेत्र में हिम्मत हारकर भागने वाले सैनिकों को किसी गुप्त स्थान से आने वाली कुमक संभाल लेती है, वैसे ही इस अज्ञात बुद्धि ने सुरेश को सचेत कर दिया। वो संभल गए, ग्लानी से उनकी आंखें भर आईं। वो कई मिनट तक किसी दंडित कैदी की भांति क्षुब्ध खड़े सोचते रहे, फिर विजय ध्वनि से कह उठे,
1: कितना सरल है, इस विकार के हाथी को सिंह से नहीं चींटी से मारूंगा। शीतला को एक बार बहन कह देने से ही यह सब विकार शांत हो जाएगा। शीतला बहन, मैं तेरा भाई हूं।
0: उसी क्षण उन्होंने शीतला को पत्र लिखा।
1: बहन, तुमने इतने कष्ट झेले पर मुझे खबर तक न दी, मैं कोई गैर न था, मुझे इसका दुख है। खैर, अब ईश्वर ने चाहा तो तुम्हें कष्ट न होगा। इस पत्र के साथ अनाज और रुपये भेज रहा हूं।
2: भैया क्षमा करो,

0: जब तक जीऊंगी तुम्हारा यश गाऊंगी। तुमने मेरी डूबती नाव पार लगा दी है।
1: कई महीने बीत गए। संध्या का समय था। शीतला अपनी मैना को चारा चुगा रही थी। उसे सुरेश नेपाल से उसी के वास्ते लाए थे। इतने में सुरेश आकर आंगन में बैठ गए।
0: कहां से आते हो भैया?
2: गया था जरा थाने, कुछ पता नहीं चला। रंगून में पहले कुछ पता मिला था, बाद को मालूम हुआ कि वो कोई और आदमी है। क्या करूं, इनाम और बढ़ा दूं?
0: तुम्हारे पास रुपए बढ़े हैं तो फूको, उनकी इच्छा होगी तो आप ही आवेंगे।
2: शीतला बहन, एक बात पूछूं, बताओगी?
0: हाँ।
2: विमल सिंह किस बात पर रूठे थे तुमसे?
0: कुछ नहीं, मैंने यही कहा कि मुझे गहने बनवा दो। कहने लगे मेरे पास है क्या। मैंने कहा तो ब्याह क्यों किया। बस बातों ही बातों में तकरार हो गई।
1: इतने में शीतला की सास आ गई। सुरेश ने शीतला की माँ और भाइयों को उनके घर पहुंचा दिया था, इसलिए यहां अब शांति थी। सास ने बहू की बात सुन ली थी। कर्कश स्वर से बोली,
3: अरे बेटा, तुम तो घर के आदमी हो, तुमसे क्या पर्दा है। ये महारानी तो बस देखने की ही गुलाब की फूल है, अंदर सांप काटे हैं। अरे अपने बनाओ सिंगार के आगे विमल की बात ही ना पूछ देती है। बेचारा वो तो इस पे जान छिड़कता था, पर इसका मुंह ही सीधा नहीं होता था। और प्रेम, प्रेम तो इससे छू ही नहीं गया। अंत को उसे देश से निकाल कर ही दम लिया इसने। हाँ।
0: क्या वही अनोखे धन कमाने घर से निकले हैं? देश विदेश जाना तो मर्दों का काम ही है।
2: यूरोप में तो धन भोग के सिवा स्त्री पुरुष में कोई संबंध ही नहीं होता। बहन ने यूरोप में जन्म लिया होता तो हीरे जवाहर से जगमगाती होती। शीतला, अब तुम ईश्वर से यही कहना कि सुंदरता देते हो तो यूरोप में जन्म दो।
0: जिनके भाग्य में लिखा है वो यही सोने में लदी हुई है। मेरी तरह सभी के कर्म थोड़े ही फूट गए हैं।
1: सुरेश सिंह को ऐसा जान पड़ा कि शीतला के मुख कांति मलिन हो गई है। पति वियोग में भी गहनों के लिए इतनी लालायित है। बोले,
2: अच्छा बाबा, मैं बनवा दूंगा गहने तुम्हें।
1: ये वाक्य कुछ अपमान सूचक स्वर में कहा गया था, पर शीतला की आंखें आनंद से सजल हो आईं, कंठ गदगद हो गया। उसके हृदय नेत्रों के सामने मंगला के रत्न जटित आभूषणों का चित्र खिंच गया। उसने कृतज्ञता पूर्ण दृष्टि से सुरेश को देखा। मुंह से कुछ न बोली, पर उसका प्रत्येक अंग कह रहा था, मैं तुम्हारी हूं।
4: कथा सुधा में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानी आभूषण का तीसरा भाग। पात्र परिचय कुछ इस प्रकार से है। सूत्रधार रेणु चतुर्वेदी, विमल सिंह, जी श्याम, शीतला, पूनम त्रिपाठी, सुरेश सिंह, जयंत पात्रीकर, मंगला, ममता सिंह, शीतला की सास दीपा माहेश्वरी, प्रस्तुति अनुश्री पाठक, परिकल्पना एवं निर्देशन रेणु चतुर्वेदी। कहानी आगे क्या मोड़ लेती है इसके लिए सुनिए अगले सोमवार को कथा सुधा का अगला अंक।
5: सोनाली जी, कमेंट्स पढ़कर पता चल रहा है कि कथा सुधा की आज की कहानी सभी को पसंद आई है।
6: हमको भी पसंद आई, आपको भी पसंद आई,
5: और इंतजार रहेगा इसके अगले भाग का
6: जी।
5: लेकिन बीच में गीत सुन लिया जाए
6: तो सुनते हैं एक गाना।

0: नेहा, प्यार कुछ ऐसी ही चीज है ना, प्यार कह लीजिए, स्नेह कह लीजिए, कि जो हम देते हैं ना तो सामने से हमें बिल्कुल मिलता ही है वो प्यार, है
1: हाँ,
0: ना?
1: और दुगना होके मिलता है।
0: बिल्कुल, दुगना क्या, चौगुना, आठ गुना होके मिलता है, क्योंकि हर इंसान को सिर्फ प्यार की, स्नेह की, यानी अच्छी बातों की इच्छा होती है ना?
1: बिल्कुल। और सोनाली जी, अब कार्यक्रम में एक अंतराल ले लें।
0: बिल्कुल, लेते हैं।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली। और जैसे प्रेम स्नेह की बात चली थी, तो हमारे घर में जो बुजुर्ग होते हैं ना, उन्हें सिर्फ और सिर्फ चाहत होती है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जाए।
1: बिल्कुल, प्रेम से बात की जाए, थोड़ा उनके साथ बैठा जाए।
0: उन्हें वक्त दिया जाए,
1: बिल्कुल
0: क्योंकि उस उम्र में आके उन्हें ना नए कपड़े, या फिर ना घूमना फिरना, या फिर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे हम लोगों को, जैसे घड़ियां या बहुत सारी महंगी महंगी चीजें, उन्हें किसी चीज से लगाव नहीं होता है। उन्हें सिर्फ इच्छा होती है कि उनके साथ में 2-4 पल सुकून के साथ कोई बैठे, उनकी बातें समझे। और उम्र के साथ ऐसा होता है ना कि

0: ये कानों से कम सुनाई देता है, आंखों से कम दिखाई देता है, तो लोग छोटी छोटी बात को लेकर उन पर झल्लाने लगते हैं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। और आज है विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस,
1: जी,
0: तो
1: विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हर वर्ष 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन हमें बुजुर्गों के प्रति संवेदनशील रहना सिखाता है, जिन्होंने अपने जीवन के अनमोल वर्ष परिवार, समाज और आने वाली पीढ़ियों के निर्माण में लगा दिए। हम देखते हैं ना सोनाली जी, कि हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी हमारे लिए कितना कुछ करते हैं। वो हमें तब समझ नहीं आता, हम जब छोटे होते हैं तब हमें वो उतना जान नहीं पड़ता, लेकिन उम्र के साथ धीरे धीरे जब बड़े होते हैं तो जान पड़ता है कि उन्होंने हमारे लिए कितना कुछ किया है। और आज वो उम्र के उस पड़ाव पर है जहां उन्हें हमारी जरूरत है। बुजुर्ग परिवार की वो मजबूत नींव होते हैं जिन पर रिश्तों की इमारत खड़ी रहती है। उनके पास जीवन का लंबा अनुभव, संघर्षों की कहानियां और आने वाली पीढ़ियों के लिए अनमोल सीख होती है।
0: लेकिन क्या होता है ना नेहा, कि बदलती जीवन शैली, व्यस्तता और कई सामाजिक कारणों से कुछ बुजुर्ग उपेक्षा और दुर्व्यवहार का सामना करते हैं, और इसी समस्या के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। और बुजुर्गों के साथ होने वाला कोई भी ऐसा व्यवहार जिससे उन्हें शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक या आर्थिक पीड़ा पहुंचे, दुर्व्यवहार ही कहलाता है। यानी अगर आप जोर से बात करें, चिल्ला के बात करें, उनके ऊपर झुंझलाएं, तो ये भी एक दुर्व्यवहार में ही गिना जाएगा।
1: अब देखने में भी ये भी आता है सोनाली जी, कि जब भी मोबाइल वगैरह पर कुछ नई चीज, हमारे घर के जो वृद्ध व्यक्ति हैं, बड़े लोग हैं, जब वो मोबाइल की कोई चीज हमसे सीखना चाहते हैं तो वो हमसे पूछते हैं। कई बार वो एक बार पूछने के बाद भूल जाते हैं, फिर दोबारा पूछते हैं, फिर तीसरी बार पूछते हैं, तो तीसरी चौथी बार में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, उन्हें कभी उल्टा जवाब दे देते हैं या फिर ऊंची आवाज में बात करके कह देते हैं कि कितनी बार बताया। लेकिन हमें वो समय याद करना चाहिए जब हम छोटे थे और उन्होंने भी हमें कितनी बार एक ही चीज सिखाई होगी, तो उसी तरह हमें भी बार बार वो चीजें उन्हें बता देनी चाहिए, क्योंकि उम्र के उस पड़ाव में वो भूल जाते हैं, इसलिए शायद वो बार बार पूछते हैं
0: या
1: उनकी।
0: फिर कभी कभी ऐसा होता है ना कि हम उन्हें प्यार से समझा भी सकते हैं कि देखो अम्मा या बाबूजी, जब हम काम करते रहे ना, उस वक्त हम थोड़ी देर अपना काम कर लेंगे, उसके बाद आपके साथ वक्त बिताएंगे, तो उस वक्त आप फिर सवाल ना पूछे, या फिर क्योंकि क्या होता, उन्हें नहीं पता होता, उन्हें वो अपने बच्चों को अपने छोटे बच्चों जैसे ही समझते हैं, उन्हें नहीं मालूम होता है कि बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहे हैं, लैपटॉप लेके बैठे तो क्या मूवी देख रहे हैं या फिर गाने सुन रहे हैं, तो उन्हें प्यार से भी समझा के परिस्थिति को संभाला जा सकता है।
1: और सोनाली जी, ये जो बात आपने कही है बिल्कुल सही कही है, ये ना सिर्फ बुजुर्गों के साथ होता है बल्कि ये हमारे साथ भी होता है। कभी अगर हम मोबाइल लेकर बैठे हैं तो हमारे मम्मी पापा को भी लगता है कि गेम खेल रही है या पढ़ाई कर रही है, पता नहीं। अब उन्हें पता नहीं है, हो सकता है वो बेचारे सोचेंगे कि नहीं, अभी अभी इन्हें डिस्टर्ब करना ठीक नहीं है, पढ़ रही है फोन पर, पता चलता है गेम खेल रही। तो वही बुजुर्गों के साथ भी होता है, उन्हें नहीं समझ आता होगा कि अब फोन लेकर या लैपटॉप लेकर बैठे हैं तो टाइम पास कर रहे हैं या फिर पढ़ रहे हैं या
0: ये
1: कुछ काम
0: सचमुच
1: का कर
0: काम
1: रहे
0: कर रहे हैं।
1: हैं ऐसा हो जाता है। उनकी, बुजुर्गों की जो जरूरतें, स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां और भावनाओं को भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उनका अपमान करना, कठोर शब्द बोलना या फिर उन्हें अकेला महसूस कराना, ये भी बिल्कुल सही नहीं है।
0: बिल्कुल सही नहीं है, कि कई बार ऐसा होता है ना कि पूरा परिवार जो है हंस रहा है, खिलखिला रहा है, और अम्मा को कम सुनाई देता है तो पीछे के कमरे में अकेली बैठी हुई है। ये जो परिस्थिति है ना, बहुत निराशाजनक परिस्थिति है, तो ऐसी परिस्थिति किसी भी घर में नहीं होना चाहिए। और सबसे जरूरी बात है नेहा, कि उनकी संपत्ति या पैसों का गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, उन्हें परिवार में महत्व देना है, और घर परिवार के निर्णयों से उन्हें दूर नहीं रखना चाहिए। और ये जो बातें होती है ना, अगर ये बातें उन्हें अंदर से खोखला कर देती है, कि उन्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, और कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि उस वक्त उनका जीवन साथी छोड़कर चला गया होता है, कभी तो वो जो अकेलापन होता है वो सचमुच उस दशा में आने के बाद ही हर इंसान उसे महसूस कर सकता है। तो अगर किसी के घर में इस तरह से कोई बुजुर्ग है, तो उनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। और अब हमें क्या करना चाहिए नेहा?
1: एक गीत सुनना चाहिए,
0: हाँ, तो अगर वो रूठ जाए हमारी दादी अम्मा, तो उन्हें गाना गा के मना भी लेना चाहिए।
1: बिल्कुल मना लेते हैं।

0: दादी को तो मनाना ही पड़ता है क्योंकि पहले हम गुस्से में चिल्ला देते हैं, बोल देते हैं, फिर बुरा लग जाता है तो मनाना पड़ता है।
1: और ऐसे अगर गा के दादी को अगर मना लिया तो दादी भी बहुत प्यार से
0: खुश
1: मान
0: हो
1: भी जाएंगी, है
0: जाएंगी।
1: ना?
0: हाँ, एक साथी लिख रहे हैं, बुजुर्ग हमारे अतीत की धरोहर, वर्तमान के मार्गदर्शक और भविष्य के लिए प्रेरणा है। उनका सम्मान ही हमारे संस्कारों की सबसे बड़ी पहचान है। आज के व्यस्त जीवन शैली में अक्सर बुजुर्ग अकेलेपन और उपेक्षा का शिकार हो जाते हैं। ऐसे में हमें उनके साथ समय बिताना चाहिए, उनकी बातें सुननी चाहिए और उन्हें यह एहसास दिलाना चाहिए कि वे परिवार का महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक प्रेमपूर्ण शब्द, थोड़ी सी संवेदना और सम्मान का व्यवहार उनके जीवन में नई ऊर्जा भर सकता है।
1: एक साथी लिखते हैं, बुजुर्ग केवल उम्र में बड़े नहीं होते, वे अनुभवों की किताब होते हैं जिनके हर पन्ने पर जीवन की कोई न कोई सीख लिखी होती है। उनका सम्मान करना केवल एक संस्कार नहीं बल्कि हमारी पहचान है। घर में बुजुर्गों की मौजूदगी उस छांव की तरह होती है जहां थका हुआ मन सुकून पाता है। उनकी मुस्कान, उनका आशीर्वाद और उनका स्नेह जीवन की सबसे अनमोल पूंजी है। बुजुर्गों के पास बीते वर्षों का अनुभव होता है और दिल में अपनों के लिए अथाह प्रेम। उन्हें सम्मान देना, उनकी बातें सुनना और उनके साथ समय बिताना ही उनके प्रति सच्चा आदर है।
0: और एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग जो भी हमारे परिवार में, समाज में, वो आदरणीय है। उनके जीवन के अनुभव बताए गए सही मार्ग पर चलकर जीवन सार्थक होता है। कोई भी समस्या जीवन में आती, बुजुर्ग सहयोग से जल्दी निवारण होता है। घर परिवार में दादाजी, दादी जी, माँ, पिताजी, बड़े भाई, उनका आदर करना चाहिए। माँ पिताजी को भगवान से कम नहीं है, इसलिए मंदिर तीर्थ पर भगवान को ढूंढते हैं। वो बुजुर्ग रूप में हर घर में परिवार के पास है।
1: क्या बात
0: ये तो
1: है,
0: बिल्कुल सही कहा, हमारे माँ पिता हमारे लिए भगवान समान होते हैं। देखिए, हर मुसीबत में जब सारी दुनिया हमें भूल जाती है या छोड़ देती है, या फिर जब किसी के पास कोई उपाय नहीं होता, माता पिता के पास जरूर एक उपाय होता है और वो हमें हर समस्या से बचा लेते हैं।
1: और है ना कि कोई भी दुनिया में कोई भी इंसान हमारा बुरा कर सकता है, पर हमारे माता पिता, हमारे दादा दादी, नाना नानी, वो हमारा कभी भी बुरा नहीं
0: बुरा नहीं
1: चाहेंगे। वो भर भर
0: चाहेंगे,
1: के आशीर्वाद देते। एक साथ ही
0: बिल्कुल।
1: लिखते हैं कि बुजुर्गों की दुआएं उस दीपक की तरह होती है जो बिना शोर के जीवन की राहों को रोशन करती है। उनके साथ बिताया गया हर पल एक अनमोल उपहार है। और एक साथ ही लिखते हैं।

0: वृद्धजनों के साथ हो रहे दुर्व्यवहार को रोकने के लिए परिवार और समाज दोनों को संवेदनशील बनना अति आवश्यक है। यदि वृद्धजनों के प्रति किसी प्रकार का शोषण या उपेक्षा दिखाई दे तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए और संबंधित यानी लोगों तक पहुंचाने चाहिए। प्रेम, सम्मान और सहयोग का वातावरण ही वृद्धजनों को सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन दे सकता है। और इस दिन को मनाने की शुरुआत 15 जून से की गई, ऐसी भी बातें हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भेजी है। और इसकी शुरुआत 2006 से शुरुआत की गई थी, INPEA इंटरनेशनल नेटवर्क फॉर द प्रिवेंशन ऑफ एल्डर एब्यूज द्वारा की गई थी, और बाद में दिसंबर 2011 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने भी इसे आधिकारिक मान्यता दी थी।
1: सोनाली जी, आज के बच्चे जब दादा दादी और नाना नानी से कहानियां सुनते हैं तो केवल मनोरंजन नहीं होता बल्कि वे संस्कृति, परंपरा और जीवन मूल्यों से जुड़ते हैं। बुजुर्ग परिवार परिवार को जोड़ने वाली वो कड़ी होते हैं जो पीढ़ियों के बीच पुल का काम करती है। आपने कभी नोटिस किया है, ये मैंने खुद भी जाना है कि जब भी किसी परिवार में बच्चे दादा दादी के आश्रय में बड़े हो रहे होते हैं तो उन पर एक अलग ही तरह के संस्कारों की बौछार होती
0: वो
1: है,
0: बच्चे अलग ही संस्कारी
1: नजर आते हैं। क्योंकि माता पिता अपनी व्यस्तताओं के चलते उतना समय नहीं दे पाते, लेकिन दादा दादी अपने समय का पूरा सदुपयोग उस बच्चे की परवरिश में करते हैं और वो बच्चा अलग ही जान पड़ता है।
0: तो सचमुच जिनके घर में दादा दादी नाना नानी है वो सचमुच वो बच्चे नसीब वाले होते हैं ना।
1: जी हाँ। और इसी के साथ हमारे एक साथी ने लिखा है, बुजुर्ग हमारे समाज की नींव और अनुभवों का समृद्ध दस्तावेज हैं। बुजुर्ग विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस हमें याद दिलाता है कि एक सभ्य समाज वही है जो अपने वृद्धों को सुरक्षित, गरिमापूर्ण और प्रेमपूर्ण जीवन दे सके। इसके अलावा सोनाली जी, कभी कभी ये भी लगता है जब हम अभी अब चलन हो गया है कि सिर्फ पति पत्नी अकेले रह रहे हैं या फिर बच्चे न्यूक्लियर फैमिली में रह रहे हैं, लेकिन जब हम बड़े परिवार में, संयुक्त परिवार में रहते हैं तब एक बात और जानने को मिलती है कि बुजुर्गों का जो सहयोग हमें मिलता है, घर में बच्चे कभी अकेले नहीं पड़ते, वो
0: बिल्कुल।
1: कभी अवसाद का सामना नहीं करते क्योंकि उनके पास कोई ना कोई उन्हें देखने के लिए होता है
0: और
1: कि नहीं।
0: आप क्या करें,
1: तो अब चूंकि हमें भी थोड़ा सा मनोरंजन बीच में चाहिए तो एक गाना सुन लेते
0: सुनते
1: हैं।
0: हैं गीत।

0: बारिश की फुलवारी का भी।
1: बहुत इंतजार है, क्योंकि जो है ना इतनी गर्मी बढ़ गई है, इतनी गर्मी बढ़
0: हाँ
1: गई है कि हर कोई जाकर आसमान की तरफ देखता है कि काले बादल दिखे, पर काले बादल नजर ही नहीं आ रहे।
0: नहीं आ रहे, और जो थोड़े बहुत बादल दिख भी जाते हैं वो यूं ही मुंह मोड़ के चले जाते
1: और उनका रंग
0: हैं।
1: इतना सफेद सफेद है कि अब ऐसा लग रहा है कि नहीं, काला रंग ज्यादा अच्छा
0: बिल्कुल बिल्कुल। बारिश भी ना सोनाली जी प्रकृति का वो अनमोल उपहार है जो धरती को नया जीवन देती है। कपती गर्मी के बाद जब बादल उमड़ते हैं और पहली बूंद धरती को छूती है तो वातावरण में ताजगी और हरियाली फैल जाती है।
1: और वो जो खुशबू आती है नहीं,
0: हाँ
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ
0: सौंधी सौंधी खुशबू।
1: उसके आगे महंगे महंगे जो इत्र है ना वो फीके लगते
0: वो तो
1: हैं।
0: है, लेकिन बारिश का आनंद तभी लिया जा सकता है सोनाली जी जब हम इसके आने से पहले उचित तैयारी कर लें। थोड़ी सी सावधानी हमें जल भराव, बीमारियों और अन्य परेशानियों से बचा सकती है। बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए।
1: बहुत
0: कई
1: जरूरी
0: सारे
1: है।
0: बिंदु हैं जो हमें पहले जांच कर लेना चाहिए, बारिश आने से पहले तैयारियां कर लेनी चाहिए। इन तैयारियों के बारे में कई सारे कमेंट्स भी आए हैं, वो भी हम आगे पढ़ेंगे।
1: अब जैसे तैयारियों की बात चलिए तो यस, वैसे तो हम सभी तैयारी करते हैं कि भाई कहीं दरारें पड़ गई है तो वो भर देते हैं, पर सबसे महत्वपूर्ण तैयारी है नेहा कि वर्षा जल संचयन का काम है ना,
0: जी
1: क्योंकि क्या
0: बिल्कुल।
1: होता है ना, हम ये जो बारिश का पानी है वो वैसे ही बह जाता है, तो अगर हम कुछ ऐसी व्यवस्था करें कि छत के ऊपर से ऐसा उतार करके और उसे नाली नल के पाइप के माध्यम से जमीन के अंदर भेजने की व्यवस्था हो, तो जो पानी है ना हमारे जमीन के अंदर चला जाएगा और फिर हैंडपंप वगैरह के माध्यम से वो पानी हमें मिलता है। कुछ लोग तो ऐसे स्टोर करके भी रखते हैं, तो
0: बिल्कुल
1: इस तरह की व्यवस्था करना सबसे जरूरी बात है, तो वो हमें अगर आप कर सकते हैं तो ये व्यवस्था जरूर करें, क्योंकि जो बूंद बूंद है ना इसे बचाना हमारी जिम्मेदारी होती है। और वर्षा जल संचयन का अर्थ है कि जो पानी है उसे हमें जमा करना है और छतों पर गिरने वाले पाइप को टंकी के माध्यम से भूमिगत जल संग्रह स्थान तक पहुंचाना है, इससे पानी की बचत तो होती है साथ ही भूजल का स्तर भी बढ़ता है, तो इस व्यवस्था करने का काम हमें जरूर से करना आना चाहिए।
0: इसके अलावा बारिश आने से पहले घर की अच्छी तरह से जांच करना चाहिए, छत, दीवारें और खिड़कियों में, कि कहीं से पानी का रिसाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इसकी मरम्मत करवा लेनी चाहिए। घर की नालियों, पाइप और पानी निकलने के रास्तों की भी सफाई कर लेनी चाहिए ताकि तेज बारिश में पानी जमा ना हो जाए। कई बार ना जो ऐसे घर के पुराने पाइप होते हैं या जो उपयोग में कम होते हैं तो देखिएगा बाकी दिनों में ना चिड़िया वहां घोंसला बना लेती है या फिर अपने तिनके तिनके जमा कर। तो अगर ऐसा कुछ है तो वो आपको जांच कर लेना चाहिए, क्योंकि ऐसे में वहां पानी जम सकता है और घोंसले को भी नुकसान हो सकता है।
1: और बहुत सारे लोगों को ना बहुत लालच भी होता है ना कि अरे ये टायर जो है मुझे बाद में काम आएंगे, भले ही वो बिना काम के हो, तो उसमें पानी जमा हो जाता है, फिर उसमें मच्छर पनपने लगते हैं, फिर डेंगू मलेरिया होने का
0: बीमारियों का
1: हाँ
0: खतरा बढ़
1: बढ़
0: जाता
1: जाता
0: है।
1: है। इसलिए फिर वो जो है ना जो कबाड़ सामान जो घर में जमा करके रखा है, छत के ऊपर है जो बोतल्स वगैरह हैं
0: हाँ
1: और बहुत
0: हाँ
1: सारा ऐसा सामान है, वो बिल्कुल कबाड़ में दे देना चाहिए। एक हमारे साथी ने भी लिखा है कि बारिश के दिनों में जल स्रोतों के दूषित होने की संभावना सबसे अधिक होती है, इससे पेट के संक्रमण, पीलिया, टाइफाइड का खतरा बढ़ सकता है। हेल्थ एक्सपर्ट के अनुसार बारिश शुरू होने से पहले घर में वाटर वाटर फिल्टर का यानी आरओ सिस्टम की मरम्मत सर्विसिंग करवा लेना समझदारी का काम है। वाटर फिल्टर उपलब्ध ना हो तो पानी को अच्छी तरह उबालकर और छानकर पीने की आदत डालना जरूरी है, और घर से बाहर निकलते वक्त अपनी बोतल लेकर जाए।
0: बिल्कुल। एक साथी लिख रहे हैं, बारिश तो भाई होनी होनी होती है, तो आषाढ़, सावन, भादो और क्वार तक अपने आप प्राकृत स्वरूप में भली भांति चतुर्दिक हो जाया करती है। और उनके पूर्व की तैयारियों में कृषक अपने ईंधन की व्यवस्था के तहत गोहरे और लकड़ियों को संभाल कर रख लिया करते थे। नहीं तो भादो मास में तो चूल्हा ही नहीं जल पाता था, तो फिर चना, चबेना और गंग जल का ही भरोसा रहता था, ना कि चटनी और गर्मा गर्म पकौड़ों का। ये प्राकृत मानसून की बारिश का हाल था। नदियां उफान पर रहा करती थी, लेकिन अब ग्लोबल वार्मिंग के चलते धरती ही पानी न बरसने के कारण गर्म हो रही है और नदियों में प्रवाह नहीं हो रहा, तो फिर तैयारी किस बात की। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ तैयारियां हैं जो हमें करनी ही होती हैं।
1: बिल्कुल करना जरूरी है। और आप क्या करना चाहिए, आप एक गाना
0: अभी
1: सुनना
0: गीत सुनना भी बहुत जरूरी
1: तो सुनते हैं गीत।
0: है।

0: तो हम मेघा से कहेंगे कि भाई परदेश मत जाओ, हमारे देश में आ जाओ।
1: एक साथी ने लिखा है, बारिश की पूर्व तैयारी में हमें अपने अपने घरों, सरकारी भवनों आदि ऐसे स्थानों के चांदनी गैलरियों में जमा बारिश के पानी को पुनः जमीन में भेजने की व्यवस्था करने की ओर ध्यान देना चाहिए, जिससे पानी जमीन में जाकर पुनः हम पानी को विभिन्न स्रोतों से प्राप्त कर सकें। तो बिल्कुल सही इन्होंने कहा है। लेकिन सोनाली जी, जब बरसात का मौसम आता है तो खाने पीने की भी बड़ी इच्छा होती है, कुछ अलग अलग मस्त मस्त
0: यानी
1: चीजें
0: अभी
1: खाने का मन
0: गर्मी में ना
1: करता है।
0: तला भुना खाने का मन नहीं होता है ना, बस ठंडा ठंडा
1: हाँ
0: खाने का मन होता है। पर जब
1: हाँ
0: बारिश झमझमाती बारिश होती है ना, उस वक्त पूड़ी हो, आलू की
1: पकोड़े
0: सब्जी हो।
1: हो, अरे वाह सोनाली जी, अब तो आप और नाम मत
0: तो आज के
1: लीजिए।
0: हमारे जो उत्तर प्रदेश के हम प्रादेशिक व्यंजन में मक्खन मलाइयो और साथ में बेडमी पूड़ी और आलू की सब्जी, उसकी जो हमने व्यंजन का बोला था और हमारे बहुत सारे साथियों ने लिखकर भी भेजे थे, तो मक्खन मलाइयो सर्दी सर्दियों के मौसम में उत्तर प्रदेश मुख्य रूप से वाराणसी, लखनऊ, कानपुर में मिलने वाली बेहद लोकप्रिय और स्वादिष्ट मिठाई है। इसे दिल्ली में दौलत की चाट भी कहा जाता है। ये इतनी हल्की और मुलायम होती है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। दूध का चयन इसे बनाने के लिए फुल क्रीम दूध या ताजी मलाई का इस्तेमाल किया जाता है। ओस की रात में पारंपरिक रूप से दूध को उबालकर ठंडा किया जाता है और रात भर खुले आसमान के नीचे ओस में छोड़ दिया जाता है और इसे मथते हैं और सुबह तक इस दूध को बहुत देर तक मथा जाता है, जिसके ऊपर बादलों जैसा हल्का झाग या फोम बन जाता है। स्वाद और सजावट, इस झागदार मलाई को अलग करके इसमें चीनी, इलायची, केसर और कटे हुए बादाम, पिस्ता मिलाए जाते हैं और खाया जाता है। यानी हाँ, आपने खाई है मिठाई?
1: नहीं, मैंने खाई भी नहीं थी और सुनी भी नहीं थी, लेकिन आज रेसिपी सुनने के बाद, विधि सुनने के बाद बिल्कुल समझ आ गया है। और मुझे बिल्कुल वो दृश्य भी सामने आ गया कि कैसी दिखती होगी और कैसी लगती
0: और वो
1: होगी।
0: ना दोने में जो खाते होंगे ना, तो बहुत ही मजा उसमें दुगना हो जाता होगा। और सचमुच मैंने पढ़ा है
1: हाँ,
0: इस बारे में, पर खाया नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि सर्दियों के मौसम में हम बनारस जाएंगे और ये मक्खन
1: तभी ये
0: मलाइयों खा
1: खाया
0: के
1: जा
0: आएंगे,
1: सकता है।
0: क्योंकि उसे ले नहीं जा सकते ना कहीं दूसरी जगह।
1: एक साथी ने लिखा

उत्तर प्रदेश के प्रादेशिक व्यंजन अपने अनोखे स्वाद और पारंपरिक तरीकों के लिए प्रसिद्ध हैं। इनमें से मक्खन मलैया और बेडमी पूड़ी आलू की सब्जी विशेष रूप से पसंद की जाती है। मक्खन मलैया लखनऊ, ये लखनऊ के आसपास के क्षेत्रों का शीतकालीन स्पेशल स्ट्रीट फूड है, जिसे निमिष या दौलत की चाट, जैसा कि हमने पहले भी कहा, के रूप में जाना जाता है। ये दूध की मलाई से बनी बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है। इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी,

0: बेहद हल्की और झागदार रुई जैसी नरम मीठी डिश है। इसके अलावा इन्होंने बेडमी पूड़ी के बारे में भी लिखा है और आलू की सब्जी। आगरा, मथुरा, ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के सबसे लोकप्रिय नाश्तों में से एक है, जो विशेष रूप से आगरा और मथुरा की गलियों में प्रसिद्ध है। बेडमी पूड़ी ये उड़द दाल की स्टफिंग वाली खस्ता और कुरकुरी तली हुई है। आलू की सब्जी इसके साथ मसालेदार, रसेदार या डुबकी वाले आलू, यानी कि बिना प्याज लहसुन के, परोसे जाते हैं। मुख्य सामग्री गेहूं का आटा, सूजी, भीगी हुई उड़द दाल, सौंफ, हींग और गरम मसाले। इस वीडियो में इसमें हलवाई जैसी खस्ता बेडमी पूड़ी और मसालेदार आलू की सब्जी बनाने की विधि, एकदम हलवाई जैसी फूली फूली खस्ता बेदमी पूड़ी मसालेदार आलू की सब्जी बनाई जाती है।
1: यानी उड़द की दाल डाली जाती है, जिससे वो पूरी जो ना हमेशा जो हम पूरी बनाते हैं वो
0: हाँ,
1: थोड़ी नरम हो जाती है, पर ये जो बेडमी पूड़ी होती है ना वो कड़क
0: कुरकुरी
1: रहती है।
0: रहती है,
1: हाँ,
0: जो खाने में भी मजा आता है।
1: और वो जो टमाटर डाल के वो आलू की सब्जी, तो उसका कुछ मजा ही कुछ और है। पर अब समय कह रहा है कि हमें इजाजत ले लेना चाहिए। तो आप सभी को सोनाली पाठक
0: और नेहा अगरकर देसाई का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।

0: सखी सहेली, सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।
1: सखी सहेली।

0: सेहतनामा कार्यक्रम के सभी सुनने वालों को राजेंद्र त्रिपाठी का नमस्कार। दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से, और आज का जो विषय रहेगा जीवन शैली और योग। दोस्तों, ये आपको हम बताना चाहेंगे कि श्रीमती शारदा अग्रवाल, जिन्होंने योग प्रशिक्षण मुंबई के 100 वर्ष पुराने योग प्रशिक्षण संस्थान से लिया है, वो संस्थान देश की जानी मानी योग गुरु श्रीमती हंसाजी जयदेव के मार्गदर्शन में संचालित होता है। तो श्रीमती शारदा अग्रवाल जी, आपका विविध भारती के स्टूडियो में सेहतनामा कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी। सबसे पहले तो कार्यक्रम शुरू करने से पहले मैं विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ कि आज मुझे दोबारा ये मौका विविध भारती ने दिया कि मैं आपके साथ बात कर रही हूँ। इससे पहले भी मैं एक प्रोग्राम में आप लोगों के बीच में आई हूँ और कुछ बातें हमने शेयर करी हैं, और आज दोबारा आमंत्रित करने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।
0: शारदा जी, जैसे कि आपने बताया कि आप पहले भी आ चुकी हैं, हमारे कुछ श्रोता जो गौर से उस प्रोग्राम को सुन चुके थे और याद होगा तो वो तो मुतासिर होंगे कि आज आप क्या क्या बताने वाली हैं। जैसे कि प्रोग्राम शुरू होने से

0: पहले हमारी चर्चा जारी थी कि आज का विषय क्या रहेगा। हम विषय सुनने वालों को बता चुके हैं। दोस्तों, आज का विषय है जीवन शैली और योग। तो शारदा जी, ये बताइए कि एक आम आदमी जब योग की बातें देखता है टेलीविजन पे और पढ़ता है उसके बारे में मीडिया के जरिए, तो उसके मन में ये बात उपजती है कि दरअसल ये योग है क्या? योग का जो एक वस्तुतः मीनिंग होता है जोड़, तो वो उसको समझने में एक आसानी हो इसके लिए बताइए कि योग का योग दरअसल है क्या?
1: देखिए राजेंद्र जी, जैसे अभी आपने कहा कि योग का मतलब है जोड़, तो इसका सीधा जोड़ से बता दूं कि जोड़ होता है शरीर और मन का जोड़। पर हम यहाँ पर बहुत ही साधारण भाषा में योग को परिभाषित कर रहे हैं। तो योग का अर्थ होता है हमारा जीवन जीने का तरीका। आप किस तरह से अपनी रोज की दिनचर्या जीते हैं, कैसे आप खाते हैं, कैसे आप सोचते हैं, कैसे आपका मनोरंजन होता है, ये जो चीजें हैं हमारी दिनचर्या में, इसे हम साधारण भाषा में योग कहते हैं। या दूसरे शब्दों में आप ये भी कह सकते हैं कि किसी भी परिस्थिति में रहना, कोई परिस्थिति यदि हमारे पास कठिन परिस्थिति भी आई है, तो उस परिस्थिति में हमारा जीवन जीने का तरीका किस तरह है, वो भी योग के अंतर्गत आता है, उसे भी योग ही कहते हैं।
0: जी,
1: आपका बिहेवियर क्या है उस समय, व्यवहार क्या है, इसे हम योग कहेंगे।
0: लेकिन योग का जब एक शब्द कोई सुनता है तो एक आम आदमी तो ये सोचता है कि भाई हाथ पांव की मुद्राओं को विशेष रूप से एक एकत्रित कर लेना, छोड़ देना, रिलैक्स कर देना, श्वास लेना, गहरी श्वास लेना, उसको फिर से छोड़ देना, वो तमाम चीजें योग में समाहित होती हैं। तो आपका क्या कहना है?
1: बिल्कुल सही, ये भी जो आपने कहा बिल्कुल सही कहा। पर ये योग का केवल एक चरण है, जिसे हम आसन और प्राणायाम कहते हैं। पर योग का सबसे पहले जो मैंने अभी आपको बताया कि जीवन जीने का तरीका योग है, और इसमें बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, केवल आसन प्राणायाम नहीं।
0: जी, तो योग का दोस्तों जो दरअसल मीनिंग है, ये देख लीजिए कि मानसिकता भी जुड़ी होती है शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ। तो हम आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम आगे बढ़ने से पहले यहाँ संगीतमय वातावरण बनाना चाहेंगे। हम चाहेंगे आपकी पसंद का कोई अच्छा सा गाना यहाँ पर हो जाए।
1: तो देखिए, जैसा कि आज का माहौल है, उस माहौल में मुझे यही गाना गुनगुनाने का मन कर रहा है, जैसे मधुबन।

गाना शारदा जी वाकई आपने बहुत अच्छा सुन पाया। जो मधुबन खुशबू देता है यानी औरों के लिए जो खुशियां पैदा करता है, दरअसल वही महान कहलाता है।

0: और ये बात सहजता से हो तो ज्यादा अच्छी होती है। लेकिन आपने कई बार सुना होगा कि दैनिक जीवन में हम योग को बार बार अपनाना तो चाहते हैं लेकिन उससे दूर भी भागते हैं क्योंकि अनभिज्ञता होती है। तो दैनिक जीवन में क्या महत्व आप पाती हैं योग का?
1: देखिए, सुबह से जब आपकी दिनचर्या शुरू होती है तभी से योग आप शुरुआत कर सकते हैं। पूरा 24 घंटे योग की स्थिति में रहना ही योग है। तो आप जैसे सुबह उठते हैं तो सुबह बिस्तर में उठने से पहले ही आप बेड पर कुछ स्ट्रेचिंग कीजिए। अपने हाथ पांव को थोड़ा सा सिकोड़िए, थोड़ा फैलाइए, थोड़ा पेट से सांस लेना, ये कुछ क्रियाएं जो आप बेड पर ही कर सकते हैं। और ये करके फिर आप भगवान को धन्यवाद देते हुए बिस्तर से उठें। और उस समय भी देखिए योग ही आता है। अचानक बिस्तर से उठना झटके से वो नहीं होना चाहिए। हमें एक बहुत ध्यान से, शांत मन से उस समय भी उठना चाहिए। किसी जल्दबाजी में नहीं उठना चाहिए कि अभी मुझे बच्चों का टिफिन बनाना है या मुझे काम पे जाना है। तो एक झटके से उठते हैं जो हम, वो हमारे मन और शरीर दोनों पर उसका असर तुरंत पड़ता है,
0: प्रतिकूल होता है।
1: प्रतिकूल असर पड़ता है उसका। तो उस समय भी आपको ये ध्यान रखने की, एक शांत मन से भगवान को धन्यवाद करते हुए आप बिस्तर से उठिए। आप जब उठे हैं तो जाके आप पहले, सबसे पहले थोड़ा गर्म पानी पीजिए। 2 ग्लास गर्म पानी आपने पिया, पानी पी के फिर आपने जो अपनी नित्य दैनिक हमारी क्रियाएं होती हैं वो करिए। उसको करने के बाद आप फिर जो भी अपना चाय वगैरह लेते हैं, यहाँ पर भी मैं आपको, जबकि स्वास्थ्य की बात हो रही तो मैं आपको जरूर कहूंगी कि सुबह जल्दी उठकर पहले चाय लेना हानिकारक होता है।
0: कहते हैं लोग बेटी चाहिए।
1: जी हाँ, ये हानिकारक होती है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि रात को हमने अपना जो रात का हमने डिनर लिया था उसके बाद अब जब हम खाना खा रहे हैं, 7-8 घंटे का हमारा बीच में एक गैप हो गया है,
0: फास्टिंग हो गया।
1: फास्टिंग हो गया है, तो उस समय इतनी देर में एकदम चाय लेना वो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। तो अच्छा होगा कि आप कुछ हर्बल टी इस तरह का कुछ लें, या सुबह उठकर आप पहले कुछ 4-5 बादाम वगैरह ले लें या चने वगैरह ले लें पानी पी के, जो भी आपके माहौल में ठीक हो वो आप लेके फिर थोड़ी देर कुछ वॉक वगैरह करके आए, सुबह थोड़ी ताजी हवा लेके आए, उसके बाद आप हर्बल टी ले सकते हैं। तो इस तरह से आपकी दिन की शुरुआत होना चाहिए।
0: जैसे कि आपने बताया था अभी कि हड़बड़ी में उठना नहीं चाहिए या किसी को जगाना भी नहीं चाहिए, तो कई बार हमने देखा है कि अचानक किसी का फोन बजा और वो व्यक्ति सोया हुआ है, अरे सुनो तुम्हारा फोन आया है, वो गहरी नींद में होता है, तो ये प्रक्रिया क्या उचित है?
1: जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ये उचित। उस समय भी हमारा, यदि हम धीरे धीरे योग को सीखते जा रहे हैं तो हमें उस समय भी संतुलित अवस्था में, शांत अवस्था में ही उठने की, कोई सामने वाला नहीं जानता है कि उसे कैसे उठाना है, पर आप जानते हैं कि आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उस समय शांत मन से ही आपको सामने वाला एक्शन का रिएक्शन आपका होना चाहिए, शांत होना चाहिए आपको। शांति से आप उठिए, देखिए, हड़बड़ाहट आपके अंदर नहीं होना चाहिए।
0: जी। तो दैनिक जीवन में जो महत्व आपने बताया कि शुरुआत जो दिन की होती है वो इस तरह से करनी चाहिए कि मामला संतुलित भी रहे।
1: और इसके साथ ही जैसे मैंने बताया कि सूर्योदय के साथ ही हमारा दिन की शुरुआत हो जाना चाहिए।
0: वाह,
1: आजकल का जो समय चल रहा है उसमें लोग सूर्य उदय तो देखते ही नहीं है, पर दिन की शुरुआत सूर्योदय से ही शुरू हो जाती है। और यह चीज हमें प्रकृति से ही सीखने मिलती है। आपने देखा होगा पक्षियों को सुबह उठते ही उनकी दिन की
0: चहचहाट।
1: चहचहाट आने लगती है। तो वो हमें इस बात को सिखाती है कि हमें भी इतनी ही जल्दी सुबह उठना चाहिए और सूर्योदय के साथ उठकर अपना दैनिक कार्य शुरू कर देना चाहिए। फिर जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि आप सुबह कुछ हर्बल टी लीजिए, उसके बाद कुछ वॉक कीजिए। हमेशा एक नियम बनाइए कि आप जो भी कुछ खाने वाले हैं उससे पहले कुछ शारीरिक क्रियाएं आपकी होना चाहिए, शारीरिक या एक्सरसाइज आपकी होना चाहिए। कुछ आसन वगैरह करके आइए, या आप आसन नहीं कर सकते, आपके पास बहुत टाइम नहीं है, तो आप थोड़ा सा वॉक करके आइए। घर पर ये चाहे तो आप वॉक कर लीजिए। उसके बाद आपका नाश्ता 8 बजे तक, तो सुबह का पहला आहार हमारा जो होता है वो 8 बजे हो ही जाना चाहिए।
0: अच्छा,
1: जी
0: देखिए आपने एक बात बताई कि सुबह उठने की जो प्रक्रिया है वो बहुत संतुलित होनी चाहिए, लेकिन ये हमने सुना है वो कितना सच है और कितने लोग उसका पालन करते हैं? अधिकतर जो शास्त्रीय पुट अपने जीवन में रखते हैं, क्लासिक अंदाज में जीना जानते हैं और शास्त्रों में यकीन रखते हैं, वो तो जानते हैं कि हमारा जो जगना होता है या जागना होता है, सूर्योदय के पूर्व यदि आप जग गए वही जागना कहलाता है।
1: जी हाँ,
0: तो आप कितनी सहमत हैं इस बात से?
1: देखिए, कोशिश तो हमारी हमेशा यही होना चाहिए और इसी जीवन को ही, इसी दिनचर्या को ही अपनाना चाहिए, क्योंकि एक समय आता है जब आपने शरीर को, आप अपने इस चीज को ध्यान नहीं देते हैं, आप इसे इग्नोर करते जाते हैं, पर एक

0: स्थिति ऐसी आती है शरीर की जब आपको शरीर खुद आपसे जबरदस्ती इस चीज की डिमांड करता है कि आपको तो उठना ही है जल्दी, क्योंकि आप रोग आपके शरीर में पकड़ लेंगे यदि आप एक संतुलित जीवन नहीं जिएंगे। तो एक समय ऐसा आता है कि कुछ बीमारियां हमारे अंदर आ ही जाती हैं, फिर हमें डॉक्टर ही कुछ सलाह देते हैं और हम खुद उस तरफ आगे बढ़ते हैं। तो वो समय आने से पहले यदि हम इस दिनचर्या को अपनाएं,
1: जाग जाएं।
0: जाग जाएं, हमारी सही मायनों में आंख खुल जाए तो बहुत अच्छी बात होगी।
1: ये आपने अच्छा कहा कि संतुलन बना होना चाहिए।
0: जी
1: तो हमारे प्रोग्राम में भी जब बातचीत ज्यादा होने लगती है तो हम कोशिश करते हैं कि सुनने वालों को संगीतमय वातावरण की ओर ले चलें किसी गाने के साथ।
0: जी तो मैं आपको फिर इसमें भी आपको एक दूसरा गाना सुनाना चाहूंगी। बहुत पुराना गाना है, फिल्म अनाड़ी का है, राज कपूर का, के ऊपर फिल्म आया था। आप सभी को ये गाना मुख पे था उस समय। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल

0: दोस्तों, गीत वाकई बहुत अच्छा था और प्रेरणादायी था कि किसी के लिए जीना ही जीना कहलाता है और जीना इसी का नाम होता है। हमारे साथ आज के सेहतनामा कार्यक्रम में इस समय मौजूद हैं योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल और इनसे बातचीत जारी है जीवन शैली और योग विषय पर। तो शारदा जी, गीत के पहले हमारा जिक्र चल रहा था कि आहार किस तरह का होना चाहिए और दैनिक जीवन में जो महत्व है उसी पर से ये बिंदु आकर निकलता है कि आहार ही हमारा एक मुख्य आधार होता है।
1: जी हाँ, आहार बहुत महत्वपूर्ण होता है क्योंकि आहार केवल आपके शरीर पे नहीं, आपके मन पर भी इसका बहुत गहरा असर पड़ता है कि आप कैसा भोजन कर रहे हैं उससे आपकी मानसिक स्थिति भी उस पर निर्भर करती है। जैसे आप जितना सात्विक भोजन, जितना सादा आप खाना खाएंगे उतना आपका मन शांत रहेगा। जितना आप मिर्च मसाले तले हुए भोजन खाएंगे उतना आपका दिमाग उतना हाइपर रहता है, उतना हमारे माइंड को एनर्जी आती, तो माइंड में लगा रहता है कि आप क्या करें, शांत स्थिति में माइंड नहीं रह पाता है। तो योग में सात्विक भोजन को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है कि आप

0: करें कि सात्विक भोजन करें हम, और साथ ही ये हमारा भोजन का जो अवधि है वो हर 4-4 घंटे की होना चाहिए।
1: जैसे आपने
0: जैसे
1: प्रातः
0: सुबह
1: काल का तो
0: का
1: बताया था,
0: मैंने
1: 8 बजे
0: बताया कि
1: नाश्ता।
0: 8 बजे तक आपका नाश्ता हो ही जाना चाहिए, फिर दोपहर के 12 बजे आपका दोपहर का खाना हो जाना चाहिए, शाम को 4 बजे का समय वापस आपके नाश्ते का टाइम होता है जब आपका नाश्ता होना चाहिए,
1: जी
0: और फिर से 7:30, 7:30 या ज्यादा से ज्यादा 8 के अंदर तक आपका खाना, रात का खाना हो ही जाना चाहिए। पर यहाँ पर मैं एक बात और जरूर कहना चाहूंगी कि जैसे मैंने कहा था कि सूर्योदय के साथ हमारा दिन शुरू होना चाहिए और सूर्यास्त के साथ हमारा दिन खत्म होना चाहिए, तो कोशिश यह होना चाहिए कि जैसे ही सूर्यास्त होता है आपका डिनर उस समय हो जाए तो ये बहुत ही अच्छा है। पर होता यह है कि आजकल की जो हमारी
1: जनरेशन है।
0: जनरेशन है, जो हमारा काम करने का समय है, हर जगह पर अलग अलग है, तो हम नहीं कर पाते हैं, ये चीज नहीं हो पाती है। तो
1: जी
0: भी कोशिश कीजिए कि हम 8 बजे तक तो खा लें, और यदि आप 8 बजे तक खाना नहीं खा पा रहे हैं, आप बहुत लेट खाना खा रहे हैं, तब आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि हमारा खाना पूरा एक फुल मील नहीं होना चाहिए वो खाने में,
1: अच्छा
0: फिर हमारा एक कॉम्बिनेशन होना चाहिए का। मान लीजिए आपने दोपहर के खाने में दाल रोटी खाई है तो रात के खाने में दाल चावल खा लीजिए, या सब्जी रोटी दोपहर को खाई है तो अभी दाल चावल खा लीजिए या खिचड़ी खा लीजिए, या मौसम के अनुसार भी आप अपने खाने में थोड़ा हेर फेर कर सकते हैं। जैसे विंटर का टाइम है, ठंड का मौसम है, तो आप रात को बहुत लेट हो गया है तो आप सूप पी के सो सकते हैं,
1: हो
0: या गर्मी का टाइम है तो आप कढ़ी चावल बना सकते हैं या कर्ड राइस जिसको कहते हैं हम, उस तरह का भोजन कुछ बना सकते हैं। कहने का मतलब है कि आपको पूरा फुल मील दाल चावल सब्जी रोटी, फिर हम कुछ चटनी पापड़ इस तरह का भी भोजन कर लेते हैं सबके साथ बैठ के, तो वो खाने पर हमको ध्यान रखना चाहिए,
1: लेकिन
0: क्योंकि हम
1: क्या दिन के खाने में ये उचित है?
0: दिन में हम खा सकते हैं, क्योंकि हम दिन के खाने के बाद हमको डाइजेशन के लिए, हमको पाचन के लिए बहुत समय मिलता है। पर रात को आप एक तो बहुत देर से खाना खा रहे हैं, फिर उसके बाद आप तुरंत सो जाएंगे, तो फिर वो डाइजेशन कैसे होगा, फिर नींद हमारी उस समय खराब, क्योंकि आपने तो शरीर को एक काम दे दिया है ना पाचन का, उसमें फिर आपकी नींद भी डिस्टर्ब होगी।
1: जी
0: तो फिर एक खाना, कोशिश तो जल्दी खाने की है पर नहीं खा पा रहे हैं, तो आप एक कॉम्बिनेशन खाने का रखिए, और वो खाना बहुत हल्का होना चाहिए, वो खाना बहुत मिर्च मसालों से रहित होना चाहिए, उसमें
1: वाह,
0: तेल मिर्च मसाले नहीं होना चाहिए, और क्वांटिटी उसकी मात्रा भी कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जैसे मैंने कहा कि कढ़ी चावल खा लीजिए या दाल चावल तो आप उसे भरपेट खा रहे हैं, जी नहीं, क्योंकि आप लेट खाना खा रहे हैं,
1: भूख
0: कहीं ना कहीं
1: रखिए।
0: आपके मन में ये एहसास होना चाहिए कि मैं गलत कर रहा हूं, तो फिर आप सिर्फ थोड़ा सा इसलिए खा लीजिए कि मुझे नींद आ जाए, क्योंकि जनरली हम कहते हैं ना कि मैं नहीं खाऊंगा तो मुझे नींद नहीं आएगी, तो आप कोशिश करके थोड़ा सा खाइए, पर बहुत ज्यादा मात्रा में खाना देर रात को वो ठीक नहीं होगा।
1: जीवन शैली से जुड़ी कई बातें हैं जिसमें कई पेय पदार्थ जुड़े हैं, जैसे प्रमुख होता है पानी। अब पानी पीने की अवस्था ढुलमुल हो जाती है, खाना खाया पानी पी लिया, एक घूंट खाया फिर पानी पी लिया। तो योग के माध्यम से आप क्या हमारे सुनने वालों को बताना चाहेंगी कि भोजन करते समय और पानी पीते समय क्या अंतर और किस तरह की शैली अपनानी चाहिए?
0: बहुत अच्छा सवाल किया राजेंद्र जी आपने, मैं भी चाहती थी कि खाने के साथ साथ मैं आपको पानी के बारे में भी बताऊं, क्योंकि आजकल लोग पानी के बारे में, लोगों का कुछ ऐसा हो गया कि कहा जाता है कि पानी पियो तो कुछ ज्यादा ही पानी पीते हैं, पर उसका हमारे किडनी पर भी असर पड़ता है, बहुत
1: बिल्कुल
0: ज्यादा पानी पीना भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। देखिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए, हमारा शरीर हमको हमेशा सिग्नल देता है कि हमको क्या चाहिए है, आपका शरीर आपको बताएगा, बस हमें अपने शरीर की भाषा को समझना आना चाहिए।
1: बिल्कुल सही
0: तो
1: बात।
0: जब आपको प्यास लगे आप पानी पीजिए, पानी पीने का भी बहुत सरल नियम है, आप खाना खा रहे हैं, खाने से आधा घंटे पहले आपका पानी एक बार आपको पीना चाहिए, थोड़ा पानी आप पीजिए, फिर खाने के बीच में पानी नहीं पीना चाहिए, खाने के आधा घंटे बाद या हो सके तो 1 घंटे बाद आप पानी पीजिए। उसके साथ ये ध्यान रखना चाहिए, जहां तक पानी की बात आई है तो मैं ये भी कहूंगी कि पानी जैसी कोई चीज हम खाने के साथ, जैसे आप सुबह का नाश्ता, मैंने कहा सुबह के नाश्ते में जैसे आपने नाश्ता लिया तो आप हर्बल टी ले सकते हैं, वो एक पानी का विकल्प है जो आपको उसका एहसास कराएगा, पर वो लीजिए आप। दोपहर के खाने में फिर आपको ऐसा लगता है मुझे तो पानी पीना है घुट भर, तो आप छाछ पी सकते हैं, आप छाछ लीजिए, फिर शाम के नाश्ते के समय फिर हमको लगता है कि नहीं खाने के बीच में कुछ पानी चाहिए, तो आप नींबू पानी ले सकते हैं या हर्बल टी वापस बना के पी सकते हैं, और रात के खाने में जैसे मैंने बताया आप सूप पी सकते हैं, इस तरह का कुछ भी पेय चीज हम ले सकते हैं, पर पानी जो चीज है वो हमें खाने के बीच में नहीं लेना है, खाने से आधा घंटे पहले और खाने के आधा घंटे बाद।
1: ये बहुत अच्छी बात बताई आपने। और अगर लग रहा है कि कोई गरिष्ठ भोजन ही खाना पड़ रहा है तो एक आध घूंट पानी ले सकते हैं, लेकिन ग्लास भर के आप पी जा रहे हैं वो
0: जी
1: गलत बात है।
0: जी नहीं बिल्कुल।

0: वो तो नहीं लेना चाहिए, इसीलिए कहा गया है कि हमें बहुत मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना
1: हाँ,
0: चाहिए,
1: ताकि बीच में पानी
0: उसकी
1: की
0: बीच
1: आवश्यकता ही
0: के
1: ना
0: पानी
1: पड़े।
0: की आवश्यकता ही ना हो, इसीलिए हमारा भोजन जितना सात्विक होगा तो आप गलत चीज की तरफ जाएंगे ही नहीं। ये
1: जी
0: सभी
1: जी
0: चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं कि क्यों हमें ये करना चाहिए तो क्यों ये किया जाता।
1: और कहा यह भी जाता है कि भोजन करते समय केवल भोजन कर रहे हैं यही ध्यान में होना चाहिए, न कि मोबाइल टीवी वगैरह पे आपका ध्यान आकर्षित हो। तो आपकी क्या राय है?
0: बिल्कुल, आज के समय में तो यही देखा जाता है कि लोग खाना खाते समय या तो मोबाइल में व्हाट्सएप देखते रहते हैं या तो टीवी सामने चालू होता है, पर उन्हें ये मालूम ही नहीं रहता है कि वो क्या खा रहे
1: और
0: हैं,
1: कितना खा
0: उस
1: रहे हैं।
0: कितना खा रहे हैं, उस खाने का स्वाद क्या है, बनाने वाले ने कितने ध्यान से प्रेम से उस खाने को बनाया है। तो उसी प्रेम से आपको उस खाने को खाना चाहिए, खाने के बाद खाने वाले की थोड़ी सी प्रशंसा कीजिए, ये कुछ नियम है। पर यदि हम टीवी और व्हाट्सएप पे लगे हैं तो हमें ये पता ही नहीं चलेगा हमने क्या खाया। और इसीलिए पहले के समय में भी यही कहा जाता था कि खाना खाने के समय बोलना नहीं चाहिए, शांत भाव से खाना खाइए, यानी
1: जी
0: होना तो ये चाहिए कि हमें आपस में भी बात नहीं करना चाहिए। पर आज स्थिति ऐसी है कि लोग बात तो नहीं करते पर वो टीवी और उसमें इतने मस्त हो जाते हैं कि उन्हें ध्यान ही नहीं रहता कि वो क्या खा रहे हैं।
1: बिल्कुल, वो कंसंट्रेशन होना चाहिए भोजन के
0: जी
1: प्रति।
0: जी जी
1: तो अब हम चाहेंगे कि हमारा जो कंसंट्रेशन हो वो थोड़ी सी अपनी चर्चा को विराम पर हो, और हम विराम देते हुए आपसे गुजारिश करेंगे कि अपनी पसंद का कोई गाना यहाँ पर आप सुनवाइए हमारे सुनने वालों को।
0: इसका मुझे फिल्म का नाम तो नहीं मालूम है, पर फिर भी मैं गाने के बोल जरूर गुनगुनाऊंगी। तुम

0: जी, वाकई में गाना आपने अच्छा सुनवा दिया कि किसी और का सहारा बने तो हमें अपना महत्व भी पता चलता है और इंसान होने का एक जो संकल्प करते हैं वो इंसानियत भी पूरी होती है। दरअसल हमारी बातचीत चल रही थी आहार पर और अब कई इसमें मुख्य बिंदु जुड़ते हैं। दैनिक जीवन की हमारी जो दिनचर्या होती है उसमें योग का जो महत्व दर्शाते हैं। आहार के बाद विहार आता है, आचार आता है, विचार आता है। तो हम चाहेंगे कि विहार का पूरा विस्तार बताइए कि आहार के साथ साथ विहार कैसा होना चाहिए।
1: राजेंद्र जी, जैसे मैंने बताया कि योग कार्यक्रम के शुरुआत में प्रश्न किया था कि योग क्या है, तो योग इन्हीं चार बिंदुओं से होके जाता है, आहार, विहार, आचार, विचार। ये चार योग के स्तंभ हैं
0: जी,
1: जिन पर सबसे ज्यादा जरूरत है हमारे जागरूकता की। मतलब इन चारों चीजों पर हमारा जागरूक होना बहुत जरूरी है। जैसे अभी आपने खाने पे प्रश्न किए मुझसे, तो उसपे मैं यही कहूंगी कि हमारा हर चीज पे पूरे 24 घंटे हमको जागरूक होना बहुत जरूरी, कि आप क्या खा रहे हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सब चीज पर हमारा ध्यान होना।

0: चाहिए। अभी आपने जैसे बात करी थी आहार की, अब इसके बाद आती है बात विहार की।
1: जी
0: विहार मतलब कि रिक्रिएशन बोलते हैं, या मनोरंजन कह सकते हैं, या और भी इसे शिथिलीकरण, अपने आप को थोड़ी देर के लिए जो हमारी रोज की दिनचर्या से हट के कुछ
1: रिलैक्स,
0: रिलैक्सेशन,
1: एंटरटेन करना।
0: इंटरटेनमेंट करना थोड़ा सा। तो जनरली हम क्या करते हैं कि इंटरटेनमेंट यानी कि हम टीवी देखते हैं। यदि हम लोगों से ये पूछा जाए कि आप क्या करते हैं, तो वो बोलते हैं हम तो ने तो टीवी देखा। बिल्कुल, टीवी देखिए, कुछ अच्छा देखिए, कुछ सकारात्मक देखिए, पर उसके साथ साथ विहार में ऐसी बहुत सी कई चीजें भी आती हैं। जैसे सबसे पहले बच्चों के साथ खेलना, आप बच्चों के साथ खेलेंगे तो आपके अंदर बहुत सकारात्मक चीजें आती हैं।
1: अच्छा
0: तो बच्चों के साथ खेलना, थोड़ा कभी बड़े बूढ़ों के साथ बातचीत करना,
1: जी
0: वो भी
1: जी
0: हमें बहुत रिलैक्स करता है। विहार में मैं बात करूंगी रिकेशन की, शिथिलीकरण की, कि कैसे हमें अपने आप को थोड़ा सा मनोरंजन करना चाहिए। तो यहाँ पर मैं बात करूंगी, केवल टीवी देखना ही मनोरंजन नहीं होता है कि आपने टीवी में कुछ देखा तो हमारा एंटरटेनमेंट हो गया। बिल्कुल देखिए, सकारात्मक चीजें देखिए टीवी पर इसके साथ साथ यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ विहार के अंतर्गत, जैसे कि हमारा सबसे पहले तो हमारा एक शौक होना चाहिए। जिंदगी में हमारे एक शौक रखना बहुत जरूरी है। यदि हम शौक की बात करते हैं तो अधिकतर लोग यही बोलते हैं, हाँ मुझे पहले ये चीजें अच्छी लगती थी, अभी तो टाइम नहीं मिलता। पर सभी के पास ये रत्न, अभी तो समय नहीं, हाँ मुझे ये अच्छा लगता था। यदि आप घर पे भी महिलाओं से ये पूछो तो वो बोलते नहीं हम, पर देखिए यही समय है जब कई बार हमारे जो युवावस्था की चीजें जो हमें अच्छी लगती थी पर समय के साथ वो छूट जाती हैं, आप फिर से उसे शुरू कर सकते हैं। फिर से जो भी आपको, मान लीजिए आपको बागवानी पसंद है, आपको कोई चित्रकला पसंद है, या आपको किसी भी प्रकार का
1: या
0: शौक है,
1: किताबें
0: म्यूजिक
1: पढ़ना
0: का,
1: पसंद
0: किताब
1: है।
0: पढ़ना, कोई भी एक शौक होना ही चाहिए। और ऐसा नहीं कि वो शौक बस हम बोलने के लिए है कि हाँ मुझे इस चीज का शौक है, वो हर रोज आपके दैनिक दिनचर्या में शामिल होना चाहिए। आपके पास उसके लिए आधा घंटे का, या जो भी जितना भी आप टाइम निकाल सकते हैं उसके लिए आप एक टाइम निकालिए, और उसमें वो अपने शौक को जरूर पूरा कीजिए, क्योंकि वो हमारे इमोशंस को बहुत, हमारे इमोशंस को डाइवर्ट करने में बहुत मदद करता है। आप अपने काम के दौरान बहुत थक गए हैं, या
1: जी
0: कुछ हमारे लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव होते हैं, कई बार हम बहुत किसी बीमारी से भी जूझ रहे होते हैं, तो हम एक अवसाद की स्थिति में जाते रहते हैं।
1: बिल्कुल
0: पर यदि आप, एक शौक है आपको और उस शौक में थोड़ी देर आप उस चीज को करते हैं, तो वो आपके लिए बहुत मददगार, आपके लिए एक दवाई का काम करता है।
1: ये आपने बहुत अच्छी बात बताई शारदा जी, कि जैसे आपने कहा शौक होना चाहिए, यानी दोस्तों रचनात्मक आपका एक विहार होना चाहिए, रचनात्मक बातों की ओर आपकी जो हलचल होनी चाहिए वो अगर बंद पड़ गई हैं तो आप पास्ट में जाइए, अपने शौक को फिर से जिंदा कीजिए और वर्तमान में लाइए। और शारदा जी हम चाहेंगे कि आचार पर अगर बात करें तो तीसरा बिंदु होता है आचार, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे?
0: देखिए, आचार में तो हमारा सबसे महत्वपूर्ण आता है हमारा खुद के प्रति, हमारी फर्स्ट ड्यूटी जो है वो हमारा खुद के लिए है। यहाँ पर कई बार जब हम ये बोलते हैं खुद के बारे में सोचिए, खुद के लिए समय निकालिए, तो कई बार ये सुनने में ऐसा लगता है कि शायद हम बहुत स्वार्थी हो गए हैं कि हम अपने बारे में सोच रहे हैं, पर इसे आप स्वार्थी होना न समझिए, ये बहुत जरूरी है। यदि आप अपने परिवार का, अपने समाज का, किसी भी चीज का यदि ध्यान रखना चाहते हैं, तो ये बहुत जरूरी कि सबसे पहले आप अपना ध्यान रखिए। तो सबसे पहले आपका अपनी प्रति जो भी कर्तव्य है उसे पूरा कीजिए, फिर उसके साथ हमारा दूसरों के प्रति व्यवहार, ये सभी चीजें हमारे आचार के अंतर्गत आ जाती हैं। हमारी जो रोज की दिनचर्या है वो भी हमारे हमारे आचार में ही आती है, कि हमारा कैसा दिनचर्या होना चाहिए। तो ये यहाँ पे यही मैं कहूंगी कि सबसे पहले तो हमारा एक टाइम टेबल होना चाहिए खुद के लिए,
1: अनुशासित
0: अनुशासित टाइम टेबल होना चाहिए, क्योंकि हम ये बोलते हैं जबकि हमें पास समय नहीं है। वो इसीलिए होता है क्योंकि हम, कोई हमारे पास एक व्यवस्थित टाइम टेबल हम नहीं बनाते। तो ये बहुत जरूरी कि आप एक, सबसे पहले एक दिनचर्या बनाइए, एक टाइम टेबल बनाइए, और उस टाइम टेबल में हर चीज के लिए समय निकालिए, उसमें अपने लिए भी समय रखिए और दूसरों के लिए भी समय रखिए।
1: जी
0: और साथ में जैसे मैंने बताया आपको कि हमें दूसरों के साथ व्यवहार कैसा होना चाहिए, इस पे भी इस चीज में ध्यान रखना चाहिए। दूसरों के साथ देखिए, जब भी हमारे आपसी संबंध होते हैं तो हमें अपने अपेक्षाओं को दूर रख के वो संबंध बनाना चाहिए। जब भी हम कोई काम करते हैं किसी के साथ, दूसरे के साथ, किसी के लिए हम कुछ काम करते हैं, तो हमारी कुछ अपेक्षाएं उससे तुरंत जुड़ जाती हैं, और हम चाहते हैं कि मैंने ये किया है तो ये भी, ये मेरे लिए करे।
1: जी
0: तो
1: जी
0: हमारा इस समय ये ध्यान होना चाहिए हमारे व्यवहार में, कि आपका अपेक्षाएं उस किसी के प्रति नहीं होना चाहिए, आपको वो काम निस्वार्थ भाव से करने की आदत होना चाहिए।

0: जी जी जी
1: और ये चीज आपको तनाव रहित भी रखेगी। जब आप किसी से अपेक्षा नहीं रखेंगे तो जो भी आप कार्य करेंगे वो बहुत तनाव रहित होके कार्य होगा। तो
0: आपका कहने का तात्पर्य यह है कि निर्लिप्त भाव से यदि आप कोई कार्य कर रहे हैं किसी के प्रति, तो उसमें अपेक्षा नहीं ही होगी और
1: जी
0: काम भी
1: हाँ,
0: पूरा होगा और आपका आचरण भी शुद्ध होगा।
1: शुद्ध होगा।
0: जी जी
1: वही मैंने कहना चाहती हूँ कि आपका दूसरे के प्रति व्यवहार भी अच्छा होगा और आप खुद भी बहुत शांत महसूस करेंगे जब इन सब चीजों को अपेक्षाएं या निस्वार्थ भाव से कार्य करते हैं।
0: तो अभी हम स्वार्थ तो नहीं कहेंगे, लेकिन हम अपेक्षा जो हमसे कर रहे हैं श्रोता कि भाई बातचीत के साथ साथ गीत कहाँ गया, तो उसी भाव को यहाँ पर उपस्थित करते हुए आपकी पसंद का अगला गाना जरूर सुनेंगे।
1: फिल्म का नाम अमृत है और गाना है जिन

0: अंधा, एक लंगड़ा और एक भिखारी जंगल में जा रहे थे। चलते चलते बहरे ने कहा,
1: अरे दोस्तों रुक जाओ जरा, मुझे चोरों के आने की आवाज सुनाई दे रही है।
0: तो अंधे ने कहा,
2: अरे मूर्ख तुझे आवाज सुनाई दे रही है, मुझे तो चोर दिखाई दे

0: आठवीं मंजिल पे रहते थे। मियां दफ्तर जाने के लिए घर से निकला, नीचे सड़क पर आकर उसे याद आया, अरे मेरा बटुआ तो ऊपर रह गया। उसने नीचे से आवाज लगाई, बेगम, अरे बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंकिए। बेगम ने कहा,
1: क्या कहा, जोर से बोलिए हुजूर, मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा।
0: मियां के गले में दूरबीन लटकी थी, उसे दूर की सूझी। उसने फौरन दूरबीन आंखों पे लगाई और अपनी बेगम का नूरानी चेहरा अपने चेहरे के बिल्कुल पास लाकर कहा, बेगम, मेरा बटुआ नीचे फेंक दीजिए।
2: तो दोस्तों, गीत कैसा लगा आपको? जिंदगी वाकई में एक लतीफा है, यानी हंसने हंसाने की बातें हैं, तभी तो जीवन शैली हमारी पूरी तरह से जागरूक बनेगी और तंदुरुस्त बनेगी। जीवन शैली और योग विषय पर हमारी चर्चा जारी है। आज के सेहतनामा कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल के साथ। शारदा जी, अब हम चाहेंगे कि आहार विहार आचार के पश्चात अब विचारों की बारी है, तो हमारे विचार और योग का तालमेल कैसे होना चाहिए?
3: देखिए, विचार तो हमारे हर पल हमारे दिमाग में चलते ही रहते हैं।
2: प्रति पल
3: विचार आते हैं, पर और यदि हम उन विचारों पर गौर करने लगे तो हम बहुत परेशान हो जाएंगे। तो हर पल जो भी विचार आ रहे हैं उनको छोड़ते जाइए। हर एक विचार के बारे में सोचना जरूरी नहीं है कि आप हर एक विचार को सोच रहे हैं, क्योंकि अधिकतर विचार हमारे उसमें नकारात्मक ही होते हैं। तो अनावश्यक, यहाँ पर मैं आपको यही बोलूंगी, अनावश्यक विचारों को त्यागना।

0: इसकी आदत हमको होनी चाहिए, उसे हर एक विचार का विश्लेषण करना ये नहीं होना चाहिए। इसके लिए यहाँ पर जैसे हमने शुरू में बताया था कि आसन प्राणायाम बहुत महत्व करता है। यदि आप रोज आसन करते हैं, प्राणायाम करते हैं, तो ये आपको बहुत मन में एक स्थिरता आती है और धीरे धीरे विचार जो है वो हमारे कम आने लगते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप नियमित आसन और प्राणायाम करें। इसके साथ ही सकारात्मक विचारों की तरफ ज्यादा ध्यान दें। इसके लिए मैं यहाँ पर आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक बताऊंगी कि आप सुबह से लेके शाम, दिन भर जो आपका रूटीन होता है, आप कार्य करते हैं, घर पर रहते हैं या बाहर, जो भी आपका ऑफिस का रूटीन है, जो भी, तो आप जब रात को सोने जाते हैं, सोने से पहले आप एक डायरी बनाइए और एक बार आप बेड पर ही रिफ्लेक्शन कीजिए। ध्यान कीजिए कि सुबह जब आप उठे थे उसके बाद से लेके अभी तक आपका दिन कैसा बीता,
1: क्या क्या किया,
0: क्या क्या किया आपने। हर छोटी चीज पर आप ध्यान लेके जाइए और आप ध्यान करिए और उस समय आपको उसके बाद अपनी डायरी पे 10 कम से कम ऐसी चीजें लिखनी है जो पॉजिटिव हो, जो सकारात्मक हो, जो आपको अच्छी लगी हो दिन भर में। और ऐसी बहुत सी चीजें होती हैं क्योंकि हम उस पर गौर नहीं करते हैं, हमारा ध्यान अधिकतर नकारात्मक चीजों पर जाता है। पर आप जब एक बार सुबह से लेकर रात तक की अपने दिनचर्या पर ध्यान देंगे तो आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिल जाएंगी। उसमें बहुत सी चीजें आ जाती हैं, जैसे आपने खाना खाया, खाना कुछ आपका मनपसंद खाना आया, आपको कैसा फील हुआ, आप बहुत दिन बाद किसी अपने दोस्त से मिले हैं, आपको बहुत अच्छा लगा होगा, या आपके बॉस ने आपको कुछ छोटी सी चीज ही बोली होगी, को बहुत अच्छी लगी होगी। शायद सामने वाले के लिए उसके लिए कोई महत्व नहीं होगा, पर आपके लिए वो बात बहुत महत्व रखती होगी। तो ऐसी छोटी छोटी चीजों को आपको एक डायरी बनाना है और उसमें 10 चीजें आपको लिखने की आदत होना ही चाहिए। अच्छा। कि रोज हमें कोशिश करना, शुरुआत में हो सकता है आपको 10 चीजें ऐसी नहीं मिले, पर बाद में धीरे धीरे आपको वो चीजें 10 से ज्यादा हो जाएंगी जब आप एक डायरी बनाने लगेंगे। हर रोज लिखिए क्या आज मेरे साथ क्या अच्छा हुआ।
1: अच्छा, उसमें कई बार ऐसा विचार भी जो दिन में आ चुका है कि फला फला ने मेरे साथ ऐसा किया है, अब मैं उसे ऐसे सबक सिखाऊंगा, तो ये विचार भी तो उसमें शामिल है।
0: नहीं नहीं, हमें उसको इग्नोर करने की आदत डालना है, वही तो योग है। यही अवेयरनेस की बात मैं यहाँ पर कर रही हूँ। हमें ये अवेयरनेस रखना है कि हमें सकारात्मक चीजों को सोचना है, हमें हर पल अपनी जागरूकता पर ध्यान रखना है। योग का दूसरा नाम ही जागरूकता है। तो अपने विचार पर आपको बहुत जागरूक होना है, नकारात्मक चीजों पर आपका ध्यान ही नहीं जाना चाहिए, उसे आपको इग्नोर करते हुए केवल अच्छे विचारों पर ध्यान रखना है, वही आपको सकारात्मकता की ओर लेके जाएंगे।
1: वो टेक्निक जो आप बता रही थी, उसमें डायरी में 10 बातों को नोट कर लिया।
0: जी हाँ, उसे हर रोज लिखते जाइए, धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व में वो चीज आ जाएगी, आपका माइंड इस तरह से सेट हो जाएगा कि कोई भी चीजें आपको परेशान करेंगी ही नहीं,
1: विचलित करेंगी नहीं।
0: आप किस, क्योंकि हमारा स्वभाव क्या होता है, हम कभी किसी से मिलते हैं तो हमें किसी की बात बुरी लग जाती है, या हम कहीं गए हमें वहां पर कुछ चीजें अच्छी नहीं लगी तो हम कि नहीं वो चीज अच्छी नहीं थी किसी से मिलके, या कोई भी चीजें हमको विचलित कर देती हैं। पर जब हम इस तरह की एक आदत अपने आप में डाल लेते हैं तो हमें ये सब चीजें विचलित नहीं करती हैं जल्दी से।
1: बिल्कुल,
0: क्योंकि आपने अपने विचारों को वो आदत डाल दी है।
1: ये बात सही है, और उन्हीं विचारों को जब आप बार बार पढ़ेंगे, लिखते जाएंगे, फिर पढ़ेंगे, एक दिन वो आपके स्वभाव में शामिल हो जाती है।
0: जी हाँ बिल्कुल, वही मेरे भी कह रही हूँ कि आपके व्यक्तित्व में वो आ जाए, वो आपका स्वभाव बन जाएगा।
1: बिल्कुल, अभी हमारे स्वभाव की बात को हम और करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि कुछ लोग जो हैं योग को, जो प्राथमिक अवस्था होती है, उसको तो अपना लेते हैं किसी से सीख कर, कि भाई सुबह उठकर जैसे आपने बताया कि दिनचर्या में ऐसे उठना है, ऐसे काम करना है, तो योग के कुछ एडवांस चीजें अगर किसी को सीखना हो, जानना हो, जो स्वास्थ्य पर भी अनुकूल असर डालती हो, तो उसके लिए किसी प्रशिक्षक के पास जाना चाहिए या देखकर सुनकर ही सीख लेना चाहिए।
0: देखिए बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तो मैं आपको जरूर बहुत ध्यान से बोलूंगी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। आजकल लोग किताबों में पढ़ के या टीवी में देखकर कुछ चीजें करना शुरू कर देते हैं, पर हमें ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हर एक व्यक्ति अलग अलग है और हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग होता है। ये जरूरी नहीं है कि जो चीज, जो आसन आपके लिए महत्व रखता है वो दूसरे के लिए भी रखता हो। क्यों, आपका शरीर अलग है, आपको क्या बीमारी है, आपका शरीर की स्थिति कैसी है, इसलिए वो आसन आपके लिए भी करना ठीक होगा, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। इसलिए यहाँ पर मैं बहुत ध्यान से कहूंगी कि जरूरी है कि जब आप किसी प्राथमिकताओं को के आगे तरफ जा रहे हैं योग के लिए, तो आप किसी प्रशिक्षक से, किसी योग टीचर से उसकी शिक्षा लीजिए, उसे सीखिए और फिर ही उसे अपने दिनचर्या में शामिल कीजिए।
1: हो सकता है योग के कुछ प्रकार किसी व्यक्ति को सूट ही ना करे और करता जा रहा

0: जी हाँ बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि हर एक व्यक्ति का शरीर अलग अलग है, हर एक व्यक्ति के लिए सभी चीजें अलग अलग होती हैं, इसलिए हमें किसी का देखकर वही चीजें करना हमारे लिए सही होगा ये गलत है।
1: बिल्कुल, अब गलत बात को तो गलत कहेंगे और सुनने वाले सही बात को सराहेंगे, और सही बात तो ये है कि यहाँ पर हमारी बातचीत रुकेगी और आपकी पसंद का एक गाना होगा।
0: तो यहाँ पर भी मैं एक ऐसा ही गाना सुनाऊंगी जो आपको ताजगी से, स्फूर्ति से भर दे। उठे सबके कदम, देखो रम पम पम, कभी ऐसे गीत गाया करो, कभी खुशी कभी गम, तारा रम पम पम, हंसो और हंसाया करो।
1: तो बातों बातों में फिल्म का ये नगमा हम आपको सुनवाने जा रहे हैं।
2: उठे सबके कदम, देखो रम पम।

शारदा जी गीत वाकई बहुत ही उल्लासित कर देने वाला, कदमों को थिरका देने वाला आपने सुनवाया, स्फूर्ति वाकई आ गई है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि योग की कुछ ऐसी टिप्स जो सुबह उठने से लेकर, जैसे कई लोग ऑफिस में कार्यालय में काम करते हैं, थकान सी हो जाती है, तो वो तो बार बार अपना कार्यालय छोड़ के योग सीखने नहीं जा सकते, लेकिन कार्यालय में रहते हुए क्या कर सकते हैं कि आधे पौन घंटे के बाद या

0: 2 घंटे के बाद उनमें एक ऊर्जा बनी रहे।
1: बहुत अच्छा प्रश्न किया राजेंद्र जी, क्योंकि आज के समय में सभी ये लोग कहते हैं कि नहीं मैं बहुत बिजी हूँ, मुझे तो टाइम नहीं मिला। पर आप अपने घर पर यदि कोई महिला है या जो भी पुरुष है ऑफिस में है, तो आप वहाँ पर भी अपने काम के दौरान योग कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी हम जो योग की बात करें वो गृहस्थी योगा की बात कर रहे हैं
0: जी।
1: कोई हम साधु संन्यासियों वाले योगा की बात नहीं कर रहे
0: बिल्कुल।
1: हैं, हम गृहस्थ योग की बात कर रहे हैं। तो जैसे कि आपने राजेंद्र जी कहा कि ऑफिस में है तो क्या करें, तो देखिए ऑफिस में है तो आपको मैंने जैसे पहले बताया कि जागरूक होना जरूरी है। आप बैठे हैं अपने कुर्सी पर तो कुछ देर के लिए ये ध्यान रखिए कि बहुत देर यदि आप 3-4 घंटे से लगातार कुर्सी पर बैठे हैं तो आप एक चक्कर लगा के आइए, क्योंकि लगातार बैठना या लगातार खड़े होना स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। तो ये आपको जागरूक होना अवेयरनेस रखनी होगी कि यदि आप बहुत देर बैठे हैं तो खड़े हो जाइए, बहुत देर खड़े हैं तो बैठ जाइए। फिर आप यदि खाने का वक्त हो गया है, आप खाना लेने वाले हैं, तो आप यदि वहां पर हमारे लिए आसन करना सही नहीं है, जैसे मैंने बताया कि खाने से पहले आसन करना चाहिए, पर हम ऑफिस में नहीं कर सकते। यदि ऑफिस में आपकी 4 मंजिल है तो आप 4 फ्लोर चढ़ के आ जाइए, उसके बाद अपना लंच लीजिए, ये हमको ध्यान रखना चाहिए। और खाने के बाद जैसे अब हम वहां पे तो हम नहीं आराम तो नहीं कर सकते हैं, देखिए जैसे मैंने बताया शीतलीकरण होना चाहिए, तो शीतलीकरण में यहाँ पे यही बोलूंगी कि हमको थोड़ी देर के लिए कॉन्शियस रिलैक्सेशन मतलब जागते हुए सोना चाहिए। आप अपने ही जो भी आपका उस समय लंच का ब्रेक टाइम है, आप उसमें आंख बंद करके जो भी आवाजें आपकी आ रही है, मान लीजिए दूर से किसी पक्षी की आवाज आ रही है या किसी वाहन की आवाज आ रही है या पंखे की आवाज आ रही है या कुछ म्यूजिक ही आपने लगाया, तो बहुत ध्यान से केवल उसको सुनना है आपको। आप उसमें ही रिलैक्स हो जाएंगे, आपके लिए वो 20 मिनट या 10 मिनट जो भी आप दे पाते हैं वो आपको एक कॉन्शियस रिलैक्सेशन देगा
0: और फिर से अपना काम कर
1: फिर से आप तरोताजा हो जाएंगे काम करने। आप इसे अनुभव करके देखिए, ये सारी चीजें जो है वो अनुभव करने की है, आप इसे अनुभव करके देखिए, आप वहां पर रिलैक्स हो जाएंगे और आप काम फिर से ताजगी के साथ काम करेंगे।
0: क्या बात है, ये तो आपने बहुत ही अच्छी बात बताई कि थोड़ा सा ब्रेक हमें लेना ही जरूरी होता है, और वो ऐसा नहीं ब्रेक होगा कि वो घड़ी के हिसाब से ब्रेक होगा, काम करते करते कुर्सी से उठिए या कंप्यूटर पर बहुत ज्यादा देर तक टिके हैं, थोड़ा सा ध्यान हटा के ध्यान मन करो,
1: वहीं पर आप थोड़ा सा पांव को थोड़ा सा आगे पीछे कर लीजिए, गर्दन को थोड़ा सा राइट लेफ्ट ऊपर नीचे थोड़ा सा हिला लीजिए, आंखों की आप एक्सरसाइज कर दे, थोड़ा सा आंख बंद करिए खोलिए, जल्दी जल्दी पलकें झपक लीजिए, आंखों को राइट लेफ्ट घुमा लीजिए, क्योंकि आप लगातार कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, आपकी आंखों पे स्ट्रेन हो रहा है, तो आप थोड़ा सा तुरंत आप अपने आई मूवमेंट उस समय कर सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आप ऑफिस में रह के भी कर सकते हैं, और इसी तरह की चीजें घर पे महिलाएं भी कर सकती हैं।
0: अच्छा, ये भी हमने सुना है कि कई बार लोग सोशल मीडिया पर बहुत ही सक्रिय होते हैं, ऑफिस में काम करते करते भी कोई टिप्स मिल गया बिना किसी सोच समझ के उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं, तो वो कितना लाभदायक होता है।
1: मैं वापस आपको वही बात दोहराऊंगी कि देखिए किसी का भी देख के उसे हमको तुरंत फॉलो करना नहीं चाहिए, क्योंकि वो एक अलग है, जिसके लिए ये टिप दिया गया है वो एक अलग व्यक्ति है और आप एक अलग हैं। ये जरूरी नहीं है कि उसके लिए जो सही है वो आपके लिए भी सही होगा, तो मैं तो नहीं कहूंगी कि आप उसको अपनाइए। आप पहले सीखिए, आप अपने आप का देखिए आपके लिए जरूरी है कि नहीं है, है तो आप 1 हफ्ते उस चीज को करके देखिए कि आप उसका क्या असर होता है, उसके बाद आप उसे अपनाइए।
0: यहाँ पर एक गाना तो बनता है फिर।
1: अभी मैं थोड़ा सा कुछ सब्जेक्ट से हमारे हट के आपको गाना सुनाऊंगी, मेरा मन पसंद गाना है जिसके बोल हैं जो तू

0: गीत वाकई आपने अपनी पसंद का बहुत अच्छा सुनवाया, लीक से हटकर था और थोड़ा मूड भी बदल गया। शारदा जी, हम अब अपने प्रोग्राम के समापन की ओर बढ़ रहे हैं। हम चाहेंगे कि आज का जो विषय है जीवन शैली और योग, चलते चलते संदेशात्मक रूप में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगी हमारे सुनने वालों को, जो बिजी भी रहते हैं और जो थोड़े से बहुत जिनके पास समय होता है, उन दोनों ही के लिए, कि उनका भोजन कैसा होना चाहिए। आचार विचार तो आपने बता ही दिया है, और संतुलित जागरूक जीवन के लिए क्या लक्ष्य होना चाहिए।
1: आपने जैसे बात करी कि भोजन कैसा होना चाहिए, तो मैंने उसके बारे में आपको पहले भी बताया कि हमारा भोजन सात्विक ही होना चाहिए। तो
0: सात्विक का मतलब शाकाहारी?
1: जी हाँ बिल्कुल, शाकाहारी होना चाहिए भोजन, जिसमें मिर्च मसाले ना हो, ऐसा ही भोजन करना हमको चाहिए।
0: वो कहा भी जाता है कि जैसा भोजन वैसा
1: जी
0: मन।
1: जैसा अन्न वैसा मन, जैसा मन वैसा आपके काम होंगे, जैसा आप खाएंगे वैसे आपके विचार होंगे, और जैसे आपके विचार होंगे वैसा ही आप कार्य करेंगे।
0: जी जी जी।
1: और जैसे मैंने बताया कि, और यही मैं आपको कार्यक्रम के समापन पे भी यही कहना चाहेंगे, यदि आप योग के आचार विचार आहार विहार पर, जो मैंने आपको चार स्तंभ बताए हैं, इन पर आपको पूरे समय आप यदि इस चीज पे जागरूक रहते हैं, तो आप जीवन के जो भी उतार चढ़ाव हैं उसमें अपने आप को, स्वयं को संतुलित और संतोषमय स्थिति में प्राप्त कर पाएंगे।
0: क्या बात है, बहुत ही अच्छा कंक्लूजन आपने दिया है, और हम आपको धन्यवाद भी देना चाहेंगे कि आज के सेहतनामा कार्यक्रम में आपने भाग लेकर हमारे सुनने वालों को लाभान्वित किया, और जीवन शैली और योग विषय पर कठिनतम बातों को आसान से शब्दों में समझा दिया। बहुत बहुत धन्यवाद विविध भारती की ओर से।
1: धन्यवाद राजेंद्र जी, मैं भी आपका दोबारा से धन्यवाद करूंगी कि आपने मुझे ये मौका दिया, विविध भारती ने मुझे आमंत्रित करके मुझे ये मौका दिया, उसके लिए मैं आपका भी धन्यवाद करूंगी, विविध भारती का धन्यवाद करती हूँ।
0: नमस्कार।
1: नमस्कार।
0: तो दोस्तों, ये थी मुलाकात सुप्रसिद्ध योग प्रशिक्षिका श्रीमती शारदा अग्रवाल से। आज के कार्यक्रम में विषय था जीवन शैली और योग। कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग दिया HR पाटले ने, और कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता जुबैर खान। अब दीजिए आज के सेहतनामा कार्यक्रम से अपने दोस्त राजेंद्र

0: विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की। श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।
1: जब जब किसी हमलावर ने हमारी धरती के सीने पर पांव रखना चाहा, सब बच्चे सीना तान कर सामने खड़े हो गए और सीमा सुरक्षा की दीवार खड़ी हो गई।
2: विविध भारती पर हर रविवार की शाम 7 होती है सैनिकों की शौर्य गाथा, कहानियां अदम्य साहस की, कहानियां देश के लिए कुर्बान हो जाने के जज्बे की।
3: अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को रिले कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5 हैं। लीजिए अब हम प्रसारित कर रहे हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। प्रायोजक हैं CF वन विभाग सरगुजा।

0: के साथी बने गजराज
1: नमस्कार स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया अरचोका भेलकक्ष पेंडारी बोदरई शाही डांड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के सूरजपुर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये कल्याणपुर कोटबहरा घाघी टिकरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वनमंडल के वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 7 है। ये मेंढारी फोकली महुआ करमडीहा भगवानपुर नवापारा जवाखान अखोरा कुंदी कला जामदोहर सिधमा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के अंबिकापुर लुंड्रा और मैनपाट में हाथियों की कुल संख्या 14 है। ये सकालो घंघरी कुल्हाड़ी कंचनपुर खलीबा पड़ौली किशुनपुर जमीरा डांडपारा दातीढाब घटगांव बरवाली कंडराजा बरिमा पेंट घोड़ा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी पत्थलगांव और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर जामचुआ बिलासपुर चरईमारा रानी कोम्बो खड़ामाचा पीठा आमा राजा आमा महेशपुर झिमकी चट्टानपारा साजापानी कुदरा झरिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वनमंडल के छाल धर्मजयगढ़ बोरो कापू और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 101 है। ये लोटान पुरुंगा बनहर सिंघीछा बेहरामार इंचपारा कंचीरा कोयलार सागरपुर सस्कोबा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गढ़घोरा वनमंडल के केंदई जडगा और एतमा नगर में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये लालपुर कोयलार गढ़रा परला चोटिया कापानवापारा घुचापुर बांधापारा लालडी झुनकीडी कुकरी कादर आमा

0: अटिकरा नवापारा मड़ई कोदवारी कठमोरगा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 32 है। ये बंगूरसिया जुनवानी कशडोल राठरोड झिंगोल नागदरहा पंडरी पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के बार और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये पकरी तालदादर हरदी फुरफुंदी गुड़ागढ़ तेंदुचुआ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये ओड अमलोर ताराजह डडई पानी बुडार सिंहार चिंदौला लूठापारा नारीपानी डूमरघाट कोदोमाली मासूल खोई के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दें। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दें। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोट।
2: हमर हाथी हमर गोठ ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी हम प्रसारित कर रहे थे। यह आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र का प्रसारण है। संध्या के 5:05 हुए हैं और अब आइए चलते हैं ग्रामीण श्रोता बहनों और भाइयों के मनपसंद कार्यक्रम ग्राम सभा की ओर।

ग्राम सभा कार्यक्रम सुनैया जम्मू रेडियो श्रोता संगवारी दीदी भाई बहनी मीत मितान जम्मू झंझो कौ कजरी दीदी के मया पीरीत भरे राम राम जय जोहार। का हाल चाल भाई हमर मितान मन के? ओ दे देखा ठौका कही से काकी है गर्मी के हाय हाय माँ का पूछा था सो कजरी बहनी कहा थे ठौका कहा था का कि ए दारी तो ना गर्मी हर मस्तेच पड़त है एकदम चार मुड़ा मन के हुआ के चिड़ई चुरगुन जम्मू कति हाय हाय मचे है भिनसरा हुआ के संझा गर्मी हर नम कमेच नहीं हुआ थे एको बूंदी दत्की कन हवा बंद होइस तहारे देखा ना कुहकुहिला मझनिया तो रद्दा हर निर्मामू सुन ना पर जा रहे थे कारण काय भाई हमी मंतवान पेड़ पौधा के कमी और फैक्ट्री बन के बढ़ती ऐ सब तो आए गर्मी के कारण और मुसीबत के कारण सब चीज के सामना कर करके हर समस्या के समाधान खोजबो भाई तभी तो बनी है ना भाई और समस्या है तो समाधान भी है ये मान के चला वो समाधान के नाम है रेडियो। रेडियो हमन अपन जादू के पिटारा ले हर समय बढ़िया बढ़िया जानकारी के खजाना खोलथन और जो समस्या है ओकर समाधान लाथन। आज अपन गोठ बात के क्रम में विषय लाए हैं प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना जो उन्हें पर्यावरण संरक्षण में एक महत्वपूर्ण कदम सरकार के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के बहुत सारा योजना चलाए जाते जेमा खासकर हमर बहनी मन बर दाई बहनी मन बर अतका कन योजना है ओकर आत्मनिर्भर बनाए बर भिन्न भिन्न नाना किस्म की योजना वही योजना में एक ठन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना भी है। आज संगी हुआ यही क्रम में बढ़िया सुघर गोट बात लेके आए हैं और आज के समय में पर्यावरण संरक्षण दुनिया भर के सबसे बड़े चुनौती बन गए। बढ़त प्रदूषण जंगल की कटाई और जलवायु में परिवर्तन जैसे समस्या हर मानव

0: जीवन ल प्रभावित करत हवय। अइसनहा समय म प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना सिर्फ एक जन कल्याणकारी योजना नो है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण के दिशा में घलो एक सार्थक प्रयास है। तभे तो कहे गए उज्ज्वला के उजियारा ले हर घर खुशहाली पावत है और लकड़ी के कटाई कम हो गई और देखा तो जंगल हर हरियर मुस्कावत है। और गोठ बात के क्रम ला आगु बढ़ाबो पर लेगा भाई पहली संदेशा ला सुनबो।
1: कम समय में ज्यादा मुनाफा बस एक क्लिक में, कमाल है।
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: संगी हुआ संदेशा सुने के पहली गोट बात चलत रही से प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर्यावरण संरक्षण में सहायक ए विषय में ता पहली सुरता करा जुन्ना तैया गांव मन में जावा ना तो दूरिहा ले दिखाए गांव पहुंचन सीवाना तहां ले संझा हुए ना तहां पूरा गांव है ना कुहिरा में डूबे रहा है, चार बुरा धुएं धुआं दिखा है। काबर के हर घर के छानी ले कुहिरा निकला है, आगे सुलगा थे कर काबर के गांव के अधिकांश परिवार खाना बना, अधिकांश का जम्मो परिवार हर भोजन बनाए बर चूल्हा में लकड़ी छेना कोयला या जो फसल रहे तेकर अवशेष यानी के रहर खाड़ी लजोर के बारा है कि नहीं हमार बुढ़िया दाई मन ता ये सब उपयोग करत रही ने और ये सब ला जलावा है ना ता भारी मात्रा में कुहिरा है ना धुआं जला कथन निकलत रहा है। ये धुआं सिर्फ घर के भीतर के वातावरण ला दूषित नहीं करे बल्कि बाहरी हवा में घलो प्रदूषण बढ़ावा है। घर के माई बहनी मन ला और छोटे छोटे लड़का मन ला और सियान मन ला तको आँखी और फेफड़ा संबंधी बीमारी के सामना करना पड़त रहा है। काबर एक कुहिरा के मारे भाई समर स्वस्थ रहे के साफ सुथरा रद्दा जेकर से धुआं भरे रसोई के दिन धीरे धीरे रेंगा जावा थे और देखा स्वच्छ हवा के मीठा संदेश घर घर पहुंचावा थे। जिला हमन उज्ज्वला योजना के नाम से जानें, ए योजना के माध्यम ले गरीब परिवार मनला रसोई गैस के सुविधा मिली, मतलब हर घर ला बहनी मन के नाम से सस्ता मा रसोई गैस के सुविधा दिए गई। और जब सब परिवार मन स्वच्छ ईंधन के उपयोग करे लगिन तब लकड़ी के खपत कम हो गए और लकड़ी के मांग घटे ले जंगल मन ऊपर दबाव भी कम हो गया और हरियाली के संरक्षण में मदद मिली। तभे तो कहे गए जंगल बची तब पर्यावरण संतुलित रही और पानी के स्रोत सुरक्षित रही और जैव विविधता घलो संरक्षित रही। तो LPG जो गैस होते ओकर उपयोग ले धुआं लगभग बिल्कुल नहीं निकला है, जेकर से वायु प्रदूषण कम होते। स्वच्छ हवा मनखे के स्वास्थ्य पर बहुत जरूरी है। जब घर के वातावरण स्वच्छ रही तब परिवार के स्वास्थ्य बेहतर रही तो डॉक्टर या वैद्य के घर जाके और जौन पैसा वहाँ बर्बाद होते तेकरो ले बाँचबो और जीव या शरीर के दुख से भी बाँचे रखते। कहे कि मतलब है माई बहनी स्वस्थ रहे, लड़का मन घलो खिलखिलावा है, अब प्रकृति के रक्षा के संकल्प चला सब मिलजुल के निभावा है। और एक बात बताबो संगी हुआ, उज्ज्वला योजना हाँ महिला सशक्तिकरण के घलो एक सशक्त माध्यम बने हैं। पहली सुरता करा हमारे डोकरी दाईमन दिन भर लकड़ी बारा है, लकड़ी बटोरत रहे हैं, कतका समय गोबर थापत रहे हैं, सहीते जावा है तो होकर छेना बनावा है, यानी वन दिन भर अतकेज बूता करत रहे हैं। संझा बार काब जा बार बो कैसे जल ही चूल्हा हर, अब गैस चूल्हा आ गए तो समय के बचत होते। अब वो समय में हमार बहनी मन क्या करते थे, पढ़ाई लिखाई या रोजगार पर कुछ दूसर उद्यम अपनावा थे, कुछ सीखा थे और समाज के विकास में कंधा से कंधा मिला के आज बढ़ाते आगे। जहाँ शिक्षा और संस्कार हो ही वहाँ विकास मुस्का थे, जहाँ शिक्षा और संस्कार हो ही वहाँ विकास मुस्का थे, अब मिल के चलाओ सब जहाँ वहाँ खुशहाली आते। तसंगी हुआ पर्यावरण संरक्षण सिर्फ पेड़ लगाए के लिए नहीं हुआ है, बल्कि ऐसा आदत अपनाए होते जेकर से प्रकृति के ऊपर दबाव कम कराए। उज्ज्वला योजना हर हमला स्वच्छ ऊर्जा अपनाए के संदेश देते, ये योजना सतत विकास की दिशा में मजबूत कदम आए। जी हाँ, विकास और पर्यावरण दोनों संग संग चलते, ता कथें उज्ज्वला के ज्योति जलाए, विकास के रद्दा चमकाए और स्वच्छ ऊर्जा के उपयोग ले पर्यावरण सुरक्षित रहे। और एक गोट बात के संग कार्यक्रम

0: हाँ सुनन संगी हुआ, मैं बंदत हूँ दिन रात वो मोर धरती मैया। संगवारी हो गीत के माध्यम ले आप मन जान ही डारे है कि धरती दाई के सेवा से ही मिली आप ओ झोला भर भर के मेवा। कथे संगी हुआ खेत बचाबो तो धरती माँ के शान बढ़ाबो, खेत रही तब तो हरियाली रही और तभे किसान भाई मन के पहचान बच ही। तो संगी हुआ आवा यही संकल्प लीन आज के दिन माँ के खेत ला बचाना है, खेत के करुण पुकार किसान भाई मन चेत लगा के ध्यान लगा के सुना, जानबो कैसे खेत ला का हो है कहके। तो समय समय में माटी प्रशिक्षण करावा, पहली जमाना में कहा रहा है खेत में नांगर चलावाए, नांगर चलावाए तो तरी के जात ले खेत के माटी हर उलट पलट होए और पानी हर नीचे के स्रोत तक पहुँचाए। अब ट्रैक्टर आ गए तो ट्रैक्टर में का होते यदि गहराई तक आप जोताई नहीं करवा ऊपर ऊपर जोताई करिया तो किसान भाई मन अभी गाँव मन में जाथन तो बताते भी गाँव के जो भुइयाँ हैं खेत के वो पट्ठल जाते नरम नहीं रहे ता ओला नरम बनाना है और माटी ला भुरभुरा करके फिर परीक्षण करा के माटी के ओकर बाद खेती किसानी के बूता ला करा। काबर के देखा हमन बीमार हन कि नहीं, खून टेस्ट होते ता जानते ना डॉक्टर मन दे बीमार है ता दवाई देते वैसन है टाइप के आप मन परीक्षण करा करके माटी के और स्वस्थ भुइयां ला रखा ता स्वस्थ भुइयां तक रही फसल भी स्वच्छ मिली। गोठ बात के क्रम में आगू कति बढ़ी कबर के अब पारी आ गए भेंट वार्ता सुने के। आज के भेंट वार्ता के क्रम में विषय हवे धान उत्पादन के प्रमुख विधियां एवं छिटका पद्धति से लाभ। ये विषय के वार्ताकार हमें श्रीमती शिखा पांडे ग्रामीण कृषि विकास अधिकारी लोखंडी विकास खंड तखतपुर जिला बिलासपुर से और इखर से सुघर गोट बात हमारे राजू भैया करे हैं तो आवाज सुनी भेंट वार्ता ला।
1: धान कटोरा कई थे जेला अन्नपूर्णा के था तिला।

0: धान कटोरा कैथे जेला अन्नपूर्णा के थातिला घेरी बेरी बंदत हमें छत्तीसगढ़ के माटीला। किसान भाई बहनी हो, यहाँ के माटी समृद्ध, यहाँ के किसानी करिया किसान समृद्ध, तही पाए कि धान के कटोरा के नाम लेके पूरा छत्तीसगढ़ जगत में विख्यात है। धान हमार प्रमुख फसल है, लेकिन अलग अलग विधि ले हमार किसान भाई मन खेती करके अपन उत्पादन तकनीक ला अपना के आमदनी ला पाथे, उत्पादन ला बढ़ाते। आज ही क्रम में धान उत्पादन के प्रमुख विधियां और छिटका पद्धति से लाभ, ये विषय में जानकारी देवर आज हमारे स्टूडियो में आए श्रीमती शिखा पांडे जी मन, जेमन ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोखंडी विकासखंड तखतपुर जिला बिलासपुर में पदस्थ हो। मन जी, आपके मन कार्यक्रम में स्वागत है। जय जोहार राम राम।
1: जय जोहार भैया, राजू भैया, जय जोहार, जय किसान, जय छत्तीसगढ़।
0: मन जी, आप ले जानना चाहो कि छत्तीसगढ़ में कतको किस्म के धान बोए के पद्धति हवे, प्रमुख कौन कौन विधि ले हमारे किसान भाई मन धान के बोए के तैयारी कर सकते हैं और कैसे उल्ला प्रेरित करता है, विस्तार ले जानना चाहो।
1: जी भैया, धान उत्पादन के तो बहुत सारे विधि है।
0: जी,
1: प्रमुख विधि में हमन बताथन, एक छिटका विधि होते, एक रोपा होते, लेई विधि होते, कतार विधि होते, और सीधी बुआई होते, और एक श्री विधि होते। श्री विधि जो है ओला मेडागास्कर विधि भी कहतन, ये वैज्ञानिक पद्धति है। और बाकी तो सब धीरे धीरे मैं आप मन ला विस्तृत करके बताऊं। तो पहले मैं आप मन ला छिटका विधि के डिटेल अच्छे से
0: बता दो। स्वागत है।
1: का विधि मतलब अपन नाम से ही समझ आओ कि छिटका छींचना है,
0: छींचना है।
1: और इला इंग्लिश में बोला था ब्रॉडकास्टिंग मेथड, और इला हाथ से खेत में समान रूप से इला छिड़कना है।
0: जी, जी।
1: तो पहले हमन खेत के तैयारी करथन। छिटका विधि में यह दो प्रकार के होते, सूखी छिटका विधि और एक गीली होते। और सूखी छिटका विधि में हमन खेत ला बढ़िया जोताई उताई करके इला बीज ला हल्का नमीदार खेत मा बीज ला बढ़िया समान रूप से बिखेर देथन, छींच देथन। मतलब एला सिंचाई जो है वर्षा के हिसाब से, वर्षा जैसे होते पानी गिरते ओ हिसाब से एमा सिंचाई करते, फिर अंकुरण आते।
0: अच्छा,
1: और दूसरा है सूखा छिटकावा विधि। सूखा में ये होते कि एला गीला छिटका विधि में एमा पानी भर देथन कीचड़ युक्त अवस्था में, एला अंकुरित बीज ला बिखेर देथन समान रूप।
0: जी जी।
1: तो ये दो प्रकार के होते, सूखा और गीला।
0: तो ये बतावा जिन खुरा बाव
1: जी
0: बताते हैं, आप जिन छिटका विधि बताते हैं।
1: हाँ, एक
0: दोनों में फर्क का है।
1: खुर्रा विधि ला ही हमन छिटका विधि बोलते
0: हैं। अच्छा।
1: एक छत्तीसगढ़ भाषा में एला खुर्रा भाव बोलथन। एला पहले क्या करथन कि खेत ले बढ़िया से जुताई उताई करके एला समतल कर देथन।
0: जी।
1: खेत के जुताई करके खरपतवार और ढेला ला बढ़िया हटा देतन, और हटा के स्वस्थ बीज ला पहले उपचारित करथन।
0: जी।
1: उपचारित करना बीज ला बहुत जरूरी है,
0: क्या
1: कई प्रकार के कीटाणु जीवाणु रहते हो में, तो जाके जमीन में जम जाते तो हमारे फसल खराब हो जाते। एला पहली हम बीज ला बढ़िया से उपचारित करना रहते।
0: अच्छा, ये खुर्रा बाउग ले जहाँ तक बात कर वो पांडे भंजी
1: जी,
0: फायदा का हुई हमारे धान के फसल पर?
1: खुर्रा विधि में फायदा ये होते है कि आज के समय में लेबर के इतना चार्ज हो गए है और लेबर मिलत नहीं है, और ये बहुत ज्यादा कास्टिंग हमारे बढ़ जाते, पानी भी ज्यादा लगते जैसे की रोपा में और अन्न में, तो एमा थोड़ा लेबर चार्ज कम लगते, पानी भी कम लगते, वर्षा आधारित है ये
0: जी।
1: तो हिसाब से एलाना कम समय और जल्दी करके और खर्चा कम लगते, इसलिए उखुर्रा भाव विधि छिटका भाव विधि ये हमार अच्छा होते।
0: अच्छा, तो ये जिन पारंपरिक हम धान के पहले जिन खेती करते हमारे पुरखवन
1: जी,
0: वही विधि के बात करा था।
1: हाँ, वही विधि है, वही विधि
0: के बारे में आओ का बात हमारे किसान भाई मन का रखना चाहता था।
1: एला ना समान रूप से छिटकना चाहिए, यानी कि कोनो कति ज्यादा कोनो कति कम, ऐसे नहीं, समान रूप से छींचना चाहिए।
0: बरोबर
1: बरोबर।
0: हाँ।
1: और आवश्यकता अनुसार एमा छिंचाई करना चाहिए। अगर पानी गिर गया, पर्याप्त पानी है तो ज्यादा वो नहीं है, है ना। एकर लाभ है कि कम समय में बुआई हो जाते, मजदूरी भी कम लगते।
0: तो ये खुर्रा बाव के जहाँ तक बात करथन मोहन जी, तो धान के अलग अलग किस्म घलो है, खास करके पेंड्रा गोरेला कोटा क्षेत्र के बात करबो तो जहाँ अक्ति लगी हमारे किसान भाई मन बाव कर दे रहे थे, है ना।
1: हाँ,
0: तो ज्यादा मात्रा में बीज ला बो देबो या कम मात्रा में बीज ला बो देबो, तो ये खल्ले फसल के उत्पादन में का कैसन प्रभाव पड़े के संभावना थे, बताओ ना आप।
1: मतलब जैसे कि आप मन ज्यादा बीज बोधेबो हाँ। तो ओमा अपना जर्मिनेशन जैसे आपस में पेड़ पेड़ में आपस में पौधा पौधा में आपस में पोषक तत्व हाँ पोषक तत्व खींचने का आपस में ये हो जाए तो हाँ संघर्ष तो माना जितना

0: मन बढ़िया से छिजबो और जैसे मान लो छिटा गए है कोनो कति ज्यादा तो ओमा बढ़िया से ये करथन ओला बढ़िया जहाँ ज्यादा ज्यादा हो गए है ओला कम कम जगह में कर देना है निंदाई गुड़ाओ जो उखड़ उखड़ गए है रोपाई करने के बाद छींचने के बाद अच्छा आ गए है पानी भर गए है फसल बड़ा हो गए है तो एक बार और ओमा ब्यासी कर देना है।
1: आज 15 तारीख और वर्षा ऋतु के लगभग लगभग आगमन के सूचना घलो हमारे किसान भाई मन पाक होई कबारे 15 तारीख ले हमारा वर्षा ऋतु शुरू हो जाते तो का आज ले हमारे किसान भाई मन खुर्रा भाव करे शुरू कर सकते थे का।
0: हाँ आप खुर्रा भाव के टाइम हो गए है
1: जी
0: खुर्रा भाव आप मन से ये है अपन भूमि ला बढ़िया जोताई फदाई करके उमा कर दे और जैसे कि थोड़ा सा मौसम पानी जैसे पानी आने वाला है वो हिसाब से एकदम से कहे कि अभी सूखा में एकदम डाल देबो तो फिर वो अंकुरित नहीं हुई बीजा भथाए के डर रहे थे और अभी क्या हो गया है कि अपन ओमा पहले अपन भूमि ला तैयार कर ले भूमि तैयार करे पर बेसल डोज है गोबर सड़ी हुई गोबर की खाद डाल दे 5 से 10 टन प्रति हेक्टेयर और मैं DAP और ये सब तैयारी करके रख ले म्यूरेट और पोटास सब डाल के ये खाद को अंतिम जुलाई के खेत में मिला देना अंतिम जुलाई के समय तक एला खेत में मिला देना है।
1: जी, जी, जी, जी।
0: उसके बाद यूरिया को आपको 2 से 3 किस्तों में 2 से 3 किस्तों में यूरिया को डालना है तो यूरिया को पहले बुआई के समय डालना है बुआई के 20 से 25 दिन बाद
1: जी
0: ओला फिर दूसर में डालना है जब कल्ला निकलने लगी ना तो उस समय डालना है फिर तीसर बाली निकलने के टाइम डालना है।
1: अच्छा खुरहा विधि के जब चर्चा चला थे तो हमारे किसान भाई मतलब बता देवा बोए के पहली कौन कौन किस्म के धान के चुनाव हमारे भाई मन बीजा के चुनाव कर रहे थे बताओ आप।
0: अब बीजा तो ऐसे है कि अपन ऊपर रहते कैसे कैसे बोना है बीजा आप मतलब आप मतलब हाइब्रिड बोना है पतला धान बोना है कि ओला आप मतलब मोटा धान बोना है हमारे यहाँ स्वर्णा 10-10 M2U ये सब मिला थे लाल स्वर्णा सफेद स्वर्णा मतलब जो किस्म के किसान ला जरूरत है जो किस्म के ओला आवश्यकता है खाए बर लेना है बेचे बर लेना है।
1: तो जैसे खुर्रा भाव के बाद आप करा था पांडे बहनी तो हरहुना किस्म के धान हा अच्छा होते के गरुणा के मध्यम बताओ ना
0: कोनो भी लगा सकता ना जैसे जल्दी पकते हरुणा ठीक रहते
1: जी जी जी
0: है ना।
1: हाँ
0: जी
1: तो ये बता देवा जेन बीजाला हमन खुरा बाग बर बोए बर उपयोग मलाथन तो ओखर अंकुरण के जांच हमर किसान भाई मन कैसे करे और ओखर पहली बीजा उपचार के पद्धति बताओ आप।
0: बीजा उपचार कैसे करना है बीजा ला रात भर आप मन ला कोनो भी भंगी साइड में जैसे कारबंडा जिम है बावस्टी नेमा 24 घंटे ला एला बोना है कैसे करना है एला आप मन ला 10 किलो बीजा ला 20 लीटर पानी मा 40 ग्राम भंगी साइड डाल के आप मन ला रात भर के लिए एला छोड़ 24 घंटे के लिए भिगो कर रखना है फिर निकालने के बाद जूट के एक तो जूट के बोरा में मत भर देवे जूट के बोरा में भरने से क्या है कहीं से वो अंकुरित टूट जाते अंकुरण जो एकदम नाजुक होते वो बोरा से निकाल ले ये करे पर में वो टूट जाते तो ओला आप मन बोरा बिछा के छाव में घर में जहाँ धूप ज्यादा ना आए वो तरफ में ओला बिछा के रख देना है।
1: ये बता देवा हमारे कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई मन जे मन खुरा बाउक करना चाहते तो भूया ला कतका गहरा जोतना चाहिए और कतका कतका दूरिया मा जोताई करना चाहिए बताओ ना।
0: नहीं जोताई तो बढ़िया से जैसे अपन ट्रैक्टर से अमन बढ़िया गहरी जोताई करना है
1: या देसी
0: गहरी हाँ गहरी जोताई या देसी हल से करना है कि कहे गहरी जोताई करे से ओ में जितना कीटाणु जीवाणु सब धूप में दे अभी नष्ट हो जाए।
1: जी जी जी
0: और बने कन से अपन सीड ला बढ़िया ट्रीटमेंट करके 24 घंटे बाद भिगो के ला जूट में करके 12 घंटा पर अंकुरित के बर छोड़ देना है।
1: अच्छा ये चर्चा ये चलते कि 70% जो नून के उपचार है ना भाई एक बारे में बतावा ना
0: नून के उपचार भी हम इसी ट्रीटमेंट में कर सकते हैं।
1: अच्छा ये बता दे अभी कार्यक्रम के अभी चर्चा के दौरान आप बतात रहा कि एमा जिन थरहा पद्धति है
0: हाँ,
1: भाई तो का अभी हमारे किसान भाई मन आने थरहा लगाए के तैयारी बर नर्सरी के तैयारी कर सकते है करी तो कैसे करी थोड़ा विस्तार ले बताओ ना बारे में बहन जी।
0: नर्सरी की तैयारी करना है हमला नर्सरी तैयारी करने के लिए सबसे पहले हमला ये करना है कि जमीन ला बढ़िया जोताई करा के जैसे जमीन हम जोताई करा ले बहुत तो जोताई कराने के बाद जहां हमर नर्सरी कैसे लगना है एक एकड़ जैसे 4000 वर्ग मीटर जो जमीन है ओमा 10% मतलब 400 वर्ग

0: मीटर
1: जी
0: जो है वो नर्सरी ओमा तैयार होई
1: जी
0: और 1 एकड़ भर पर्याप्त होई।
1: जी
0: ओमा सबसे पहले जमीन को लेबल होना चाहिए,
1: हाँ
0: बढ़िया बरोबर से जुताई करके ओला
1: जी
0: लेबल कर दे, और ओमा गोबर खाद अवश्य रूप से डालना चाहिए, जैविक खाद डालना चाहिए, गोबर खाद डालना चाहिए, वही जो है कि पानी के ना अवशोषण क्षमता ला बनाए रखते हैं,
1: जी जी जी
0: मॉइस्चर अच्छे से रहना चाहिए, नमी रहना चाहिए,
1: जी
0: तो गोबर खाद अनिवार्य रूप से ओला डालना ही है।
1: अने खेत में पहले मिझार दे।
0: हाँ, बढ़िया मिझा दे, जुताई उताई करके ओला बढ़िया से लेबल में
1: जी
0: लेबल कर दे, और
1: हाँ
0: पानी भर के एक सरका से जमा करके पानी भर दे,
1: हाँ
0: और पानी भर के ओमा ना छाव छाव ऐसे मतलब टुकड़ा ला आप मन ला सिलेक्शन करना है
1: जी
0: नर्सरी भर कि ओमा छाव ज्यादा ना पड़े, छाव
1: अच्छा
0: बिल्कुल ना पड़े, वो
1: अने घाम पड़ना
0: घाम
1: चाहिए।
0: पड़ना चाहिए,
1: जी
0: सूर्य के प्रकाश पर्याप्त रूप में होने चाहिए, पेड़ और के नीचे नहीं होने चाहिए, मतलब छाव नहीं होने चाहिए,
1: जी जी
0: और मिट्टी ला बढ़िया भुरभुरा कर देना चाहिए, बालुई मिट्टी नहीं लेना चाहिए,
1: जी जी
0: कहे कि ओमा पानी रोके के क्षमता नहीं होते, और आप मान ला बढ़िया भुरभुरी और थोड़ा गील काली मिट्टी टाइप के हो ही,
1: अरे नमी धारण करे
0: नमी
1: क्षमता
0: धारण
1: रहे।
0: क्षमता रहे
1: जी
0: वो वैसे लेना चाहिए,
1: अच्छा अच्छा
0: और
1: अच्छा
0: आप मान ला वही अपना 400 वर्ग मीटर में आपको नर्सरी तैयार कर लेना है।
1: नर्सरी के बाद जब चला थे बहन जी, तो जैसे बीज उसे उत्पादन, ऐसे आप मन से ही बुद्धिमान मन या गुरुजन मन कृषि विस्तार अधिकारी मन कथे, तो बीज के चयन करत घानी हमारे किसान भाई मन का था प्रमुख बात ले थरहा तैयार करे के पहली रखा के
0: और
1: बताओ।
0: बीज जैसे अपन थरा सबसे पहले बीज ला हमन जैसे उपचारित करबो ना,
1: जी
0: ऊपर ऊपर जो आ जाते हैं ना
1: जी
0: ओला निकाल देना है, वो
1: अच्छा
0: वजनदार अच्छा होते अपना खुर्रा भाव भी थी।
1: बहन जी, लगातार अपन कार्यक्रम के माध्यम ले उन्नत खेती के बात करथन, चाहे
0: समय लगते अपन समय में नहीं मिली, अब जैसे नर्सरी
1: अने
0: भी पहले
1: सबले
0: से
1: सहूलियत
0: हाँ
1: कने धान के बोए के पद्धति खुर्रा बोनी है।
0: खुर्रा बोनी है अभी हिसाब से खुर्रा बोनी है भाई,
1: हाँ
0: जैसे जैसे किसान जोन जोन डिमांड के हिसाब से सब विधि के अपने अपना
1: हाँ
0: फायदा है।
1: अच्छा, तो निश्चित रूप ले हमर किसान भाई मन एक अपना के अपन बढ़िया आमदनी बढ़ा सकत है, उत्पादन बढ़ा सकत धान के। बात ये करना चाहते ना, अभी चर्चक दिन आप श्री विधि के बात कहे हन भाई, तो श्री विधि है कतिक कारगर रही हमारे कार्यक्रम के, सुनिए किसान भाई मन बताओ।
0: श्री विधि भी है, एमा कम बीज खेती में एमा कम बीज लगते और
1: हाँ
0: कम उम्र के पौधा को अधिक दूरी में एमा लगाए जाते,
1: अच्छा
0: एकदम छोटे नर्सरी जैसे रहते ना वो हिसाब से एला बोए जाते दूर दूर में,
1: अच्छा अच्छा
0: और एमा एक मार्कर चलाथन हमन, मार्कर में एमा करके श्री विधि के एमा पानी के बचत होते, उपज अधिक मिलते, और वैज्ञानिक एवं उन्नत तकनीक माने जाते
1: अच्छा
0: हैं।
1: अच्छा लगातार अपन कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई मल्ला, हम बता दथन के हमारे छत्तीसगढ़ हा जैविक खेती के डर आगू बढ़त जाते, और अलग अलग धान के विधि के बारे में आप बता जाता बहन जी, तो धान के खेती के जैविक के जहाँ तक बात करना चाहबो, तो इखर उपयोग हमारे किसान भाई मन कतेक करे विशाल बताओ आप।
0: जैविक खेती तो बहुत अच्छी खेती होते, पहले के समय में हमन रसायन के उपयोग नहीं
1: हमारे
0: करते,
1: पुरखा मन कम करते
0: पुरखा
1: रही
0: मन कर
1: जी
0: तो अमा फसल हमर भूमि के भी
1: जी
0: भूमि भी चाहते ना कि हम बोला अच्छा चीज मिले
1: मतलब स्वस्थ धरा ओके
0: स्वस्थ।
1: तरह के बात।
0: हाँ,
1: हाँ
0: और धरती माता बचाओ कार्यक्रम योजना अंतर्गत हमारे
1: हाँ
0: विभाग से जैविक खेती और प्राकृतिक खेती में बहुत जोर
1: हवे
0: हवे, ओमा बढ़िया आप मन प्राकृतिक खेती में भी हम कई प्रकार के कई स्टेप में प्राकृतिक खेती होते
1: जी
0: और जैविक खेती होते, ओमा जैविक खेती में किसान के रसायन के आवश्यकता नहीं लगते,
1: जी
0: और खुद से हमन पहली परंपरागत हमन वर्मी खाद बनाते हैं, घुरुवा में खाद बनाते हैं,
1: अनादेव कंपोस्ट है।
0: हाँ वो सब इस्तेमाल हमन जमीन में पहली करना चाहिए।
1: जी जी मतलब ज्यादा से ज्यादा हमारे धान के बोए के पद्धति अगर जैविक हो जाए तो बढ़िया है
0: बहुत
1: बात।
0: बढ़िया है।
1: चला शिखा पांडे जी, आज हमारे कार्यक्रम में आके हमारे किसान भाई मल्ला धान उत्पादन के प्रमुख विधि और छिटका पद्धति से लाभ ये विषय में बढ़िया विस्तार ले जानकारी दे है। निश्चित रूप ले आप मन के दे जानकारी ले हमारे कार्यक्रम के सुनिया किसान भाई बहनी मन फायदा उठाई। आज आकाशवाणी में आके हमारे किसान भाई बहनबर इतना सुखद जानकारी दिया थी आप लगे वो बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, राम राम।
0: राम राम भैया, जय जोहार।
2: अभी संगी हुआ भेंट वार्ता के क्रम में सुनत रहे विषय रही से धान उत्पादन की प्रमुख विधियां एवं छिटका पद्धति से लाभ और ए वार्ता की वार्ताकार रही ने श्रीमती शिखा पांडे जी जौन ही ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी लोखंडी विकास खंड तखतपुर जिला बिलासपुर से इखर ससुर घर गोड बात हमारे राजू भैया कर के लाना त्रीन है। संगवारी मल्ला कार्यक्रम संबंधी एक सूचना बता दी, प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन कार्यक्रम पे आधारित प्रसारित किए जाते।

एमा किसान भाई मन कृषि उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपन स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान पाए बर विशेषज्ञ मन से फोन में सवाल पूछ के ओकर समाधान पाते। अही कड़ी में गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय कोरबा के प्राध्यापक डॉक्टर तरुण कुर्रे जी उपस्थित रही। अखर से बिहनिया 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछे के विषय हो ही खरीफ मौसम में धान बीज उत्पादन तकनीक और बिहनिया 11 बजे से 11:30 तक के विषय रही खरीफ मौसम में दलहनी तिलहनी बीज में उत्पादन तकनीक। ए विषय से संबंधित समस्या और जिज्ञासा के समाधान पाए बर हमार फोन नंबर हवाए 2666592। अब फोन लगाए के पहले बिलासपुर के एसडी कोड 07752 अवश्य लगावा। और ए कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के प्रसारण 18 जून 2026 और 19 जून 2026 को शाम को 7:30 से 8 बजे तक आप सब सुन सका था। संगवारी हुआ सूचना हो गए समाप्त। अब चली मौसम कती। आज के मौसम रिकॉर्ड किए गए है अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 29 डिग्री सेल्सियस। देखा कार्यक्रम ले बेरा हर बुलक गए है। अब कहते कजरी दीदी बेरा हो गए। तब भाई आज के कार्यक्रम ले देवा विदा। चिट्ठी पत्री के अगोरा रही के कार्यक्रम कैसे लागिस। हम आज के कार्यक्रम में ले थन विदा। छोको राम राम जय जोहार।

अभी ग्राम सभा कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:35 हुए हैं। लीजिए, अब हम प्रसारित कर रहे हैं युवा श्रोताओं का मनपसंद कार्यक्रम युवा जगत।

0: नमस्कार, हेलो, हाय, आदाब, सत श्री अकाल, हाउ डू यू डू, कैसे हैं आप? युवा जगत सुनने वाले मेरे सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपका साथी मनीष और आपकी खिदमत में ये बंदा हाजिर है। दोस्तों, सूरज ढलने को है। सूरज की किरणें आसमान में मानो एक नई चित्रकारी बना रही है। आप भी कुछ पल फुर्सत के निकालिए, दोस्तों के संग टहलने जाइए, गीत कोई नए गुनगुनाइए, चाय की प्याली को लबों से लगाइए और रेडियो में अन्न उठाइए हमारे आज के कार्यक्रम का। दोस्तों, आज हम बातें करेंगे ढेर सारी और आनंद लेंगे हमारे ढेर सारी गीतों का, हमारे आज के क्रम फोन करें गीत में। तो बिना किसी देर के हम चलिए आगे बढ़ते हैं, क्योंकि बिना गुरु के होता नहीं कोई चेला। चलिए शुरू करते हैं ये मस्ती का मेला। युवा जगत फोन करें गीत सुनने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
1: हेलो।
0: हाँ, नमस्ते सर। हेलो।
1: नमस्ते भैया,
0: कैसे हैं आप?
1: मैं बढ़िया भैया, आप लोग?
0: मैं, हम भी बहुत बढ़िया हैं, आपसे बातचीत करके और भी बढ़िया हो गए हैं। आप अपना नाम बताएं।
1: मैं कोदवा सागर छत्तीसगढ़ से राम स्वरूप गुप्ता।
0: राम स्वरूप गुप्ता जी,

0: आप क्या काम करते हैं?
1: मैं तीर्थ यात्रा काम करता हूँ, सवारी इकट्ठे करके तीर्थ यात्रा घुमाने के लिए ले जाता हूँ।
0: अच्छा, यानी कि लोग आपसे जुड़कर बहुत सारे पुण्य कमा रहे हैं।
1: हाँ भैया, अभी अब दर्शन भी उनको भी मिल रहा है, हमको भी मिल रहा है, उनका भी पुण्य हमको भी मिल रहा है, स्नान भी मिल जाता है हम लोगों को।
0: जी, तो कितने वर्षों से हैं आप इस कार्य में?
1: मैं करीब भैया 10-15 साल हो गए जुड़ा इसमें। पहले बस में कंडक्टर था, जब से चालू किए थे 20 से अभी तक चल ही रहा है। साल में 2-3 टूर निकल जाता है आराम से।
0: अच्छा, तो कैसा रहता है और इस काम से जुड़कर आपको कितनी प्रसन्नता होती है?
1: नहीं, इसमें प्रशंसा तो होती है भैया, प्रसन्नता के साथ साथ क्या कुछ अपना भी फायदा बन जाता है उसमें। साथ में दर्शन भी हो जाता है, साथ में परिवार भी घूम लिए हैं। अब कम से कम मैं तो जाते रहते हैं भैया, अच्छा ही लगता है। सभी तो दर्शन स्थल है, भगवान का पूरा तो देन है, उसमें हम लोग भी खुश हैं बहुत।
0: जी,
1: हाँ भैया,
0: हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
1: जी भैया, धन्यवाद भैया, प्रणाम
0: प्रणाम।
2: हेलो,
0: हेलो,
2: नमस्कार सर।
0: नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप?
2: बस बढ़िया है सर।
0: अच्छा, क्या नाम है आपका?
2: रोशन जवान बोल रहा हूँ सर, बिलाईगढ़ से।
0: अच्छा रोशन जी, क्या काम करते हैं आप?
2: ये हमारा हाथ का ही काम है सर, पूरा हाथ से ही बनाते हैं, और मशीन नहीं है, हाथ करघा लगा हुआ है घर में।
0: जी,
2: उसी से बनाते हैं सर। हमारा पुश्तैनी काम है, बाप दादा पर दादा ऐसे चलते आ रहा है काम हमारा, और दिन के हिसाब से डिजाइन भी बदल रहा है सर।
0: जी, यानी कि छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक संपदा को आप एक अलग पहचान दे रहे हैं अपने काम के माध्यम से।
2: जी सर, हमारे क्षेत्र में बहुत बुनकर हैं सर। हमारे यहाँ तो कम से कम देवांगन परिवार तो 500 परिवार हैं सर हमारे बिलाईगढ़ में।
0: अच्छा,
2: और सभी के यहाँ यही काम चलता है सर, सब साड़ियाँ बनाते हैं सब, और आस पास में और बहुत सारे देवांगन है।
0: हाँ,
2: तो उनके यहाँ पूरा यही काम चलता है सर, अपना ये हाथकरघा का।
0: अच्छा, तो जब आपके हाथ की बुनी हुई साड़ियाँ जब हमारी माताएं बहनें पहनती हैं, तो वो भी बहुत खुश हो जाती होगी, तो यह प्रसन्नता देखकर आपको कैसे लगती है?
2: जी सर, ये छत्तीसगढ़ में बहुत कम है सर इसका चलन जो है।
0: जी,
2: ये उड़ीसा प्रिंट है सर, उड़ीसा का डिजाइन है।
0: हाँ,
2: और उड़ीसा वाले ज्यादा यूज करते सर।
0: जी, आप हमसे बातचीत करने का आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
2: जी सर, धन्यवाद सर।
0: हेलो, नमस्कार।
3: नमस्कार सर,
0: क्या नाम है आपका, कैसे हैं आप?
3: मेरा शुभ नाम है देवोजी दास, और मेरा गांव का नाम है बद्रीपुर, डिस्ट्रिक्ट कच्छर, असम से।
0: अच्छा देवोजीत, आप असम से कॉल कर रहे हैं हमें, कैसा है मौसम असम का?
3: मौसम तो गर्मी है।
0: गर्मी है बहुत, वहाँ पे क्या खास है आपके जगह की?
3: मेरे तो पहाड़ी इलाके।
0: अच्छा, यानी कि पहाड़ों के बीच रहते हैं आप, और मौसम बहुत साफ सुथरा और बहुत ही ताजगी भरा, लोग आते होंगे आपके यहाँ पर तो खुश हो जाते होंगे।
3: हाँ, खुश हो जाती है।
0: अच्छा,
3: तो सर मैं तो आज पहली बार आपका आपके पसंद में मैंने फोन किया आज पहली बार, और मैं तो आज मैं आकाशवाणी बिलासपुर में फोन कार्यक्रम में सुनता हूँ।
0: बिल्कुल, बहुत हमें बहुत अच्छा लगा देवोजीत जी कि आपने हमें कॉल किया। तो पसंद का कौन सा गाना आप सुनना चाहेंगे?
3: फिल्म का नाम है आशिकी,
0: आशिकी,
3: और गाना क्या बोल है, अब तेरे बिन जिनेंगे हम। पिताजी है जितन कुमार दास, और माता जी है शिल्परानी दास, और भैया है जोजीत दास, और आपके लिए सर गाना भी, और मेरा फेवरेट दोस्त है मेरा असम से है, मेरा बड़े भैया है अनुप भट्टाचार्य, और दीदी है छोटबा भट्टाचार्य, और अभी जो आकाशवाणी बिलासपुर में कार्यक्रम सुनते हैं आपके पसंद, ये सारे श्रोताओं के लिए गाना डेडिकेट करूंगा।
0: जी।

0: हेलो।
1: हेलो। हाँ भैया, का
0: नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है। योगेश जांगड़े बेमेतरा छत्तीसगढ़ से बोल रहे हैं।
0: अच्छा योगेश जी, और बेमेतरा में क्या हाल चाल है, क्या करते हैं आप?
1: हम खेती बाड़ी का हमारा मूल काम है
0: अच्छा, तो अभी कौन
1: जी।
0: सी फसल ली है आपने?
1: अभी तो नहीं लिए हैं भैया, दो ही फसल लेते हैं, धान और गेहूं की। जी
0: हाँ, यानी कि अभी मॉनसून आने वाली है, बारिश होने वाली, तो उसकी तैयारी कर रहे हैं आप।
1: जी जी
0: अच्छा, और इसके अलावा क्या करते हैं आप जब खाली होते हैं, फ्री होते हैं तो?
1: अब ऐसे थोड़ा हिस्टोरिकल बुक्स वगैरह पढ़ना अच्छा लगता है,
0: हाँ,
1: घूमना फिरना अच्छा लगता है जी।
0: जी तो कहाँ कहाँ घूम चुके हैं आप?
1: मनाली घूम चुका हूँ, विशाखापट्टनम, जगन्नाथपुरी, इधर अमरकंटक,
0: हाँ,
1: दिल्ली
0: अच्छा,
1: जी
0: यानी कि सभी दिशाओं में आप एक बार घूम चुके हैं, और आगे किसी
1: जी
0: कोई ट्रिप प्लान कर रहे हैं आप जाने का फिर से?
1: हाँ जी।
0: जी, तो और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: सभी हैं, माता पिता, पत्नी, बच्चे, भाई बहन। धन्यवाद।
0: अच्छा, हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया जी। हेलो,
1: हेलो, नमस्कार सर।
0: नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप?
1: हम लोग तो सब ठीक ठाक है सर।
0: अच्छा, और क्या कर रहे हैं आप, और क्या नाम है आपका?
1: भाटापारा दतरंगी से हीरू राम साहू बोल रहा हूँ सर।
0: जी
1: नमस्कार।
0: हीरो जी, नमस्ते नमस्ते। भाटापारा में अभी क्या चल रहा है?
1: अभी तो गर्मी बहुत पड़ रहा है सर, शाम
0: हाँ,
1: के आंधी तूफान आता है और दिन मन गर्मी करता है सर।
0: जी, मौसम तो
1: जी
0: बिल्कुल ऐसे ही हो चुका है, 5 मिनट की छिटपुट बारिश होती है, लेकिन उसका जो तामझाम है, क्या बोलते हैं, उसमें हम सभी परेशान हो जाते हैं।
1: ना सर।
0: अच्छा, तो आप और क्या क्या करते हैं आप भाटापारा में?
1: भाटापारा में तो कुछ नहीं करते हैं सर, छोटे से काम कर लेते हैं, अलवा जलवा, रामायण
0: जी जी
1: मान घूमता हूँ सर।
0: हाँ, घर में कौन कौन रहते हैं आप लोग?
1: दो बच्चा है,
0: हाँ,
1: एक भाई जी है सर।
0: जी, नमस्ते नमस्ते, कैसी हैं आप और आपका नाम क्या है?
2: बढ़िया, मैं बिलासपुर से बोल रही हूँ। मेरा नाम उषा राठौर है और मैं अपनी बेटी नव्या राठौर के लिए गाना सुनाना चाहती हूँ।
0: जी उषा जी, आप क्या काम करती हैं ये भी तो हमें बताइए।
2: मैं कॉलेज में पढ़ाती हूँ
0: हाँ,
2: जी
0: आकाशवाणी आप बिलासपुर सुनती हैं?
2: जी जी आकाशवाणी बिलासपुर मैं हमेशा सुनती हूँ, और मैं चाहती थी कि मैं कभी, मेरे कभी ऐसा मौका नहीं मिला मुझे कि मैं अपने पसंदीदा गाना आकाशवाणी में बोल के ऐसे सुनाऊं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है कि मेरा नंबर लग गया और मुझे गाना सुनने का मौका मिलेगा।
0: जी, उषा जी, मैं ये पूछ रहा था, आपकी जो बेटी नव्या है

0: वो क्या करती हैं अभी, पढ़ाई करती हैं?
1: हाँ, वो अभी फिलहाल जस्ट पढ़ाई करके निकली है और अभी जॉब कर रही है वो रायपुर में।
0: अच्छा,
1: तो इसलिए मैं उसको, जो मैं उसको बचपन में सुनाया करती थी जब वो उसको सुनाने के लिए लोरी जैसा मैं उसके लिए गाया करती थी उस गाने को।
0: अच्छा,
1: तो मैं चाहती हूँ कि मैं उस गाने को उसके लिए प्रस्तुत करूँ।
0: बिल्कुल बिल्कुल, हम आपका पसंद का गाना बिल्कुल बजाएंगे। और
1: एक गाने का बोल है, तुझे सूरज कहूँ या चंदा, एक फूल दो माली से, मन्ना डे जी की आवाज में।
0: जी,

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: पापा के गुजर जाने के बाद एकदम अकेला पड़ गया था। कभी कर्ज की चिंता, कभी ब्याज का बोझ, फिर पता चला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में, तब लगा कोई अपना भी साथ खड़ा है।
2: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,00,000 करोड़ रुपए का फसल बीमा, 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड और MSP पर 26,00,000 करोड़ रुपए से अधिक की फसल खरीद से देश के किसानों को मिली मजबूती।
3: 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा जन प्रसार हेतु जारी।
4: हेलो
5: सर, नमस्कार, वंदे मातरम।
4: बिल्कुल, कैसे हैं आप?
5: जी मैं बनियापारा धमतरी से बोल रहा हूँ सर, रामचंद्र मखिया काफिर भाई।
4: अच्छा रामचंद्र जी।

0: क्या करते हैं आप?
1: मेरा रेडीमेड का काम है सर, पढ़ाई लिखाई के बाद पर रेडीमेड काम कर दिए, अभी चेंज कर दिए, पहले थान कपड़े बेचते थे, समय का परिवर्तन है।
0: तो अभी आप रेडीमेड कपड़े बेचते हैं, क्या क्या बेचते हैं कपड़ों में?
1: जींस शर्ट नाइटी और साइड में गमछा वगैरह बनियान अंडर गारमेंट टाइप का।
0: जी जी जी, तो आपके यहाँ पर क्या हाल चाल है और क्या अभी क्या कर रहे हैं आप इसके अलावा?
1: बस इसके अलावा यही अपना खेती, यही बोता दुकानदारी का है, और अभी तो मौसम बदला हुआ है
0: जी,
1: ठंडकता आ गई है, बादल छाए हुए हैं रात से लेके।
0: जी जी, तो इस मौसम में क्या खाने पीने का, कहीं घूमने का भी मन करता है आपका?
1: हमारा मन सर सादा जीवन उच्चार है, दाल रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, बाहर का खाना बहुत कम खाता हूँ।
0: अच्छा अच्छा,
1: क्योंकि बाहर का खाओ तो धूल ढक्कर रहता है, ठेले में चाट वगैरह जैसे भी है
0: जी,
1: गाड़ियाँ चलती हैं, धूल उड़ते रहता है, तो नहीं के बराबर खाते हैं जैसे।
0: जी जी, तो हम आपकी पसंद का कौन सा गाना सुना सकते हैं आपके?
1: क्योंकि बाहर का खाएंगे ना फिर धूल ढक्कर हवा में रहता है, वो कीटाणु अंदर चले जाए, फिर तबीयत खराब हो, दिल तो चाहता है गरम गरम चीजें निकल रही खाया जाए, समोसा है, भजिया है, बड़ा है ना।
0: जी जी,
1: लेकिन तबीयत स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो मतलब क्या,
0: बिल्कुल,
1: तो दिल है कि मानता ही नहीं है ना।
0: हाँ,
1: या शराब सुनाइएगा।
0: तो और आप अपनी सेहत का इसी तरह आप ध्यान रखने के लिए और क्या क्या करते हैं?
1: सेहत के लिए वही है सर, गर्म पानी पीना है, ठंड आ रहा है तो, और मेरे को एलर्जी है 12 महीने।
0: अच्छा,
1: थोड़ा भी धूल लगकर चलेगा तो स्वास्थ्य बिगड़ जाता है, तो अपने को संभालना पड़ता है, और वातानुकूलित सुपाच्य भोजन करना चाहिए, ये ध्यान ज्यादा देता हूँ मैं।
0: जी, तो आप इसी तरह और आरोग्य बने रहें।
1: ओके सर, धन्यवाद, वंदे मातरम सर।
0: वंदे मातरम। नमस्ते, फोन करें गीत सुने कार्यक्रम में आपका स्वागत है।
2: नमस्ते सर जी।
0: नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप
2: जी? अच्छा हूँ, मैं डॉक्टर सितारे बोल रहा हूँ।
0: अच्छा अच्छा, तो क्या?
2: बिहार का वैशाली जिला है।
0: अच्छा, बिहार से हैं आप?
2: जी जी।
0: और कब से आप युवा जगत सुन रहे हैं?
2: इधर सुन रहा हूँ, मेरे दोस्तों ने बताया कि बिलासपुरी फोन कीजिए, बहुत अच्छा सेवा देते हैं उन लोग।
0: जी जी, और क्या मौसम है आपके यहाँ और क्या क्या अभी आप घूमने के लिए कहीं जाते हैं?
2: मौसम तो अभी कल से कुछ ठीक हो गया है, पानी बरसा है, आम लीची ज्यादा होता है, खेती होती है
0: जी,
2: गेहूँ बसता है, तम्बाकू बसता है। मेरे दो मित्र हैं सर जी, गजराज लोधी है, विजय कुमार पांडे।
0: हेलो
3: हेलो,
0: क्या नाम है आपका?
3: तो आपको हमारा सादर प्रणाम, जय जोहार सर जी।
0: जय जोहार, जय जोहार
3: जी। हम महाराष्ट्र के यवतमाल विदर्भ से आपके श्रोता संतोष खड़ से बोल रहे हैं।
0: अच्छा संतोष जी, क्या काम करते हैं आप
3: जी? हम तो पुणे में एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में नौकरी करते हैं सर जी, और आकाशवाणी बिलासपुर 2019 से मतलब आकाशवाणी के मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हुआ ना, तब से सुनते हैं और लगातार सुनते हैं। आपके युवा जगत के कार्यक्रम भी हम बहुत पसंद करते हैं, आपकी प्रस्तुति भी हमें बहुत मनभावन लगती है।
0: जी जी,
3: आपके जो प्रश्नोत्तरी का क्रम है, सवाल जवाब वगैरह, उसमें भी हमारी सहभागिता रहती है।
0: हाँ,
3: और आप हमें शामिल करते हैं युवा प्रसंग में भी, तो बहुत अच्छा लगता है सर जी।
0: जी जी, तो विदर्भ में इसके अलावा आप और क्या काम करते हैं?
3: जी हम तो कंपनी में हमारा काम तो चलता ही है, नौकरी तो करते है, इसके अलावा हम जो सोशल मीडिया वगैरह है उसके जरिए भी थोड़ा हमारा अर्निंग का जो थोड़ा बहुत प्रयास करते हैं, जैसे कि कोई विज्ञापन वगैरह हो, हमारे दोस्त के कई दुकान वगैरह रहते हैं तो उनका वगैरह वीडियो वगैरह बना के देना वगैरह, वीडियो एडिटिंग वगैरह, ऐसे कुछ थोड़े बहुत शौक है हमें।
0: जी जी,
3: तो समय का सदुपयोग वैसे भी हम करते हैं सोशल मीडिया का, और अन्य समय में तो आकाशवाणी सुनना पसंद करते हैं
0: जी। तो हम आपकी पसंद का कौन सा गीत सुनाएं आपको?
3: तो अभी मानसून का आगमन होने को ही है, हमारे महाराष्ट्र में हवामान सूत्रों के अनुसार 15 जून को आगमन होने को है मानसून का, तो इसी इंतजार में, इसी खुशी में कुछ गीत हम पसंद कर रहे हैं। 2013 में आई थी मूवी जैकपॉट, अरिजीत सिंह की आवाज में, कभी जो बादल बरसे मैं देखो तुझे आंखें तरसे।

नदियां पानी देकर बहती हैं, धरती अन्न देकर रहती हैं, सूरज रोशनी बांटता है हर दिन, और इंसान तब महान बनता है जब वह किसी की जिंदगी बांटता नहीं बचाता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे महादान की जिसमें न सोना लगता है, न चांदी, न धन दौलत का खजाना, बस चाहिए एक नेक इरादा, संवेदनशील दिल और कुछ बूंदें रक्त की। मंदिर में दीप जलाने से पहले किसी की जिंदगी में उजाला कर दो, भगवान को फूल चढ़ाने से पहले किसी जरूरतमंद को रक्तदान कर दो, किसी अस्पताल के कमरे में एक माँ अपने बच्चे की सलामती की दुआ कर रही हो। दोस्तों, सोचिए कोई दुर्घटना का शिकार जीवन और मृत्यु के बीच संघर्ष कर रहा हो, कोई थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चा हर महीने का रक्त का इंतजार करता हो, तो ऐसे में किसी अनजान व्यक्ति का किया गया रक्तदान उनके लिए किसी फरिश्ते की तरह ही पहुंचता है। तो युवा साथियों, जो अपने हिस्सों की खुशियां बांट जाता है वह इंसानियत का दीप जलाता है। खून की कुछ बूंदें देकर देखिए, कोई किसी का जीवन दाता कहलाता है। हम अक्सर सोचते हैं कि रक्तदान करने से कमजोरी आ जाएगी, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह पूरी तरह सुरक्षित प्रक्रिया है। एक स्वस्थ व्यक्ति कुछ महीनों के अंतराल में रक्तदान कर सकता है और शरीर थोड़े समय में उस रक्त की पूर्ति भी कर देता है। युवा शक्ति देश की सबसे बड़ी ताकत है। अगर हर स्वस्थ युवा वर्ष में एक या दो बार रक्तदान का संकल्प ले ले तो शायद किसी अस्पताल में रक्त की कमी से किसी की जान ना जाए। दोस्तों, रक्त का कोई कारखाना नहीं होता, ना कोई मशीन इसे बना सकती है। रक्त केवल इंसान ही इंसान को दे सकता है, इसलिए जब भी अवसर मिले योग्य होने पर रक्तदान अवश्य करें और दूसरों को इसके लिए प्रेरित भी करें। आपका रक्त किसी की रगों में बहकर आपके सपनों को उड़ान दे सकता है। उसकी एक छोटी सी पहल किसी परिवार को

नया आसमान भी दे सकती है। तो दोस्तों, इसी सुंदर संदेश के साथ आज की बात यहीं समाप्त होती है। तो आप बताइए कि गर्मियों की छुट्टियां आप सभी खत्म हो गई हैं और कल से हमारे बहुत सारे साथी परीक्षाओं की तैयारी में रम जाएंगे, कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स की तैयारी भी करेंगे। आप सभी ने बहुत मेहनत की होगी और उसी तरह आप सभी को आपकी सफलता भी मिलेगी। हम आपकी बेहतर भविष्य और उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और इसी के साथ फिर मिलेंगे आपसे एक नई विचार, नई ऊर्जा और नई प्रेरणा के साथ। तब तक के लिए अपने साथी मनीष को दीजिए विदा। खुदा हाफिज। जय जोहार।

अभी युवा जगत कार्यक्रम का प्रसारण किया जा रहा था। यह आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र का प्रसारण है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर संध्या के 6:05 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम विवरण। पहले हम आपको बता दें इस सभा के शेष कार्यक्रमों के बारे में। श्रोताओं, आज संध्या 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला विदेश नीति हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। सुगम संगीत के कार्यक्रम में आज रात 8 बजे हम आपको सुनवाएंगे कलाकार अदनान सामी के गाए गीत। रजनीगंधा कार्यक्रम लेकर हम हाजिर रहेंगे रात 8:15 पर। ईमेल करें, गीत सुने कार्यक्रम का समय रहेगा संध्या 6:20 पर और इसका शेष भाग सुना जा सकता है 7 बजे। विविध भारती के कार्यक्रम हम रिले करेंगे रात 9:15 से। ये थी इस सभा के कार्यक्रमों की रूपरेखा। और अब एक नजर हमारे केंद्र से कल यानी मंगलवार को प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों पर। कल हमारी प्रातःकालीन सभा में सुबह 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में सामयिक सुझाव का विषय रहेगा खेती बर औजार की तैयारी। सुबह 6:45 पर चिंतन कार्यक्रम में डॉक्टर दानी प्रसाद शर्मा का आलेख स्वच्छता हमारे श्रोता सुन सकते हैं। सुबह 7:05 पर प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण करेंगे और 7:30 पर हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे कार्यक्रम सदाबहार नगमे। छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्य पत्रिका मोर भुइयां 8:30 पर और 10 बजे प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे। नए तराने कार्यक्रम हम अपने श्रोताओं को सुनवाएंगे 10:30 पर। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण करेंगे दिन में 11 बजे और विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे 11:30 से। श्रोताओं, कल संध्या 5:05 पर किसानवाणी कार्यक्रम में आज की बात का विषय रहेगा प्राकृतिक एवं जैविक खेती का महत्व। इसके अलावा स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित किसानवाणी गांव में क्रम में ग्राम सरायपाली विकासखंड कोटा जिला बिलासपुर के कृषकों के मध्य ध्वन्यांकित किया हुआ कार्यक्रम श्रोता सुन सकते हैं। कार्यक्रम का संयोजन एवं प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की है। कल संध्या 5:35 पर महिला सभा कार्यक्रम में सामयिक चर्चा होगी खेल कूद से सशक्तिकरण। इसके अलावा क्रम भेंट वार्ता में सुनिएगा महिला पुलिस साहस और सुरक्षा विषय पर पुलिस उप पुलिस अधीक्षक बिलासपुर श्रीमती मंजू केरकेटा से भेंट वार्ता। कल संध्या 7:10 पर केंद्र सरकार के 12 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। कल रात 8 बजे छत्तीसगढ़ी में कार्यक्रम भुइयां के बोली में श्री केदार दुबे से वार्ता सुनिएगा प्रकृति और पर्यावरण ले जुड़े हमर लोक संस्कृति। और इसके अलावा श्री आशीष श्रीवास से काव्य पाठ हमारे श्रोता सुन सकेंगे। कार्यक्रम का संपादन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की है। रजनीगंधा कार्यक्रम का समय रहेगा रात 8:20 पर। विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे रात 9:15 पर। और अब कृपया कार्यक्रम संबंधी एक और सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद पशुपालन मुर्गी पालन मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि

0: विद्यालय कोरबा के प्राध्यापक डॉक्टर तरुण कुर्रे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ मौसम में धान बीजों का उत्पादन तकनीक, और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा खरीफ मौसम में दलहनी तिलहन बीजोत्पादन तकनीक। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592। फोन लगाने के पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 077752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों के रिकॉर्डिंग का प्रसारण 18 जून 2026 और 19 जून 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 6:10 होने को हैं। कुछ क्षणों के बाद छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग धर्मेंद्र दुबे के जय जोहार। आज के प्रमुख समाचार। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 13 जुलाई ले शुरू, 17 जुलाई तक चलैया सत्र में 5 बैठक होगी। प्रदेश में बिजली के भाव में करीबन 6% के बढ़ोतरी करेगी और गर्मी छुट्टी के बाद काली ले जम्मो सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुली। 27 जून तक मनाया जाएगी साला प्रवेश उत्सव। अब समाचार विस्तार ले। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 13 जुलाई ले शुरू होगी। विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा है बारे में अधिसूचना जारी कर दे है। 17 जुलाई तक चलैया इस सत्र में कुल 5 बैठक होगी। सत्र के दौरान वित्तीय कामकाज के संगे संग आने सरकारी काम पूरा करे जाही। भारत है पश्चिम एशिया में चलत संघर्ष ल खत्म करे बर अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौता के स्वागत करे है। ये संघर्ष ले विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट खड़े हो गए रहिस। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री है कहिन कि ये समझौता ले क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है कहिन है कि देश के मध्यम वर्ग है राष्ट्र निर्माण में बड़का योगदान दे है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री है कहिन कि पाछू 1 दशक में सरकार है आम लोगन मन के जिंदगी ल सुधारे बर बढ़िया बुनियादी ढांचा, कम खर्चा में स्वास्थ्य सेवा, बने ढंग ले पढ़ाई लिखाई, साफ सफाई वाले शहर के संगे संग सार्वजनिक सेवा मन ऊपर ध्यान दे हवे। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग है घरेलू उपभोक्ता के बिजली दर में 30 पैसा प्रति यूनिट ले 50 पैसा प्रति यूनिट की बढ़ोतरी करे है। इसने बिजली दर में 6.23% की बढ़ोतरी करे गए है। उन्हें घरेलू गैर घरेलू उपभोक्ता के बिजली दर में 20 पैसा ले 40 पैसा प्रति यूनिट के बढ़ोतरी करे गए है। कृषि पंप मन में बिजली के भाव में प्रति यूनिट 40 पैसा की बढ़ोतरी करे गए है। उन्हें गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शन ल ऊर्जा प्रभार में दे जाए छूट ल 30% ले बढ़ा के 40% कर दे गए है। बिजली के बढ़े दर अवैया 1 जुलाई ले प्रभावी होगी। गर्मी के छुट्टी के बाद काली ले प्रदेश के जम्मो सरकारी और प्राइवेट स्कूल बंद खुल जही। ये दौरान हुआ यह कार्यक्रम में साला प्रवेश उत्सव पर स्कूल प्रबंधन है पूरा तैयारी कर ली है। साला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल अवैया नवा लड़का मल्ला तिलक लगा के स्वागत करे जाही और संगे संग छात्र मल्ला पुस्तक ड्रेस और साइकिल दे जाही। इसी बीच स्कूल शिक्षा विभाग है प्रदेश के स्कूल मन में नवा शिक्षा सत्र ले राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत और राज्य गीत के संगे संग आने आने गतिविधि ल जरूरी रूप ले कराए जाए के निर्देश जारी करे है। मुख्यमंत्री है प्रदेश के जम्मू जनप्रतिनिधि मल्ला चिट्ठी लिख के 16 ले 27 जून तक होइया साला प्रवेश उत्सव में अपन भागीदारी देके आह्वान करे है। मुख्यमंत्री है कहिन है कि शिक्षा है कोनो भी समाज और राष्ट्र के विकास के आधार है। उमन मंत्री, सांसद, विधायक, जिला पंचायत और जनपद पंचायत अध्यक्ष, महापौर के संगे संग नगरी निकाय मन के जनप्रतिनिधि मन ले विनती करें कि अपन क्षेत्र के स्कूल में जाके ये अभियान में सहभागी बने। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के गर्मी की छुट्टी खत्म होने के बाद आज ले खंडपीठ और एकल पीठ मन में सुनवाई एक घाव फिर शुरू हो गई। आज ले वकील मन है अदालत कक्ष में आके अपन पक्ष रखिन। जानबा के मुताबिक हाईकोर्ट में गर्मी छुट्टी 18 मई ले शुरू हो रही। इस दौरान सिर्फ जरूरी मामला मन के सुनवाई पर हरेक हफ्ता विशेष अवकाशकालीन पीठ बनाई गई रही। अवैया मानसून ल देखत आज ले छत्तीसगढ़ के जम्मो टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य मन ल पर्यटक मन भर बंद कर दे गए है। ये जम्मो संरक्षित वन क्षेत्र अब 1 अक्टूबर तक बंद रही। वन विभाग के मुताबिक पर्यटक मन भर अब जंगल के दरवाजा 2 अक्टूबर ले खोले जाही। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA है मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिला पर दोबारा होवत परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दे है। एला NTA के वेबसाइट neet.nta.in nic.in ले

0: डाउनलोड करे जा सकते। परीक्षा 21 जून के मझनिया 2 बजे ले शुरू होगी। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुना था।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपके वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगू बढ़बो बांचे समाचार कोती। पशुपालन ला बढ़ावा देबर राज्य सरकार ह बस्तर के हर परिवार ला दू दू ठिन गाय या भैंस दीही। ए घोषणा काले रायपुर में होए एक ठिन पुस्तक के विमोचन समारोह के मौका में मुख्यमंत्री ह कहिन। उमन कहिन कि नक्सलवाद के सेती बस्तर के लोगन मन ह विकास ले दुरियाहीस। एखरे सेती अब तेजी ले विकास काम करे जाही। एखर बर रोड मैप तैयार कर ले गे हे। मुख्यमंत्री ह बताइन कि गांव गांव में राशन दुकान खोले जात हे और सुरक्षा शिविर मन ला सेवा डेरा के रूप में विकसित करे जात हे। कार्यक्रम के ए मौका में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा घलो शामिल होइन। दुर्ग जिला के पुलिस लाइन सभागार में हो एक ठिन कार्यक्रम में आज राष्ट्रपति कोतिले शौर्य चक्र ले सम्मानित निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख के नागरिक अभिनंदन करेगी। ये मौका में पुलिस अधीक्षक विजय अग्रवाल है कहिन कि ये दोनों अधिकारी मन कठिन स्थिति में साहस धैर्य के परिचय देके छत्तीसगढ़ पुलिस के गौरव बढ़ा है। उमन बताइन कि शौर्य चक्र शांतिकाल में दे जाए देश के तीसरा सर्वोच्च वीरता सम्मान रहे। ए बेरा कांकेर जिला के पखांजूर थाना प्रभारी निरीक्षक लक्ष्मण केवट है 40 ठिन सफल नक्सल मुठभेड़ मन में शामिल रहीन। तो उन्हें भानु प्रतापपुर थाना प्रभारी निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख है 25 ठिन नक्सल विरोधी अभियान में अपन भूमिका निभाइन। आयुष मंत्रालय है आज नई दिल्ली में 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के होवैया कार्यक्रम पर औपचारिक कार्यक्रम मन के शुभारंभ करिन। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव है नई दिल्ली में संवाददाता मन ला बताइन कि प्रमुख कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कोलकाता के रेड रोड में करे जाही। उमन बताइन कि ये मौका में 45 मिनट के योग प्रोटोकॉल रखे जाही। एसओ के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। केंद्र के मोदी सरकार के 12 बच्चर पूरा होए के मौका में गौरेला पिंडरा मरवाही जिला के भारतीय जनता पार्टी पिछड़ा वर्ग मोर्चा डहार ले पिंडरा नगर के मुक्तिधाम परिसर में स्वच्छता अभियान चलाएगी। उन्हें शक्ति जिला पंचायत कार्यालय में घलो मोदी सरकार के 12 साल पूरा होए ऊपर प्रदर्शनी रखी गई है। रायपुर में होए 36वां राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी मन बढ़िया प्रदर्शन करीन। नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में होए 3 दिन के प्रतियोगिता के आखिरी दिन काली छत्तीसगढ़ है 1 स्वर्ण 2 रजत और 1 ठिन कांस्य पदक के संग 4 ठिन पदक जीतीन। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ला कुल 3 स्वर्ण 2 रजत और 4 ठिन कांस्य पदक मिलीस। पूरा प्रतियोगिता में मध्य प्रदेश का पहली जगह बनाईस तो उन्हें दूसर स्थान में केरल और ओडिशा ला तीसर स्थान मिलीस। प्रतियोगिता में देश के 24 राज्य ले करीबन 800 खिलाड़ी मन भाग लीन। अब पेश है मौसम के हाल। मौसम विभाग के मुताबिक छत्तीसगढ़ में मानसून के पहुंचे में थोड़ी समय लग सकते हैं। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी है बताइन कि बिहार ले लेके दक्षिण छत्तीसगढ़ तक एक ठिन द्रोणिका बने हैं। एकर प्रभाव ले कोनो कोनो जगह में गरज चमक के संग वर्षा हो सकती है। अब थोड़कुन समाचार सार में। दुर्ग जिला के अग्रसेन चौक और ओखर तीर तखार के रद्दा में अवैध रूप से चलाए जात ठेला खोमचा वाले मन ल प्रशासन डहार ले हटाए के कार्रवाई करेगी। कबीरधाम जिला के दसरंगपुर पिपरिया थाना और साइबर सेल के संयुक्त टीम है बिजली वाले जिनिस के गबन और चोरी के आरोप में 5 जिन आरोपी मल्ला गिरफ्तार करे है। और कोंडागांव जिला में पटवारी भर्ती में चयन कराए के झांसा देवैया एक जिन मनखे ले करीबन 6.5 लाख रुपया के ठगी करे के मामला आगुआ है। ये मामला में पुलिस एक जिन युवक ल गिरफ्तार करे है। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र 13 जुलाई ले शुरू 17 जुलाई तक चलैया सत्र में हो ही 5 बैठक। प्रदेश में बिजली के भाव में करीबन 6% के बढ़ोतरी करेगी और गर्मी छुट्टी के बाद काली ले जम्मो सरकारी और प्राइवेट स्कूल खुल ही 27 जून तक मनाया जाही साला प्रवेश उत्सव। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन

0: इन्हें सिरावत है जय जोहार।
1: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:20 होने को हैं और अब आइए रुख करते हैं ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों के कार्यक्रम का। कार्यक्रम का नाम ईमेल करें गीत सुने और कार्यक्रम के इस भाग की शुरुआत में आप सभी की ईमेल फरमाइशें हम ले रहे हैं। पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक अलौकिक चंसौलिया, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी, रघुवीर नगर से दिलावर खान हसीना बानो इलीजा नायाब और लड्डू, झांसी से हांसी से राजू मिगलानी बबीता मिगलानी सुभाष योगी और बब्बू डब्बू, जगरांव से सुनील पाठक कमल पाठक दीपकमल मल्होत्रा गव्या मल्होत्रा सुचा सिंह पाठक, धुर्रा बांधा भाटापारा से प्रमोद साहू देव नवीन युवराज साहू और नाईवाला हनुमानगढ़ राजस्थान से वेद मिड्ढा अलका मिड्ढा, बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा अंजनी ज्योति निधि निखिल यश प्रयाण शिवम रेखा धनेश्वरी वर्मा, रघुनाथपुरा श्री गंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी हेमलता हिना हर्षित और खुशी गोस्वामी, भिलाई से अशोक श्याम कुंवर प्रमिला और आसमा श्याम कुंवर, गंडई टिकरी पैरा से जागेश्वर देवांगन कचरीबाई दीपक जयश्री ऋषभ ऋचा देवांगन, कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शाहिना हसन नाजिया इब्राहिम, सनावत से है मोहम्मद सादिक मुश्ताक अहमद मोहम्मद शाकिर मोहम्मद अल्तमस खत्री मोहम्मद अलकमा खत्री रमेश गोड़ मोहम्मद असादाब खत्री, लूतरा खमरिया से अक्रम आमीन अर्श और आतिका और लोहगढ़ ठाकुरावाला से हैं स्वर्ण सिंह गिल दलजीत सिंह राजदीप सिंह गुरनूर गुरलाल सिंह अविराज सिंह, रिंगनी से दिनेश वर्मा करुणा वर्मा नवागढ़ कटाई से नारायण प्रसाद वर्मा चंद्रकांत वर्मा और बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढींगिया नमन अपार ढींगिया, तुलुतरा खमरिया से नकुल श्याम मोहम्मद अक्रम मोहम्मद अजीज, तिवर्ता डबरी पारा कोरबा से महेंद्र प्रताप मरकाम जया जागेंद्र गजेंद्र जयंती ममता मनीषा मंजू मानसी सुरेंद्र मोहन सिंह सहोदरी बाई मनमोहन सिंह गिरजाबाई मरकाम चंद्रपाल मरावी लक्ष्मी थदवानी, बघेरा दुर्ग से संतोष नामदेव सार्थक समर्थ और शौर्य नामदेव, बुड़गहन से है राम दुलारी प्रजापति रामशरण चंद्रेश कुमार चंद्रकला शशिकांता प्रजापति, पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे वीणा विनय शंकर पांडे, महाराष्ट्र से नासिर शेख नाजिया नासिर साजिद और साहिद। आप सभी की फरमाइश पूरी कर रहे हैं। आपको राजा फिल्म का गीत सुनवाकर अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाजों में ये गीत है। समीर के लिखे गीत की धुन बनाई है नदीम श्रवण ने। लीजिए सुनिए ये गीत।

0: पापा के गुजर जाने के बाद एकदम अकेला पड़ गया था। कभी कर्ज की चिंता, कभी ब्याज का बोझ, फिर पता चला प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में। तब लगा कोई अपना भी साथ खड़ा है।
1: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 2,00,00,000 रुपए का फसल बीमा, 8 करोड़ किसान क्रेडिट कार्ड और MSP पर 26,00,00,000 रुपए से अधिक की फसल खरीद से देश के किसानों को मिली मजबूती।
2: 12 साल किसान कल्याण के, 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड द्वारा जन प्रसार हेतु जारी।
3: कार्यक्रम के अगले गीत के लिए ईमेल फरमाइशें भेजी हैं आप सभी ने। मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहानकर, सरिता प्रिंस और एकांश गवहानकर, सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टी मल्होत्रा, डी ऋतिक मल्होत्रा, प्रतीक अनिल मल्होत्रा, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप, कालका से सुपचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज, अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सबीहा, अनस और रेहान, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश शाबले पाटिल, राजदीप, राशि, शीतल, राजेश, पोटियाकला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक और सीमा साहू, लचनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मे, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी, महेंद्र मोदी, विक्रांत मोदी और इफ्जाल ताज, कोटवा नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित राय और हैप्पी राय, नरवेल महाराष्ट्र से PS नावकर, निर्मला और विशाल नावकर, सौंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित, देविका रानी चंदन, गजेंद्र कुमार, हेयांश कुमार चंदन, कुंभार गली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता, अनिकेत दले, रोहिणी, ऋषिकेश और जीविका दले, कर्मा चौक लोहारेडी, कवर्धा से अशोक कुमार साहू, लीलेश्वरी, खुशांत और निशांत साहू, रोहांसी से मुकेश साहू, नंदिनी, मनीष, मयंक और जानकी साहू, नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता, चिरमिरी कुलासिया कॉलोनी से इंद्रभान सिंह, अनुभव, ऋषभ सिंह, राम साहूदा, नारायण प्रसाद लहरे, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे, मजनू का टिल्ला से कमल बालूजा, मधु, सागर बालूजा, सरगांव से राजेश वर्मा, हीरोमन पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा, पटियाला से मुकेश बत्ता, नीलम बत्ता और यवतमाल से राहुल मरवल, सरलम, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी मनवर, दिल्ली से बोधराज खोलवार, कमला रानी और गीतिका भानु, पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किशुतासु, अर्णवानंद और सत्यमानंद, कालेगांव, जाफराबाद से सुधाकर, राजे जाधव, प्रशांत, संचित, वायाल, प्रथमेश देशमुख, प्रणाली देशमुख, सर्वत देशमुख, दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीणा, चैतन्य मस्कीन और मेघा मस्कीन। आप सभी ने सुनना चाहा है उजाला फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और मन्ना डे ने गाया है इसे, गीत लिखा है हसरत जयपुरी ने और संगीत की धुन शंकर जयकिशन की है। आइए सुनते हैं ये गीत।

और अब कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ते हैं, जिसकी फरमाइश ईमेल के जरिए हमारे आप सभी श्रोताओं ने की है और आप सबके नाम है। नानघाट कातलबोल से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री टिकेश्वर, ऋतु राजपूत, डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका अनुष्का और तन्मय गजभिये, कुरावली से अनिल कुमार वर्मा, माया देवी, राहुल, विनीत और सोनम वर्मा, बक्सर बिहार से सरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और सुरीत रमेश शाहू, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा और ऋषभ सिंह, पूर्णा जंक्शन मस्तानपुरा से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना भगत और चेतन भगत, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, दिल्ली शहर से अस्मा परवीन, अमना परवीन और वली भाई अंसारी, संबलपुर कांकेर से फगु राम यादव, उज्ज्योति और ओजस्वी यादव, बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी, गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफरा नवाज चाहत, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास, अनिता पुष्पा, अंजू, योगिता श्रीवास, रज्जन साहू, हेमंत नामदेव और धरमदास वाधवानी, देवरी भाटापारा से के आर साहू, आकाश, कमलेश, गन्नूलाल रजक, मुरली क्षत्रिय और सावंतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही सेन, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल, सोनू और पप्पी भाटिया, मुंबई से अदीबा नाज, फातिमा, नसरीन अंसारी, आलिया और सबा अंसारी, जालंधर से सबित, संदीप जाटोलिया, आप हैं तेलंगाना भोंगीर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन, देगलूर नांदेड़, महाराष्ट्र से संतोष भाकरे, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, बहादुर नागपुर से वैशाली, शैलेश गवाणकर, टुक टुक प्रिंस, एकांश, सुमित गवाणकर और ध्वनि गवाणकर, जालंधर से मीना कौर, मन्नत कौर, यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा और श्राव्या रामटेके, आप भाटापारा से हैं बच कमल, मोतीलाल यादव, सियाराम चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यादव और भुवन कामरी, ओवरेठीपारा भाटापारा से अनीता साहू, नेहा, मोनिशा साहू और वीणा, खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, खुश नसीब अब्दुल हक, जियाउल हक डावर, मोहम्मद उमर डावर और राजेंद्र कटारे। आप सभी ने सुनना चाहा है बॉम्बे टू गोवा फिल्म का गाना, किशोर कुमार की आवाज में ये गीत है, राजेंद्र कृष्ण ने लिखा है इस गीत को और आर डी बर्मन ने धुन बनाई है, आइए सुनते हैं।

और अब कार्यक्रम संबंधी ये सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 18 जून 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय कोरबा के प्राध्यापक डॉक्टर तरुण कुर्रे उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा खरीफ मौसम में धान बीज उत्पादन तकनीक और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा खरीफ मौसम में दलहनी तिलहन बीज उत्पादन तकनीक। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665592। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 077752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 18 जून 2026 और 19 जून 2026 को शाम 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई। और अब उन श्रोताओं के नाम हम बताएं जिन्होंने कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें ईमेल भेजे हैं। वणीखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, लवली, पिंकी और आरती अरोड़ा। नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी ट्विंकल, डिंपल, मीनाक्षी, निशा और तुलसी और दिशा गोस्वामी। कांफ्रांस से ही सार

से राजकुमार डूडी, प्रमोद कुमार और पुष्पेंद्र कुमार डूडी, मैसौल सीतामढ़ी बिहार से नुसरत जहानाज, तलअत फरहत रिप अत नुजअत साबिया साहिन नाज और नाजिया नूरी नाज, हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे नंदा, बोड़खे हनुमान और उत्तम जमदाड़े, भूचो कैचिया पठिंडा पंजाब से प्रेम सिंह जोड़ा, मंजीत कौर, करणवीर करण, दपिंदर वारिंदर, कुलदीप सिमू, एकम दमन और अभिजोत, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जोहरी, वीरमगान राजकोट से रुचि गुप्ता, ट्विंकल और उमा गुप्ता, भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा और पूजा परिहार, रायगढ़ बिहार से उमरराज, पवन, संजय दीपक और कमल उमा, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही, मेहराज जहां, अडारनाथ घाट से माखन वर्मा, चांदनी राहुल, गोपी वर्मा, पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता, समडील नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता, राजकोट से हैं राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, सरगुजा मैनपाट से अजीता पॉल, प्रभा रानी और प्रियांशी शर्मा, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम राइन, अब्दुल सलाम राइन, पीपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, पाहंदा पिलारी से नीतीश कुमार, तनुजा देवांगन, ईशांत लखनलाल, सावित्री बाई देवांगन, कमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, बलौदा से दिल हरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल, समृद्धि पटेल, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह, दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा, धाड़ी नांदुरा महाराष्ट्र से श्रीकृष्ण बाठे, संदीप बाठे, अमूल बाठे, पलारी से प्रकाश वर्मा, निखिल प्रिंस और यशस्वी वर्मा, देवरी भाटापारा से गन्नूलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा और गणेश राम, टोरोवाल नवाशहर पंजाब से गगनदीप थांदी, तृप्ता, प्रियंका, प्रशांत, प्रियम थांदी, वामिका और वाणी थांदी, आप सभी को सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर चित चोर फिल्म का गीत, येशुदास की आवाज में गीत है, गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन। आइए लेते हैं इस गीत का आनंद।

और इसी गीत के बाद ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 6:45 होने कहीं कुछ ही क्षणों के बाद विज्ञापन और प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: आकाशवाणी का रायपुर केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
1: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले, सोलर पैनल लगवा ले।
2: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
3: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
2: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर।
5: बुद्धू, नई कार जीतने का मौका। वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
6: रुक जा बुद्धू।
7: What? ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का गलत यूज कर सकते हैं।
5: तो समझ गई ना, रिलैक्स। पर कार जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
7: RBI कहता है स्मार्ट बनो, कूल रहो।
8: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
9: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
8: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
9: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
8: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
9: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
10: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
11: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
9: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
9: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
11: आकाशवाणी से।
10: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।

ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी, 1 जुलाई से प्रभावी होंगी बढ़ी हुई दरें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से होगा शुरू। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे शाला प्रवेश उत्सव। और मानसून के मद्देनजर आज से लेकर 1 अक्टूबर तक के लिए छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद किए गए। अब समाचार विस्तार से। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दर में 30 पैसे प्रति यूनिट से 50 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की है। इस तरह से आयोग ने बिजली दरों में 6.23%

0: प्रतिशत की औसत वृद्धि की है। वहीं गैर घरेलू उपभोक्ताओं के बिजली दरों में 20 पैसे से 40 पैसे प्रति यूनिट की बढ़ोतरी की गई है। कृषि पंपों के लिए विद्युत की दरों में 40 पैसे प्रति यूनिट की वृद्धि की गई है। वहीं गैर सब्सिडी वाले कृषि पंप कनेक्शनों को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही छूट को 30% से बढ़ाकर 40% कर दिया गया है। बिजली की बढ़ी हुई दरें प्रदेश में 1 जुलाई से प्रभावशील होंगी। महिला स्व सहायता समूहों द्वारा संचालित उद्योगों, बस्तर और सरगुजा सहित राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित अस्पताल, नर्सिंग होम, डायग्नोस्टिक सेंटर के अलावा पोहा और मुरमुरा मिल को ऊर्जा प्रभार में दी जा रही 10% की छूट को जारी रखा गया है। देरी से किए जाने वाले भुगतान पर लिए जाने वाले अधिभार को अब प्रति माह के बजाय प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाएगा। वहीं अग्रिम भुगतान किए जाने पर दी जाने वाली 0.25% की छूट को घटाकर 0.75% कर दिया गया है। भारत ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते का स्वागत किया है। इस संघर्ष से विश्वभर में गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया था। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत को उम्मीद है कि समझौते के कार्यान्वयन से क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल होगी तथा नौवहन और व्यापार की स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश के मध्यम वर्ग ने राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि पिछले एक दशक में सरकार ने आम नागरिकों के जीवन स्तर को सुधारने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा, किफायती स्वास्थ्य सेवा, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छ शहर तथा सार्वजनिक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित किया है। आयुष मंत्रालय ने आज नई दिल्ली में 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के भव्य आयोजन के लिए औपचारिक कार्यक्रमों का शुभारंभ किया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने नई दिल्ली में संवाददाताओं को बताया कि मुख्य कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में कोलकाता के रेड रोड पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस अवसर पर 45 मिनट का योग प्रोटोकॉल आयोजित किया जाएगा। श्री जाधव ने कहा कि योग लोगों को हर उम्र में स्वस्थ, सक्रिय, आत्मनिर्भर और मानसिक रूप से मजबूत जीवन जीने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है।
1: इस वर्ष देश भर में 100 प्रतिष्ठित एवं आइकॉनिक स्थलों पर IDY 2026 के विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। यह पहल भारत की सांस्कृतिक विरासत, ऐतिहासिक धरोहरों और योग परंपरा को एक साथ जोड़ते हुए योग को एक व्यापक राष्ट्रीय उत्सव का स्वरूप प्रदान करेगी।
0: इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का विषय है स्वस्थ जीवन के लिए योग। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से शुरू होगा। विधानसभा के सचिव दिनेश शर्मा ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। 17 जुलाई तक चलने वाले इस 5 दिवसीय सत्र में कुल 5 बैठकें होंगी। सत्र के दौरान वित्तीय कार्य के साथ अन्य शासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। इस दौरान आयोजित किए जाने वाले शाला प्रवेश उत्सव के लिए स्कूल प्रबंधन ने तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। शाला प्रवेश उत्सव के दौरान स्कूल पहुंचने वाले नव प्रवेशी बच्चों का तिलक लगाकर स्वागत किया जाएगा। इस मौके पर विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक, यूनिफॉर्म और साइकिल का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने प्रदेश के सभी जनप्रतिनिधियों को पत्र लिखकर 16 से 27 जून तक आयोजित होने वाले शाला प्रवेश उत्सव में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया है। वहीं मुख्यमंत्री ने नए शैक्षणिक सत्र के शुभारंभ के अवसर पर प्रदेश के विद्यार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उन्हें पूरी लगन और उत्साह के साथ पढ़ाई करने का संदेश दिया है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का ग्रीष्मकालीन अवकाश समाप्त होने के बाद आज से खंडपीठों और एकल पीठों में नियमित सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। आज से अधिवक्ताओं ने अदालत कक्ष में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखा। हालांकि पहले की तरह कई मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इसे NTA की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होनी है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। नक्सलवाद की समाप्ति के बाद बस्तर क्षेत्र में राज्य सरकार कृषि के साथ पशुपालन को बढ़ावा देगी। कल रायपुर में आयोजित एक पुस्तक के विमोचन समारोह के अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि बस्तर के हर जनजाति परिवार को दो दो गाय या भैंस दी जाएंगी। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि सशस्त्र नक्सलवाद को खत्म करने के लिए सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की गोली का जवाब गोली से दिया। अब गोली का

0: जवाब बोली से दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार आत्मसमर्पित नक्सलियों के पुनर्वास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। नक्सलियों ने अपने जिन कैडर की नसबंदी कर दी थी, उनकी नसबंदी खोलने के प्रयास किए जा रहे हैं। जिन मामलों में ये संभव नहीं हो पाएगा, ऐसे दंपत्ति को टेस्ट ट्यूब बेबी की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर, छत्तीसगढ़ साहित्य परिषद के अध्यक्ष शशांक शर्मा, पुस्तक तेरा राज नहीं आएगा रे के लेखक राजीव रंजन प्रसाद और रचना नायडू ने भी संबोधित किया। मॉनसून को देखते हुए आज से छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। ये सभी संरक्षित वन क्षेत्र अब 1 अक्टूबर तक बंद रहेंगे। जिन संरक्षित वन क्षेत्रों में पर्यटकों का प्रवेश पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा, उनमें अचानकमार, उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व, बारनवापारा अभयारण्य और कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान शामिल हैं। वन विभाग के अनुसार 2 अक्टूबर से इन सभी संरक्षित वन क्षेत्रों में जंगल सफारी और अन्य पर्यटन गतिविधियां फिर से शुरू की जाएंगी। मलेरिया मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान के 14वें चरण की शुरुआत आज से हो गई है। इस बार बस्तर संभाग के 7 जिलों बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और कोंडागांव के साथ ही गरियाबंद, कबीरधाम और खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिले के संवेदनशील गांवों में भी यह अभियान संचालित किया जा रहा है। अभियान के तहत राज्य के 36 विकासखंडों के 697 उप स्वास्थ्य केंद्रों के अंतर्गत आने वाले 2476 गांवों में सर्वेक्षण किया जाएगा। इस अभियान के तहत लगभग 16,20,000 लोगों की मलेरिया जांच का लक्ष्य रखा गया है। रायपुर में आयोजित 36वीं राष्ट्रीय कैनो स्प्रिंट जूनियर पुरुष, महिला और सब जूनियर प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। नवा रायपुर स्थित सेंध लेक में हुई इस 3 दिवसीय प्रतियोगिता के अंतिम दिन कल छत्तीसगढ़ ने 1 स्वर्ण, 2 रजत और 1 कांस्य पदक सहित 4 पदक जीते। प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने कुल 3 स्वर्ण, 2 रजत और 4 कांस्य पदक हासिल किए। ओवरऑल खिताब मध्य प्रदेश ने 257 अंकों के साथ जीता, जबकि केरल दूसरे और ओडिशा तीसरे स्थान पर रहा। प्रतियोगिता में देश के 24 राज्यों से लगभग 800 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार छत्तीसगढ़ में मॉनसून के पहुंचने में कुछ और समय लग सकता है। मौसम विज्ञानी डॉक्टर गायत्री वाणी ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत की।
1: आज प्रदेश में कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वज्रपात, तेज हवा और 1-2 स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वर्षा का क्षेत्र मुख्य रूप से दक्षिण छत्तीसगढ़ एवं उत्तर छत्तीसगढ़ होने की संभावना है। अधिकतम तापमान आगामी 3 दिन तक लगभग 1 से लेकर 2 डिग्री का वृद्धि होने की संभावना है। मॉनसून का प्रो आगामी 4 से लेकर 5 दिन का अंदर छत्तीसगढ़ में एंट्री होने की संभावना है।
0: और अब कुछ समाचार संक्षेप में। दुर्ग जिले के पुलिस लाइन सभागार में आयोजित एक समारोह में आज राष्ट्रपति के हाथों शौर्य चक्र से सम्मानित निरीक्षक लक्ष्मण केवट और निरीक्षक रामेश्वर प्रसाद देशमुख का नागरिक अभिनंदन किया गया। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में इस शैक्षणिक सत्र के लिए सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इच्छुक अभ्यर्थी 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। दुर्ग जिले के अग्रसेन चौक और उसके आसपास की सड़क में अवैध रूप से संचालित किए जा रहे ठेले खोमचों को प्रशासन द्वारा हटाने की कार्रवाई की गई। कबीरधाम जिले की दशरंगपुर पिपरिया थाना और साइबर सेल की संयुक्त टीम ने विद्युत सामग्री के गबन और चोरी के आरोप में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले में लगभग 29 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति बरामद की गई है। और कोंडागांव जिले में पटवारी भर्ती में चयन कराने का झांसा देकर एक युवक से करीब 6.5 लाख रुपए की ठगी करने का मामला सामने आया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। छत्तीसगढ़ में बिजली दरों में की गई बढ़ोतरी, 1 जुलाई से प्रभावी होंगी बढ़ी हुई दरें। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 13 जुलाई से होगा शुरू। ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद कल 16 जून से प्रदेश के सभी शासकीय और निजी स्कूल खुल जाएंगे। स्कूलों में आयोजित किए जाएंगे शाला प्रवेश उत्सव। और मानसून के मद्देनजर आज से लेकर 1 अक्टूबर तक के लिए छत्तीसगढ़ के सभी टाइगर रिजर्व, राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभयारण्य पर्यटकों के लिए बंद किए गए। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: बंधु, नई कार जीतने का मौका? वाओ, पापा को सरप्राइज दूंगी। बस थोड़ी सी तो उनकी डिटेल भरनी है।
3: रुक जा बुद्धू,
2: ऐसे पॉपअप से सावधान रहो, स्कैमर्स पर्सनल डिटेल्स का

0: गलत यूज कर सकते हैं।
1: तो समझ गई ना, रिलैक्स।
2: पर कार्ड जीत जाते तो पापा होमवर्क नहीं कराते।
0: RBI कहता है स्मार्ट बनो,
3: कूल रहो।
4: प्रादेशिक समाचार अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 में।

प्रांजल समीक्षा और आराध्या साहू, महाराष्ट्र से रुपेश संघई, महेश संघई, प्रज्ञेश संघई और प्रीतेश संघई, भागलपुर से कमल किशोर साहू, अश्विनी अमरदीप, पशुपति साह, टिकू मुस्कान, दतरंगी के भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता वर्मा और रुद्र वर्मा, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, सनी, रेयांश, कान्हा और अदिति देवांगन, मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश और राहुल साहू, जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना आदेश कुमार काले और वसुधा वज्रसेन, ग्वालियर से सुरेश खुराना, किरण लभ्या, आरव खुराना, एस के पप्पी, सहारनपुर से आशु मोची, कस्बा गुनौर से नसीमुल इस्लाम गुनौरी, फरही नबासी और दानिश गुनौरी, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर, मोताला महाराष्ट्र से विजय सुरलकर, रतनमाला, ओम कुमार सुरलकर, गांव जाखोद से संबुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक, पूजा खटक, लगान पंडरिया से उत्तम कुमार बघेल, रुक्मणी बघेल, साहिल भारती बघेल, जमानिया गाजीपुर यूपी से सुरेश जायसवाल, उर्मिला, दीपक, स्वाति जायसवाल, गांव हीरावाली फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती और हिमांशु गोदारा, जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित गर्वी और हिमाक्ष, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तानिया नारंग, बुलढाणा वड़सिंडी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा ताई मानकर, दीपाली और श्लोक कुमार। आप सभी को सुनवा रहे हैं आपकी पसंद पर राजा जानी फिल्म का गाना। लता मंगेशकर की आवाज में आनंद बख्शी के लिखे गीत की धुन बनाई है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। लीजिए सुनिए ये गीत।

कालमानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल, नानक चंद मल्होत्रा, लोरमी चचड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा पुष्पराज और ऋषभ मरावी, सौंगा धमतरी से कोमल सेन, तोषण और विनायक सेन, कुम्हारगली कोलगांव से पांडुचंदन, उषा प्रतीक्षा प्रथमेश चंदन और पांडुरंग कुम्हार, रायगढ़ से शिव कुमार चौहान, संक्रांति रितेश राजेश्वरी और उत्कर्ष चौहान, आदर्श नगर मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना योगेश निवान, सौरभ सैना शर्मा और मेंडी शर्मा, नाभा पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत और मनु, जलालाबाद पश्चिम से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, पी विशाल, प्रिया दिशानी और निमिता आहूजा धनौरी तेलीवारा से हैं, निसार सलमानी, नौशाद सलमानी, आलिया और आयान। आप सभी को आपकी पसंद पर सुनवा रहे हैं सुनैना फिल्म का गाना। यशुदास की आवाज है इसमें, गीतकार और संगीतकार हैं रविंद्र जैन।

और अब कार्यक्रम का अगला गीत आप सभी की फरमाइश पर आप सभी ने ईमेल भेजे हैं इसके लिए गांव जाखोद से, इसे एक बार फिर सुने। जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी पर्ले और विलिस डिकेस्टो, बठेना से परमेश्वर साहू, राजभत्ती टोप सिंह, काजल पूर्वी, हेजल राजेश और रेशमा साहू, बोरसरा नेला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी, विनोद विभूति, अंशु बबली और प्रियांशु साहू, राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी, गुमला झारखंड से नजमुल हुदा, एसएम जावेद और शगुफ्ता अंजुम, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, राबिया शेख रहीम मुन्ना, तखतपुर से बिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी।

और इसी गीत के बाद ईमेल करें। गीत सुने कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 MHz पर। संध्या के 7:10 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद केंद्र सरकार के 12 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में विशेष श्रृंखला विदेश नीति हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी है। 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत आज सुनिए केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे हैं निखिल सिंह।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। मैं हूँ निखिल सिंह। 12 वर्ष इतिहास के पन्नों में ये एक छोटा सा अध्याय लग सकता है, लेकिन अगर आप किसी राष्ट्र की जीवन यात्रा की बात करेंगे और खासतौर पर अगर भारत की आजादी के बाद से जीवन यात्रा की बात करें, तो ये एक बेहद महत्वपूर्ण पड़ाव में तब्दील हो चुका है। एक ऐसा पड़ाव जहां सपने संकल्प में बदलते हैं और संकल्प बदलाव का वाहक बनता है, बदलाव की एक नई तस्वीर गढ़ता है। पिछले एक दशक में या उससे थोड़े से ज्यादा वक्त में अगर हम बात करें, तो ये जो बदलाव है इसको बहुत तेज गति से हमने देखा है, महसूस किया है और बदलाव के मायने बदलते भी देखे हैं। और अब हम इन बदलाव के अगर महत्वपूर्ण तत्वों की बात करें, तो घर, शहर और ऊर्जा, ये ऐसी व्यवस्थाएं हैं जो आम नागरिक के जीवन की धड़कन, अगर मैं कहूं तो गलत नहीं होगा, और इस धड़कन को संभालने की जिम्मेदारी जिस व्यक्ति के पास है, वो आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आज हमारे साथ सीधा बेबाक संवाद करेंगे। स्वागत करते हैं हम केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य और ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल जी। बहुत स्वागत है सर।
2: धन्यवाद।
1: बहुत लंबा आपका सर सफर रहा है मुख्यमंत्री से लेकर केंद्रीय मंत्री तक का, तो सबसे ज्यादा फोन आजकल कहां से आते हैं, ज्यादा वक्त किस में गुजरता है, ये बिजली वाले विभाग में या फिर शहर वाले में?
2: देखिए, मेरे लिए दोनों विभाग इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं और उसमें कभी मैंने डिफरेंशिएट नहीं किया कि मुझे कौन से विभाग को समय ज्यादा देना, कौन सा कम देना। जितनी जांच की आवश्यकता होती है वो विभाग के लोग हमको बताते हैं, हमारे मन में विचार आता है हम उनको बताते हैं, और मेरे पास समय की कमी होती नहीं है। अर्ली इन द मॉर्निंग 6 बजे उठता हूँ, 1-2-3 घंटे अपने व्यक्तिगत काम के लिए आवश्यक होते हैं, 9 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक मेरा सारा समय डिपार्टमेंट्स के लिए है, सारा जनता के लिए है, सारा समाज के लिए है, देश के लिए है, प्रदेशों के लिए है, इसलिए मुझे समय की कमी नहीं होती है। इसलिए जो जितना आवश्यक होता है मैं उन दोनों विभागों को देता हूं, और मुझे लगता है कि दोनों विभागों की अपने अपने इंपॉर्टेंस है। उसमें मैं किसी एक को कहूं कि ऊर्जा बहुत महत्वपूर्ण है, आवासीय व्यवस्था नहीं है, वो ठीक नहीं है।
1: ठीक बात है। अच्छा, अगर एक एक मंत्रालय की बात करें, तो जो आवासन और शहरी कार्य, इसमें मोदी 3.0 की बात करें, क्या मेन थ्रस्ट है, क्या प्राथमिकताएं, अगर हम आपसे समझना चाहें किन किन चीजों पर आपका फोकस है?
2: देखिए, फोकस के लिए अगर मैं कहूँ तो जो सामान्य व्यक्ति है, खास करके जो गरीब व्यक्ति है, उसको हाउसिंग की, अफोर्डेबल हाउसिंग की एक जो जरूरत है उसके लिए हम उपलब्ध कराने में बहुत से काम कर रहे हैं और आगे करेंगे। पीएमएवाई प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है, पहले पीएमएवाई 1 था, पीएमएवाई 2 हो गया, उसके माध्यम से हमने 2 करोड़ मकान देने हैं, 1 करोड़ 13 लाख हम दे चुके हैं, तो बाकी मकान भी इस अगले वर्षों के अंदर जिनकी सारी प्रक्रिया चल रही है, उनका चयन हो रहा है, उन सबको मकान उपलब्ध हो देंगे। तभी हमने यहाँ पर जो जेजे कॉलोनीज हैं, यहाँ ड्यूसिम के माध्यम से, दिल्ली सरकार के अंतर्गत आता वो, ड्यूसिम के माध्यम से उनको मकान दिए जाए, इसका हम प्रयत्न कर रहे हैं। फिर हमने यहाँ पर अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नई जो स्कीम बनाई है वो टीओडी बनाई है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ताकि उसके कारण से एक तीर से 2 निशाने हो जाए। क्या मेट्रो के ट्रैक के इर्द गिर्द 500 मीटर में लोगों को मल्टी स्टोरी फ्लैट बना करके दिए जाए, और उसमें कम से कम जो ट्रेवल करने का मोड है, उनके जो रोड ट्रैफिक है वो खत्म होगा, मेट्रो से ट्रेवल कर सकेंगे, तो एक तरफ रोड का ट्रैफिक जाम खत्म करना, दूसरे उनको अफोर्डेबल हाउसिंग का लाभ मिल जाना, दोनों चीजें टीओडी पॉलिसी से होंगी। तो कई प्रकार की पॉलिसीज बन रही हैं, और चूंकि दिल्ली सीधा सीधा हमारे मोबाइल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है, इसलिए सीधी योजना हम कर रहे हैं। बाकी सब जगह प्रदेश को हम गाइडलाइंस देते हैं कि आप अफोर्डेबल हाउसिंग में इस काम को करिए। पीएमएवाई में 4 वर्टिकल्स हैं, गरीबों के लिए भी है, मध्यम वर्ग के लिए भी है, और इससे ज्यादा पैसा लेकर के अपना बिल्डिंग बनाने वाले उनको लोन लेने की सुविधा दी हुई है कि उसमें भी हम इंटरेस्ट जो है उसका सबवेंशन करेंगे। ऐसा नहीं कि उनके लिए योजनाएं नहीं है, तो सबके लिए अलग अलग योजनाएं हैं। एक समय हम चाहते हैं कि देश में कोई परिवार ऐसा न रहे जिसके सिर पर छत ना हो, हाउसिंग फॉर ऑल, ये प्रधानमंत्री जी का एक स्लोगन जो दिया हुआ है, इसको हम पूरा करें।
1: जी, एक बात आपने कही हाउसिंग फॉर ऑल, ये जो आपने कहा ना कि मध्यम वर्ग के लिए भी करेंगे, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन जो हाउसिंग फॉर ऑल की आपने बात कही, एक तो सबको घर मुहैया कराना है, लेकिन सबके जीवन स्तर भी ऊपर रहे, और सिर्फ घर की बात नहीं बल्कि वो सुविधाएं जिसको कहते हैं ईज ऑफ लिविंग के साथ में, उसके लिए फोकस है।
2: बहुत चीजें हैं, केवल घर का छत के साथ काम नहीं चलता।

0: उसमें पानी भी चाहिए, उसमें गैस की चूल्हा भी चाहिए, उसके अंदर लाइट भी चाहिए, उसमें शौचालय भी चाहिए, उसमें ऐसी सब सुविधाएं जो एक घर में परिवार में चलाने के लिए आवश्यक हैं, वो सब मुहैया कराने के लिए योजनाएं बनाई हुई हैं। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 12 साल में इतनी योजनाएं, इतनी व्यवस्थाएं दी हैं उज्ज्वला योजना के नाम से। अब मुझे लगता है कि परिवारों के अंदर प्राय प्राय सब घरों में गैस का चूल्हा कनेक्शन पहुंच गया है। इसी प्रकार पानी लगभग करोड़ों के रूप में, जो शायद 3 करोड़ नए कनेक्शन हमने जो अमृत में दिए हैं, पानी के कनेक्शन दिए हैं, तो स्वच्छ जल ये सबके घरों में पहुंचे, पानी पहुंच गया, अन्न सबके घरों में राशन हो। 80 करोड़ लोगों को ये जो मुफ्त अन्न योजना जो दी है, खास करके कोविड में बहुत ध्यान किया गया, वो हम दे रहे हैं। अब उसको पानी भी पहुंच गया, उसको अन्न भी पहुंच गया, अब उसके यहाँ रसोई भी व्यवस्था हो गई, बिजली पहुंच गई, लेकिन शौचालय उसकी भी आवश्यकता उतनी महती आवश्यकता है। तो इसमें भी लगभग 12 करोड़ ये शौचालय बनाए गए हैं, उसकी व्यवस्था 2014 में प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी कि घर घर में शौचालय चाहिए, जहाँ घरों में जगह नहीं है वहाँ कम्युनिटी टॉयलेट चाहिए, कम्युनिटी टॉयलेट की व्यवस्था की, बाजारों के अंदर पब्लिक टॉयलेट्स इसकी व्यवस्था की। तो ऐसे एक से एक बढ़कर के काम, ये घर की आवश्यकताओं के हिसाब से सब योजनाएं दी गई हैं, और उन सब योजनाओं में अब अगली योजना आती है कि उस परिवार की आमदन कैसे बढ़े, लाइवलीहुड की व्यवस्थाएं भी की, महिलाओं के सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाए, ड्रोन दीदी की व्यवस्था की, लखपति दीदी, हर परिवार का जो रोजगार बढ़े उसकी स्किलिंग की व्यवस्था, आमदन हो, सरकारी गरीब आदमी को सुविधाएं जितनी आवश्यक है वो दी जाए, ताकि उसका जीवन सुखी हो। ईज ऑफ लिविंग के नाते से एक आदमी का सेटिस्फेक्शन लेवल, ये तभी ठीक हो सकता है जब उसकी सारी आवश्यकताओं की चिंता सरकार करे।
1: बिल्कुल ठीक बात है, और विकसित भारत जिसका हम लक्ष्य लेकर चल रहे हैं 2047 तक, वहां तक पहुंचना है, तो जाहिर तौर पर अगर इन्हीं में आदमी उलझा रहेगा। लेकिन एक बात और सामने आती है, कई बार मध्यम वर्ग से जुड़े हुए लोग, आम आदमी जिसको हम कहते हैं, वो कहता है कि मकान खरीदना तो धीरे धीरे पहुंच से बाहर होता जा रहा है। कैसे, जो आपने अभी बताया, ये चीजें कैसे प्रसारित करें लोगों को कि सरकार की तरफ से क्या कुछ मदद मिलती है या ये आपकी रीच में है?
0: ये अलग अलग शहरों की, अलग अलग स्थानों की व्यवस्थाएं हैं, सब जगह एक जैसा नहीं है। जहां चीजें, खास करके जमीन, बहुत महंगी हो गई है, क्योंकि वो तो डिमांड और सप्लाई के ऊपर निर्भर करता है, जमीन तो लिमिटेड है, कैन नॉट बी एक्सपेंडेड, इट्स नॉट द रबर, तो जमीन जितनी है उसी का उपयोग करना है। शहरों के अंदर विकास बहुत हो रहे हैं, शहरों के अंदर देश और दुनिया के इन्वेस्टर आ रहे हैं, उनके कार्यालय बन रहे हैं देश के अंदर, चाहे वो प्रदेश सरकारें हैं, चाहे हमारे केंद्र सरकार है, चाहे लोकल बॉडीज हैं, उनके काम बढ़ रहे हैं, तो उनकी आबादी बढ़ रही है। अब दिल्ली को लीजिए, दिल्ली की आबादी 2011 में 1.6 करोड़ थी, आज वो आबादी लगभग 3 करोड़ होने को पहुंच रही है। तो 15 साल में दुगने से भी ज्यादा, लगभग 2.5 गुना ये आबादी हो गई है, और हमें अनुमान ये है कि 2047 तक ये आबादी 5 करोड़ से पार करने वाली है। तो जब आबादी बढ़ेगी, जमीन उतनी है, ये समस्या आएगी। उसके लिए जो हमारी हाउसिंग पॉलिसी है, कंट्री टाउन, टाउन कंट्री प्लानिंग की पॉलिसीज हैं, उसमें ऐसे बड़े शहरों में मल्टी स्टोरी बनाया जाए, उनको दिया जाए, कॉस्ट जमीन की कम पड़े, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट लगभग बराबर रहती है। तो ऐसे वो प्लानिंग जितनी ज्यादा हम बना पाएंगे उतना ही लोगों को सुविधा मिलेगी। हाँ, अगर किसी व्यक्ति को बहुत नजदीक महंगा मकान मिलता है, वो थोड़ा दूरी पर भी जाता है, तो उसके लिए हमने फास्ट ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको लागू किया, RTSC बन रही है, मेट्रो खूब बन रही है। आज 1150 किलोमीटर मेट्रो पूरे देश में है, दिल्ली में भी लगभग 400 किलोमीटर से ऊपर अकेले एक शहर में ये पहुंच गई है, और मैं समझता हूं कि दुनिया के बड़े शहरों में न्यूयॉर्क सबसे ज्यादा मेट्रो है, उसके बाद दिल्ली है। अगर देशों में बात करें तो सबसे ज्यादा चाइना में, उसके बाद USA में, उसके बाद हम थर्ड नंबर पर मेट्रो में है। तो ट्रांसपोर्ट व्यवस्था आगे बढ़े, RTS यानी अब मेरठ, जो हमारे यहाँ से 2-2.5 घंटे का सफर लगता था, आज 55 मिनट में दिल्ली से मेरठ आदमी पहुंच जाता। तो रास्ते में बहुत स्थान है जो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए, उनको स्थान मिल जाते हैं। अगली रेलवे लाइन बहुत जल्दी अब दिल्ली से और करनाल, फिर दिल्ली से नीमराणा, ये सारी लाइनें बन रही हैं। तो 100-100 किलोमीटर के जो हमारे रास्ते हैं NCR के एरिया में, इस समय वहाँ अफोर्डेबल हाउसिंग के अच्छे स्कोप हैं, वहाँ लोगों को रहेंगे तो रोजाना आधे घंटे का ट्रैवलिंग करके दिल्ली में आएंगे। तो कैसा स्थान है, कैसी जगह है, ये 4-5 बड़े शहरों की समस्या है, बाकी बहुत शहरों की ऐसी बड़ी समस्या नहीं है। दिल्ली है, मुंबई है, बेंगलोर है, मोटे रूप से तो 3 शहर है, अदरवाइज फिर चेन्नई, कलकत्ता में थोड़ी कम समस्या है, बाकी स्थानों पर सब अफोर्डेबल में कोई समस्या नहीं आती मध्यम।
1: ठीक बात है। एक चीज और, इन शहरों को डेवलप करने की, और इतनी सारी चीज मेट्रो और बहुत बड़ा चेंज है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन फिर भी हम जब बात करते हैं सीवर की, जब हम बात करते हैं जैसे बरसात के दिनों में आप देखते हैं शहरों पे, इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए, इन चीजों से निजात पाने के लिए कितना काम किया जा रहा है, कितनी तेजी से किया जा रहा है, या ये कहें कब तक इस पे एक कंप्लीट परिवर्तन सा दिखेगा, कैसे समझे इसको?
0: देखिए, शहरों की जब शुरू होते हैं, शहर बनना या शहर को धीरे धीरे बढ़ना, उस समय किसी को कल्पना नहीं होती कि यहाँ कितना बड़ा लोड शहर पर पड़ेगा।

0: स्टार्टिंग में जो प्लानिंग बनाई जाती है उस
1: जैसे भी आपने दिल्ली का उदाहरण दिया कि तीन गुना ढाई गुना बढ़ गए,
0: तो किसी को जब दिल्ली बसी होगी या दिल्ली को जब फैला हुआ होगा किसी ने ध्यान ही नहीं किया होगा कि इतनी आबादी हो जाएगी। आज फिर भी आंकलन किए जा रहे हैं कि जिस गति से पहले बढ़ा इसी गति से और बढ़ेगा, तो आज से ही हम व्यवस्थाएं बनाना शुरू करें। मुझे गुरुग्राम का ध्यान में है, 80s में मैंने गुरुग्राम देखा था, एक गांव था थोड़ा सा सात कस्बा था, तो मुझे लगता है हार्डली वहां की दो भी नहीं होगी, 1-1.5 लाख की आबादी थी, ये 80s की बात है। आज वही आबादी वहां 40 लाख हो गई है, और उस समय जब ये शहर मॉडर्न सिटी जिसको गुड़गांव कहें, न्यू गुड़गांव कह लें, ये बना था 2004-5 के आसपास, उस समय भी किसी ने नहीं सोचा था गुरुग्राम इतना बढ़ जाएगा, इतना बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए प्लानिंग ठीक बनी नहीं, लेवल्स ठीक नहीं हुए, उसका जो एरिया है कैचमेंट एरिया कितना होगा, पानी कितना आएगा, उसको निकासी कितनी चाहिए। जब खाली होता तो पानी कहीं से भी निकल जाता है, लेकिन जब विकास हो जाता तो पानी को पैसेज का नैरो साइज हो जाता है, तो नैरो साइज में उतना पानी निकलता नहीं है, फिर समस्याएं आती हैं। आज हमने उसके लिए कहा कि जो ऐसे स्थान समस्याएं आ रही हैं उन समस्याओं को हल करने के लिए सीवेज सिस्टम द्वारा बनाया जाए, उसमें पानी निकासी की व्यवस्थाएं वो द्वारा बनाई जाए, उसमें जो केंद्र को सहायता करनी है केंद्र सहायता करेगा, स्टेट को अपना पैसा लगाना वो लगाएगा, यूएलवीज को भी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग किया जाए ताकि वो भी उसमें शेयर करें। अब हमने पीछे अमृत 1 अमृत 2 की योजना चलाई, इसीलिए चलाई पीने का पानी भी और जो पानी की निकासी है वो भी। स्वच्छ भारत मिशन में हमने बनाया कि जो सीवेज सिस्टम है उसमें पानी को ट्रीट किया जाए और ट्रीटेड वाटर को रीयूज किया जाए, क्योंकि पानी की अपने आप में समस्या वैसे भी बहुत आने वाली है, उससे समस्या का हल होगा। इन सब चीजों पर भारत सरकार भी काम कर रही है, प्रदेश भी कर रहे हैं, मिल करके बड़े अच्छे कोऑर्डिनेशन से हम आगे बढ़ रहे हैं।
1: अच्छा, छोटे जो शहर जिनकी हम बात करते हैं, टियर 2 टियर 3 शहरों, क्या इस तरह की योजनाएं, या ये हम पूछें आपसे सीधे कि आने वाले समय में, आने वाले कुछ वर्षों में वहां के नागरिक क्या बदलाव महसूस करेंगे, क्योंकि हम लगातार बदलाव की बात कर रहे हैं, 12 वर्षों में देश के नागरिकों ने वो महसूस किया है।
0: अभी जैसे हमने एक नई स्कीम बनाई है वो है अर्बन चैलेंज फंड, तो अर्बन चैलेंज फंड में 1 लाख करोड़ रुपया तो केंद्र सरकार की ओर से होगा, 1 लाख करोड़ रुपया प्रदेश सरकारें अपने पास से लगाएंगी, 2 करोड़ रुपया आउटर एजेंसी से फाइनेंसिंग कराई जाएगी, तो 4 लाख करोड़ रुपया 5 साल में लगाना हमको, और वो इन्हीं सारी समस्याओं को दूर करने के लिए लगाना है। इसकी स्कीम सारी मंगवाई जा रही है, सब प्रदेश अपनी अपनी स्कीम भेज रहे हैं, प्रदेशों को मैंने बता दिया कि आपका इतना टारगेट है, इतनी स्कीम्स बना के लाओ, उसमें जो समस्याएं उनको दिखती हैं वो लाएंगे। इसी में साथ में हमने कंडीशन लगा दी कि जो छोटे कस्बे हैं, म्यूनिसपैलिटीज हैं, उनमें कम से कम 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें बना के आप लाओ। 5-5 करोड़ रुपए की स्कीमें अगर बनेंगी तो ऐसे 5 करोड़ में छोटे कस्बे का पानी की निकासी, पानी की सप्लाई, सीवरेज के, स्वच्छ भारत मिशन के, छोटे बड़े प्रोजेक्ट 5,000 करोड़ रुपए में बहुत ज्यादा बन सकते हैं।
1: जी,
0: 5 करोड़ रुपए एक शहर के लिए
1: निश्चित तौर पर ये तब्दीली आएगी। एक बात और, जब हम बड़े बदलाव की बात करते हैं, हमने मेट्रो शहर की बात करी, स्मार्ट सिटीज, बड़ी बड़ी परियोजनाएं, लेकिन स्वनिधि योजना जिसको कहते हैं कि रेहड़ी वाला, पटरी वाला, खोमचे वाला, उसकी लाइफ में परिवर्तन कैसे इसको कर रहे हैं, कितना बदलाव आया है आपको लग रहा है, और कितना आए हैं, कितना आगे जाना है?
0: देखिए, मैं इस काम के लिए प्रधानमंत्री जी के विजन को सलाम करता हूँ, उनको सैल्यूट करता हूँ कि कैसे उन्होंने बड़ी बड़ी योजनाएं तो सब आ जाती हैं मस्तिष्क में, जो शासक होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, छोटी योजना और वो भी एक स्ट्रीट वेंडर, उसकी चिंता करना। तो उन्होंने स्पेशल योजना बनवाई, आज उस योजना को चलते हुए 6 साल हो गए हैं
1: जी।
0: और उस योजना में उन्होंने कहा कि जो ऐसा रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जिसके पास कोई गारंटी नहीं है देने के लिए, और वो जो बाजार से लोगों से साहूकार से पैसा लाता है, तो जितना पैसा लेता है साल भर में उसको डबल देना पड़ता है, तो वो अपनी कमाई तो वहां सारी निकल जाती है उसकी, फिर उसकी सहायता कौन करेगा? तो ये विषय आया कि ऐसा कोई भी रेड़ी फड़ी वाला आदमी है जो शहर के अंदर काम करता है, किसी भी रूप में काम करता है, उसकी सिलेक्शन करिए, उनको सबको 10,000 रुपए की सहायता प्रदान करिए, बैंकों से दिलवाएंगे, और उसको कहेंगे 1 साल में इसको वापस करना है। यानी 10,000 रुपए लेता है तो महीने का अगर 1,000 रुपए भी देना शुरू करेगा तो उसके 10,000 10 महीने में समाप्त हो जाएंगे, और उसके जो इंटरेस्ट है वो भारत सरकार देगी। केवल 1,000 के बदले में 1,000 ही देना है। साथ में फिर अगले साल में जोड़ा गया कि डिजिटल पेमेंट अगर वो लोगों से लेता है, उसकी व्यवस्था करता है, फिर उसका इंसेंटिव दिया जाएगा, तो और उसमें लाभ हो जाएगा। फिर ये कहा कि 1 साल में अगर 10,000 का फर्स्ट ट्रेंच का वो लोन वापस करता है तो अगले साल में वो 20,000 रुपए का ले सकता है, 20,000 का वापस करता है तो वो 30,000 का ले सकता है। बाद में स्कीम को हमने मॉडिफाई किया, 10,000 की जगह 15,000 कर दिया, 20,000 की जगह 25,000 कर दिया, और 30,000 की जगह सीधा 50,000 कर दिया, कि वो तीसरे बार में अगर 2 बार पैसा वापस करता है तो उसका ऊपर हमारा भरोसा हो सकता है कि वो 50,000 रुपए ले उसी तरीके से वापस करे। और यहीं तक नहीं, हमने कहा कि 50,000 के बाद उसको 30,000 रुपए का UPI कार्ड भी देंगे, जो क्रेडिट कार्ड होगा, जितना पैसा चाहे बैंक से ले आए उतना जाके जमा कराए, उसका रेगुलर 2 महीने के अंदर जमा कराता रहेगा, नो इंटरेस्ट, 2 महीने से डिले करेगा तब थोड़ा इंटरेस्ट के ऊपर रखा है। बहुत रुचि जागी, और रुचि जागने के बाद आज मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मोर देन 75 लाख लोगों ने इसका लाभ उठाया है, 1,05,00,000 लोन

0: टर्म्स यानी 75,000 तो ऐसा कि 75 एक हो गए, कुछ लोगों ने फिर सेकंड ट्रेंच का लोन लिया, कुछ लोगों ने थर्ड ट्रेंच का लोन लिया, तो टोटल 1,05,00,000 लोन लिए जा चुके हैं। 75,00,000 लोगों को लाभ हुआ है, जिसमें से 40,00,000 लोग ऐसे हैं जिन्होंने पूरा पेमेंट अपना वापस भी किया है, बाकी अभी रनिंग में है, और धीरे धीरे थर्ड ट्रेंच भी लेकर के वापस करने वाले भी 6-7 लाख हो गए हैं, और वो 6-7 लाख लोग 50,000 का लेकर के उसको वापस कर चुके हैं। अगली योजना उनको दी गई मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको 1 घंटे में, और आप बैंक में अप्लाई करिए, अपना डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट दीजिए, और बैंक अगर सहमत हो जाता तो आपको 1 करोड़ 2 करोड़ जितना लोन चाहिए उतना मिल जाता है। तो ऐसे एंटरप्रेन्योर्स 10,000 रुपया महीना से शुरू करके करोड़ों रुपए तक कुछ लोग उदाहरण है ऐसे पहुंच गए हैं, जिनके जीवन में बहुत खुशहाली आई है। उनको ये लगा कि हमारा सारा पैसा जो साहूकार को ब्याज देने में चला जाता था वो हमारे घर में बचता है। बहुत लोग इसमें लाभान्वित हुए और गुण गा रहे हैं।
1: जी बिल्कुल। एक चीज जिसको कहते हैं मच टॉक्ड अबाउट आजकल वो है, और वो थोड़ा सा मैं आम नागरिकों के दृष्टिकोण से भी समझना चाहूंगा कि ब्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन फोरम की बहुत सारी बात हुई है, अभी दिल्ली में हाल में ही ये कंप्लीट हुआ है, तो इसमें आउटकम डॉक्यूमेंट क्या रहा है? एक बात तो मैं ये समझना चाहता हूँ क्या उसकी विशेषताएं हैं। दूसरी चीज ये, जब हम ब्रिक्स की और इस तरह के फोरम्स की बात करते हैं तो लगता है कि जैसे बड़ी बड़ी बातें और कूटनीति की बातें होती होंगी इसमें अर्बनाइजेशन और आम नागरिक के लिए क्या कुछ हो सकता है, मतलब कैसे इसको समझें?
0: पहले तो ये विषय समझने का है कि ब्रिक्स की स्थापना जब हुई थी तो ऐसे 5 देशों ने मिलकर के कि हमारे जो कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उसको कैसे सॉल्व करना है, ये एक प्रकार का आपस में परामर्श करने के लिए, टू कंसल्ट ईच अदर टू कॉमन वन सोल्यूशन फॉर ए प्रॉब्लम, इस प्रकार का प्लेटफॉर्म शुरू हुआ था, और इसके इस समय तक 13 अधिवेशन, 12 हो चुके हैं, 13वां अब चल रहा है। हर वर्ष उन 5 देशों के साथ कुछ और देश भी जुड़ गए, तो उन देशों को मिला करके अब 11 देश हो गए ब्रिक्स में। तो ऐसे हर वर्ष कोई ना कोई एक चेयरशिप किसी देश को मिलती है, उसके वहां ऐसे ब्रिक्स की मीटिंग्स होती हैं, एक नहीं होती है, हर डिपार्टमेंट की होती है, जैसे हमारी मोवा की हुई है, 2 दिन खत्म हुए, अभी 25 तारीख को पावर की हो रही है, एग्रीकल्चर की हो रही है इंदौर में, तो जितने डिपार्टमेंट्स हैं सभी डिपार्टमेंट्स ब्रिक्स की मीटिंग्स अपनी कर रहे हैं, एक दिन दो दिन। बाद में सितंबर में, शायद 11-12 सितंबर है, उस समय पूरे देश के इकट्ठे सभी इन 11 देशों के जो हेड्स आएंगे, प्रधानमंत्री जी उसको चेयर करेंगे, और वो फिर बैठक का सब की निचोड़ निकाल करके फाइनल आउटपुट उसमें डॉक्यूमेंट निकलेगा। जहां तक अर्बन का, ये 2 दिन का हमारा समाप्त हुआ ब्रिक्स का सम्मेलन, इसके अंदर सब लोगों ने खुल करके अपने अपने देशों में शहरीकरण में क्या क्या उनको समस्याएं आ रही है और क्या क्या उन्होंने अचीव किया है, उनकी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, एक एक करके हमने उनको सबको समय दिया, सबने बताया है, और फिर बाद में सबकी समस्याओं को कैसे हल किया जाए, तो एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग जिन चीजों पर बनी उसका एक फिर हमने आज जो है कॉमन डिक्लेरेशन उसको अनाउंस किया है, जिस पर सब सहमत हुए। उसमें कोई पर्टिकुलर देश की समस्या को नहीं विचार किया जाता, लेकिन किस प्रकार किस दिशा में आगे बढ़ना है, रेजिलियंट हाउसिंग होना चाहिए, अफोर्डेबल हाउसिंग होना चाहिए, एक वातावरण के नाते एनवायरमेंट के नाते से अच्छा होना चाहिए, एक शहर में किस प्रकार नागरिक को सुविधाएं ज्यादा मिले, उन नागरिकों का स्वभाव कैसे बदला जाए, स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत भी लोगों के संस्कार और स्वच्छता कैसे उसको बनाए रखा जाए, लोगों को जो जो कठिनाइयां आ रही है उसको हल करने के लिए, जैसे मानो वहां का एरिया कितना है, पॉपुलेशन कितनी है, उसकी प्लानिंग कैसे हो, ये सारे विषय विचार किए जाते हैं। कोई इसमें ऐसा निर्णय नहीं है कि सबके ऊपर थोपा जाता, एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए एक डिक्लेरेशन के ऊपर साइन किया जाता है। अच्छी बात यह है कि अर्बन के इस प्रकार के ब्रिक्स में आज तक जितने भी सम्मेलन हुए हैं मिनिस्ट्रियल लेवल पर यह पहली बार हुआ है, अदरवाइज अधिकारियों के स्तर पर होता रहा है, पहली बार स्टेट के कुछ मिनिस्टर्स वो कंट्रीज के वो आए, क्योंकि यहां मिनिस्टर के नाते मेरे पास दायित्व है, तो उस चेयरशिप में ये मीटिंग हुई। और अच्छी बात यह है कि जिसको बहुत कम लोग सोचते थे कि हम किसी कॉमन इशू के ऊपर कोई डिक्लेरेशन अपना डिक्लेयर कर पाएंगे कि मिनिस्ट्रियल डिक्लेरेशन, इस पर कुछ शंकाएं जाहिर की गई, हमने कहा फिर भी प्रयत्न करेंगे। तो आखिर में कल और आज में सब विषयों के ऊपर एक डॉक्यूमेंट बनाया, हमारे अधिकारियों ने बनाया, और आखिर में सबकी सहमति उसमें हुई, और उसके बाद शाम को उसको हमने डिक्लेयर किया कि भाई ये कॉमन डिक्लेरेशन हम जारी कर रहे हैं, लेकिन उसका फाइनल जो ड्राफ्ट है, अभी ड्राफ्ट बना है, फाइनल उसकी जो शेप आएगी वो सितंबर की जो ऑल इंडिया का हमारे सब डिपार्टमेंट्स का मिला के होगा उसमें डिक्लेयर किया जाएगा।
1: एक बात और मैं आपसे समझना चाहूंगा, बिजली बिल की भी बात लोग करते हैं लेकिन अब उससे ज्यादा सोलर सब्सिडी की बात, पीएम सूर्य घर कितना बड़ा गेम चेंजर आप मानते हैं?
0: बहुत बड़ा विषय है, कारण उसका ये है कि जो छोटा कंज्यूमर है उसकी उतनी शक्ति नहीं होती कि वो अपने बिल को भी पे कर सके
1: जी,
0: और जब बिल पे नहीं कर सकता, इच्छा सबकी रहती है पावर हमको मिले, क्योंकि आज पावर जो है हर गतिविधि की आवश्यकता बन गई है, घर में पे नहीं कर सकता उसको कठिनाई होती है, कभी कभी गलत संस्कार पड़ जाते हैं कि वो बिजली की चोरी भी करने लग जाता है, और जब ये सारी चीजें होती है तो

0: इसका नुकसान जो होता है वो डिस्कॉम्स को होता है, घाटा स्टेट को भरना पड़ता है, फिर वो यूनिवर्सलाइज एक प्रकार से सोशलाइज फाइन हो जाता है सबको
1: जी,
0: चोरी कोई करे भरे सब। उसी में से स्कीम ये निकली कि क्यों नहीं हम पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, कुछ स्टेट्स ने अपने फ्री बिजली के भी नारे लगाने शुरू किए, 600 यूनिट तक फ्री, 200 यूनिट तक फ्री। तो उस समय से ये विचार निकला कि हम एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट उनको दें कि बिजली उनको फ्री मिले, न केवल फ्री मिले बल्कि हम सिस्टम ऐसा बनाएंगे कि अगर उनके पास सरप्लस हो जाए उस सौर ऊर्जा, तो सरप्लस वो ग्रिड में देकर के उसमें से पैसे भी कमाए, तो ऊर्जा दाता बन सकता वो। तो उसमें से 3 किलोवाट तक एक स्कीम बनाई गई, 1 किलोवाट तक 30,000, 2 किलोवाट तक 60,000, तीसरे किलोवाट का और 18,000 मिलाकर 78,000। 78,000 भारत सरकार देती है, टॉप अप जो है स्टेट गवर्नमेंट्स करती है, कुछ थोड़ा पैसा कंज्यूमर अपने पास से लगाता है ताकि उसकी ओनरशिप बनी रहे, ओनरशिप के लिए थोड़ा कंट्रीब्यूशन करना जरूरी होता है, तो वो उससे कराया। और आज जहां तक मैं आंकड़ा ठीक समझता हूं, हमारा टारगेट तो है 1 करोड़ सूर्य घर बिजली योजना का, लेकिन लगभग 20 लाख तक हम पहुंच चुके हैं, बाकी अंडर पाइपलाइन है। कुछ कठिनाइयां जिन प्रदेशों में आ रही हैं उनको दूर करने के लिए उन प्रदेशों को बताया है, कठिनाइयां वहीं ज्यादा आ रही हैं जहां घोषणाएं हो गई कि हम जीरो बिल लेंगे, तो उसमें जो कंज्यूमर है वो तो मेरा पहले ही जीरो आ रहा है, मुझे और एक नया ये पीएम सूर्य घर अपने घर में लगा करके क्यों परेशानी बोल लेनी। तो उनको कहा कि उनको और थोड़ा इंसेंटिव दीजिए ताकि अभी तो जीरो है, ये लगाएंगे तो उसको इनकम भी हो जाएगी। इसी प्रकार अगर सौर ऊर्जा की बात करता हूं, किसानों की बिजली भी प्राय फ्री जाती है सब किसानों को, उनके ट्यूबवेल्स के ऊपर जो पंप्स हैं वो सौर ऊर्जा से वो पंप चलाए जाए ताकि उनका खर्चा भी ना हो, सरकार का खर्चा भी ना हो, वो भी कुसुम योजना के अंतर्गत बहुत बड़ी मात्रा में कुसुम योजना के अंतर्गत सौर पंप लगाए जा रहे हैं।
1: जी, पिछले 12 वर्षों में अगर मैं कहूं कि सबसे बड़ा रीलोड आप किसको मानते हैं, कैसे आप देखते हैं?
0: आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा कि पता नहीं बाकी लोग मेरे उत्तर से सहमत होंगे कि नहीं होंगे, लेकिन जो मुझे लगता है 12 साल पहले व्यक्ति अपने आप को महत्व देता था, परिवार अपने आप को देता था और इंस्टीट्यूशन वो अपने आप को महत्व देती थी, राज्य भी अपने आप को महत्व देते थे, देश को महत्व कोई नहीं देता था। लेकिन 12 वर्षों में जो अंतर मैं देख रहा हूं, अब जैसे मोदी जी ने कहा कि इंडिया फर्स्ट, देश है तो सब ठीक, देश पहले सब बाद में, बहुत बड़ी मात्रा में लोगों के मन में देश के प्रति सोचने का स्वभाव बना है, देशभक्ति का भाव जागृत हुआ है और इसी में से देश की एकता ये बनी है। ये हमारे विपक्षी मित्रों को समझ में नहीं आ रहा, उन्होंने हमेशा व्यक्ति का स्वार्थ जगाया, मोदी जी ने व्यक्ति को देश के साथ जोड़ा है और देश के साथ जुड़ने के बाद समाज इकट्ठा होता जा रहा है और अब धीरे धीरे वो दिशा इतनी ज्यादा बड़ी बन गई है, इतनी बड़ी लाइन हो गई है कि उस बड़ी लाइन को करने के लिए और कोई मुद्दा इससे बड़ा विपक्ष ढूंढे वो ढूंढ नहीं पाएगा। जब वो ढूंढ नहीं पाएगा तो अल्टीमेटली ये लाइन इतनी बड़ी बन गई है कि अब टूटने वाली नहीं है। बहुत परेशान हो रहे हैं, मैं उनको बेचारा तो क्या कहूंगा, क्योंकि पार्टी चलाते हैं, सब लोग अपने अपने लक्ष्य को लेकर चलते हैं। अब उनको यही लगता है कि मोदी जी को गालियां दे लो, शायद जनता उसमें से आगे बढ़ जाए। लेकिन कुल मिलाकर के मेरे मन में है कि जैसे मोदी जी ने कहा कि सबका साथ सबका विकास, सबकी एकता बनाने में मोदी जी हमारी सरकार ये कामयाब रही है और यही सबसे बड़ा रीलोड मैं समझता हूँ कि देश पहले बाकी सब बाद में, इससे बड़ा और कोई रीलोड अभी तक मैं महसूस नहीं करता।
1: जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो मनोहर लाल जी ने जो बातें कही, निश्चित तौर पर विकास के नए सोपान गढ़ने के सपने भी हैं, उसको बेहतर बनाने के और सपने भी हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात कही कि पिछले 12 वर्षों में लोगों का भाव बदला है, लोगों का नजरिया बदला है देश के प्रति और देश के लिए काम करने का जो नजरिया बदला है, वो शायद पिछले 12 वर्षों का सबसे बड़ा टेक अवे है, ऐसा मानना है मनोहर लाल जी का। तो हमारे इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत धन्यवाद, नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे केंद्रीय ऊर्जा और आवासन तथा शहरी कार्य मंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे निखिल सिंह। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है। This is Akashvani. In this special series, 12 Saal Vishwas Ke, Vikas Ke, Jan Kalyan Ke, now we bring you an interview with Manish Sabharwal, co-founder of Team Lease Services. Interviewer is Anil Padmanabhan, senior journalist.
3: Over the last 12 years, India has strived to make a gradual transition towards a more rules-based, trust-enabled economy through labor reforms, digitization, decriminalization of laws. Under the Jan Vishwas framework, India strived to reduce friction, formalize the economy, and rebuild trust between the state, enterprise, and citizens. Yeah. Manish, make a great

0: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे।
1: अरे रमुआ, ये पंखा क्यों खुला छोड़ा? बिजली का बिल क्या तेरा?
2: केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने के उपलक्ष में विशेष श्रृंखला विदेश नीति अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। ये प्रसारण आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। संध्या के 7:45 हुए हैं और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम चित्रपट संगीत।

दोस्त फिल्म का ये जो गीत हमने आपको सुनवाया श्रोताओं, इसमें आवाजें थी मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और शत्रुघ्न सिन्हा की। गीतकार थे आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल। और अब आइए कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। मन की आंखें फिल्म का गीत आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाज में। गीतकार है आनंद बख्शी, संगीतकार लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ में इस गीत को लिखा था साहिर ने। संगीत की धुन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की थी। और अब आइए कार्यक्रम के अगले गीत की ओर बढ़ते हैं। आपको सुनवाते हैं लाट साहेब फिल्म का गाना। मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में ये गीत है। शैलेंद्र ने इस गीत को लिखा है और शंकर जयकिशन ने धुन बनाई है। आइए सुनते हैं।

और इसी गीत के बाद चित्रपट संगीत कार्यक्रम का यह अंक पूरा होता है। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। रात्रि के 8 बजने वाले हैं और श्रोताओं, हम आपके लिए

सुगम संगीत का कार्यक्रम लेकर हाजिर हैं। कार्यक्रम के इस अंक को आज हमने पिरोया है अदनान सामी के गाए सुमधुर गीतों से। आइए कार्यक्रम के पहले गीत का आगाज करते हैं।

अदनान सामी की आवाज़ में ये गीत अभी आप सुन रहे थे और ये रचना थी समीर की। आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं, अदनान सामी की आवाज़ में ये गीत सुनते हैं।

आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से आप इस समय सुन रहे हैं सुगम संगीत का कार्यक्रम। आइए अदनान सामी की आवाज़ में कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं। और आपको ये बता दें, इस गीत को लिखा है जावेद अख्तर ने और संगीत की धुन तैयार की है शंकर एहसान लॉय ने। आइए सुनते हैं।

और इसी गीत के बाद सुगम संगीत कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं ये संदेश।

मिनट हुए हैं और अब लीजिए पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा। श्रोताओं, हिंदी सिनेमा में कई अभिनेत्रियां हुई हैं जिन्होंने अपने अभिनय के दम पर लोगों का दिल जीता है, तो वहीं उनकी खूबसूरती पर कई जवां दिल भी धड़के हैं। आज हम बात कर रहे हैं अभिनेत्री सुरैया के बारे में। अपने जमाने की मशहूर एक्ट्रेस सुरैया का जन्म 15 जून 1929 को हुआ था। सुरैया का नाम सिर्फ अच्छी अदाकारा के रूप में ही नहीं, बल्कि एक उम्दा गायिका के तौर पर भी लिया जाता है। सुरैया ने अपनी कई फिल्मों के गानों में अपनी आवाज दी थी। उनका पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। सुरैया की गायकी और अदाकारी दोनों के चर्चे फिल्मी गलियारों में खूब रहा करते थे, और दूसरी तरफ उनकी खूबसूरती, जिसे देखने के लिए लोग घंटों इंतजार किया करते थे। मुंबई के मरीन ड्राइव के पास उनके घर के बाहर उनके फैंस की लाइन लगी रहती थी। आइए अपनी इस बातचीत में पिरोते हैं सुरैया की गायकी का मीठा रस और सुनते हैं कुछ गीत उन्हीं की फिल्मों से।

श्रोताओं, सुरैया ने अपना एक्टिंग डेब्यू बचपन में ही चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर किया था। राज कपूर और मदन मोहन जैसे दोस्तों के साथ पली बढ़ी और ऑल इंडिया रेडियो पर बच्चों के कार्यक्रमों में वे गाना गाती थीं। एक दिन वह अपने मामा श्री जहूर के साथ फिल्म सेट पर गईं, जहां संयोग से उन्हें फिल्म ताजमहल, जो 1941 में बनी थी, में अपनी पहली भूमिका मिल गई। लेकिन उन्हें असली सफलता तब मिली जब वो भरते संगीत निर्देशक नौदशाद ने उनकी प्रतिभा को पहचाना और उन्हें फिल्म शारदा में मशहूर अभिनेता महताब के लिए लोकप्रिय गीत

ही जा रहा है बचपन मेरा गाने का मौका दिया। उस समय वो केवल 12 साल की थी और बिना स्टूल पर खड़े हुए माइक तक पहुंचती भी नहीं थी, फिर भी उनकी आवाज ने पूरे देश को उनके साथ गाने पर मजबूर किया। 15 वर्ष की आयु तक सुरैया ने बॉम्बे टॉकीज में अपने प्रदर्शन से उद्योग में अपनी जगह बना ली थी और अपना स्थान भी स्थापित कर लिया था। 1943 में फिल्म आई थी मैडम फैशन, जो 1936 में बनी थी। इस फिल्म का निर्देशन जद्दनबाई हुसैन ने किया था। साल 1943 में आई थी फिल्म इशारा, जिसमें उन्हें रातों रात स्टार बना दिया। इस फिल्म में सुरैया को अभिनेता पृथ्वीराज कपूर के साथ बतौर लीड हीरोइन काम करने का मौका मिला था। इस फिल्म के बाद सुरैया के अभिनय से लेकर उनकी खूबसूरती की चर्चा जोरों पर होने लगी। देविका रानी, जो बॉम्बे टॉकीज प्रोडक्शन चलाया करती थी, उन्होंने उस समय सुरैया के साथ 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था।

सुरैया की एक के बाद एक फिल्में रिलीज हो रही थीं और फैंस की भीड़ अदाकारा के घर से लेकर सिनेमा घरों तक लगी रहती थी। आलम यह था कि सुरैया अपनी ही फिल्मों के प्रीमियर में बड़ी मुश्किलों से पहुंच पाती थी। इसी तरह सुरैया की एक फिल्म के रिलीज होने से पहले उसका प्रीमियर रखा गया था। सुरैया को कोई पहचान न ले, इसलिए हॉल के अंदर कड़े इंतजाम किए गए थे। कई सिक्योरिटी गार्ड्स भी तैनात किया गया था और अभिनेत्री को मुंह ढककर आने के लिए कहा गया था। सुरैया को दुपट्टे से अपना चेहरा छुपाकर प्रीमियर में पहुंचना पड़ा ताकि कोई उन्हें पहचान न सके, लेकिन होना तो कुछ और ही था। छुपाने की लाख जतन करने के बाद भी भीड़ में से किसी ने उन्हें पहचान लिया और फिर भीड़ तो बेकाबू हो गई। हर कोई उनकी एक झलक पाना चाहता था। इससे सिक्योरिटी सिस्टम लगभग नाकाम हो गया और तब पुलिस को बुलाना पड़ा।

और काफी जद्दोजहद के बाद सुरैया उस भीड़ से निकल पाई। इस घटना से वो इतना डर गईं कि फिर कभी अपनी किसी भी फिल्म के प्रीमियर पर न जाने की उन्होंने कसम खा ली।

श्रोताओं, सुरैया एकमात्र ऐसी गायिका थीं जो विभाजन के बाद भी भारत में ही रहीं, जबकि उनकी समकालीन नूरजहां और खुर्शीद पाकिस्तान जा चुकी थीं। इसी कारण से 1947 और 1950 के बीच उनकी प्रसिद्धि में काफी बढ़ोतरी हुई। प्लेबैक सिस्टम की शुरुआत हो जाने के बावजूद भी सुरैया का खास अंदाज, मखमली मधुर आवाज, सीधी और साफ भाषा ने लोगों को उनकी तरफ आकर्षित किया, जिसके बाद उनके पॉपुलैरिटी की कोई सीमा नहीं थी। सुरैया की सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट फिल्में प्यार की जीत, बड़ी बहन, दिल लगी जैसी फिल्में थीं। प्यार की जीत और बड़ी बहन फिल्म के लिए हुस्नलाल भगतराम ने म्यूजिक कंपोज किया था, जबकि दिल लगी फिल्म के लिए संगीतकार नौशाद ने साउंड ट्रैक तैयार किया था। हम आज भी इनके गीतों को लोगों को गुनगुनाते हुए सुनते हैं। 1948 से 1949 में सुरैया ने इतनी उपलब्धि हासिल की कि उन्हें सिनेमा जगत में टॉप पर पहुंचा दिया था। उस समय उन्हें कम्पीट करने के लिए कोई अदाकारा गायिका नहीं थी। उन्हें उनकी प्रतिभा के लिए भारत की मलिकाए तरन्नुम की उपाधि से भी नवाजा गया था।

श्रोताओं, सुरैया की फिल्म मिर्ज़ा गालिब को 1954 की सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म के लिए राष्ट्रपति का स्वर्ण पदक मिला। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने भी उनके अभिनय की प्रशंसा करते हुए सुरैया से कहा था, उनकी आवाज़ ने गालिब को फिर से जीवंत कर दिया। 1956 में भारत सरकार द्वारा सुरैया को सोवियत संघ के प्रतिनिधिमंडल के रूप में भेजा गया, जहाँ उनके फिल्मों का प्रदर्शन हुआ। उन्हें 1996 में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 2003 में दादा फाल्के की 134वीं जयंती में विशेष समारोह में उन्हें दादा साहब फाल्के अकादमी और स्क्रीन वर्ल्ड पब्लिकेशन से सम्मानित किया गया।

श्रोताओं, साल 2013 में भारतीय सिनेमा के 100 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में सुरैया को सम्मानित करने के लिए भारतीय डाक के द्वारा विभिन्न भूमिकाओं में उनकी छवि वाला एक डाक टिकट जारी किया गया। इसी अवसर पर उन्हें सर्वश्रेष्ठ ऑन स्क्रीन ब्यूटी भी चुना गया। सुरैया ने पारिवारिक और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण 1963 में अपने काम से यानी फिल्मी सफर से शुरू सेवानिवृत्ति ले ली। उन्होंने अपने जीवन के अगले 30 साल अकेले बिताए और अपनी मर्जी से शादी नहीं की। अपने जीवन के आखिरी दिनों में उन्होंने लगभग सभी से अपना नाता वापस मोड़ लिया था और 31 जनवरी 2004 को कई स्वास्थ्य समस्याओं के कारण एक सप्ताह पहले अस्पताल में भर्ती होने के बाद सुरैया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। और इस तरह भारतीय फिल्म जगत का एक दैदीप्यमान सितारा अस्त हो गया और अपने पीछे छोड़ गया अपने द्वारा गाए हुए अनमोल गीतों का और अपने अभिनय का खजाना।

0: और इसी के साथ रजनीगंधा कार्यक्रम का ये अंक पूरा होता है।
1: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
2: देश की सुरीली धड़कन
3: विविध भारती,
1: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
2: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
1: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
2: वीर सैनिकों की जय माला
1: और हंसी का हवा महल, 22 करोड़ की बातें यादों के उजाले,
2: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
4: सखी सहेली,
2: बॉम्बे टॉकीज
5: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
2: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
6: मुझे याद सब है जरा जरा,
1: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
2: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
1: मन का सुकून दिल की आरती,
2: सुरीली संदली।

0: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या रात के 8:45 होने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद समाचार संध्या और 9 बजे अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा।

0: मुख्य समाचार। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाली G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। इसराइल ने कहा, अमरीका ईरान शांति समझौते के बावजूद उसकी सेना लेबनान, सीरिया और गजा में अनिश्चितकाल तक बनी रहेगी। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। अब समाचार विस्तार से। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिट्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ये समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा की रक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। श्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने रक्षा क्षेत्र में आशय पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
1: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
0: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना करते हुए कहा कि उसने कई प्रमुख क्षेत्रों में उन्नत देशों को पीछे छोड़ दिया है। दोनों नेताओं ने भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द लागू करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री ने दोनों देशों के बीच सहयोग के नए अवसरों पर जोर दिया। आज भारत और स्लोवाकिया के बीच 11 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। सहयोग के मुख्य क्षेत्रों में श्रमिकों का आवागमन, रक्षा, डिजिटल टेक्नोलॉजी, उच्च शिक्षा, ऑडियो विजुअल प्रोडक्शन, AI चेयर की स्थापना, क्वांटम कम्युनिकेशन और पर्यटन शामिल है। द्विपक्षीय बातचीत के बाद दोनों देशों के रिश्तों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक ले जाने की घोषणा की गई। आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त कार्यबल समूह भी बनाया जाएगा। इस दौरान राजनयिक संवाद शुरू करने के विषय में भी एक घोषणा की गई। ब्रातिस्लावा से स्मिथी एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: फ्रांस का एवियन शहर आज रात वैश्विक कूटनीति का केंद्र बनने जा रहा है, जहां G7 देशों के नेता 52वें शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एकत्र हो रहे हैं। शिखर सम्मेलन में नेताओं द्वारा वैश्विक असंतुलन को कम करने, प्रमुख भू राजनीतिक संकटों को हल करने, बच्चों से संबंधित मुद्दों को संबोधित करने और संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने पर विचार विमर्श करने की उम्मीद है। G7 देशों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और सहयोगी देशों के नेता शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए एवियन पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए कल एवियन पहुंचेंगे। एवियन से अधिक जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता।

0: टाटा अंकित। अंकित, G7 देशों के नेता भारत के जो बढ़ता रणनीतिक महत्व है उसको व्यापार, प्रौद्योगिकी, विनिर्माण और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला की सुरक्षा जैसे जो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ठोस सहयोग में कैसे बदल रहे हैं और जो इस सम्मेलन से हमें क्या आशाएं होंगी?
1: जी प्रियंका, अगर हम मौजूदा कूटनीतिक और आर्थिक परिदृश्य पर नजर डालें तो एक बात तो बिल्कुल साफ नजर आ रही है कि G7 देशों के लिए भारत की रणनीतिक अहमियत अब केवल चर्चाओं तक सीमित नहीं है, यह अब जमीनी स्तर पर भी ठोस आर्थिक और तकनीकी साझेदारियों में बदल रही है। प्रियंका, आप देखिए कि फ्रांस के नीस शहर में जिस तरह से भारत इनोवेट्स पहल की शुरुआत हुई है, और इतना ही नहीं, पेरिस के वीवोटेक जैसे बड़े आयोजन में भारत AI पार्टनर कंट्री की भूमिका निभा रहा है, ये सारी बातें अपने आप में बहुत कुछ कहती हैं। इन सब घटनाक्रमों में ये देखिए कि ये संदेश बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है कि G7 देश अब भारत को केवल एक बड़े राजनीतिक चश्मे से नहीं देख रहे हैं, बल्कि आज भारत उनके लिए टेक्नोलॉजी, इनोवेशन, मैन्युफैक्चरिंग, भरोसेमंद सप्लाई चेन के मामले में एक बेहद विश्वस्त साझेदार बन चुका है। और सबसे बड़ी बात कि शिखर सम्मेलन में जो भी नतीजे सामने आएंगे उसमें भारत के नजरिए और ग्लोबल साउथ की चिंताओं को कितनी अहमियत दी जाती है ये देखना होगा। प्रियंका
0: जी, धन्यवाद अंकित। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।
2: सपनों को हकीकत में बदलने के लिए सही समय पर सही कदम उठाना जरूरी है। भारतीय वायुसेना में कमीशन्ड ऑफिसर बनने के लिए AFCAD 2 ऑफ 2026 के आवेदन 20 मई से खुले हैं। विवरण के लिए विजिट करें afcat.edcil.co.in पर।

0: टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया। मंत्रालय ने बताया है कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस उपलब्धि पर DRDO की टीम और उद्योग भागीदारों को बधाई दी है। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज गोवा में आयोजित वैश्विक पवन दिवस राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान पवन टरबाइन आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन पोर्टल का शुभारंभ किया। श्री जोशी ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान देश की पवन ऊर्जा क्षमता में रिकॉर्ड 6.1 गीगावाट की बढ़ोतरी हुई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 46% अधिक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के शीर्षक से विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज बात वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का लक्ष्य पूरा करने के उद्देश्य से आधुनिक आधारभूत संरचना के निर्माण की दिशा में सरकार के प्रयासों की।
2: एक मजबूत और आधुनिक राष्ट्र की नींव विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचे पर टिकी होती है। पिछले 12 वर्षों में भारत ने परिवर्तन की एक अभूतपूर्व यात्रा तय की है, जिसमें अवसंरचना आधारित विकास को देश की प्रगति का आधार बनाया गया है। इस प्रतिबद्धता का प्रमाण है कि बुनियादी ढांचे पर होने वाला खर्च 2014-15 के 2,00,000 करोड़ रुपए से 6 गुना बढ़कर 12.2 लाख करोड़ रुपए हो गया है। पिछले 12 वर्षों में देश की शहरी परिवहन व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया है। देश का मेट्रो रेल नेटवर्क लगभग 5 गुना बढ़कर 248 किलोमीटर से आज 1100 किलोमीटर से अधिक हो गया है, जिससे शहरों में संपर्क और यात्रियों की सुविधा में बड़ा सुधार हुआ है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में प्रतिदिन दिल्ली मेट्रो से यात्रा करने वाली एक यात्री अलीशा ने अपने अनुभव साझा किए।
3: मेट्रो तो हमारी लाइफलाइन बन चुकी है। मुझे अपने ऑफिस के लिए रोज गुरुग्राम जाना होता है, जिसके लिए मैं मेट्रो का इस्तेमाल करती हूँ। मेट्रो में ट्रैवल करने की वजह से रोड पर होने वाले ट्रैफिक जाम से बच जाती हूँ।
2: भारत आज दुनिया का सबसे बड़ा सड़क

0: रखने वाला देश है। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क वर्ष 2014 में 91,000 किलोमीटर से बढ़कर वर्ष 2026 में 1,46,000 किलोमीटर से अधिक हो गया है। परिवर्तन की यह तस्वीर रेलवे क्षेत्र में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। रेलवे के लिए बजटीय प्रावधान लगभग 9 गुना बढ़कर वर्ष 2014-15 के 32,000 करोड़ रुपए से अब 2,78,000 करोड़ रुपए का हो गया है। इस निवेश ने रेलवे के आधुनिकीकरण को गति दी है और यात्रियों के सफर को और अधिक सुविधाजनक बनाया है। रेल के नए युग का प्रतीक वंदे भारत ट्रेन है। वर्तमान में इसकी 162 सेवाएं संचालित की जा रही हैं, जिनसे यात्रा समय में 45% तक की बचत हो रही है। लखनऊ की रहने वाली और वंदे भारत ट्रेन की नियमित यात्री पूजा ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि यह ट्रेन बेहद आरामदायक और समय की बचत कराने वाली है।
1: वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई, हम अधिकतर उसी से सफर करते हैं। टाइम बहुत ही बचता है और सीटें भी आरामदायक हैं। ये एक बढ़िया ट्रेन है और हम चाहेंगे या पूरे देश में ट्रेन चले।
0: इन सभी उपलब्धियों के माध्यम से एक तेज, बेहतर और अधिक समृद्ध भारत आकार ले रहा है, जो वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण की मजबूत नींव रख रहा है। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक में बोरीवली, अंबाला और मेंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की समीक्षा की। इस बीच रेलवे ने गुजरात के अहमदाबाद डिवीजन के लिए 140 करोड़ रुपए की कवच सुरक्षा प्रणाली परियोजना को मंजूरी दे दी। अंबाला मंडल के लिए 201 करोड़ रुपए की कवच परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश के जेवर स्थित नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आज से वाणिज्यिक उड़ानें शुरू हो गई हैं। देश के नागरिक उड्डयन क्षेत्र में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है। पश्चिम एशिया में हाल के घटनाक्रमों पर आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार ने औद्योगिक और वाणिज्यिक संस्थानों को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के निदेशक उपेश कुमार शर्मा ने बताया कि 62,000 मीट्रिक टन से अधिक एलएनजी वाले मालवाहक जहाज दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है।
3: एलएनजी कैरियर दिशा
4: भारतीय शिपिंग कॉरपोरेशन के नेतृत्व वाले कॉन्सोर्टियम द्वारा प्रबंधित एलएनजी वाहक पोत दिशा ने होर्मुज जलडमरू मध्य को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है। यह पोत 62,370 मीट्रिक टन एलएनजी लेकर आ रहा है। इसके 18 तारीख को गुजरात के दहेज बंदरगाह पहुंचने की उम्मीद है।
2: इस बीच अमरीका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौते की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स ने घोषणा की है कि उनकी सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चितकाल तक तैनात रहेगा। फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच मुकाबले में आज स्पेन और केप वर्डे आमने सामने होंगे। ये मैच भारतीय समय अनुसार रात 9:30 बजे से शुरू होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में स्वास्थ्य, रक्षा और आरोग्य के लिए योग के लाभ विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाया। श्रमिकों के आवागमन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा सहित प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह स्थापित करने पर भी सहमत हुए। फ्रांस का एवियन शहर आज रात से शुरू होने वाले G7 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए तैयार। प्रधानमंत्री मोदी कल सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी की जमीन पर आक्रमण क्षमता वाली क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। और फीफा फुटबॉल विश्व कप में ग्रुप एच के मुकाबले में आज रात स्पेन का सामना केप वर्डे से। इसके साथ ही समाचार संध्या का यंग समाप्त हुआ। नमस्कार।
5: गुड इवनिंग, this is Akashwani and I am Nishit Kumar with the news at 9.

आपकी परछाइयां असल में आपने सुना, मोहम्मद रफी की आवाज, राजा महदेली खां के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

राजा जानी फिल्म का गीत था, लता मंगेशकर का गाया, आनंद बख्शी के बोल थे, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।

धरती कहे पुकार के आप सुन रहे थे इस फिल्म में मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें मजरू सुल्तानपुरी के बोलों को सुरों में ढाला खयाम ने।

0: एम दत्ता की तर्ज थी सहिल उदयनवी का लिखाई गीत। आप सुन रहे थे महेंद्र कपूर की आवाज में फिल्म धर्मपुत्र से। और इस गीत के पहले श्रोताओं हमने आपको सुनवाया था धरती कहे पुकार के। इस फिल्म का गीत मुकेश और लता मंगेशकर की आवाजें थी। मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी।
1: गुड नाइट।
2: गुड नाइट।

आनंद बख्शी का लिखा ये गीत आपने सुना, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, चरस फिल्म का ये नगमा था। लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए ये प्रोग्राम अब संपन्न होता है। दीजिए इजाजत संगीता श्रीवास्तव को, नमस्कार।

0: भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: हम जो गाना बनाते हैं उसमें 50% हाथ जो है सिर्फ सॉन्ग राइटर का है।
0: संगीतकार ओ पी नैयर।
1: ये हकीकत है, इसको बाकी लोग नहीं मानेंगे। जिगरा चाहिए ये मानने के लिए कि ओ पी नैयर कुछ नहीं बगैर सॉन्ग राइटर के। मैं दूसरों की बात नहीं करता। आप 50% तो शायर हो गए और 25% जो काम है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है ऑर्केस्ट्रेशन में और सिंगर में। बाकी आप 25% अगर बोले तो क्रेडिट कंपोजर का है, ज्यादा कुछ है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी।

नमस्ते दोस्तों, आ गई हूँ मैं आपकी रेडियो सखी ममता सिंह लेकर आज के फनकार, जिनकी अदाओं में नजाकत, जिनकी गायकी में नफासत है, जिन्होंने अपने हुस्न और हुनर के जरिए फिल्मी पर्दे पर एक नई इबारत लिखी है, वो हैं आज की फनकार।

0: वो पास रहें या दूर रहें, उनकी आवाज जब हो पास तो बस मन सुकून और चैन से भर जाता है।
1: दिल नादान तुझे हुआ क्या है?
0: गम की दवा बन जाती है उनकी आवाज और उनकी अदायगी। आज के फनकार कार्यक्रम में चर्चा गायिका और अदाकारा सुरैया की।

सुरैया बचपन में बड़े नाज नखरे के साथ पली बढ़ी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। 15 जून 1929 को गुजरांवाला पंजाब, जो अब पाकिस्तान में है, में जन्मी थी। बचपन में उनका नाम था सुरैया जमाल शेख। बाद में अभिनय और गायन की दुनिया में वे सुरैया के नाम से मशहूर हुई।

सुरैया के फिल्मी करियर के शुरू होने की बड़ी दिलचस्प कहानी है। गुजरे जमाने के मशहूर खलनायक जहूर सुरैया के चाचा थे और उनकी वजह से 1937 में उन्हें फिल्म उसने क्या सोचा में पहली बार बाल कलाकार के रूप में भूमिका मिली। वो स्कूल की छुट्टियों के दिन थे जब वे मोहन स्टूडियो में फिल्म ताजमहल की शूटिंग देखने गईं। तब निर्देशक नाना भाई वकील की नज़र उन पर पड़ी और उन्होंने सुरैया को एक ही नज़र में मुमताज महल के बचपन के रोल के लिए चुन लिया। ये बात सन 1941 की है।

0: इसी तरह संगीतकार नौशाद ने भी जब पहली बार ऑल इंडिया रेडियो पर सुरैया की आवाज सुनी तो उन्हें फिल्म शारदा में गाने का मौका दिया।
1: तो

एक वक्त था जब रोमांटिक हीरो देवानंद सुरैया के दीवाने हुआ करते थे और सुरैया थी हीरो ग्रेगरी पैक की दीवानी। देवानंद को ये बात अच्छी तरह से पता थी। लोगों का ये मानना है कि सुरैया के प्रिय हीरो ग्रेगरी पैक की एक्टिंग के स्टाइल को देवानंद ने कॉपी की और देवानंद के अभिनय का दीवाना हुआ सारा जमाना। तमाम अभिनेताओं ने देवानंद के अभिनय के अनोखे अंदाज को अपना अंदाज बनाया। धीरे धीरे देवानंद और सुरैया के बीच मोहब्बत की एक डोर बंध गई, लेकिन अंततः ये जोड़ी वास्तविक जीवन में जोड़ी नहीं बन पाई। वजह थी सुरैया की दादी, जिन्हें देव साहब पसंद नहीं थे, मगर सुरैया ने भी अपने जीवन में देव साहब की जगह किसी और को नहीं आने दिया। ताउम्र उन्होंने शादी नहीं की और मुंबई के नरीमन पॉइंट स्थित अपने फ्लैट में अकेले ही जिंदगी जीती रही।

कहा जाता है देवानंद ने सुरैया को टूटकर प्रेम किया था। रोमांसिक विद लाइफ संस्मरण में देवानंद ने लिखा था, सुरैया की आंखें बड़ी खूबसूरत हैं। हाँ, मैंने उन्हें प्यार किया था, इसे मैं अपने जीवन का मासूम प्यार कहना चाहूँगा।

सुरैया की आवाज में जहाँ एक तरफ दर्द है वहीं दूसरी तरफ खुशी की तरंग भी सुनाई पड़ती है। फिल्म अफसर के लिए पंडित नरेंद्र शर्मा का लिखा ये गीत उन्होंने किस अदा के साथ गाया है सुनिए।

बड़ा अच्छा गाना गाते थे। सुरैया ने देवानंद से कहा कि सिचुएशन बदलकर ये गीत बर्मन साहब से ही गवाया जाए, लेकिन बर्मन साहब राजी नहीं हुए। वे बोले, ये गीत खास तौर पर सुरैया के लिए ही बनाया गया है, सो ये गाना सुरैया ही गाएंगी। और फिर ये गीत सुरैया ने गाया और हम सब के लिए वो गाना मन का मोर बन गया।

0: सुरैया विदेशी एक्टर ग्रेगरी पैक की दीवानी थी, ये बात उनके चाहने वालों को बखूबी मालूम है, लेकिन इस बात को वे किस खास अंदाज में कहती थी सुनिए।
1: 1952 के फिल्म फेस्टिवल में हॉलीवुड के डायरेक्टर मिस्टर फ्रैंक कापरा आए थे। बातचीत के दौरान मैंने उनसे कहा, ग्रेगरी पैक की फिल्में मुझे बहुत पसंद हैं, आप उनसे ये जरूर कह दीजिएगा। और फिर मिस्टर कापरा ने मेरा फोटो और मेरा पता ले जाकर जब ग्रेगरी पैक को दिया तो उन्होंने मुझे एक खत लिखा कि कभी मौका हुआ तो हिंदुस्तान आकर आपसे जरूर मुलाकात करूंगा। लेकिन मैं तो यही समझी थी कि वो क्या आएंगे और क्या मुलाकात करेंगे। फिर करीब 2 साल बाद एक दिन फिल्म बिल्वा मंगल की शूटिंग से मैं थकी हुई आई और सो गई। रात को करीब 12 बजे मुझे मम्मी जगाने लगी, उठो उठो देखो बाहर कौन आया है, ग्रेगरी पैक तुमसे मिलने आए हैं। पहले मैं ख्वाब समझी मगर जब नींद टूटी तो ये हकीकत थी।

सुरैया गायिका और अभिनेत्रियों की आखिरी पीढ़ी थी। सन 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो नूरजहां और खुर्शीद सरहद के उस पार चली गईं, पर सुरैया हिंदुस्तान में ही रहीं। लगभग 20 बरस लंबे अपने करियर में उन्होंने बतौर हीरोइन काम किया। अपने गाने उन्होंने खुद गाए। उन्होंने

50 के दशक में एक दौर ऐसा आया जब सुरैया की फिल्में चल नहीं रही थीं। इसी दौर में सोहराब मोदी के लिए उन्होंने फिल्म मिर्जा गालिब में काम किया। ये एक तरह से उनकी आखिरी कामयाब फिल्म थी। कमाल की बात ये है, मधुबाला और नरगिस जैसी अभिनेत्रियों ने इस फिल्म में अभिनय के लिए कोशिश की, पर ये रोल सुरैया को मिला। ये उनके गायन के सफर के लिए खूबसूरत तोहफा था। प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल पाने वाली

0: दोस्तों, क्या आपको मोती महल फिल्म का ये गाना याद है, मोटर बिगड़ने का?
1: कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, कभी न बिगड़े किसी की मोटर रस्ते में, खड़े रहो बस बेबस होकर

सन 1958 फिल्म मालिक में आया सुरैया का एक नायाब गाना, साथ में तलत महमूद की आवाज, संगीतकार गुलाम

सुरैया ने उस समय फिल्मों को अलविदा कहा जब वे और फिल्में कर सकती थीं। उनकी आखिरी जिंदगी अकेलेपन के साए में गुजरी और फिर 31 जनवरी सन 2004 में उन्होंने इस फानी दुनिया को अलविदा कह दिया। रह गई उनकी आवाज, उनकी तस्वीरें और जिंदगी का उनका दर्द।

आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित था जानी मानी गायिका और अदाकारा सुरैया पर। शोध, आलेख और स्वर आपकी रेडियो सखी ममता सिंह का, प्रस्तुति सहयोग आकांक्षा सिंह का, इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता शकील बख्शी। तो अब दीजिए इजाजत, नमस्कार। आज के फनकार।

विविध भारती पर बहती है सुरों की सरिता। घोलती है आपके जीवन में शास्त्रीयता, बारीकियां रागों की, श्रृंगार सुरों का समय बीता, दौर बदले, कायम है संगीत की मधुर पाठशाला। हर रोज सुबह और शाम 6:45 पर संगीत सरिता सिर्फ विविध भारती पर।

मेहरबान है जवानी और कुछ उम्र का भी तकाजा है। हमारी मदहोशी के बारे में जमाने का तो यही अंदाजा है।

तिलिस्मी नजरों ने देखते ही बांध लिया है दिल को, नैनों की जादूगरी का क्या कहना। आंखों में सुरूर, लबों पे मुस्कान, यही है पहचान दिलबर की, इस हसीन शख्सियत का क्या कहना।

0: बेरुखी का आलम है, इजाजत नहीं है मोहब्बत की, बेसब्र दिल को इंतजार तो करना होगा, गुलों पे बहार आने का, कली के फूल बनने का इंतजार तो करना होगा।
1: ये कली

न रहा वो गुलशन, अब वो हवा भी तो नहीं है। समा गई है कायनात इस दिल में, हमारी ये दास्तां भी तो नहीं है।

अभी हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को रिले कर रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। रात के 11 बजने वाले हैं। कुछ ही क्षणों के बाद हिंदी में समाचार और 11:05 पर अंग्रेजी में समाचार हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। भारत और स्लोवाकिया ने अपने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक उन्नत करते हुए द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने के लिए 11 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो के बीच हुई वार्ता के बाद प्रवासन, डिजिटल प्रौद्योगिकी और रक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। दोनों पक्षों ने एक सामाजिक सुरक्षा समझौते को शीघ्र पूरा करने की दिशा में काम करने पर भी सहमति व्यक्त की। यह समझौता भारत और स्लोवाकिया के बीच आवाजाही करने वाले कामकाजी पेशेवरों के कल्याण और सामाजिक सुरक्षा में योगदान देगा। वार्ता के बाद संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने संबंधों को व्यापक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।
1: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज,

0: इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग गहरे आपसी विश्वास और रणनीतिक सामंजस्य का प्रमाण है। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भविष्य न केवल नवाचार पर बल्कि विश्वास, जिम्मेदारी और मानवीय गरिमा पर भी आधारित होना चाहिए।
0: टेक्नोलॉजी हमारी भावी साझेदारी का महत्वपूर्ण स्तंभ है। डिजिटल टेक्नोलॉजी पर आज किए गए MOU इसे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर में सहयोग की नई संभावनाएं बनेगी। मुझे खुशी है कि स्लोवाकिया की एक यूनिवर्सिटी में AI के विषय पर इंडिया चेयर स्थापित की जा रही है। AI मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फीत्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि

0: स्थापित की जा रही है। एआई मानवता की सेवा और प्रगति का सशक्त माध्यम बने, यही हमारी साचा सोच है।
1: श्री रॉबर्ट फिट्सो ने भारत की तीव्र आर्थिक वृद्धि, डिजिटल परिवर्तन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुई प्रगति की सराहना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल फ्रांस के एवियां पहुंचेंगे, जहां वे G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैनुअल मैक्रों उनका स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन के एक विशेष सत्र में हिस्सा लेंगे, जिसमें वैश्विक साझेदारी और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को मजबूत बनाने पर चर्चा होगी। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी कैनेडा, ब्रिटेन और संयुक्त अरब अमीरात के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे। इसके बाद वे राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित रात्रि भोज में शामिल होंगे। प्रधानमंत्री मोदी लगातार 7वीं बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं। अमेरिका और ईरान द्वारा पश्चिम एशिया संघर्ष को समाप्त करने के समझौतों की घोषणा के कुछ घंटों बाद इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने घोषणा की है कि इसराइली सेना सीमा पार अपने ठिकानों से पीछे नहीं हटेगी। उन्होंने इसराइल की सुरक्षा नीति का विवरण देते हुए कहा कि इसराइल के नागरिकों की सुरक्षा के लिए इसराइली रक्षा बल लेबनान, सीरिया और गजा के सुरक्षा क्षेत्रों में अनिश्चित काल तक तैनात रहेगा। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने स्वदेश निर्मित लंबी दूरी तक जमीन पर लक्ष्य को निशाना बनाने वाली क्रूज मिसाइल का आज सफल परीक्षण किया है। मंत्रालय ने बताया कि ओडिशा के डॉ APJ अब्दुल कलाम द्वीप से हुए इस परीक्षण में मिसाइल ने अपने सभी लक्ष्य हासिल किए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। बैठक में श्री वैष्णव ने बोरीवली, अंबाला और मंगलुरु सहित कई व्यस्त रेलवे स्टेशनों का पुनर्विकास की समीक्षा की। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान परिषद की तीसरी बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में दवा शिक्षा, अनुसंधान और नवाचार को मजबूत बनाने से जुड़े विभिन्न कार्यक्रमों की समीक्षा की गई। और खेलों में फीफा फुटबॉल विश्व कप के ग्रुप एच में स्पेन और कबो वर्डे के बीच मुकाबला जारी है। अन्य मुकाबलों में स्वीडन ने ट्यूनिशिया को 5-1 से, जबकि आइवरी कोस्ट ने इक्वाडोर को 1-0 से हराया। वहीं जापान और नीदरलैंड्स के बीच मुकाबला 2-2 से ड्रॉ रहा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय किरण झा। India and Slovakia today elevated their ties to a comprehensive partnership. The two sides also inked 11 agreements to boost cooperation in key areas including labor migration, digital technology and defense following talks with the Prime Minister Narendra Modi and his Slovak counterpart Robert Fico in Bratislava. Later, addressing a joint press conference, Mr. Modi said elevation of ties symbolizes shared beliefs, priorities and future.
0: हमने अपने संबंधों को कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप का दर्जा देने का निर्णय लिया है। यह हमारे साझा विश्वास, साझा प्राथमिकताओं और साझा भविष्य का प्रतीक है। आज प्रधानमंत्री जी और मैंने हमारे सहयोग को नई दिशा और नई ऊर्जा देने पर विस्तृत रूप से चर्चा की। ऑटोमोबाइल, रेलवे, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग और ग्रीन टेक्नोलॉजीज, इन सभी विषयों में आज हमने दोनों देशों के लोगों की भलाई के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
2: In the first visit to the European nation by an Indian Prime Minister, Mr. Modi said both the countries have signed a letter of intent in the field of defense sector. Prime Minister Modi said the two sides also signed the Memorandum of Understanding on cooperation in the field of labor migration to facilitate mobility. Speaking on this occasion, Slovak Prime Minister lauded India's rapid economic growth, saying the country has outpaced many advanced nations in key sectors. Prime Minister Narendra Modi will arrive in Evian, France tomorrow to participate in the G7 summit in the third leg of his two-nation visit. Upon arrival, French President Emmanuel Macron will formally welcome the Prime Minister. Prime Minister Modi will then participate